मांगने वाले खाली न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, अरे उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात न पूछो।

राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की तीन लोक तारन तरन सो तेरे अधीन।

0: कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर मथुरा में कन्हैया जी का दिव्य महाअभिषेक, बांके बिहारी मंदिर की विश्व प्रसिद्ध मंगला आरती और द्वारकाधीश इस्कॉन तथा प्रेम मंदिर की अलौकिक झांकियां देखने देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु खींचे चले आते हैं।
1: ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने पौराणिक कुंडों के जीर्णोद्धार, परिक्रमा पथ के चौड़ीकरण और यमुना घाटों के सौंदर्यकरण से लीलाधर भगवान श्री कृष्ण की पावन धरा को नई पहचान दी है।
0: तो आप भी इस जन्माष्टमी 4 सितंबर को ब्रज तीर्थ आइए और कृष्ण भक्ति में रम जाइए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

राधे तू बड़भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन, सो तेरे अधीन।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: मैं चुप होकर भी हर बात हूँ, मैं दिन होकर भी अंधेरी रात हूँ। तू चिंता मत कर मेरी गोरा, मैं दूर होकर भी तेरे साथ हूँ, मैं दूर होकर भी तेरे साथ हूँ।
1: प्रदेश अब निवेश प्रदेश के रूप में बना रहा है अपनी पहचान।
2: चौथे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो से बढ़ेगा प्रदेश का मान।
1: इस महामंच पर 80 से अधिक देशों के 550 अंतर्राष्ट्रीय खरीदार होंगे शामिल।
2: ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर इन मार्च में 25 से 29 सितंबर तक होने वाले इस आयोजन में व्यापार के साथ दिखेगी यूपी की सांस्कृतिक विरासत की झलक। तो आइए जुड़िए और बनिए यूपी की सक्सेस स्टोरी का हिस्सा।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।

0: And communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Update rahe, aage rahe. Expert at AIR News Hindi or Instagram par AIR News Alerts ko follow karein.
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। EOS-05 अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ये भू समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाने वाला भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है। जापान की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को एक पायदान ऊपर बढ़ाकर BBB+ से A- कर दिया है। ये रेटिंग किसी देश की सरकार के ऋण चुकाने की क्षमता और वित्तीय साख का स्वतंत्र मूल्यांकन करती है। एक रिपोर्ट।
4: मंत्रालय ने कहा कि यह उन्नयन चुनौतीपूर्ण वैश्विक वातावरण में हुआ है और निरंतर विकास प्रभावी आर्थिक नीतियों बेहतर राजकोषीय प्रबंधन तथा मजबूत वित्तीय प्रणाली द्वारा समर्थित भारत के आर्थिक बुनियादी ढांचे का परिचायक है। JCR ने एक बयान में कहा कि मजबूत निजी उपभोग और सार्वजनिक निवेश से समर्थित भारतीय अर्थव्यवस्था ने उच्च विकास दर बनाए रखी है। जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कहा कि केंद्रीय राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2025 में 4.07% से घटकर वित्त वर्ष 2026 में 4.04% पर आ गया है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नेहा गोस्वामी।
1: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया है और 6 साल तक प्राथमिकी दर्ज न करने पर मुंबई पुलिस को फटकार लगाई है। एक रिपोर्ट।
5: दिशा सालियान मामले में न्यायमूर्ति सारंगवी कोतवाल और न्यायमूर्ति रंजीत सिन्हा आर भोसले की खंडपीठ ने कल CBI को दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान द्वारा दायर शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश किसी के खिलाफ दोष सिद्ध करने का संकेत नहीं है। पीठ ने कहा किसी व्यक्ति को तब तक आरोपी नहीं माना जाएगा जब तक जांच अधिकारी की राय में उनके खिलाफ उचित संदेह पैदा करने के पर्याप्त आधार न हो। प्रार्थना आकाशवाणी समाचार मुंबई।
1: उत्तर प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण का विशेष अभियान आज से इस महीने की 17 तारीख तक राज्य भर में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 14 साल की उम्र की लगभग 10 लाख पात्र किशोरियों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। भारत का 11 सदस्यीय विशेषज्ञ दल कल नेपाल के त्रिशूली बाजार पहुंच गया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विशेष उपकरणों के साथ पहुंचा ये दल आज से नेपाल की सेना के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य की शुरुआत करेगा। नेपाल में आई बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। इस बीच नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ है मुकेश कुमार बल।
6: महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। ग्रुप बी के मैच में कल रात दुबई में प्रतियोगिता में श्रीलंका ने इंडोनेशिया को 75 रन से मात दी। और पहली आईसीसी विमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करें तो ये प्रतियोगिता अगले साल 14 से 28 फरवरी के बीच खेली जाएगी। इसकी मेजबानी अब भारत को मिल गई है। इसका कारण श्रीलंका को मेजबानी से हटाया जाना है। आईसीसी ने कहा कि 6 टीमों का ये टूर्नामेंट अब भारत में मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करने वाली 6 टीमों में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेलेंगी। 28 फरवरी को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इसके अलावा भारत पहली बार अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर 5 से 9 सितंबर तक ह्युंडई विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला की मेजबानी करेगा। इसमें 20 देशों के 100 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन 4 सितंबर को होगा।
1: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, विदर्भ और उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान है। उधर मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में तेज बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है।
7: भोपाल, ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मंडला में मंगलवार शाम से शुरू हुई बारिश गुरुवार सुबह तक रुक रुक कर जारी रही। इससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। सतना में भारी बारिश से बाढ़ और जलभराव प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जारी है। प्रशासन ने 434 प्रभावित आवासों के लिए 18,01,000 रुपए की सहायता दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
1: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के बालासोर जिले में सुवर्ण रेखा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजघाट में भी नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है।
8: उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि बालेश्वर के राजघाट में सुवर्णरेखा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर 10.36 मीटर के खतरे के निशान के मुकाबले लगभग 11.5 मीटर तक पहुंच गया है। झारखंड के गालुडीह बैरेज से छोड़े गए पानी ने नदी के बहाव को और बढ़ा दिया है। भोगराई, बालियापाल और जलेश्वर ब्लॉक के कई गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है। प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने और राहत कार्य जारी रखे हुए है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
9: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
10: धन्यवाद कनक। एयर मार्शल सेवानिवृत्त जितेंद्र मिश्रा को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का सीईओ बनाए जाने की खबर आज की ज्यादातर अखबारों की पहली सुर्खी है। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है, राम मंदिर के लिए वायुसेना के पूर्व अफसर पर ट्रस्ट। दैनिक जागरण लिखता है, ऑपरेशन सिंदूर के वायुवीर बने राम मंदिर ट्रस्ट के पहले ट्रस्टी। गोविंद देवगिरी बने महासचिव। अमर उजाला की टिप्पणी है, सिंदूर के सेनानी को रामलला की कमान। राजस्थान पत्रिका ने अखिल भारतीय सर्वेक्षण के हवाले से बताया है, उच्च शिक्षा में बेटियों की उड़ान, दाखिलों में लड़कों को पछाड़ा। साथ ही पत्र ने यह भी लिखा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में अब भी लड़कों को बढ़त। नेपाल त्रासदी में राहत और बचाव कार्यों में भारत द्वारा की गई भरपूर मदद पर नेपाल के प्रधानमंत्री का आभार, लोकसत्य के पहले पन्ने पर है। नेपाल के पीएम बोले, भारत का धन्यवाद। अमेरिका में पासपोर्ट नियमों में बदलाव की तैयारी, दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, इसका उद्देश्य अमेरिका में जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता पर प्रतिबंध लगाना है। हिंदुस्तान ने राजधानी दिल्ली में एसआईआर के दौरान की गई मैपिंग पर लिखा है, 45% लोग ही दे पाए अपना पुराना ब्यौरा, नाम जुड़वाने के लिए घोषणा पत्र जरूरी। जनसत्ता ने लुप्त प्राय सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए दक्कन में 16 अहम क्षेत्रों की पहचान किए जाने का समाचार प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से देते हुए लिखा है, सोन चिरैया की संख्या अब केवल 100-150 ही बची है। ये पक्षी कभी पूरे भारत और दक्षिण पाकिस्तान में पाया जाता था। दैनिक भास्कर की ये पंक्तियां ध्यान खींचती हैं, डिजिटल दौर में दोस्ती का संकट, मैसेज तो होते हैं, मुलाकात नहीं। एनसीईआरटी द्वारा 6ठी और 9वीं की सभी भारतीय भाषाओं की नई पुस्तकों के नाम देश की नदियों के नाम पर रखे जाने पर दैनिक जागरण लिखता है, देश की नई पीढ़ी को भारतीय भाषाओं से जोड़ने की पहल में छात्र सिर्फ भाषा नहीं सीखेंगे बल्कि देश की नदियों के नाम से भी रूबरू होंगे।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण से जुड़ी तकनीक अपनाने और सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं से सीखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डे वेवर से वार्ता करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह US-05 का प्रक्षेपण करेगा। जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी JCR ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को बढ़ाकर A- किया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की CBI जांच का आदेश दिया। और महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज दुबई में भारत का मुकाबला हांगकांग से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स फॉर ग्रेटर एडॉप्शन ऑफ वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज एंड लर्निंग फ्रॉम ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू होल्ड टॉक्स विद हिज बेल्जियन काउंटरपार्ट बार्ट डी वीवर इन न्यू दिल्ली टुडे। ISRO to launch Earth Observation Satellite EOS-5 from Sriharikota tomorrow. India's sovereign credit rating upgraded to A- with stable outlook by Japan Credit Rating Agency. Bombay High Court orders CBI probe into death of Disha Salian, former manager of late actor Sushant Singh Rajput. And in women's cricket, India to take on Hong Kong in the second Group A match of 2020 Asia Cup in Dubai this evening.

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
3: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
4: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर मथुरा में कन्हैया जी का दिव्य महाअभिषेक, बांके बिहारी मंदिर की विश्व प्रसिद्ध मंगला आरती और द्वारकाधीश इस्कॉन तथा प्रेम मंदिर की अलौकिक झांकियां देखने देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु खींचे चले आते हैं।
5: ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने पौराणिक कुंडों के जीर्णोद्धार, परिक्रमा पथ के चौड़ीकरण और यमुना घाटों के सौंदर्यीकरण से लीलाधर भगवान श्री कृष्ण की पावन धरा को नई पहचान दी है।
4: तो आप भी इस जन्माष्टमी 4 सितंबर को ब्रज तीर्थ आइए और कृष्ण भक्ति में रम जाइए।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
6: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
7: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।
0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

सुप्रभात, नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। 8:20 हुए हैं श्रोताओं। आज 3 सितंबर की सुबह बहुत ही खूबसूरत सी मॉर्निंग है और बहुत ही खूबसूरत दिन है। आज के दिन की आप सभी को देता है आरजी आनंद हीरो मंगल शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूँ आपकी सुबह की शुरुआत बहुत ही बेहतरीन हुई होगी। श्रोताओं, दोस्तों, हर सुबह एक नए मैसेज के साथ आती है, हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ आती है और हर सुबह का सूरज हमें सिखाता है कि कल के जैसा आज कुछ भी नहीं होगा। आज का दिन नया है, ऊर्जावान है, खूबसूरत है, बहुत ही पॉजिटिव और सकारात्मक सोचने का दिन है। जब आप सकारात्मकता के साथ अपने सुबह की शुरुआत करते हैं तो यकीन मानिए आपका दिन बेहतर से बेहतरीन हो जाता है। जब उस ऊपर वाले का परमपिता परमात्मा अल्लाह वाहेगुरु खुदा का शुक्राना करते हैं तो आपकी ज़िंदगी और खूबसूरत हो जाती है। दोस्तों, आप निकल चुके हैं अपनी मॉर्निंग शिफ्ट पे या आप जहाँ भी जा रहे हैं, विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं। आई नो दैट बच्चों का स्कूल है आज और कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी रहने वाली, तो आज बच्चे जो है लिटिल कृष्णा बन के स्कूल से निकल रहे हैं। वेरी नाइस, चलिए बहुत अच्छी बात है। फिलहाल 8:21 हो गए हैं 3 सितंबर की सुबह। ये आज की मॉर्निंग बहुत ही स्पेशल है। उससे पहले बस यही कहना चाहता हूँ, हर सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद को लेकर आती है, एक नई पॉजिटिविटी को लेकर आती है। जैसे मैंने पहले भी कहा, कुछ कल की यादें होती हैं, कुछ आज की चुनौतियां, लेकिन जिंदगी का नाम रुकना नहीं है मेरे दोस्त। कदम चाहे कितनी भी मुश्किल राह पर क्यों ना हो, बस हमें चलते रहना है क्योंकि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है और इस जंग को जीतना है। और जिंदगी की जंग डेफिनेटली आप जीत जाएंगे जब अच्छे लोगों का साथ होता है ना, और जब खुद का साथ खुद के साथ होता है तो जिंदगी की जंग को जीतना थोड़ा सा आसान हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत ट्रैक आपके रेडियो सेट में निकल गया है, इसी गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, यह है एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9837896896 पे। थर्सडे की सुबह है, गाना भी यही कहता है कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, लेकिन अंदर विश्वास है हम जीत जाएंगे दोस्तों।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

सॉन्ग यार, बहुत ही बेहतरीन गाना। ला ला ला ला ला। वाह क्या खूबसूरत एहसास है इस गाने में। अब जरा अपने दिल से एक बात कहिए, मतलब कल का दिन आज से बेहतर हो गया है ना।

बहुत ही प्यारा ट्रैक है सार खान पर पिक्चराइजेशन, बहुत ही अमेजिंग सॉन्ग एंड सच बता रहा हूँ इतने अच्छे गाने सुन के नॉस्टैल्जिया वाइब आती है। आज पर की 36 मिनट हो गए हैं, आज गुरुवार की सुबह आप सुन रहे हैं आनंद को, 3 सितंबर की तारीख है। बात कर लेते हैं समय की, तो मैंने अभी आपको बता ही दिया है 8:36 हो गया है। वेदर की बात डेफिनेटली करेंगे, झमाझम बारिश हल्की फुल्की लगी रहेगी आज। अभी 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि थोड़ा सा कोल्डी वेदर है। मानसून जो है हल्का फुल्का आज भी रहेगा, मतलब अभी देखो कल जन्माष्टमी है तो अभी तो बारिश का जो सिलसिला है वो थोड़ा सा लगातार जारी रहेगा, लेकिन बीच बीच में बारिश गायब भी होगी और बीच बीच में बारिश शुरू भी हो जाएगी। आगे की बात करें तो अभी ये टेम्परेचर 31 डिग्री पहुंच सकता है, हाईएस्ट की बात करो, लोएस्ट की बात करो तो 26 डिग्री भी पहुंच सकता है। हवाओं की बात कर लें तो 4 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। एयर क्वालिटी अच्छी हो गई है क्योंकि अभी पोल्यूशन पूरा अच्छी तरीके से धुल चुका है, लेकिन जो जरा सी बारिश होती है ना इसके बाद जो मुरादाबाद में जल भराव हो जाता है भाई साहब, मतलब शब्दों में नहीं बता सकते। आई कैन टेल यू कि इतना ज़्यादा वाटर लॉगिंग हो जाती है ना, इतने बहुत सारे एरिया मैंने देखे हैं जहाँ बहुत हैवी हैवी पानी भर जाता है भाई मुरादाबाद की गलियों में। खैर रास्ते में ट्रैफिक हो सकता है, काम का प्रेशर हो सकता है, बॉस की डांट भी मिल सकती है, लेकिन मुस्कुराहट के लिए आपको कुछ भी प्रेशर नहीं देना पड़ेगा। बस एक प्यारी सी मुस्कान अगर चेहरे पर है तो ये आपके दिन को थोड़ा सा आसान बना देगी। मुरादाबादीज कैसे हालचाल हैं, आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग। ढेर सारे संदेश मेरे पास पहुंचे हैं, राहुल जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह। लिखते हैं आनंद जी कैसे हैं आप, लाइन पार से मैसेज कर रहा हूं एंड आज मेहनत पूरी करनी है, रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, आपका प्रोग्राम अच्छा लग रहा है जी, शुक्रिया। इसी बीच एक और मैसेज पहुंचा है नेहा जी का, ये मुझे मैसेज लिखती है कि सुबह की शुरुआत पॉजिटिव सोच से हो तो पूरा दिन अच्छा हो जाता है। आनंद जी आपके गाने सुन के बहुत मजा आता है, थैंक यू सो मच। मंझोली से ये मैसेज आया मेरे पास। एक और संदेश हमारे पास आ चुका है खुशहालपुर मुरादाबाद से, लिखते हैं अमित जैन जी कि भैया आनंद जी आपके गाने सुन के तो मन प्रसन्न हो जाता है और काम चाहे कितना भी हो बस हार नहीं माननी है, डटे रहना है अपने काम पर और एक न एक दिन हमारा काम हमें हमारी मंजिल तक जरूर पहुंचा देगा। बिल्कुल अमित जी सही कहा है आपने। काशीराम सी ब्लॉक से पूजा जी मेरे साथ जुड़ी हैं, लिखती हैं हेलो आनंद जी गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा वक्त अपनी ज़िंदगी में अपने लिए निकालना बहुत ज़रूरी है और जब हम खुद के लिए टाइम निकालते हैं तो यकीन मानिए अपने अंदर की बहुत सारी चीज़ों से हम मिल पाते हैं। एब्सोल्युटली पूजा जी थैंक यू सो मच। इसी बीच मेरे पास मैसेज आया है यहाँ पर, हाय गुड मॉर्निंग माय नेम इज रोहन, यार बच्चों को ड्रॉप करके आ रहा हूँ एंड साथ ही साथ आपके गाने भी इंजॉय कर रहा हूँ और आपकी कॉन्वर्सेशन भी, थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत प्यारे मैसेज करते हो, सच अमेजिंग एंड वंडरफुल लिसनर। आगे बढ़ते हैं, आप लोग बस ऐसे ही मैसेज पहुँचाते रहिए एंड हमें भी अच्छा लगता है जब आप लोग इतने प्यारे प्यारे व्हाट्सएप पहुँचाते हैं, इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं तो यकीन मानिए सुबह और भी खूबसूरत हो जाती है। हाय गुड मॉर्निंग सर कैसे हैं आप, गुड मॉर्निंग मैं बहुत बढ़िया हूँ एंड आई एम श्योर आप भी अच्छे होंगे। ये मैसेज तो आपने कर दिया है लेकिन अपना नाम नहीं लिखा है। फिलहाल चलिए बात करेंगे आज के दिन के बारे में, क्यों स्पेशल है, क्या कुछ खासियत है आज की तारीख में, जरूर हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। अभी फिलहाल कुछ म्यूजिकल ब्रेक का टाइम है, एक और छोटा सा खूबसूरत ब्यूटीफुल ट्रैक आपके रेडियो सेट पर निकाल रहा हूं, इसके बाद वापस आएंगे तो आपसे बात करेंगे। ठीक है, आप ऐसे ही जुड़े रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए। ये है आपके शहर का अपना ब्यूटीफुल रेडियो, दिस इज कम्युनिटी रेडियो। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप भी हमारे साथ कोई अच्छी थॉट शेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मोस्ट वेलकम है 9837896896 पर जो है आप अपने संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। आज की सुबह जो भी आप कहना चाहते हैं आप डेफिनेटली हम तक पहुंचा सकते हैं आज की मॉर्निंग। सपना अवस्थी एंड साथ में अलका याग्निक कुमार शानू की बेहतरीन आवाजों में इस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन आप आनंद के साथ हैं, ये गुरुवार की सुबह है और बस अच्छी सोच के साथ अपने काम की शुरुआत कीजिए, यकीन मानिए सब बहुत बढ़िया होगा। अगर आपके पास भी कोई अच्छा विचार है जो आपको लगता है कि मेरी जुबान से निकला और मेरे हाथों से टाइप हुआ, अगर मुरादाबाद के रेडियो पर पहुंच गया तो यकीन मानिए पूरे शहर में सर्कुलेट होगा और हो सकता है आपका विचार किसी की सोच बदल दे। यार सुन रहे हैं आनंद को, वेरी गुड मॉर्निंग, आई विल बी राइट बैक। बताता हूँ आज 3 सितंबर को क्या कुछ खास है इतिहास के पन्नों में।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
2: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद

श्रोताओं आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आरजे आनंद को। यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो, कम्युनिटी रेडियो सुन रहे हैं आप। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी फिलहाल मैं बताता हूँ आज के दिन के बारे में, क्यों खास है आज का दिन। 8:47 का समय हो रहा है, समय लगातार आगे बढ़ रहा है, आप जहां भी जा रहे हैं ऑल द बेस्ट। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक, शायद आप में से कितने लोगों का फेवरेट होएगा ना, आई डोंट नो, उदित साहब की आवाज आज की सुबह इस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। वॉल्यूम बढ़ा लीजिए।

0: बहुत ही प्यारा ट्रैक है, उदित साहब ने गाया है, बहुत ही खूबसूरत गाना। और ऐसे ही गाने जो है लगातार यहाँ चलते रहते हैं श्रोताओं, क्योंकि ये है आपके शहर का अपना रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6, जहाँ बातें होती हैं दिल से दिल तक। बात करें आज के दिन के बारे में।
1: वो मुझे ख्वाब कोई क्यों दिखा नहीं जाता खूबसूरत।
0: तो श्रोताओं, हर दिन की तारीख अपने आप में बहुत ही स्पेशल होती है, बहुत ही खास होती है। और बात कर लेते हैं आज के दिन के बारे में। तो आपको बता दें 1971 में कतर स्वतंत्रता जो है वो उसका एक राष्ट्रीय बना था आज के दिन। जी हाँ, कतर स्वतंत्र राष्ट्र बना आज के दिन 1971 में। इसके अलावा आपको बताते चलें, आज के दिन अमेरिका में पहला सफर समाचार पत्र न्यूयॉर्क सन बीजमिन HD के द्वारा शुरू किया गया था सन 1833 में। श्रोताओं आज के दिन, और अमेरिका और ब्रिटेन के बीच पेरिस के सिंधि साथ क्रांतिकारी युद्ध जो है वो समाप्त हो गया था सन 1783 में आज ही के दिन। और आज ही के दिन जो है श्रोताओं, एक और खास चीज हुई जिसने आज के दिन को और भी स्पेशल बना दिया है। हाँ जी, किस चीज की बात कर रहा हूँ, डेफिनेटली आपको पता लगेगा। इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे आप आनंद को सुनते हैं, जहां पर बातें होती हैं दिल से दिल तक। हाँ जी, चलिए बात करते हैं आज के दिन जिनमें कुछ और खास कलाकारों की, जिनका नाम और जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा स्पेशल रहा है हमारे इतिहास के लिए। 1974 में राहुल जी का जन्म हुआ, जो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं। एंड आज ही के दिन किरण देसाई का जन्म हुआ, जो भारत की मूल अंग्रेजी उपन्यासकार हैं। 1971 में इनका जन्म हुआ था। साक्षी मलिक 1992 में जन्मी थी, भारत की प्रसिद्ध महिला पहलवान। इनका भी आज ही के दिन जन्मदिन सेलिब्रेट होता है श्रोताओं। इसके अलावा आपको बताते चलें, आज ही के दिन उत्तम कुमार भारतीय सिनेमा में हिंदी और बंगाली फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता है। 1926 में इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन। इसके अलावा आज ही के दिन जन्म हुआ था सन 1923 में किशन महाराज, जो सुप्रसिद्ध तबला वादक थे श्रोताओं। इनका भी जन्म हुआ था आज ही के दिन। अगर आज की तारीख में आपका भी जन्मदिन होता है, तो आप अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं तमाम दिग्गज लोगों के साथ जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन अपने देश के नाम दिया है, और आज उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो गया है। दोस्तों, हम भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप भी कर दिखाइए कुछ ऐसा ये दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखिए, जिंदगी में आए हैं तो कुछ अच्छा करके ही जाएंगे। सिर्फ घूमना फिरना, ट्रैवलिंग, एंजॉय फ्रेंड्स फैमिली, इसके अलावा भी लाइफ में हमारा एक विजन होना चाहिए, हमारा एक मकसद होना चाहिए, हमारा एक गोल होना चाहिए। जब तक हमारी लाइफ में हमारा गोल नहीं होगा, तब तक हम अपनी लाइफ को सिर्फ भटकाते रहेंगे, है ना। जब हमारा गोल होता है ना, जब हम उस पर फोकस्ड होते हैं, तो यकीन मानिए हमारे दाएं बाएं क्या हो रहा है हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस टाइम पे हमारा फोकस, हमारा कॉन्सेंट्रेट हमारे गोल पे होता है। तो अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हो, तो उसके छोटे छोटे छोटे छोटे मिशन बनाइए और उसमें सक्सेस होकर दिखाइए, फिर देखिए आपको कितना प्राउड फील होगा अपने आप पे भी और अपने काम पे भी। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार बातों के लिए आप सुनते हैं आनंद को। ढेर सारे मैसेज हमारे पास हमारे लिसनर्स के पहुंच रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया श्रोताओं। आप ये प्यारे प्यारे संदेश हम तक पहुंचाते हैं, यही आपका मोटिवेशन और प्यार हमें और ज्यादा हमारे काम को खूबसूरत बनाने में हमारी मदद करता है। बहुत बहुत धन्यवाद मुरादाबादी। मुरादाबाद के बाहर से भी तमाम सारे श्रोता मेरे साथ जुड़े हैं, जैसे यहाँ पर बरेली मीरगंज से जुड़े हैं ये आसिफ साहब, ये लिखते हैं, गुड मॉर्निंग आनंद जी, कैसे हैं आप, सलाम सुबह का, आपको भी प्यार भरा सलाम। इसी बीच एक और मैसेज हमारे पास आ पहुंचा है, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप, मैं बहुत ही बढ़िया हूं। ये हमारे पास प्रेमनगर से मैसेज पहुंचा है, आपका प्रोग्राम सुन के बहुत ही अच्छा लगता है, सुबह सुबह काफी बढ़िया बातें जानने को मिल जाती हैं आपके शो के माध्यम से। अरे बहुत बहुत धन्यवाद साहब। एक और संदेश आ पहुंचा है मेरे पास गायत्री नगर से, ये हमारे साथ शोभा जी जुड़ चुकी हैं आज की सुबह, लिखती हैं, आनंद जी सुबह सुबह आपके गानों के साथ साथ जो ताजगी मिलती है ना आपकी बातों से, बहुत आनंद आता है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और मोटिवेशन वाला मैसेज आ पहुंचा है कि देखिए लाइफ है तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही आनंद जी, लेकिन हमें प्रॉब्लम में भी जो है ना अपना साथ नहीं छोड़ना है, अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ना है। अगर हमारे साथ हमारे परिवार का साथ है, तो हम जीवन में हर मुश्किलों का जो है डटकर सामना कर सकते हैं। बिल्कुल जी, बात तो बिल्कुल सही बोली है आपने भी, और मुझे भी ऐसा ही लगता है, जब अपने परिवार का साथ होता है ना, अपनों का साथ होता है, तो जीवन थोड़ा सा और खूबसूरत हो जाता है, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, खूबसूरत गाना आपका इंतजार कर रहा है। 8:55 हो गए हैं, आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। बहुत ही खूबसूरत फिल्म चोरी चोरी चुपकी चुपकी का टाइटल ट्रैक आपके रेडियो सेट पे निकाल दिया है मैंने ऑन एयर, इस गाने को एंजॉय करेंगे आप। समीर साहब ने लिखा है, अनु मलिक साहब का म्यूजिक है, एंड अलका याग्निक साथ में बाबुल सुप्रियो की आवाजों में इस गाने को आप सुनेंगे। सन 2001 में फिल्म आई थी, बहुत ही खूबसूरत फिल्म, काफी अच्छी स्टार कास्ट से सजी मूवी थी। आज की सुबह आप एंजॉय करेंगे इस गाने को आनंद के साथ। आपके मैसेज लगातार हम पर पहुंच रहे हैं, बस मैं जरा सी देर में आपके संदेश को और शामिल करूंगा। जो श्रोता हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं 9837896896 के माध्यम से। जरा सी देर में लौट कर आता हूँ, कुछ और खास और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। क्या कुछ खास चल रहा है अपने मुरादाबाद में, इस पर भी एक नजर डालेंगे।

0: You're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: स्किन एलर्जी मस से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
0: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।
4: अब क्या तोड़ दिया नालायक? Sorry man।
5: हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, क्या हाल चाल?
6: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग,
7: बिंदास मॉर्निंग।
8: कुल एग्जैक्टली शो आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग। ढेर सारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हैं और ये मेरा भाई साहब लास्ट आवर शुरू हो गया है। ढेर सारे संदेश लगातार आपके पहुंच रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं, तमाम सारे मैसेज हमारे पास नॉन स्टॉप पहुँचते ही हैं और आप लोग इतने प्यारे प्यारे मैसेज करते हो यार, सच अमेजिंग मैसेजेस आज की सुबह। बहुत सारे लिसनर्स मेरे साथ जुड़ गए हैं आज की मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। फटाफट मुझे मैसेज करके बताना, ऐसी कौन सी रोटी है जो हवा में उड़ती है? दिस इज वेरी सिंपल सवाल यार, ये देखो ये क्वेश्चन है, मैंने बहुत दिमाग लगा के ढूंढा है, आप मेरे को बताओ, रोटी तो सभी खाते हैं यार, है ना, तो मुझे बताओ ऐसी कौन सी रोटी है जो हवा में उड़ती है, किसी को पता है? मेरे को पता है यार। हाय, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग, ये ब्रांड न्यू मॉर्निंग है, आप सुन रहे हैं आनंद को। यहाँ पर वक्त हुआ है 9:04, बहुत सारे लोग अपने ऑफिस के लिए निकल चुके हैं, ऑल द वे बेस्ट, एंड कुछ लोग अपने छोटे छोटे लिटिल कृष्णा को ऑफिस लेके, सॉरी स्कूल लेके जा रहे हैं, स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, कुछ लोग छोड़ के आ चुके हैं। आई नो, मैं जानता हूँ, बिकॉज अभी क्या है ना कि कल कृष्ण जन्माष्टमी, तो बहुत सारे बच्चों के कॉम्पिटिशन होते हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल्स में जो है खूब अच्छे तरीके से तैयार शैयार होकर जाते हैं, उनके पेरेंट्स बहुत अच्छे से सजा के भेजते हैं, स्पेशली मम्मियाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं बच्चों को लेकर। सो आज की सुबह अगर आपके बच्चे भी रेडी शेडी होके निकल रहे हैं अपने स्कूल लिटिल कृष्णा बनके, सबसे पहले तो यार उनकी नज़र उतार दो, क्योंकि बच्चे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं यार आज की सुबह। एंड आज मुझे पता है आपके बच्चों के बहुत सारे कॉम्पिटिशन होंगे, आई एम श्योर। चलिए, अगर आपके स्कूल में बच्चों के आज कॉम्पिटिशन है, लिटिल कृष्णा वाले पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चे कॉन्टेस्ट में, तो बहुत अच्छी बात है, आप जाइए उनको हौसला अफजाई कीजिए। और बाकी आनंद को ऐसे ही सुनते रहिए, कल कृष्ण जन्माष्टमी है तो उसको लेके भी बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। जरा सी दिन में बेनी दियाल की आवाज एंजॉय करेंगे, रेस टू से लत लग गई। हाँ जी, तो फिलहाल मुझे जरा मैसेज करके जरूर बताना, ऐसी कौन सी रोटी है जो हवा में उड़ती है, अगर आपको पता है तो प्लीज टेल अस यार। अब लौट के आऊंगा तो बताऊंगा क्या चल रहा है देश दुनिया में, सोशल मीडिया पे क्या स्पेशल चल रहा है, और एक बड़ी स्पेशल वीडियो बहुत ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पे, उस पर बात करेंगे। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है, केबीसी में एक लेडी आई जिसने बच्चन साहब के होश उड़ा दिए हैं, उस पर भी बात करेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर और क्या खास तैयारियां चल रही है, गणपति उत्सव आने वाला है, गणेश चतुर्थी, उसको लेकर भी बहुत तैयारियां हो रही है इस बार मुरादाबाद में।
9: होता नहीं।
8: एंड अपने इंडिया में यूपीआई ने एक रिकॉर्ड बनाया है, अगस्त 2026 का एक नया लिस्ट जारी किया गया है, जिसमें पता लगा है कि क्या रिकॉर्ड बना है बॉस, मतलब इतने लोगों ने यूपीआई का इस्तेमाल किया है, ओ माय गॉड, अनबिलीवेबल यार, आप सुनेंगे तो आपको भी यकीन नहीं होगा बॉस, एक नया रिकॉर्ड आपके साथ शेयर करूंगा थोड़ी देर में।
9: इसे है समझा,
8: मुझे थोड़ा सा समझा दो यार, थोड़ा टेंशन में हूँ आजकल, लेकिन अभी के लिए
9: दिल बड़ा बेईमान,
8: नहीं बेईमानी नहीं करनी चाहिए बॉस, शैतानी अच्छी बात है।
9: मेरी ना एक मां,
8: यहाँ पर चलती है म्यूजिकल कॉन्वर्सेशन राइट हियर, ये गाना आप कहीं मत जाओ, लौट कर आता हूँ जरा सी दिन में, उसके बाद बात करेंगे ढेर सारे मुद्दों पे, क्या है आज नेशनल इंटरनेशनल डेज में इस पे भी चर्चा होगी। सो जुड़े रहिए, चिपके रहिए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना। सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
2: माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ
1: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
2: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपके शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
3: क्या बात है सर, क्या बात है सर।
1: मुरादाबाद तैयार हो जाइए हंसी के धमाके के लिए।
4: जैसे ही पापा गए मैंने प्रतिज्ञा ले ली। छोटे बच्चे बहुत फुद्दू होते हैं। मैंने प्रतिज्ञा ले ली, मैंने ऐलान किया पूरे घर में। मैं कहा सुनो ध्यान से सारे, ये जो आदमी अभी गया घर से बाहर, इसकी कमाई का एक दाना तक नहीं खाऊंगा मैं।
1: फैशन फार्मर्स लेकर आ रहे हैं इंदिर साहनी कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 12 सितंबर रात 8 बजे ड्राइव इन 24 में रेडियो पार्टनर FM मुरादाबाद 89.6। तो बनिए इस अनफॉरगेटेबल नाइट का हिस्सा। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।

0: बहुत ही प्यारा गाना अभी आपने एंजॉय कर लिया, सच में यार ब्यूटीफुल ट्रैक, और ऐसे गाने सुन के मजा आ जाता है सुबह सुबह। अमित त्रिवेदी का जो तड़का होता है ना बहुत ही कमाल का होता है। वेलकम बैक हियर वंस अगेन, आप सुन रहे हैं आनंद को, वेरी गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने ट्यून इन किया हुआ है एफएम मुरादाबाद 89.6 पे। 9:16 हो गए स्टेशन क्लॉक में, तो समय का ना यार सच बता रहा हूँ पता ही नहीं चलता है, ऐसा लगता है अभी तो मैं आया था, इतनी जल्दी कैसे 10 को आ जाते हैं यार।
1: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना, पुराना सोना लाओ नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद, कॉल करें 7055070552।
3: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
4: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
5: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना, आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
4: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
6: कोई मिल गया
5: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने, बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।
0: बिल्कुल जी, रेडियो गुनगुनाना बहुत जरूरी है, आप आनंद को सुन रहे हैं। 9:18 हो गए, कुछ एड ब्रेक के बाद वंस अगेन वेलकम बैक है आप सभी का। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की सुबह एक बहुत ही कमाल के धाकड़ बॉलीवुड एक्टर का बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं, उनके गाने का म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ। एंड ही इज अल्टीमेट सेलिब्रिटी, अल्टीमेट स्टार, बहुत ही कमाल की फिल्में दी है इन्होंने। अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हैं तो फिर आपको समझना चाहिए कौन सा जो गाना है ना, बहुत प्यारा गाना, गाना तो ऑफकोर्स आप पकड़ लोगे, बट इस गाने में जो एक्टर हैं अगर आप उनको पकड़ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आज की सुबह इनका बर्थडे होता है भाई, बहुत ही कमाल के स्टार कास्ट एंड सच में बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, सोनू निगम साहब ने गाया है और इनकी आवाज, व्हाट अ वॉइस यार, व्हाट अ कमाल एक्टर, मतलब एकदम झकास हीरो है। शायद कुछ पकड़ लो आप, जरा चैन मिल जाएगा, तू इशारा कर। आज की सुबह इनका बर्थडे होता है एंड ये गाना तो ऑफकोर्स ओकेजन इतना अच्छा है तो ये तो बनता है यार।
7: जो है अलबेला मद नैनो,
0: कृष्ण जन्माष्टमी आने वाला है जिसकी, उससे पहले इनका बर्थडे आ गया है,
7: ब्रिज की हर बाला
0: वो कृष्णा है। एवरीबॉडी साथ में गाओ, आप मुझे ये बताओ, फिलहाल बाद में गाना, पहले ये बताओ ये जो गाने हैं वो कौन से हीरो के ऊपर पिक्चराइजेशन है, छोटा सा काम करना है आपको, फटाफट बताना है अगर आप समझ रहे हैं कौन से एक्टर की बात कर रहा हूँ। जरूर मैसेज करके बताना यार, बहुत ही पॉपुलर हीरो हैं, बहुत ही धाकड़ बॉलीवुड एक्टर हैं, इनका बर्थडे आज हम सेलिब्रेट करते हैं एंड ही इज अल्टीमेट स्टार।

जरा सी देर में आने वाले गाने आप एंजॉय करेंगे. आज उनका बर्थडे, इन्हीं के ऊपर कुछ गाने जो पिक्चराइजेशन है वो सुनेंगे. यहाँ से शुरुआत होगी. एआर रहमान साहब ने क्या कमाल का गजब का म्यूजिक डाला है यार. चलिए सुनते हुए आगे बढ़ते हैं. कुछ कहना चाहते हैं तो मैसेज करो. आज की सुबह मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसी कौन सी रोटी है जो हवा में उड़ती है, पता है क्या? मैसेज करके बताओ जरा. आपके दिमाग का 32 किलोमीटर चालू करने के लिए कुछ ना कुछ यूनिक लेकर आता हूँ यार. आज की सुबह वेदर अच्छा हो रहा है, फटाफट बता देता हूँ करंट वेदर क्या चल रहा है. अगर आप कहीं जाम वाम में फंसे हो तो आप मुझे बता सकते हो. कहीं हल्का फुल्का ट्रैफिक भी है तो प्लीज डू लेट मी नो. फटाफट मुझे मैसेज करो 9837896896 पे. और अभी का टेम्परेचर बता देता हूँ, 28 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ टेम्परेचर है. आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं भैया, 31 पहुंचेगा. हाईएस्ट की बात करो, लोएस्ट की बात करो तो 27 पहुंच सकता है. एयर क्वालिटी अच्छी है, हवाएं थोड़ी ठीक ठाक चलेगी, बारिश हल्की फुल्की होगी. हल्का फुल्का मौसम मतलब कलरफुल रहने वाला, बदलता रहेगा. जैसे कल था वैसे आज रहेगा, हल्का फुल्का थोड़ा सा ऊपर नीचे जाएगा, बट अच्छा वेदर है कुल मिला के. एंजॉय करो आप ये गाना.

0: आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आनंद के साथ, जहां बातें ढेर सारी हो रही हैं और तमाम सारे श्रोता के मैसेज मेरे पास पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, मैं अभी आकर के सारे संदेश को शामिल करूंगा। उससे पहले पटियाला हाउस का एक ब्यूटीफुल ट्रैक आपके लिए निकाल दिया है, राइट हियर आप सुनेंगे इस गाने को मेरे साथ।
1: ओ बेबी तेरा जान से प्यारा, ओ बेबी ये चमका दिल साडा के दिख गया प्यारी।
0: बस मैं यू गया और जू करके यू आया एकदम से। वक्त मिला लो, 9:26 हो रहे हैं जी।

0: यार सच में ये गाना बहुत ही बढ़िया था, और सच बताऊँ ऐसे गाने सुन के बड़ा मजा आता है। 9:30 हो गए हैं, लॉन्ग द लश्कारा, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक, पटियाला हाउस से एंजॉय किया। 9:30 हो गए, बैंड जी की हालचाल है, तुसी सुन रही हो आनंद नाल वधिया वधिया गाने और साथ में अच्छी अच्छी बातें।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120+ रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
0: चलो जी भाई। हाँ मैं भी ये कह रहा था, क्या सुन रहे हैं ये जानना जरूरी है। 9:31 का समय हो गया लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत सारे मैसेज मेरे पास पहुंच गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत मैसेजेस के लिए, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और कभी कभी हमारे शब्द जो है जुबान से फिसल जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। और मुद्दे की बात ये करवाएंगे कि भैया अब क्या स्पेशल चल रहा है हमारे देश दुनिया में, जरा इस पे एक नजर डालें क्या। हाँ सबसे पहली बात तो भैया ये है कि जो लोग गवर्नमेंट फील्ड में वर्क करते हैं, जी हाँ, जॉब के दौरान अगर रील्स देखेंगे तो भैया इस पर जो है अब बैन लगेगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया कोड लाने की तैयारी है। जो लोग गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, जो लोग वर्क करते हैं ऑफिशियली, जो लोग वर्क करते हैं भैया उनके लिए गवर्नमेंट, जो लोग वर्किंग है गवर्नमेंट फील्ड में उनके लिए ये है कि भैया अगर आप बैठे बैठे जॉब के टाइम पे रील स्क्रॉल करोगे ना भाई, तो फिर जो है तगड़ी वाली आपको भरपाई करनी पड़ सकती है। हाँ, इसीलिए आपके लिए जो है एक नए कोड लाने की तैयारी की जा रही है। हाँ जी, अब ये भाई साहब क्या होने वाला है, अब इसमें क्या नया होने वाला है ये तो हमें भी नहीं पता भैया, जब पता लगेगा तो जरूर बताएंगे। सोचो एक दोस्त ने एक दोस्त को बर्थडे पार्टी नहीं दी होगी तो उसके बदले में वो क्या कर सकता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं भाई। बड़ी अजीबोगरीब जो है ना सिचुएशन सामने निकल कर रही है। एक भाई साहब की जन्मदिन के मौके पर जो है ना पार्टी नहीं दी, एक दोस्त ने दोस्ताना का वादा नहीं निभाया तो दूसरे दोस्त ने इसी बीच को जो है विवाद बना दिया, और ये जो मामला था उन्होंने कानूनी नोटिस में तब्दील कर दिया। आप सोच सकते हैं एक दोस्त ने दोस्त को पार्टी नहीं दी तो उसके बदले जो है उनके दोस्त ने उनके ऊपर भाई साहब 41,250 रुपए का जुर्माना लगवा दिया और साथ में उनसे कहा कि माफी भी मांगे हमसे। भैया तो किसी को दावत में बुलाने से भी डर लग रहा है कि ऐसा ना हो हम दावत में बुला लें और उसके बाद अगर हम उनको घर पे दावत ना दे पाए तो वो अगले दिन आपको ऐसा नोटिस भेज दें कड़क पैसों वाला। चल क्या रहा है देश दुनिया में आजकल की जेंजी को हो क्या गया भाई, पता नहीं चल रहा है। चलो अभी जरा काम की बात एक और बता देता हूँ आपको, ये थोड़ी सी स्पिरिचुअल वाली थॉट से। जो लोग केदारनाथ भगवान के दर्शन धाम के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर ये है कि 15 सितंबर से फिर से शुरू होगी हेलीकॉप्टर की यात्रा और 7 सितंबर से जो है ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू स्टार्ट हो जाएंगी। इसकी आज 3 तारीख है, 7 सितंबर से जो है ऑनलाइन बुकिंग स्टार्ट होगी, 15 सितंबर से हेलीकॉप्टर सेवाएं फिर से शुरू हो जाएंगी केदारनाथ। बिग बॉस से एक अच्छी खबर ये आ रही कि बिग बॉस 20 का जो हिस्सा है वो बनने वाली है मनोज तिवारी जी की बेटी। जी हाँ, ये भी बिग बॉस सीजन 20 जो आ रहा है, बिग बॉस 20 का हिस्सा बनेगी मनोज तिवारी जी की बेटी, ऐसा कुछ खबरों में कहा जा रहा है। कि भैया भाईजान के शो को लेकर इन दिनों जो है काफी सारे प्रमोशन की तैयारियां चल रही है। 6 सितंबर से बिग बॉस 20 की जो है स्टार्टिंग होने वाली है, इसका प्रीमियर जो है प्रीमियर जैसे टीजर वगैरह सब देखने को मिल रहे हैं सोशल मीडिया पे, किस तरीके से जो है प्रचार हो रहा है बिग बॉस 20 का, इसका सीजन देखने के लिए लोग बहुत एक्साइटेड हैं। और भाई साहब इस बार जो है कंटेस्टेंट भी खूब चर्चा में रहेंगे, बताया जा रहा है कि इस बार जो है काफी डिफरेंट एंट्रीज जो है होने वाली है। एंड साथ में ऐसी ही रति तिवारी भी इस बार बिग बॉस का हिस्सा बनती हुई नजर आएंगी, यानी कि मनोज तिवारी जी की बेटी भी बिग बॉस में दिखने वाली है। चलिए भैया तो अच्छी बात है, फिलहाल आपको एक और अच्छी खबर बता दें फटाफट से। इस बार गणेश उत्सव 10 दिन का नहीं 12 दिन का होगा, ऐसा बताया जा रहा है। क्यों ये मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा थोड़ी देर के बाद, है ना। लेकिन अभी एक काम की बात बता देता हूँ भाई साहब, अंडे थोड़े से महंगे हो गए हैं तो भैया 48 फैमिली ने जो है ना अंडे खरीदने कम कर दिए हैं। सोच सकते हैं अभी बड़ी चिंताजनक बात होगी, जो लोग वेजिटेरियन है उनके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो नॉन वेजिटेरियन उनको थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है, या जो अपनी डाइट वाइट बड़े अच्छे से मेंटेन करते हैं उनके लिए है थोड़ी सी सैड वाली खबर। हाँ जी, मतलब अंडे थोड़े से महंगे हो गए तो 48 फैमिली ने जो है अंडे खरीदने बंद कर दिए भाई साहब। यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई साहब, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं इसी बात पर। ये देखो चल क्या रहा है ये मैंने आपको बता दिया, मुरादाबाद में क्या चल रहा है इस पे भी हम बात करेंगे। इस बार गणपति उत्सव को लेके बहुत सारी खास तैयारियां चल रही हैं, उस पे हम चर्चा करने वाले हैं। और भारत में जो यूपीआई ने एक रिकॉर्ड बनाया है वो भी हम आपको बताने वाले हैं, कहां पर, यहां पर। ये दोस्त वाली पार्टी वाली बात सुन के ना
3: जोर का झटका
0: मुझे भी लग गया यार, सच में यार ऐसे कौन करता है। शादी की बात छोड़ो, पार्टी नहीं दी तो अगले बंदे ने जो है उसके ऊपर केस कर दिया बॉस, और बहुत सारे पैसों का जुर्माना भी लगा दिया। मैं तो अगली बार पार्टी देने का नाम ही नहीं लूंगा, सच बता रहा हूँ, ले लूंगा पर दूंगा नहीं पार्टी।
3: जोर का झटका
0: नहीं तो फिर सच में
3: शादी बनने गए उम्र कैद की सजा।
0: चलो जी, अभी शादी वादी का कोई प्लान नहीं है, होगा तो बता देंगे, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कुछ कहना चाहते हैं तो मैसेज करें आप 9837896896 पे, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, ऐसी कौन सी रोटी है जो हवा में उड़ती है, पता है क्या?

अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।

0: स्पेशल होने वाला है। और गणपति सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं है यार, अब हर जगह का फेमस है। स्पेशली चंदौसी में तो बहुत फेमस मेला भी लगता है अपने मुरादाबाद के पास, ऑफकोर्स आप जानते हैं। इनफैक्ट आप मुरादाबाद में भी इस बार गणपति को लेके बहुत सारी खास तैयारियां चल रही हैं, डेफिनेटली आपको बताऊंगा भाई। और मुरादाबाद में भी अब जो है जगह जगह पर पंडाल सजाए जाते हैं, खूबसूरती के साथ जो है गणेश उत्सव मनाया जाता है। फिलहाल तो जन्माष्टमी की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही है। पुलिस लाइन की तरफ अगर आप जाते हैं तो वहां पर जो पिंक कलर का एक बड़ा खूबसूरत सा मंदिर है, मुझे नाम तो नहीं पता, आई डोंट नो, बट बड़ा ही खूबसूरत सजा हुआ है भाई, क्या कमाल की लाइटिंग हुई है। दिल्ली रोड पर राधा कृष्ण मंदिर है, बहुत अच्छी से तैयारियां चल रही है वहां पर भाई। बहुत ज्यादा मतलब लंबी चौड़ी भीड़ होती है, लास्ट टाइम मैं 2023 में गया था, बहुत लंबी चौड़ी भीड़ थी जन्माष्टमी के दिन। एक तो वहां पर इतना रश होता है, मतलब मैं आपको क्या बताऊं यार, अगर आप जाते हैं राधा कृष्ण मंदिर तो भैया आपको सच में एक शाउट आउट तो देना बनता है, इतनी भीड़ में जाना मतलब भाई साहब मानना पड़ेगा यार। बाकी जो है अपना माता मंदिर भी खूबसूरती से जो है उस पर भी तैयारियां चल रही है, उसको सजाया जा रहा है, डेकोरेशन लगातार चल रही है। और आसपास में जो भी खूबसूरत मंदिर है, चाहे अपना मनोकामना मंदिर हो, वो भी बहुत अच्छे से जो है डेकोरेट हो रहा है। बाकी और भी आसपास खूब सारे मंदिर हैं जिनको बहुत ही भव्य तरीके से डेकोरेट किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि जन्माष्टमी पर आपको जरूर आना चाहिए। चलो ये मुरादाबाद की बात हो गई, बाकी आप अपने घर के मंदिर और अपने लड्डू गोपाल को जरूर सजाएं, और हमें भी एक सेल्फी जरूर इंस्टाग्राम पे टेक करें, रेडियो वाला आनंद के नाम से आपको मिल जाता हूँ, या फिर ऑफिशियल आईडी पर। हमें भी जन्माष्टमी पर आप कहीं भी जा रहे हैं तो उसकी वाइब हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। एफएम मुरादाबाद का ऑफिशियल हैंडल है एफएम मुरादाबाद 89.6 के नाम से। एक छोटा सा एड ब्रेक आ रहा है, उसके बाद इमीडिएटली मैं लौट कर आता हूँ, फिर आपको बताता हूँ अभी क्या मैं बताऊंगा पाजी आपको, कि ये जो हम एक रिकॉर्ड की बात कर रहे थे अगस्त 2026 का, एक नया रिकॉर्ड निकल कर आया, इसके बारे में मैं आपको इमीडिएटली बताता हूँ फटाफट से।
1: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन,
2: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने, ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।
3: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।
4: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
5: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
6: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
5: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
6: अरे नहीं, अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन होने जा रहा है 3 जुलाई को, वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
5: अच्छा?
6: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड सिविल लाइंस मुरादाबाद।
7: कोई मिल गया,
4: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने, बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।
8: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
9: क्या मेरी कसम,
8: मिस कर दिया तो रीलोड।
10: चाय चाय चाय,
8: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ, मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
3: हे, यू आर ट्यून्ड इनटू एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम।

सबसे पहले तो यार आपके लिए जोरदार तालियां, इतने अच्छे अच्छे आप लोगों ने फैंटास्टिक मैसेज किए हैं ना, मतलब आई कांट बिलीव दिस यार कि इतने प्यारे मैसेज, सच में यार ब्रिलियंट मैसेज करते हो।

0: नेहा भसीन की आवाज में, और ये भाई साहब तालियां तो आपके लिए बजाई थी मैंने। एंड आज हम बहुत ही कमाल के बॉलीवुड एक्टर का बर्थडे मनाते हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बेबी को। बहुत ही कमाल के हीरो हैं यार। वेरी हैप्पी बर्थडे विवेक ओबेरॉय को। अपने टाइम का जलवा रहा है भाई विवेक भाई का। मुझे तो बहुत ही पसंद है विवेक भाई। इनके गाने और इनकी मतलब मूवीज ऑफ कोर्स यार भूले नहीं बुलाए जाते यार। आज की तारीख में अगर आपका बर्थडे होता है तो आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं बॉलीवुड के डैशिंग हीरो विवेक ओबेरॉय के साथ। एंड आज बॉलीवुड के एक और खास कलाकार का हम बर्थडे मनाते हैं जिनका नाम है शक्ति कपूर। उनको भी जन्मदिन की शुभकामनाएं। जो लोग मिलेनियल्स हैं उन्होंने बहुत एंजॉय किया है गोविंदा एंड शक्ति कपूर की जो मतलब एक कोलैबोरेशन बनता था ना, ये कॉम्बिनेशन होता था कॉमेडी का, बड़ा मजा होता था यार उनमें। अभी के लिए इन धाकड़ को हैप्पी बर्थडे। एंड शमी जी जो क्रिकेट की दुनिया में अलग ही नाम रॉक मचा रहे नाम कर रहे हैं, उनको भी जन्मदिन की शुभकामनाएं। हम भी आपके लिए हैं यार। चलिए भाई साहब, अभी मैं आपसे एक छोटा सा सवाल और पूछूंगा। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था ऐसी कौन सी रोटी है जो हवा में उड़ती है, ये आपने मेरे को बताना था। एंड मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, इतने अच्छे अच्छे मैसेज आए ना यार, मतलब अभी मैं बताता हूँ किस किसने मेरे को क्या मैसेज किया।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा।
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
0: चलो भैया, ये छोटा सा एड ब्रेक था, दोबारा हमने प्ले किया, अभी बहुत जरूरी था। एंड आगे बढ़ते हुए अब मैं आपको यहाँ पर एक सवाल देने वाला हूँ। आपके जो मैसेज आए हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं डेफिनेटली आपसे पूछूंगा, लेकिन अभी एक लिसनर का वॉइस नोट प्ले कर देता हूँ, बहुत देर से वेट कर रहे हैं।
4: पानी को कुछ नहीं, ले जाने को कुछ नहीं, उड़ जाएंगे एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह, हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं परिंदों की तरह, नाराज है जिंदगी, बस जो है वो आज है जिंदगी। नमस्कार, राधे राधे, सुनते रहिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ, और मैं आपका दोस्त भूपी शर्मा नगर पंचायत पागबड़ा से बोल रहा हूँ, एफएम मुरादाबाद 89.6 की तरफ से। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनते रहिए फिर मुरादाबाद, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और भेजते रहिए अच्छे अच्छे मैसेज, एसएमएस और वॉइस नोट जो सुनाई देंगे सारे शहर को, सारे देश को और हो सकता है सारे संसार को। राधे राधे।
0: थैंक यू सो मच आपके इस वॉइस नोट के लिए, सच ए लवली वॉइस नोट। एंड बहुत ही अच्छा लगता है यार आप लोगों की इतने प्यारे प्यारे वॉइस नोट्स आते हैं। दोस्तों अभी फिलहाल मैं आपको एक ना अपडेट दे रहा था कि मतलब किस तरीके से जो है एक नया रिकॉर्ड बना है यूपीआई का, क्योंकि इस समय में ना बहुत लोग अब यूपीआई ट्रांजैक्शन करने लगे हैं, बढ़ चढ़ के जो है अब लोग इस चीज़ का हिस्सा बन रहे हैं। एंड ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है कि चलिए अब ऑनलाइन भी जो है हर कोई इस्तेमाल करता है यूपीआई। और अभी तो एक नया इन्होंने वैसे भी अपना नया फीचर ऐड किया है कि आप फ़ोन पे जो है अब बिना इंटरनेट बिना स्मार्टफोन के भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकें, ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। और इस वक्त जो है मैं आपको एक डेटा बता रहा हूं कि भारत में यूपीआई ने बनाया है एक नया रिकॉर्ड। अगस्त 2026 में जो है एक बहुत ही नया रिकॉर्ड बनाया, स्पेशली रक्षाबंधन पे तो बहुत ज्यादा लोगों ने जो है यूपीआई का इस्तेमाल किया है, बहुत तेजी के साथ जो है इस्तेमाल किया है। मैं आपको बता देता हूँ, अगस्त का जो रिकॉर्ड आया है वो 24.5 अरब से ज्यादा ट्रांजेक्शन किए गए हैं, यानी कि 24.5 अरब ट्रांजेक्शन हुई है इस अगस्त के महीने में। कैन यू इमेजिन यार, अपने भारत में इतना ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, मतलब मेरे को बहुत खुशी हो रही कि अब लोग डिजिटली इतना ज्यादा एक्टिव हो गए एंड अब इस तरीके से जो है यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक नया डेटा रिकॉर्ड हिस्ट्री में बन रहा है। दैट इज वेरी वेरी अमेजिंग। यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड बनाया है और अगस्त के महीने में यूपीआई के जरिए 24.5 अरब से ज्यादा ट्रांजेक्शन दर्ज किए गए, स्पेशली रक्षाबंधन के दौरान बहुत तेजी के साथ जो है लोगों ने यूपीआई का इस्तेमाल किया है। दैट इज अमेजिंग यार। ये तो एक बहुत ही अच्छी चीज हो गई है एंड दिस इज फैंटास्टिक। आप भी इस्तेमाल करते हैं यूपीआई?

0: भैया झटका मुझे भी लग गया है क्योंकि सुबह के 10 बज चुके हैं। सोच सकते हैं आप कितनी जल्दी जो है टाइम आगे भागता है, मुझे भी नहीं पता चलता। चलो जी एक काम करते हैं, छोटा सा सवाल पूछ लेते हैं आपसे बिना किसी देरी के अभी, बिकॉज मेरा जाने का भी टाइम हो गया है, बिकॉज जाएंगे नहीं तो फिर आएंगे कैसे, है ना। और कल जन्माष्टमी का क्या शुभ मुहूर्त रहने वाला है, किस टाइम पे आप पूजा कर सकते हैं, इस पे बात करेंगे। एब्सोल्युटली बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, कड़क क्वेश्चन का टाइम हो गया है। और अभी एक म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ, मतलब एक बीच का पार्ट प्ले कर रहा हूँ एक गाने का। इस गाने को आइडेंटिफाई करना है, आज के एक्टर के ऊपर पिक्चराइजेशन है जिनका बर्थडे होता है।
1: आवारगी में बन गया दीवाना,
0: व्हाट अ सॉन्ग,
1: मैंने क्यों सादगी को नहीं,
0: क्या गाना है और ये कौन सा गाना है, कौन से गाने के बीच के पार्ट है।
1: आवारगी में बन गया दीवाना, मैंने क्यों सादगी को नहीं।
0: मैसेज करके बताना, अभी इतना ही काफी है भैया, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। आप मुझे इमीडिएटली बता सकते हो जो गाना चल रहा है वो कौन सा है।
1: आवारगी में बन गया दीवाना, मैंने क्यों सादगी को नहीं जाना।
0: अगर आपको समझ में आया है तो बस आप जल्दी से उठाइए फोन, टाइप कीजिए अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब, उसको मेरे नंबर पे सेंड करना है 9837896896 पर। दिस इज माय नंबर, अगेन रिपीट कर रहा हूँ 9837896896 पर।
2: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
3: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
4: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
5: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना, आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
4: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
6: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
0: चलिए भाई अभी एड ब्रेक हो गए हैं खत्म और वापस हम आ जाते हैं अपने सवाल की तरफ। आज हमने आपसे बहुत सिंपल सवाल पूछा है, जरा जल्दी जवाब दीजिएगा।
1: आवारगी में बन गया दीवाना,
0: कौन से गाने के लिरिक्स है भैया, ये जो गाना है वो कौन सा है।
1: सादगी को नहीं जाना।
0: चलो अभी फटाफट मैसेज करोगे आप मुझे, है ना, जल्दी से मैसेज करना 9837896896 पर। मैं बताता हूँ अभी जन्माष्टमी को लेकर क्या शुभ मुहूर्त है इस बार के, इस टाइम पर आप पूजा कर सकते हैं। और पहली बार सबसे अच्छी चीज ये हो रही है कि कोई भी त्योहार ना हमारे यहाँ पर जब भी होता है वो दो दिन सेलिब्रेट होता है, कल है आज है, आज है कल है, ये बड़ा भ्रम होता है। लेकिन इस बार जन्माष्टमी 2026 में पहली बार ऐसा हो रहा है जब रक्षाबंधन और जन्माष्टमी एक ही दिन सेलिब्रेट की जा रही है पूरे भारत वर्ष में, अच्छी चीज है ना। चलिए श्रेया घोषाल आतिफ असलम की आवाज में इस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रिंस मूवी का गाना तेरे लिए।

काफी ब्यूटीफुल और ढिंचैक नंबर है गाना, एनर्जेटिक, अंदर के जो घूसबम्स से बाहर आ जाते हैं ऐसे गाने सुन के। ये गाना जब रेडियो पे पहले मैं सुनता था ना, बड़ा एक्साइटेड हो जाता था यार, ऐसी फ्लैश बैक में ले गया गाना भी। कोई नहीं बोलता यार ऐसे, अजी सब झूठी बातें हैं। चलो यार बहुत बढ़िया गाना, और आपसे रेडियो पे बात करके थोड़ी देर के लिए सही, बट एक जो खुशी मिलती है ना उसके बाद ही अलग होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर बांके बिहारी मंदिर से एक बड़ी अपडेट आई है। आपको बता दें श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात 1:45 पर जो है, मतलब एक मंगला आरती होगी बहुत बड़ी वहां पर, जो बांके बिहारी मंदिर में होने वाली है। एंड इस आरती में सिर्फ 600 भक्तों को ही एंट्री दी जाएगी। इस बार जो है बहुत ही गिने चुने लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, और जो श्रद्धालु होंगे केवल 600 लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा इस आरती का हिस्सा बनने के लिए, जो एक भव्य आरती होगी। इस विशेष आरती के दर्शन के लिए वृंदावन में जो श्रद्धालु पहुंचेंगे वो तो तमाम संख्या में पहुंचेंगे, लेकिन इनमें से सिर्फ 600 लोग होंगे जिनको इस आरती में शामिल होने का मौका मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं, अपने घर में महाआरती करो यार, कहते हैं ना जो मन चंगा तो कटौती में गंगा। 4 सितंबर 2026 को रात 11:57 से लेकर 5 सितंबर की रात 12:43 तक जो है वो शुभ मुहूर्त रहेगा। इस बीच अगर आप इन भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ और बहुत ही विशेष एक खास मुहूर्त बताया जा रहा है इस बार जन्माष्टमी का। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 45 मिनट का टाइम आपको मिलेगा जिसमें आप पूजा कर सकते हैं। 11:57 से लेकर 12:43 तक का ही जो है एक शुभ मुहूर्त और समय मिल रहा है। 4 सितंबर को जो है मनाई जा रही है जन्माष्टमी, टुमारो सारे लोग मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, तो बहुत ही अच्छी बात है। और बाकी आसपास में जो साज सजावट चल रही है वो तो है ही कमाल की। मैं भी यहाँ पर कमाल के गाने बजा रहा हूँ आपके लिए, इसी बात पर अभी एक गाना और प्ले कर रहा हूँ, जल्दी से लौट कर आता हूँ, बताता हूँ कौन है आज के शो का विनर। 10:09 हो रहे हैं, मैं यू गया और यू आया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था आज की सुबह मैंने, तमाम सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने सच में बहुत अच्छे मैसेज किए हैं। चलिए आज वैसे मैंने पिछले घंटे आपसे पूछा था ऐसी कौन सी रोटी है जो हवा में उड़ती है, क्या मैसेज किया यार, सोचा नहीं था मैंने कि ऐसी ऐसी रोटियां भी है जो हवा में उड़ती है, लेकिन उसका सही जवाब भी बताकर जाऊंगा, डोंट वरी। फिलहाल ये गाना सुनिए, वॉल्यूम बढ़ाइए और अपने ध्यान को अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो सड़क पे रखिए। सुन रहे आनंद को, यह है FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। आई विल बी राइट बैक जनता।

0: शनि जी इसी गाने के साथ अभी मैं आपको बोलूंगा बाय बाय, लेकिन जाने से पहले जो सवाल पूछा था उसके जवाब भी तो देकर जाऊंगा यार, ऐसे कैसे चला जाऊंगा। हाँ जी, वेलकम बैक वंस अगेन। 10:12 हो गए, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, ये है एफएम मुरादाबाद 89.6।
1: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM।
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
0: यही मैंने आज पूछा था आपसे कौन सा गाना है, एंड बहुत सारे मैसेज आए हैं, मतलब इतने मैसेज आ गए हैं कि मैं शायद आपका नाम पढ़ने बैठूंगा तो मेरा समय थोड़ा सा जो है कम पड़ जाएगा, वैसे कम हो गया है। आप सभी के लिए जोरदार तालियां, कंग्रेचुलेशन। निखत फातिमा ने सबसे पहले सही जवाब दिया है, दिल दे दिया है ये गाना था सर। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, कंग्रेचुलेशन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आज की सुबह। सच में आपने एकदम सही जवाब दिया है,
3: मैंने क्यों सादगी को नहीं।
0: थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए आनंद राज। आनंद की ये कमाल की वॉइस आप एंजॉय कर रहे थे अभी, नहीं नहीं जो गाना चला मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मेरा नाम तो आनंद है भाई। कंग्रेचुलेशन निखत, एंड साथ में इरशाद हुसैन अंसारी साहब, इन्होंने भी जवाब दिया है मंसूरी कॉलोनी से, तो इन दोनों के लिए जोरदार तालियां यहां पर, कंग्रेचुलेशन जी। आज की सुबह आप दोनों बहुत बहुत सारी बधाइयां जीतते हैं हमारी ओर से, बाकी लोगों ने भी सही जवाब दिए हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे मैम जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, हमेशा रेगुलरली रेडियो पे कनेक्टेड रहती
4: हैं। राधे राधे राधे जी, ये गाना है दिल दे दिया है जा तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे सनम।
0: वाओ,
4: विवेक ओबराय पे फिल्माया गया गाना है।
0: मुझे लगता है अलका जी आपके फेवरेट हैं विवेक जी, बहुत खूबसूरत आपने गाया, मजा आ गया, मतलब कमाल कर दिया आपने। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ी थी यहाँ पर ललिता कश्यप नवीन नगर से, मैंने कहा था ना ऐसी कौन सी वाली रोटी है जो हवा में उड़ती है, ये आपने मेरे को मैसेज करके बताना था। सबने अलग अलग रोटियों के नाम बता दिए हैं भाई, ऐसी ऐसी रोटी के नाम बताए जो मैंने कभी शायद सुनी होंगी, सच्ची बता रहा हूँ यार, लेकिन उसका सिंपल सा आंसर था, मैंने कहा था ऐसी कौन सी रोटी है जो हवा में उड़ती है और उसका नाम है प्लेन रोटी, प्लेन। समझ गए ना, बाकी जो आपने दिमाग चलाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी फिलहाल मैं यहाँ से जाने के लेता हूँ इजाजत, थैंक यू सो मच हमारे साथ आप जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच कनेक्ट होने के लिए। एंड बाकी लोगों ने भी ये मैसेज दिए थे, देखिए संदीप जी हमारे साथ जुड़े थे नवीन नगर से ही, अजीत कसाना, माया टीवी, ऋतिक और आदित्य जी लदावली कार्ट रूट से जुड़े थे मेरे साथ। एंड यहाँ पर मेरे पास इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ एक मैसेज आया था, लेकिन अभी टाइम कम है तो उसको बाद में शॉर्टलिस्ट करेंगे। सैयद शारिक अली, इरशाद हुसैन अंसारी लिखते हैं, आनंद जी गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं, नई नई जानकारियाँ लेकर आते हैं, थैंक यू सो मच, हमारी पूरी पूरी कोशिश होती है कि रेडियो के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिले। गुड मॉर्निंग जी, मोहसिन अंसारी मेरे साथ जुड़े हैं बनारस से, ये भी मुझे कुछ प्यारा सा वॉइस नोट दे रहे हैं, जरा सुन लेता हूं।
5: गुड मॉर्निंग आरजे आनंद भाई, गुड मॉर्निंग,
0: गुड मॉर्निंग,
5: बहुत ही अच्छे अच्छे गाने प्ले कर रहे हैं सुबह के टाइम, जो कि मेरा फेवरेट सॉन्ग है
0: जी,
5: रग रग में इस तरह तू समाने लगे।
0: अरे वाह क्या बात,
5: आप बहुत ही अच्छे अच्छे गाने प्ले करते हैं और प्रोग्राम बहुत ही लाजवाब आपके साथ लगता है सुनने में।
0: धन्यवाद सर,
5: तो आपको दिल से धन्यवाद। और आनंद भाई एक बात कहना चाहते हैं कि जिंदगी में आपको हिम्मत नहीं हारना है, जिस चीज को आप पाना चाहते हैं इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द वो चीज को पा लें।
0: बिल्कुल,
5: जब तक आप वो चीज को पाइए नहीं तब तक हिम्मत मत हारिए।
0: बिल्कुल जी, नहीं
5: इंशाल्लाह आपको वो चीज जरूर मिलेगी
0: बहुत
5: जो
0: बहुत
5: आप चाहते हैं।
0: बिल्कुल सर, मैं समझ रहा हूँ।
5: तो सभी लोग अच्छे रहें, बिंदास मॉर्निंग आनंद भाई के साथ सुनते रहे। मैं मोहसिन मंसारी बनारस से एफएम मुरादाबाद में जुड़ा हुआ हूँ, नमस्कार, सलाम, नमस्ते।
0: थैंक यू मोहसिन भाई, आपकी इन मस्त बातों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिन बना देते हो यार।
3: काटी रात मैंने खेतों में,
0: पानी भरा हुआ है बॉस, कैसी बातें कर रहे हो। फिलहाल ही गाना छोड़ के जा रहा हूँ सी टू से। ममता झा सूर्यनगर से जुड़ी थी मेरे साथ, इन्होंने सही जवाब दिया था, थैंक यू सो मच, हमारे साथ जुड़े थे सहारनपुर से जोन रोजी पलवलीस, हमारे रेगुलर लिसनर हैं। आगे बढ़ते हैं एंड एक और मैसेज आया था रेडियो वाले आनंद को, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं विकी सागर जी। गुड मॉर्निंग आनंद, कैसे हाल चाल है? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। ये मेरे पास मैसेज आ रहा था, हवा में उड़ती है, पता नहीं भाई कौन सी रोटी लिख डाली उन्होंने, मेरे को मारो भाई। सिद्धि का मैसेज आ रहा है, सिद्धि महेश्वरी फ्रॉम मुरादाबाद, हाय सिद्धि गुड मॉर्निंग। ये हमारे साथ जुड़े थे सुजीत जी, लिखते हैं आनंद भाई गुड मॉर्निंग, सुबह की राम राम, शो अच्छा लग रहा है, थैंक यू जी अमेजिंग। दुर्गेश सैनी भी जुड़ चुके थे एंड ये राकेश वर्मा, मुमताज आलम हमारे साथ जुड़े थे, गुड मॉर्निंग चमन लाल साहब पहुंचाते हैं। अयूब अली रामपुर से मेरे साथ जुड़े थे, रेहाना जुड़ी थी साथ ही साथ, गुड मॉर्निंग पहुंचाती हैं एडवांस में, हैप्पी जन्माष्टमी। बाबू अंसारी साहब हमारे साथ जुड़े हैं रहमत नगर से एंड इसके अलावा एक और मैसेज मेरे पास पहुंचा था, गुड मॉर्निंग जी कैसे हाल चाल है, गुड मॉर्निंग। ये गीता कश्यप लक्ष्मी भाभी हमारे साथ जुड़े हैं आज की सुबह। गाइज बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, फिलहाल मैं यहाँ से जाता हूँ, कल वापस मिलूंगा इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, आप रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और ऐसे ही रेडियो बजाते रहिए, बाय बाय।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
0: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादी अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

0: रखनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा।
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना, आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना, पुराना सोना लाओ नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद, कॉल करें 705-07-0552।
6: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

गुड मॉर्निंग माय डियर लिस्टनर्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी लेकर हाजिर हूँ आपका अपना फेवरेट शो मॉर्निंग मसाला। वक्त हुआ है अभी 10:27 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में। थर्सडे मॉर्निंग है एंड 3 सितंबर की तारीख है। बहुत ही खूबसूरत सा दिन है और एवरीवन हर दिन अपने आप में बहुत स्पेशल होता है, तो आज का दिन भी बहुत ही खूबसूरत है। क्या कुछ खास है सब मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों रास्ते भी कितने मतलब मुश्किल भरे क्यों ना हो, अगर हौसला मजबूत हो तो मंजिल दूर नहीं होती। इसीलिए आज शिकायत ने सिर्फ कोशिश कीजिए और जब आप कोशिश करेंगे ना तो जीत आपकी तय है। चलती रहिए, बढ़ती रहिए, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है। और इसी थॉट के साथ करते हैं अपने शो की शुरुआत। आप भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं आज की सुबह। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837789896। और यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे मैसेज आ गए हैं आज की सुबह, क्या कहने। थैंक यू सो मच एवरीवन। और बाहर का मौसम बड़ा ही औसम है, कभी तो बारिश हो जाती है, कभी बारिश रुक जाती है। हाँ, जब मैं ऑफिस के लिए घर से निकल रही थी तो तभी हल्की हल्की फुहारें पड़ने लगी। जब तक मैं ऑफिस तक पहुंची तो फिर वो बंद हो गई। मैंने कहा भैया क्या चाहती हो तुम मुझसे। हाँ ये बारिश भी ना बड़ी कमाल की होती है। चलो अभी गाना सुनो, मैं लौट कर आती हूँ।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

0: गुड मॉर्निंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है और अभी आपने सुनाई अमेजिंग ट्रैक आस्था गिल की बहुत ही शानदार आवाज में। तो मैंने सारा इंडिया घुमा दे सोनिया। तो दोस्तों मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए अगर आपको मौका मिले पूरा इंडिया घूमने का तो सबसे पहले आप कहाँ जाना चाहेंगे? पहाड़ों की ठंडी वादियों में, समुद्र के किनारे या फिर किसी खूबसूरत ऐतिहासिक शहर में? हमें मैसेज करके बताइएगा। अगर आपको पूरा इंडिया घूमने का मौका मिले तो आप सबसे पहले कहाँ जाना चाहेंगे? पहाड़ों की ठंडी वादियों में या फिर समुद्र किनारे या फिर किसी खूबसूरत ऐतिहासिक शहर में? हमें मैसेज करके बताइएगा। आज की सुबह अगर आपको पूरा इंडिया घूमने का मौका मिले तो आप सबसे पहले कहाँ घूमने जाएंगे? जल्दी से अपने मैसेज पहुँचाइएगा, हम भी तो जाने आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है, कहाँ जाना चाहते हैं आप? हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। और हमारे पास यहाँ पर खूबसूरत संदेश भी आ गए हैं तो मैं उनको भी जल्दी से शामिल करती हूँ। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले मैसेज हमें पहुँचाते हैं कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी जी एंड साथ में नसरीन अंसारी जी हैं। गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग खुशी दी, मैं निखत फातिमा, कैसे हैं आप दी? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। एग्जैक्टली राइट, आई एम गुड डियर। और ये कहते हैं दी एडवांस में हैप्पी जन्माष्टमी, थैंक यू। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया जनकपुरी सहारनपुर से जोन रोजी पलवली जी का, आज की सुबह गुड मॉर्निंग हमें पहुँचाते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है आरजे खुशी जी, जय श्री राम, आपको भी जय श्री राम। अजीत कसाना जी मैसेज पहुँचाते हैं आज की सुबह, साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं और आदित्य कसाना जी हैं, कांट रोड लदावली से। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है प्रेम मित्र आरजे खुशी जी को, नमस्कार, आपको भी नमस्कार सर। और आज की सुबह ये गाना सुनना चाहते हैं थम के बरस, ओ जरा थम के बरस। अरे वाह, ये मैसेज पहुंचाते हैं गणेश प्रसाद हुजदार काठमांडू से। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी जी का, आज की सुबह गुड मॉर्निंग हमें पहुंचाते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। रियल लिसनर्स, मैंने आज की सुबह आपसे मालूम किया है कि अगर आपको पूरा इंडिया घूमने का मौका मिले तो आप सबसे पहले कौन सी खूबसूरत सी जगह जाना चाहेंगे, बताइए बताइए। ओहो, आपने तो इतने पहले से डिसाइड करके रखे हैं कि मैं को घूमने का मौका मिले तो मैं वहां जाऊंगा या फिर वहां जाऊंगी। हाँ, अब इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, जल्दी से बताइए हमें। जब तक आप मुझे बताते हैं ना कि आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है इंडिया में, तो तब तक मैं आपको ना एक शानदार सा ट्रैक सुनवाती हूँ, बहुत ही शानदार गाना है एंड इसको सुनते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, फिर आपसे करेंगे बहुत सारी बातें और आज कौन कौन से डे सेलिब्रेट किए जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। बने रहिए खुशी के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 पर।
1: तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर झुका के करे।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
4: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिल्म मुरादाबाद 89.6 और मैं आपके साथ आपके दोस्त आरजे खुशी। 3 सितंबर की तारीख है आज और दिन है बहुत ही खूबसूरत सा थर्सडे का। एंड एवरीवन, मैंने आपसे कहा था ना कि आज कौन कौन से डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, 3 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय व्यापारी दिवस। एंड व्यापारी सिर्फ सामान खरीदने बेचने का काम नहीं करते हैं दोस्तों, बल्कि देश के अर्थव्यवस्था और विकास में भी

महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। छोटे दुकानदार से लेकर बड़े कारोबारियों तक हर व्यापारी रोजगार और व्यापार को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। तो आज के दिन सभी मेहनती व्यापारियों को राष्ट्रीय व्यापारी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, व्यापार बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा ना। और आज की सुबह मैंने आपसे पूछा था कि अगर दोस्तों आपको मौका मिले पूरा इंडिया घूमने का, तो सबसे पहले आप कहाँ जाना चाहेंगे? पहाड़ों की ठंडी वादियों में, या समुद्र किनारे, या फिर किसी खूबसूरत ऐतिहासिक शहर में? हमें बताइएगा। और हमारे पास यहाँ पर खूबसूरत संदेश भी आए हैं, मैं उनको भी जल्दी से शामिल करती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया, हाय दी, गुड मॉर्निंग, किम छो, बस अच्छे हैं, आप बताइएगा। रुकैया फातिमा में मैसेज पहुँचाती हैं एंड एक गाना सुनना चाहती हैं। मेरी दोस्ती एंड दरक्षा, अच्छा आपके दोस्त दरक्षा फातिमा के लिए एक गाना सुनना चाहते हैं आप? बिल्कुल सुनवाएंगे डियर, थोड़ा इंतजार करें। एंड उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया आज की सुबह, मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी, साथ में शहीद इशारी कली जी हैं, महराज अंसारी जी हैं, बाबू अंसारी जी हैं। गुड मॉर्निंग खुशी जी, आप कैसी हैं? ठीक हैं सर, आपका शो हम सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और सर एक गाना सुनना चाहते हैं फ्रॉम द मूवी कल की आवाज, आशा भोसले साथ में कुमार सानू जी की खूबसूरत आवाज में, किसी मेहरबान ने आकर मेरी जिंदगी सजा दी। तो बिल्कुल ये ट्रैक हम आपको सुनवाएंगे दोस्तों, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। एंड आज विवेक ओबेरॉय का भी बर्थडे है, तो उन्हीं का एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है जो मुझे भी पसंद है और आपको भी पसंद आएगा उम्मीद करते हैं। तो सुनवाते हैं आपको,

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।
3: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6। और धोखेबाजी तो आजकल मौसम कर रहा है ना, कभी बारिश रुक जाती है तो कभी बारिश अचानक से आ जाती है ना। आप सोचते हैं कि अभी तो बारिश नहीं हो रही है, मौसम ठीक है, मतलब बादल ही तो हो रहे हैं, बारिश थोड़ी ना हो रही है। चलो चलते हैं, पता चला कि आधे रास्ते आप पहुंचे नहीं कि बारिश झमाझम होनी शुरू हो जाती है। फिर आप सोचते हैं ओहो काश मैं छाता ले आता या रेनकोट अपने साथ में कैरी कर लेता, तो वो ना सोचने से अच्छा है कि आप अपने साथ ले जाइए, है ना। मानसून का वेदर है एंड कभी भी बारिश हो सकती है, तो आपकी सावधानी आपके हाथ में है ना, कि आप जितना सेफ्टी बरतेंगे उतना ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए। तो मैं इसीलिए आपसे कहती हूँ कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो हमेशा अपना छाता एंड रेनकोट और वाटरप्रूफ बैग भी अपने पास रखिए, जिसमें आप मोबाइल वगैरह अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके यू नो कीमती डॉक्यूमेंट होते हैं तो उनको भी संभाल कर रखिएगा, क्योंकि बारिश जो होती है ना वो उसका कोई पता नहीं है, कभी भी हो जाती है। और आप ऐसे ही मोबाइल वगैरह कुछ भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बहुत सारे कागज़ होते हैं जो हमारे बहुत ज़रूरी होते हैं, अहम होते हैं, तो वो भीगने की वजह से फिर ख़राब हो जाते हैं। और आपको पता है ना कि कोई भी चीज़ बनवाने के लिए हमें कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, कितना परेशान होना पड़ते हैं। खुशी का काम है आपको याद दिलाना, अब आपको याद हो गया है तो आप अपनी चीज़ें जब भी आप बाहर जाएं तो सावधानी के साथ जाइएगा, ठीक है। और अभी आपने सुना ये अमेजिंग ट्रैक अफसाना खान जी की आवाज़ में, और यहाँ पर आपके खूबसूरत संदेश आ गए हैं, मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ बिना किसी देरी के। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया, हाय दी कैसी हैं आप, दरक्षा फातिमा में मैसेज पहुँचाती हैं आज की सुबह, और साथ में इनकी दोस्त भी है रुकैया फातिमा। और ये ट्रैक सुनना चाहती हैं, दिल का जो हाल है कैसे बयां करें, इस गाने के जरिए बयां कर दीजिएगा। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं दुर्गी सैनी जी कल्याणपुर मुरादाबाद से, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग खुशी जी। एंड ये कहते हैं कि मैम अगर हमें इंडिया में घूमने का मौका मिले तो सबसे पहले हम जाना चाहेंगे मेहंदीपुर बालाजी महाराज जी के टेंपल। अरे वाह बहुत ही खूबसूरत है, राजस्थान दौसा जिला में है, एक्चुअली मैं भी वहाँ पर गई हूँ, बहुत आनंद आता है वहाँ पर। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया, हाई गुड मॉर्निंग, रामपुर से शमा मैसेज पहुँचाती हैं आज की सुबह, वेरी गुड मॉर्निंग शमा। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आए, गुड मॉर्निंग जय श्री राम, धर्मेंद्र कश्यप जी का मैसेज हमें पहुंचाते हैं लाइन पर से, ये कहते हैं अगर मुझे घूमने का मौका मिले तो मैं कहां

जाना चाहूंगा। ये कहते हैं कि अमेजन जंगल में जाना चाहूंगा। अरे वारे रे चलिए अच्छी बात है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये हमें बबली अंजान जी मैसेज पहुंचाती है आज की सुबह। साथ में गीता कश्यप जी हैं, लक्ष्मी कश्यप जी हैं, खुशी मैम हेलो गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। दोस्तों आज की सुबह ना मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, और मैं चाहती नहीं हूँ बस पूछ लेती हूँ क्योंकि बहुत देर हो गई है, और मैं चाहती हूँ कि फटाक से अपने श्रोताओं से एक सवाल पूछ ही लेते हैं आज की मॉर्निंग। तो दोस्तों आप मुझे बताएं कि भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है। जी हाँ, उसका नाम आपको मुझे बताना है। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है, उसका नाम आपको मुझे बताना है। फटाफट से मैसेज कीजिएगा आप, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है, अब आपको ये मुझे बताना है, तो जल्दी से बताइए। और जब तक आप अपने मैसेज पहुंचाते हैं तब तक हम आपको खूबसूरत गाने सुनवाते हैं आप ही की रिक्वेस्ट पर।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादी अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपके दोस्त आरजे खुशी। दोस्तों, नेपाल की बाढ़ ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि स्थाई कुछ भी नहीं है। एक आपदा आती है और सब कुछ बहा ले जाती है। इसीलिए जिंदगी को जीना सीखिए, अपने आज को खूबसूरत बनाइए। कल किसने देखा है? क्या नेपाल जानता था कि इतना विकराल जल आएगा? जिंदगी भी ऐसी ही है दोस्तों, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। तो फिर इतना परेशान क्यों ना, बेवजह की चिंता करना, क्यों इतना सोचना? जो आपके पास पल है, जो आपके पास टाइम है, उसे आप अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, उसे अच्छा बनाइए, खूबसूरत बनाइए। जब ये पल खूबसूरत होगा तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आने वाला आपका पल भी खूबसूरत होगा। और हम क्या करते हैं, ज्यादातर लोग कल की चिंता में अपने आज को भी खराब कर देते हैं। बहुत सारी चीजें हम सोच लेते हैं जो हमें पता भी नहीं होता है कि कल क्या होगा, नेक्स्ट पल क्या होगा, हमें ये भी नहीं पता होता है ना। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों हम फालतू की इतनी चिंताएं करते हैं और उसमें अपना टाइम गंवा देते हैं। क्योंकि हमारा ये जो समय है, जो अभी जिसमें हम जी रहे हैं, जो चल रहे हैं, जो आपकी लाइफ में आप करना चाहते हैं अच्छा काम, जो आपका ड्रीम्स है, कुछ भी, एवरीथिंग एंड एवरीवन, वो सब आप कीजिए, उस पर फोकस कीजिए। व्यर्थ की चिंता करने से क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं। तो अपने आज में, अपने इस पल में आप खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए एंड जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उसके लिए मेहनत कीजिए। और हाँ, कल के ऊपर कोई भी काम ना छोड़े कि आज नहीं करते हैं, आज मन नहीं है, कल कर लेते हैं। कल किसी ने नहीं देखा है, इसीलिए जो भी करना है आज ही कर लीजिए। और श्रोताओं, मैंने आपसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था आज की सुबह कि आप मुझे बताइएगा भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है, उसका नाम आपको मुझे बताना है। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है? एंड हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। जल्दी से अपना मैसेज हमें पहुंचाइएगा एंड तब तक मैं आपको सुनवाती हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत। लौट कर आती हूँ मैं, तब तक आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइएगा।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है और मैं अभी कहीं नहीं जाने वाली हूँ, आप निश्चिंत रहिएगा। और आज की सुबह मैंने आपसे पूछा था एक बड़ी खूबसूरत सा क्वेश्चन, तो मैंने पूछा ही था, लेकिन उससे पहले एक और बात पूछी थी कि दोस्तों, अगर आपको पूरा इंडिया घूमने का मौका मिले तो आप सबसे पहले कहाँ घूमना चाहेंगे। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, हेलो खुशी मैम, प्रिया का मैसेज हमारे पास आया है न्यू मुरादाबाद से। अगर मुझे पूरा इंडिया घूमने का मौका मिले तो मैं सबसे पहले कश्मीर जाना चाहूंगी। बचपन से ही बर्फ से ढके पहाड़ और वहाँ की खूबसूरत वादियाँ देखने का मेरा सपना है। अरे वाह प्रिया, वैसे कश्मीर तो मैं भी नहीं गई हूँ एंड मेरा भी जाने का मन है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, हाउ आर यू, आई एम गुड। नेहा का मैसेज हमारे पास आया है और ये हमें मैसेज पहुंचाती है हरथला मुरादाबाद से, और ये कहती है कि खुशी मैम, मेरा फेवरेट प्लेस है गोवा। अगर मौका मिले तो मैं सबसे पहले गोवा जाना चाहूंगी। समुद्र किनारे बैठकर बस समुद्र की लहरों को देखना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत सुकून मिलता है वहां जाने के बाद। अच्छा जी, ये बात है नेहा। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया रिया जी का मुरादाबाद से, गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और ये कहते हैं कि मुझे अगर इंडिया घूमने का मौका मिले तो मैं सबसे पहले जाना चाहूंगी मनाली, मुझे बहुत पसंद है, सबसे पहले वहीं जाना चाहूंगी। ठंडी हवा, पहाड़ और बारिश का मौसम मुझे अच्छा लगता है, इससे खूबसूरत और क्या ही होगा। एग्जैक्टली राइट। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है साक्षी का और ये मैसेज हमें पहुंचाती है विकास नगर से, हाय गुड मॉर्निंग डियर, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और ये कहती है, मेरा ड्रीम डेस्टिनी है जयपुर, मुझे पुराने किले, राजमहल और वहाँ की कलरफुल अच्छा स्ट्रीट बहुत पसंद है। मौका मिले तो मैं सबसे पहले पिंक सिटी घूमना चाहूंगी। अरे वाह नाइस, बहुत ही खूबसूरत है जयपुर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया ललिता कश्यप जी का नवीन नगर मुरादाबाद से, और ये मोहतरमा कहाँ घूमना चाहती हैं वो हम इन्हीं से जान लेते हैं। इन्होंने पहुंचा है आज की सुबह हमें मैसेज, एंड गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी, वेलकम है आपका मॉर्निंग मसाला शो में, थैंक यू। एंड आज विवेक ओब्रॉय जी का बर्थडे है तो हमारी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये गाना सुनना चाहती है, जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए, दुनिया भुलाई मैंने तेरे लिए। अरे वाह क्या बात है ललिता जी, सच में ऐसा है क्या? अगला मैसेज इन्होंने पहुंचाती है ये कि मैम, आपने पूछा है कि घूमने, अगर पूरा इंडिया घूमने का मौका मिले तो कहाँ जाना चाहेंगे।

अंतरिक्ष। अच्छा जी, खूबसूरत। नेक्स्ट इन्होंने लिखा है कि खुशी मैम हमेशा यूं ही हंसती रहें, हर पल खुशियों में बसती रहें, एंड आपकी हंसी यूं ही महकती रहे और आपकी खुशी हमेशा चमकती रहे। थैंक यू सो मच मैम, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स यू नो आपने दी हमें आज की सुबह। और ये भी सही जवाब के साथ जुड़ी हैं। अब तो बारिश रुक चुकी है हांशी मैम, अब तो बारिश रुक चुकी है। तो चलिए दोस्तों कुछ खूबसूरत गाने सुन लेते हैं। अब इतने प्यारे गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है ललिता मैम ने, तो सुनवा देते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं। एंड उसके बाद हम आज की सुबह जो हमारे लकी स्टार बने हैं उनको भी तो यहाँ पर अनाउंस करने ना, उनका नाम तो बताऊंगी अभी आपको लेकर लौट कर जब आऊंगी।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम तो देखिए आपका साथ बने हुए हैं और आप भी हमारा साथ निभा रहे हैं, उसके से शुक्रिया। ये है आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। दोस्तों आज जन्मदिन है बॉलीवुड के उस कलाकार का जिन्होंने कभी अपनी खलनायकी से डराया तो कभी अपनी कॉमेडी से दर्शकों को खूब हंसाया, शक्ति कपूर। जी हाँ दोस्तों, 3 सितंबर 1952 को दिल्ली में जन्मे शक्ति कपूर का असली नाम है सुनील कपूर एंड उनका बचपन दिल्ली के करोल बाग में बीता। उनके पिता कपड़ों का कारोबार करते थे और चाहते थे कि बेटा पारिवारिक बिजनेस संभाले, लेकिन शक्ति कपूर कुछ अपना करना चाहते थे।

उन्होंने पहले ट्रैवल एजेंसी शुरू करने का विचार किया और उसके बाद में अभिनय की राह चुनी। उन्होंने पुणे की फिल्म एंड ट्रैवल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII से एक्टिंग की ट्रेनिंग ली। उनका फिल्मी सफर 1970 में शुरू हुआ और आगे चलकर उन्हें सैकड़ों फिल्मों में काम किया। शुरुआत में वो खास तौर पर विलेन के किरदार के लिए पहचाने गए, लेकिन उनकी असली खासियत थी खुद को बदलते दौर के साथ ढालना। बाद में कॉमेडी में उन्होंने ऐसी पहचान बनाई कि दर्शक उन्हें देखकर हंसने लगते थे। राजा बाबू के नंदू और अंदाज अपना अपना के क्राइम मास्टर गोगो जैसे किरदार आज भी लोगों की यादों में। राजू बाबू के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट क्राइम कमिंग एक्टर भी मिला। तो आज शक्ति कपूर जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। और दोस्तों, राजा बाबू फिल्म का ना एक ट्रैक है जो बहुत ही अच्छा गाना है, वो मैं आपको सुनवाऊंगी। शक्ति कपूर जी ने एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं और उनकी सारी फिल्में सुपर हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, चाहे वो विलन का रोल हो या फिर वो कॉमेडी वाला, सब अंदाज में उन्होंने सबको हंसाया है ना। तो एक गाना ना मैंने भी यहाँ पर सिलेक्ट किया है और वो मैं आपको सुनवाने वाली हूँ। बहुत ही शानदार ट्रैक है। आप बने रहिए खुशी के साथ, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। मैं लौट कर आती हूँ बस एक प्यारे सी गाने के उस पार। समय बता देती हूँ, अभी स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 11:52।

0: वैसे जादू तो हमारी श्रोता कर देते हैं, हम कोई भी सवाल पूछते हैं और हमारे श्रोताओं के यहाँ पर मजेदार एंड आंसर आते हैं, तो सभी के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग तो हम करना चाहेंगे क्योंकि इतने प्यार से आप सभी इतने एक्टिव हैं कि फटाक से अपना मैसेज पहुंचा देते हैं, तो ये जोरदार तालियां आप सभी के लिए भी पर आप इतने अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं एंड बस मुझे ऐसा लगता है कि आप सब ना तैयार रहते हैं कि कोई हमारे प्रेजेंटर्स कोई भी आरजे एक सवाल पूछे और आप जवाबों की ना एकदम झड़ी लगा देते हैं। और आज की सुबह मैंने आपसे पूछा था कि भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है, उसका नाम आपको मुझे बताना था और हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले सही जवाब हमें पहुँचाया था। आज के हमारे लकी स्टार बने हैं हमारे शो के, उनका नाम तो हम बता देते हैं आपको। सबसे पहले हमें सही जवाब पहुंचाया था धर्मेंद्र कश्यप जी ने लाइन पार कुंदनपुर ढक्का से एंड मैम सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस। एग्जैक्टली, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाइयां आपको, आप बनते हैं हमारे शो के लकी सुपर स्टार क्योंकि आपने दिया है सबसे पहले सही जवाब। ये जोरदार तालियां आपके लिए। और नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर पहुंचाती है ललिता कश्यप जी, आपने जवाब तो मैम पहुंचाया है लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक आपने कर दी है, बट कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है दीपांश का एंड ये भी सही जवाब के साथ जुड़े हैं, थैंक यू दीपांश। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है गुड मॉर्निंग खुशी मैम, क्या हाल है आपके, बहुत अच्छे हैं हम, ये मैसेज अपना पहुंचाते हैं हमें मोहम्मद शान एंड लुधियाना पंजाब से आज की सुबह वेरी गुड मॉर्निंग। और जिस गाने की रिक्वेस्ट आपने भेजी थी हमने प्ले कर दिया था, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया विकी सागर जी का मुरादाबाद से, गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया हाय खुशी मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, कहती हैं माखन की कटोरी, मिश्री की थाल, मीठी की खुशबू, अच्छा मिट्टी की खुशबू, बारिश की फुहार, राधे की उम्मीद, कान्हा का प्यार, मुबारक हो आपको जन्माष्टमी का त्योहार। अरे वाह, इतने प्यार से आपने इतने खूबसूरत लाइनों में जो हमें जन्माष्टमी विश किया ना उसके लिए थैंक यू एंड सेम टू यू, आपको भी जन्माष्टमी की इन एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी जन्माष्टमी। नेक्स्ट मैसेज ये हमें पहुंचाया था सिद्धि यादव, विनायक यादव एंड अर्पित यादव, दक्ष यादव, अनुराधा यादव, रंजिता यादव जी ने। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं लाइन पर मुरादाबाद से खेम सिंह सैनी जी, खेमपाल सैनी जी का मैसेज हमारे पास आया है और सर कहते हैं नमस्कार खुशी जी, आपको भी नमस्कार सर, जय श्री राम, मुझे घूमने का मौका मिले तो मैं ऐसी जगह जाना चाहूँगा जहाँ दिल को सुकून मिले और मन को आराम, और वो जगह है मेहंदीपुर बालाजी महाराज जी का टेम्पल और साथ में सालासर बालाजी महाराज जी का मंदिर जो है वहाँ पर मैं जाना चाहूँगा। अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत स्थान है दोनों, और हम भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें भी वहाँ पर जाने का अवसर मिला। बिल्कुल जाइएगा सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है खुशी मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं सीएल गुप्ता से एंड सलीम अंसारी जी, साथ में इनकी पूरी फैमिली भी है, चमन जी हैं, नाया सनाया, सुभान अंसारी, खुशी जी, बारिश पड़ रही है मुरादाबाद में, सारा सारा दिन तुम काम करोगे, अच्छा ये गाना सुनना चाहते हैं सर, बिल्कुल सुनवाएंगे आपको। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है गुड मॉर्निंग खुशी मैम, हाउ आर यू, आई एम गुड, माय नेम इज अतुल चौधरी, आशियाना फेस टू मुरादाबाद से अपने मैसेज पहुँचाते हैं, खुशी मैम जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल स्टाफ सेम टू यू सर, आपको भी जन्माष्टमी की, कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। फाइनली हमारे पास कुछ और टेक्स्ट मैसेज आए हैं, मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ एंड हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है हाय गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, ये नाम तो आपने नहीं लिखा है अपना, और जवाब भी आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, बट कोई बात नहीं, आपने ट्राई तो किया ना। प्रीति जी का मैसेज हमारे पास आया है मुरादाबाद से। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग प्रीति, आपको भी। तो एवरीवन, आप मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, मैं मुलाकात करूंगी आपसे तीन बजे। सी यू सून, 3 से 5। तब तक के लिए रखिएगा अपना ध्यान और सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराना ना बहुत जरूरी है जिंदगी में, और जब मुस्कुराते हैं तो लाइफ बिंदास हो जाती है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एवरीवन। सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा।
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: शिलाजीत के बारे में कौन नहीं?
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एफएम मुरादाबाद आप सुन रहे हैं और इस स्टेशन पर आप सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है सेहत सही लाभ कहीं। एक बार फिर से लौट कर आ गए हम आपके दोस्त। और दोस्तों आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। श्रोताओं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि कैसे एक फॉरवर्ड पूरे घर का मन डगमगा देता है, आज हम उसी डर के बीच दो सबसे बड़ी अफवाहों पर सीधा बात करेंगे। क्या HPV वैक्सीन से पीरियड्स बिगड़ सकते हैं? क्या इससे आगे चलकर बांझपन हो सकता है? ऐसे सवाल ने बहुत सी माओं को रोका है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये डर सच है या यह वही बात है जो बार बार दोहराई गई है इसीलिए सच जैसी लगने लगी है। हमारे साथ हैं टीकन भाभी और पिछली बार की हमारी श्रोता सुनीता भी लौट आई है। हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपने पिछले एपिसोड के बाद क्या किया है। सुनीता जी आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में, और आप हमारे श्रोताओं को बताएंगी कि आपसे जब हमने बात की थी उसके बाद आपने क्या किया।
1: शुक्रिया मुझे अपने सेहत सही लाभ कई के लाइव एपिसोड में जोड़ने के लिए। सबसे पहले मैं कहूंगी कि यह कार्यक्रम एक बार ही अच्छा कार्यक्रम है जो हमें सही राह दिखाता है, चेतावनी भी देता है और सही इलाज पर फोकस करता है। अब आपके सवाल के जवाब में कहना चाहूंगी कि ने अगले दिन ही स्वास्थ्य केंद्र जाकर बात की। डॉक्टर ने भी वही कहा जो कि टीकन भाभी कह रही थी। पर आपसे सच बोलूं, मन में एक गांठ अभी भी है क्योंकि हमारी बेटी की उम्र ही ऐसी है, शरीर बदल रहा है, पीरियड्स नए नए शुरू हो रहे हैं। ऐसे समय में कोई भी दखल डराती है।
2: और यही वजह है कि इस एपिसोड में आपका जुड़ना जरूरी है। माँ तो मैं भी हूँ, लेकिन मेरी बच्ची छोटी है। उन सब माओ को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही है जिनकी बच्चियाँ अभी आपकी बेटी की उम्र की हैं, और आपकी इस बात को सही तरह से समझा पाएंगी कि आधी लड़ाई गलत सूचना से नहीं गलत कल्पना से होती है। और आप इस बात को सही तरह से समझा पाएंगी कि आधी लड़ाई गलत सूचना से नहीं गलत कल्पना से होती है। लोग सोच लेते हैं कि लड़की जवान हो रही है, अब कुछ हुआ तो पूरा जीवन बिगड़ जाएगा, फिर हर चीज को उसी डर से जोड़ देते हैं।
0: चलिए सबसे पहले वही सवाल रखते हैं जो हर दूसरे घर में पूछा जा रहा है, क्या HPV वैक्सीन मासिक चक्र को बिगाड़ देती है?
2: सीधा जवाब नहीं। उपलब्ध आधिकारिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती। इतना ही नहीं, पीरियड्स के दौरान भी इसे लेना सुरक्षित बताया गया है, यानी पीरियड्स रुक जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, अनियमित हो जाएंगे। ऐसी बातें वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित नहीं है।
1: पर लोग उदाहरण देते हैं, कोई कहेगा मेरी भाभी की लड़की को टीका लगा है, फिर 2 महीने गड़बड़ रही, तब क्या करें?
2: हर शारीरिक बदलाव को एक घटना से जोड़ देना आसान है। किशोरावस्था में शरीर खुद भी बदलता है। खान पान, तनाव, वजन, पढ़ाई, नींद, कई चीजें पीरियड्स को प्रभावित कर सकती हैं। पर हर उतार चढ़ाव को वैक्सीन पर डाल देना गलत है। विज्ञान यही देखता है कि बड़ी संख्या में लंबे समय तक क्या कोई स्थायी संबंध पाया गया, और जो आधिकारिक सामग्री उपलब्ध है वह साफ कहते हैं कि पीरियड्स पर असर नहीं है।
0: यह फर्क समझना जरूरी है, किसी एक घटना का सुना जाना और वैज्ञानिक रूप से साबित होना एक बात नहीं, अब दूसरा सवाल, बांझपन शायद सबसे खतरनाक अफवाह है।
1: हाँ, यही बात घरों में सबसे गहरी चोट करती है। लोग लड़की की सेहत को नहीं, पहले उसका भविष्य, शादी, बच्चा होने की क्षमता इस सब से जोड़कर देखते हैं। कोई कह दे कि आगे चलकर दिक्कत हो सकती है तो घर वाले एकदम पीछे हट जाते हैं।
2: बिल्कुल, और यही वजह है कि बांझपन वाली अफवाह तेजी से फैलती है। पर उपलब्ध मिथक तथ्य सामग्री साफ कहती है कि HPV वैक्सीन फर्टिलिटी पर असर नहीं डालती। उल्टा आधिकारिक प्रचार में ऐसे अनुभव भी साझा किए गए हैं कि जहां महिलाओं ने सालों पहले वैक्सीन ली है वे आज भी माँ हैं। एक गवाही तो साफ कहती है 2010 में वैक्सीन ली और आज गर्व से माँ है। यह अफवाह को सीधी चुनौती देती है।
1: यह सुनकर थोड़ी राहत मिली क्योंकि हम माओं को यही लगता है कि कहीं आज की जल्दी कल की मुसीबत ना बन जाए।
2: समझ में आता है, लेकिन सोचो अगर किसी चीज का उपयोग दुनिया भर में इतने साल से हो रहा है और लगातार सुरक्षा निगरानी हो रही है, तब भी हम बिना प्रमाण के डर को सच मान लें तो नुकसान किसका होगा? उसी बच्ची का जिसे हम बचाना चाहते हैं।
1: टीकन भाभी, तुमने कहा था कि वैक्सीन 2006 से दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, इतने साल हो गए तो फिर इतना शोर अभी क्यों?
2: क्योंकि सूचना का जमाना है, पर समझ का नहीं। पैफवा एक गली तक रहती थी। अब एक वीडियो हजारों घरों तक पहुंच जाए। ऊपर से स्वास्थ्य, शरीर, प्रजनन, ये सब ऐसे विषय हैं जिन पर लोग खुलकर बातें नहीं करते। जहां चुप्पी ज्यादा होती है वहां अफवाह और तेज लगती है।
1: घर में यही होता है, पीडियर्स पर खुलकर कौन बात करता है। लड़की भी झिझकती है, माँ भी। ऐसे में बाहर से कोई डरने वाली बात आ जाए तो वह मन में बैठ जाती है।
2: इसलिए इस विषय पर साफ, सहज और सम्मानजनक भाषा जरूरी है। देखो, पीरियड्स कोई बड़ी चीज नहीं, शरीर की प्रक्रिया है। फर्टिलिटी कोई शर्म की बात नहीं, पर स्वास्थ्य का हिस्सा है। जब हम इन बातों को छुपाते हैं तब झूठ इन्हीं अंधेरों में पनपता है।
0: यह बात तो सिर्फ चिकित्सा की नहीं, सामाजिक सोच की भी है। खासकर दक्षिण एशिया समाजों में लड़की के शरीर पर नियंत्रण, शर्म और अफवाह का जाल बहुत गहरा होता है। इसीलिए सही जानकारी को सिर्फ सूचना नहीं, सामाजिक हस्तक्षेप की तरह देखना चाहिए।
1: एक और डर बताऊं, कुछ लोग कहते हैं इतनी छोटी लड़की को ऐसा टीका क्यों?
2: पर आधिकारिक जन संदेश यही कहते हैं कि कम उम्र में सुरक्षा बेहतर होती है, यह बाद में देखेंगे वाली चीज नहीं है। 14 साल की लड़कियों के लिए मुफ्त उपलब्ध कराया जाना इसी सोच का हिस्सा है कि सुरक्षा समय पर मिले, रोकथाम देर से नहीं पहले की जाती।
1: और अगर कोई कहे कि हमारी बेटी तो बिल्कुल स्वस्थ है, उसे क्या जरूरत?
2: यही तो रोकथाम है। टीका बीमारी का इलाज नहीं, बीमारी से बचाव का साधन है। स्वस्थ बच्ची को इसलिए दिया जाता है कि भविष्य में गंभीर जोखिम कम हो। अभी तो ठीक है, कहकर बचाव टालना समझदारी नहीं है।
0: अब सवाल जो कई परिवार पूछते हैं, क्या सभी को एक जैसा असर होता है? अगर किसी को हल्का बुखार हो जाए तो? टीकन देवी,
2: इंजेक्शन के बाद हल्की स्थानीय प्रतिक्रिया जैसे दर्द, लालपन, हल्का बुखार, ये कई टीकों में संभव होते हैं, लेकिन इन्हें स्थायी नुकसान या गंभीर खतरे की बराबर नहीं माना जा सकता। बड़ी बात यह है कि सुरक्षा निगरानी चलती रहती है और गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं। हमें संतुलित दृष्टि रखनी होगी, हल्की अस्थायी प्रक्रिया बनाम लंबे समय की सुरक्षा।
1: अब मुझे लग रहा है कि हमें कितनी सारी बातों को बहस, किसी ने कहा कि आधार पर सच मान लिया।
2: यही तो होता है, और खासकर लड़की के शरीर से जुड़ी बातें। हमारे समाज में लड़की के भविष्य को इतना जोखिम का मैदान मान लिया गया है कि कोई भी बातें सीधे उस पर असर डालती है। पर हमें ये पूछना चाहिए, जो लोग डर फैला रहे हैं, क्या उनके पास प्रमाण है? क्या वे डॉक्टर हैं? क्या वे आधिकारिक स्रोत बता रहे हैं? क्या उनका दावा बड़े अध्ययन से समर्थित है? अगर नहीं तो उनकी शब्द क्यों हमारे घर का फैसला करे?
0: चलिए अब एक छोटा सा मिथक बेनाम तथ्य खंड करते हैं। मिथक, HPV वैक्सीन से पीरियड बिगड़ते हैं। तथ्य, उपलब्ध आधारिक सामग्री कहती है कि इसका मासिक धर्म पर असर नहीं होता, पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। मिथक, HPV वैक्सीन से बांझपन होता है। तथ्य, आधारिक जागरूकता सामग्री इसे अफवाह बताती है, ऐसा कोई प्रभाव नहीं बताया गया है। गवाही में ऐसी महिलाएं भी सामने आई हैं जिन्होंने सालों पहले वैक्सीन ली और आज भी माँ हैं। मिथक, अभी छोटी है, बाद में देखेंगे। तथ्य, समय पर सुरक्षा का ही महत्व है। 14 साल की लड़की के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त उपलब्धता इसी सोच पर आधारित है। मिथक, मुफ्त है तो भरोसे के लायक नहीं। तथ्य, मुफ्त होना इसकी कमतर होना नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सभी के लिए उपलब्ध होना है।
1: जब आप ऐसे एक एक करके बताते है ना, तो बात बैठती है, नहीं तो घर में सब उथल पुथल हो जाता है।
2: इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, मुद्दों को टुकड़ों में समझो, एक झूठ को एक सच से काटो, तभी मन साफ होगा।
1: अच्छा, अगर मेरी बेटी खुद पूछे, अम्मा यह टीका मुझे क्यों लेना चाहिए, तो मैं क्या कहूँ?
2: ना, क्योंकि कुछ बीमारियों से बचाव पहले ही किया जा सकता है, पर टीका तुम्हें भविष्य में एक गंभीर बीमारी के जोखिम से बचाने का तरीका है। और अगर वह पूछे क्या इससे मेरे पीरियड्स पर असर होगा, तो कहो नहीं, डॉक्टर और सरकारी जानकारी यही कहती है कि ऐसा नहीं होता। अगर वह पूछे क्या मैं इससे आगे चलकर माँ भी नहीं बन पाऊंगी, तो कहो यह अफवाह झूठी है।
0: यह भी ध्यान रहे कि बच्चियों से बात करते समय भाषा डराने वाली नहीं, भरोसा देने वाली हो। उन्हें यह महसूस हो कि उनके शरीर के बारे में फैसला उनसे छुपाकर नहीं, समझाकर लिया जा रहा है।
1: हमारे यहाँ तो कई बार बच्चे पूछा भी जाता है, बस बड़े लोग आपस में तय कर लेते हैं
2: और फिर बच्ची डर जाती है। इसलिए संवाद जरूरी है, बच्ची को समझाओ कि यह सुरक्षा का कदम है, उसे अधिकार है पूछने का कि यह किस लिए है, यह भी सेहत शिक्षा का हिस्सा है।
0: और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, स्वास्थ्य लोकतंत्र होना चाहिए, विशेषकर स्वास्थ्य लोकतांत्रिक होना चाहिए, विशेषकर लड़कियों और महिलाओं के मामले में। जानकारी ऊपर से थोप दी जाए और सवाल की जगह ना हो तो भरोसा नहीं बनता।
1: टीकन, कल रात मैंने अपनी बेटी से खुलकर बात की। पहले तो वह हंस रही थी, कहती है, अम्मा आप तो हर बात पर डर जाती हो। फिर मैंने उसे कहा कि डरती हूँ क्योंकि दुनिया आसान नहीं है, लेकिन फिर मैंने यह भी कहा कि अब मैं सही जानकारी लेकर चलूंगी। वह बोली, ठीक है अम्मा, हम साथ चलेंगे।
2: देखा, जब माँ खुलकर बात करती है तो बच्ची भी मजबूत होती है, डर आधा हो जाता।
1: और मैं यह भी सोच रही हूँ कि मेरी ननद की बेटी के घर भी यही बात लेकर जानी चाहिए। वहाँ तो पीरियड्स का नाम लेते ही लोग भोहे चढ़ा लेते हैं।
2: तो यही बदलाव है, शर्म की जगह समझ। स्वास्थ्य की बातें जितनी खुलकर होंगी, अफवाह उतनी कम चलेगी।
0: अब अंत से पहले एक और उपयोगी बात, अगर परिवार में किसी महिला की उम्र 30 वर्ष से ऊपर है तो नियमित सर्वाइकल जांच के बारे में भी जानकारी लेना आवश्यक है। आधारिक जन संदेशों में यह भी कहा गया है कि नियमित स्क्रीनिंग समय पर पहचाने और सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यानी एक तरफा किशोरियों के लिए वैक्सीन, दूसरी तरफा वैश्विक महिलाओं के लिए जांच, दोनों साथ चलने चाहिए।
1: यह बात मेरे मन में गहरी बैठ गई। हम अपनी बेटी के लिए टीका सोच रहे हैं, पर अपनी जांच के बारे में कभी नहीं सोचा।
2: यही तो, महिलाएं अक्सर सबकी चिंता करती हैं, अपनी नहीं। अब इस कहानी को उलटना है, अपनी देह की जिम्मेदारी लेना शर्म नहीं समझदारी है। और मेरी तरफ से जिस बात पर झूठ सबसे ज्यादा फैलता है उसी पर सबसे साफ बोलना चाहिए। शरीर, पीरियड्स, फर्टिलिटी, ये सब शर्म की नहीं स्वास्थ्य की बातें हैं।
1: और मेरी तरफ से अब मैं अगर किसी को पीरियड्स बिगड़े या बांझपन आ जाए कहते सुनूंगी तो डरूंगी नहीं, पूछूंगी, तुम्हारे पास प्रमाण क्या है?
0: यही है सही दिशा। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मुफ्त उपलब्धता सरकारी केंद्र, यूविन और बड़ी महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग की अहमियत। यानी सिर्फ टीका नहीं, पूरी सुरक्षा श्रृंखला। तब तक याद रखिए, अफवाहें तेज होती हैं पर सच टिकाऊ होता है। और श्रोताओं, यही है एक सामाजिक परत और समझनी चाहिए। कई बार लड़कियों के स्वास्थ्य से जुड़े फैसलों में लड़की की आवाज सबसे कम होती है, लेकिन डर सबसे ज्यादा उसी पर थोपा जाता है। उसे कहा जाता है, ये मत पूछो, ये बात बाहर मत करना, ये शरीर की बात है, चुप रहो। ऐसी चुप्पी में सही स्वास्थ्य शा पनप ही नहीं सकती।
2: बिल्कुल, और जब चुप्पी होती है तब पड़ोस, रिश्तेदार, मोबाइल वीडियो, यही गुरु बन जाते हैं। जबकि गुरु डॉक्टर होना चाहिए, आशा होना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, प्रमाणित जानकारी होनी चाहिए।
1: अब मैं समझ रही हूँ कि सवाल पूछना भी सेहत का हिस्सा है। पहले लगता था ज्यादा पूछना मतलब झगड़ालू होना, अब लग रहा है ना पूछना ही बड़ी गलती है।
2: और खासकर बेटियों के मामले में, हम उन्हें पढ़ाई के लिए कहते हैं, समझदार बनने को कहते हैं, पर शरीर और स्वास्थ्य पर सवाल पूछने का हक नहीं देते। यह दोहरा व्यवहार है। अगर हम सच में चाहते हैं कि बेटियां मजबूत हों तो उन्हें जानकारी भी देनी होगी।
0: यह बिंदु नीति और समाज दोनों के स्तर पर महत्वपूर्ण है। किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता सिर्फ उपलब्धता पर नहीं, सामाजिक स्वीकृति और भरोसे पर भी निर्भर करती है। और भरोसा तभी बनता है जब संवाद संपूर्ण हो।
1: एक बात और मैंने देखा है, जब भी महिलाओं की बीमारी की बात होती है लोग उसे धीरे से बोलते हैं, जैसे कोई पूछने वाली चीज हो। कैंसर शब्द आते ही लोग नजरें फेर लेते हैं।
2: हाँ, और यही कारण है कि देर होती है। डर, शर्म और चुप्पी बीमारी को बढ़ाते हैं, इसलिए सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी पर खुलकर बात करना जरूरी है, क्योंकि यह रोकी जा सकती है और महिलाओं की जान बचाई जा सकती है।
0: और यह सिर्फ व्यक्तिगत मामला नहीं, परिवार और समुदाय का भी मामला है। जब एक महिला बीमार होती है तो उसका असर पूरे घर पर पड़ता है। कमाई, बच्चे की देखभाल, मानसिक बोझ, इलाज का खर्च, सर। इसीलिए रोकथाम को महिलाओं का निजी मुद्दा समझना गलत है।
1: सही कहा, अगर माँ बीमार पड़े तो पूरा घर हिल जाता है। फिर भी हम माँ की सेहत को आखिर में रखते हैं।
2: इसलिए मैं कहती हूँ कि बेटी की सुरक्षा, माँ की जांच और घर की समझ तीनों साथ चले, तभी असली लाभ है, तभी सेहत सही लाभ कई सच में घर तक पहुँचे।
0: अब एक छोटा सा अभ्यास, मान लीजिए आपसे कहें, मैंने सुना है HPV टीका लगाने के बाद लड़की माँ नहीं बन सकी, आपका क्या जवाब होगा? पहला, एक घटना की कहानी विज्ञान नहीं होती। दूसरा, आधारिक सामग्री बांझपन के दावे को मिथक बताती है। तीसरा, ऐसी महिलाएं सामने आई हैं जिन्होंने साल में पहली बार टीका लिया है और आज माँ हैं। चौथा, स्वास्थ्य निर्णय डॉक्टर से पूछकर ही लें। यह चार स्तरीय जवाब हर श्रोता अपने पास रख सकता है। आज की मुख्य बातें, HPV वैक्सीन से पीरियड प्रभावित नहीं होते। दो, पीरियड्स के दौरान भी टीका सुरक्षित है। तीन, यह बांझपन का कारण नहीं बनती। चार, यह दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। पाँच, यह सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मुफ्त उपलब्ध है, खासकर 14 साल की लड़कियों के लिए। और छह, डर को दबाइए मत, पर उसका जवाब फॉरवर्ड से मत ढूंढिए। सात, बेटियों से खुलकर बात कीजिए, उन्हें जानकारी दीजिए, सिर्फ आदेश नहीं।
1: अब लग रहा है कि मैं भी ठीक से जवाब दे पाऊंगी। पहले सब घबरा जाती थी।
2: और यही आत्मविश्वास चाहिए। जानकारी का मतलब सिर्फ खुद समझना नहीं, जरूरत पड़े तो दूसरों को समझाना भी है। और हम सब मिलकर आज ही शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
2: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएं और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम कर अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
2: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
3: सेहत सही तो लाभ कई।
0: तो श्रोताओं, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। फिलहाल इस प्रोग्राम से अब लेता हूँ मैं जाने की इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और मोड़ पर एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सेहत सही तो लाभ कई। नमस्कार श्रोताओं।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं आपके साथ आपके दोस्त आरजे खुशी। आज तो हमारे गांव में कुछ अलग ही माहौल है। सुबह सुबह इतनी भीड़ और ये लाउड स्पीकर आवाज, सभी लोग ध्यान दीजिए। आज प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर है। अरे भाई, ये HPV क्या होता है और इतनी भीड़ क्यों लगी है? अरे सेहतिया सिंह जी, जरा इधर आइए, आप तो हमेशा सही जानकारी देते हैं, जरा बताइएगा ये क्या चल रहा है?
1: आरजे साहिबा, आज बड़ा अच्छा दिन है गांव के लिए और भी हमारी बेटियों के लिए भी। आज जो कैंप लगा है ना, ये कोई साधारण टीकाकरण कैंप नहीं है, ये आगे चलकर एक बहुत बड़ी बीमारी से बचाने वाला टीका है। पर HPV के बारे में तो विस्तार से जानने के लिए आपको पहले कहानी बताता हूँ। यहाँ एक गांव था, गांव का नाम था बड़की टोला। सुबह का समय था, सूरज अभी पूरी तरीके से निकला भी नहीं था, लेकिन सावित्री देवी का दिन कब का शुरू हो चुका था। पहले चूल्हा जलाना, फिर पानी भरना, बच्चों को तैयार करना और उसके बाद खेत का काम भी अलग। सावित्री देवी एक 12 साल की बेटी थी, जो हम कह सकते हैं गुड़िया, गांव में गुड़िया कहा जाता। पढ़ने में तेज लेकिन थोड़ी शर्म। सावित्री चाहती थी कि उसकी बेटी बहुत कुछ बन जाए बड़े होकर, जिससे उसकी जिंदगी और बेहतर हो जाए। एक दिन गांव में आशा दीदी आई और उन्होंने बताया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर लगने वाला है। उन्होंने समझाया कि टीका लड़कियों को आगे चलकर एक खतरनाक बीमारी सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। सावित्री देवी पहले तो थोड़ी हिचकिचाई, फिर उन्होंने अपने पति रामपाल से बात। रामपाल पहले तो बोले, अरे हमारी बिटिया तो बिल्कुल ठीक है ना, तो क्या जरूरत पड़ी है इस टीके की? लेकिन आशा दीदी ने धैर्य से समझाया, भैया यही सही समय है, यह टीका बीमारी होने के बाद नहीं पहले काम करता है, अगर अभी लगवा दिया तो आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचाव हो सकता है। रामपाल कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने आसपास के लोगों से भी पूछा, लेकिन किसी के पास पूरी जानकारी नहीं थी, बस अफवाहें थी जो सुनी सुनाई। तभी एक दिन उन्होंने रेडियो पर एक कार्यक्रम सुना, जिसमें मेरे जैसे ही एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता समझा रहे थे कि टीका सुरक्षित है और क्यों जरूरी है। उस दिन के बाद रामलाल का नजरिया ही बदल गया। उन्होंने कहा, अगर एक छोटा सा टीका मेरी बेटी की जिंदगी को बीमारियों से बचा सकता है तो हम पीछे क्यों रहे। अगले ही दिन सावित्री और रामपाल अपनी बेटी गुड़िया को लेकर कैंप पहुंचे। वहां कई और लड़कियां भी आई हुई थी। शुरुआत में गुड़िया थोड़ी सी डरी हुई थी, लेकिन जब उसने देखा कि बाकी लड़कियां तो बिल्कुल हिम्मत से टीका लगवा रही हैं, उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा मैं भी लगवाऊंगी। टीका लगने के बाद बस थोड़ा सा दर्द हुआ, लेकिन 2 दिन में सब ठीक हो गया। धीरे धीरे गांव में और भी लोग इससे प्रेरित हुए। सावित्री देवी अब खुद दूसरी महिलाओं को समझाने लगी। रामपाल भी पंचायत में इस विषय पर बात करने लगे। कुछ महीने बाद एक बदलाव साफ दिखने लगा, ज्यादा लड़कियां टीका लगवा रही थी, लोग अफवाहों की जगह सही जानकारी पर भरोसा करने लगे, और सबसे बड़ी बात, अब बेटियों की सेहत को लेकर गंभीरता बढ़ गई। सावित्री देवी अक्सर कहती थी, पहले हम सोचते थे ये सब शहरों की बातें हैं, लेकिन अब समझ आया ये हमारे

0: आर्य साहिबा
1: जी, सिहतिया जी, अब तो आप थोड़ा डरा ही रहे हैं।
0: डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए कह रहा हूँ। इस बीमारी की सबसे बड़ी चालाकी यह है कि शुरू शुरू में इसका कोई लक्षण नहीं होता, ना कोई दर्द, ना बुखार, ना कोई ऐसी परेशानी जिससे लगे कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है।
1: मतलब इंसान को पता ही नहीं चलता।
0: बिल्कुल, और यही वजह है कि जब तक लोगों को इसका पता चलता है तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी होती है, बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी होती है।
1: अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत खतरनाक बात है। तो फिर इससे बचने का कोई तरीका तो होगा ना?
0: यही अच्छी खबर है। जहाँ एक तरफ इसका इलाज मुश्किल हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ इसका बचाव बहुत आसान है।
1: सच में? कैसे?
0: HPV वैक्सीन से, एक छोटा सा टीका जो आगे चलकर आपको बड़ी बीमारी से बचा सकता है।
1: जरा इसे और आसान करके समझाइए ना, ताकि हमारे गांव के लोग भी अच्छे से समझ सकें।
0: चलो आप कहते तो समझा देता हूँ। ठीक, एक उदाहरण से समझिए। जब हम खेत में फसल लगाते हैं तो क्या करते हैं?
1: चारों तरफ बाड़ लगाते हैं ताकि जानवर अंदर ना घुसे।
0: बिल्कुल सही कहा, ताकि फसल सुरक्षित रहे। ठीक वैसे ही ये वैक्सीन हमारे शरीर के लिए सुरक्षा की बाड़ की तरह काम करता है। ये वायरस को अंदर आकर नुकसान करने से रोकता है।
1: ओह, मतलब ये बीमारी को शुरू होने से पहले ही रोक देता है।
0: हाँ बिल्कुल सही समझा आपने, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये कोई इलाज नहीं, यही बीमारी को जाने के बाद काम आए। ये तो पहले से ही सुरक्षा देता है ताकि बीमारी हो ही ना पाए।
1: तो फिर ये टीका किसे लगवाना चाहिए? कोई खास उम्र होती है?
0: हाँ, इसकी सबसे ज्यादा फायदा तो तब होता है जब इसे सही उम्र में लगवाया जाए। आमतौर पर 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए ये टीका लगवाना सबसे अच्छा माना जाता है।
1: और अगर कोई इससे बड़ी उम्र का हो?
0: तो भी कोई चिंता की बात तो नहीं है, ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेकर बाद में भी ये टीका लगवाया जा सकता है, लेकिन जितनी जल्दी लग जाए उतना बेहतर है।
1: सिहतिया जी, एक बात मेरे मन में आ रही है, ये तो लड़कियों का टीका है, तो इसमें पुरुषों की क्या भूमिका होती है?
0: यही तो सबसे अहम बात है। महिलाओं की सेहत सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं, इसमें पूरे परिवार की, खासकर पुरुषों की उतनी ही जिम्मेदारी होती है।
1: जरा विस्तार से बताइएगा।
0: जरूर, देखिए, एक पिता की जिम्मेदारी है कि वे अपनी बेटी को समय पर सही जानकारी दे और उसका टीकाकरण करवाए। एक भाई का कर्तव्य है कि वो अपनी बहन को समझाए, उसे डर या अफवाहों से दूर रखे। और एक पति की फर्ज है कि वह अपनी पत्नी की सेहत का ख्याल रखे, उसे हर जरूरी सुविधाओं और सहयोग दे।
1: सही कहा आपने।
0: अगर घर का पुरुष ही पीछे हट जाएगा या ध्यान नहीं देगा, आधी लड़ाई वह हारेगी। इसलिए पुरुषों की भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: मतलब ये सिर्फ महिला स्वास्थ्य का मामला नहीं है?
0: बिल्कुल सही आर्य साहिबा, ये पूरे परिवार का मामला है। जब एक महिला स्वस्थ रहती है, पूरा परिवार स्वस्थ रहता है, और जब परिवार स्वस्थ होता है तभी गांव मजबूत बनता है।
1: लेकिन सिहतिया जी, एक बात है, गांव में तो तरह तरह की बातें चलती रहती हैं। कोई कहता है कि ये टीका लगवाने से लड़कियां कमजोर हो जाती हैं, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आगे चलकर माँ बनने में दिक्कत होती है।
0: देखिए आर्य साहिबा, यही सबसे बड़ी समस्या है, अधूरी और गलत जानकारी। ये सब जो बातें आप सुन रही हैं ना, ये सच नहीं है, बल्कि क्या है, अफवाहें।
1: मतलब इसमें कोई सच्चाई नहीं है?
0: बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको एक एक करके, चलिए साफ साफ करके बता देता हूँ। पहली बात, लोग कहते हैं कि टीका लगवाने से कमजोरी आ जाती है, जबकि सच्चाई तो यह है कि टीका लगवाने के बाद बस हल्का सा बुखार आता है या हाथ में थोड़ा सा दर्द हो सकता है, क्योंकि मात्र 1 से 2 दिन में आप अपने आप ठीक हो जाएंगे, इसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
1: अच्छा, और जो लोग कहते हैं कि इससे आगे चलकर बच्चा पैदा करने में दिक्कत होती है,
0: यह भी पूरी तरीके से गलत। इस वैक्सीन में मां बनने की क्षमता से कोई लेना देना ही नहीं है, ये सिर्फ एक वायरस से बचाने के लिए होता है और कुछ भी नहीं।
1: और एक बात जो अक्सर लोग कहते हैं, अगर लड़की बिल्कुल ठीक है तो टीका लगवाने की क्या जरूरत है?
0: यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। देखिए, ये टीका बीमारी होने के बाद नहीं बल्कि बीमारी होने से पहले लगवाना है, और तभी ये काम करता है। अगर लड़की अभी स्वस्थ है तो वही सबसे सही समय है टीका लगवाने का। जैसे हम बारिश आने से पहले छाता रखते हैं ना, वैसे ये पहले सुरक्षा देता है। जरा सोचिए आरजे साहिबा, अगर एक छोटा सा टीका आपकी बेटी को एक बड़ी और जानलेवा बीमारी से बचा सकता है, तो क्या हमें इंतजार करना चाहिए?
1: बिल्कुल नहीं, जब बचाव इतना आसान है तो देर क्यों करें? सिहतिया जी, एक बात बताइए, क्या हमारे गांव में भी लोग इसे लगवा रहे हैं?
0: हाँ, धीरे धीरे लोग समझने तो लगे हैं और आगे भी आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कई लोग डर और अफवाहों के कारण पीछे हटे जाते हैं। यही वजह है कि आज जैसे कैंप बहुत जरूरी है, ताकि सही जानकारी हर घर तक पहुंचे। जहां जानकारी नहीं पहुंचती, वहां ऐसे कुछ रानी जैसी केस हो जाते हैं। उसी इलाके के पास एक गांव था, छोटा पुरवा, यही रहती थी कमला देवी और उनकी बेटी रानी। रानी भी गुड़िया की उम्र की ही थी, हसमुख, चंचल और पढ़ाई में बहुत अच्छी।

0: जब गांव में एचपीवी टीकाकरण की बात आई तो आशा दीदी यहां भी आई थी और लोगों को समझाने लगी। उन्होंने कमला देवी से भी कहा, बहन अपनी बेटी को टीका जरूर लगवा देना। लेकिन कमला देवी के घर का माहौल थोड़ा अलग था। उनके पति महेंद्र इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने साफ मना कर दिया, ये सब नई नई बातें हैं, हमारे जमाने में कौन सा टीका लगता था और हम तो ठीक हैं। कमला देवी भी डर गई। गांव में कुछ लोगों ने और बातें फैलाई, इससे लड़की कमजोर हो जाएगी, आघर चलकर बच्चा नहीं होगा। इन अफवाहों के बीच सच की आवाज वहीं दब गई। रानी ने एक दिन अपनी माँ से पूछा, अम्मा मेरी सहेली गुड़िया टीका लगवाने गई थी, मैं क्यों नहीं जा सकती? कमला देवी के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बस इतना कहा, बेटी तुम्हारे बाबूजी मना कर रहे हैं। समय बीतता गया, बात वहीं रह गई। सालों बाद जब रानी बड़ी हुई, शादी हुई और एक दिन उसे बार बार कमजोरी असहजता महसूस होने लगी। शुरू में सबसे इसे सामान्य समझा, लेकिन जब हालत बिगड़ने लगी तो शहर के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया उसने पूरे परिवार को हिला दिया, यह सर्वाइकल कैंसर का मामला है और अब यह काफी आगे बढ़ चुका है। कमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें वही दिन याद आया जब आशा दीदी ने समझाया था, जब रानी ने खुद पूछा था। महेंद्र भी चुप हो गए, अपनी आंखों में पछतावा सिर्फ साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीमे से पूछा, वो अगर उस दिन हमने टीका लगवा दिया होता तो शायद आज ये दिन देखना ना पड़ता। इलाज शुरू हुआ लेकिन अब रास्ता मुश्किल था। बार बार अस्पताल के चक्कर काटना, बढ़ता खर्च, परिवार की चिंता, दर्द, रानी की बीमारियों से सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं पूरे परिवार को झिंझोड़ दिया था। आज कमला देवी हर घर जाकर एक ही बात कहती है, अफवाहों पर मत जाओ, हमने अपनी गलती से बहुत बड़ा नुकसान देखा है, तुम ऐसा कभी मत करना। उनकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन आवाज में सिर्फ एक विनती, अपनी बेटियों को बचा लो समय रहते।
1: तो जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए?
0: इन्हें इंतजार नहीं करना चाहिए, आज ही अपनी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं, आशा दीदी से बात करें और अपनी बेटियों का नाम टीकाकरण के लिए दर्ज करवाएं। और सबसे जरूरी बात, जो सही जानकारी आपने आज सुनी है उसे ही दूसरों तक पहुंचाएं, अफवाहों को नहीं सच्चाई फैलाएं।
1: तो दोस्तों आज हमने जाना कि एचपीवी क्या है, ये कैसे एक गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है और एक छोटा सा टीका कैसे हमें बड़ी परेशानी से बचा सकता है।
0: और याद रखिए, महिलाओं की सेहत सिर्फ उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है और सही समय पर लिया गया एक छोटा सा फैसला जिंदगी भर का बड़ा बदलाव ला सकता है।
1: छोटी सी तैयारी बड़ी बीमारी से बचाव,
0: बेटी का टीका परिवार का भविष्य सुरक्षित बनाए।
1: तो चलिए जानने से पहले लेते हैं सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचाया जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए विषय और कुछ अलग जानकारी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।

0: हेलो, दिस साइड आर्जेरीना, आई एम फ्रॉम मुरादाबाद 89.6। और श्रोताओं, आज भी आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूं मैं, यानी कि HPV टीकाकरण लगवाना, यानी कि टीका लगवाना हमारे लिए क्यों जरूरी है और ये आगे चलकर हमें किन किन बीमारियों से बचा सकता है। इसी टॉपिक पर हम बात करने के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आए हुए हैं, तो मैम से मैं जानना चाहूंगी, आप ही अपने बारे में बताइए।
1: बिल्कुल, हेलो रीना जी
0: मैम,
1: और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मैं डॉक्टर सोनम रस्तोगी हूँ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जिला महिला अस्पताल मुरादाबाद।
0: तो मैम, आज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि HPV टीकाकरण है वो लगवाना क्यों जरूरी है।
1: HPV टीकाकरण बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत सारे कैंसर्स होते हैं, जैसे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है जिसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, और जो प्राइवेट पार्ट है जननांग में कुछ वार्ड्स भी होते हैं, कैंसर के अलावा भी कुछ चीजें होती हैं, इन सबसे बचाव करता है। और इसका जो एफिकेसी है वो 90% तक है, अगर ये सही उम्र में लगवा लिए गए, सही डोज में, सही उम्र में लगवा लिए गए तो आगे चल के इससे बहुत बचाव हो सकता है। और इंडिया के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इंडिया में सर्वाइकल कैंसर से मृत्यु बहुत ज्यादा होती है, इसका बर्डन हमारे देश में बहुत ज्यादा है।
0: तो मैम, इसकी कोई एज लिमिट होती है?
1: वैक्सीनेशन के लिए 9 साल से 14 साल के उम्र की लड़कियां और लड़के,
0: मतलब लड़कों भी?
1: बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ ये सर्विक्स का ही कैंसर नहीं कॉज करता है, ये प्राइवेट पार्ट्स में वार्ड्स, जेनिटल वार्ड्स और ओरोफेरिंजियल कैंसर्स हैं, जैसे मुंह का, गले का, बहुत तरीके के और भी कैंसर्स हैं जो कॉज करता है, और वो लड़कियों में भी हो सकते हैं और लड़कों में भी हो सकते हैं। ये सब चीजें बहुत आगे चल के एज में पता चलती हैं, लेकिन उसके होने की शुरुआत पहले से ही हो जाती है, इसलिए 9 साल से 14 साल की उम्र के बीच में ये लगवा लिया जाए, जब तक बच्चे स्कूल गोइंग एज ग्रुप में हैं, स्कूल वाले में हैं, उनकी शादियां नहीं हुई हैं, अभी कोई किसी तरीके के फिजिकल कॉन्टेक्ट्स नहीं हुए हैं, उसी उम्र में ये लगवा लिए जाए तो आगे चल के एक बहुत बड़ी जानलेवा बीमारी से बचाव कर।
0: मैम, क्या 14 साल के बाद भी हम लगवा सकते हैं?
1: 14 साल के बाद भी लगवाए जा सकते हैं, जितनी उम्र बढ़ जाती है उतना उसका एफिकेसी थोड़ा सा कम हो जाता है, जब फिजिकल कॉन्टेक्ट हो जाते हैं उसके बाद एफिकेसी थोड़ी कम होने लगती है, इसलिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप जितना जल्दी से जल्दी लगवा लें उतना ज्यादा बेटर इसका रहेगा इफेक्ट।
0: तो मैम, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि HPV टीका सही एज में लगवाना क्यों जरूरी है और इसका असर जो बच्चों के ऊपर पड़ने वाला है उसका असर क्या होगा?
1: देखिए, वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ है, 9 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीन लगवाई जाती है, इसकी डोजेज होती है, कई सारे स्ट्रेन्स होते हैं, अभी भी आप देखिए गवर्नमेंट भी लगा रही है, प्राइवेट सेक्टर में भी इसका अवेलेबल है, 4 स्ट्रेन्स वाले वैक्सीन हैं, 9 स्ट्रेन्स वाले वैक्सीन है जो उनसे बचाव करते हैं, जो ये सब बीमारियां कॉज करते हैं, अगर कुछ 2 डोज में लगवाई जाती है।
0: अच्छा, 2 डोज,
1: हाँ, और अभी जो गवर्नमेंट लगा रही है वो 14 साल की सभी बच्चियों को लगा रही है, वो 1 डोज भी इफेक्टिव है, ये देखा गया है रिसर्च में, वो सिंगल डोज भी इफेक्टिव है, तो वैक्सीनेशन सेफ है। थोड़ा बहुत इंजेक्शन से जो किसी को दर्द हो गया ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन नॉर्मली वैक्सीनेशन से बहुत साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। आप ये देखें कि आगे चल के कितनी बड़ी जानलेवा बीमारी से बच रहे हैं, अगर सही उम्र में लगवा लिया गया तो 90% चांस खत्म हो जाएगा वो बीमारी होने का।
0: मैम, बहुत से घरों में भ्रांतियां भी है कि हम ये टीका नहीं लगवाएंगे, कभी लगवाने से कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो जाएगा, तो मैम कुछ ऐसा भी है क्या?
1: भ्रांतियां होती हैं लोगों को, जब भी कोई नई चीज लगती है लोग घबराते हैं, अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले कोविड आया था, उसके लिए भी बहुत लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया कि हमारे शरीर में कुछ असर ना हो जाए। तो देखिए, देश इतना आगे बढ़ गया है और विज्ञान जो है, टेक्नोलॉजी जो है, वो इतनी आगे बढ़ गई है, जितने भी वैक्सीन एडमिनिस्टर किए जाते हैं ये सब के ट्रायल्स होते हैं, बहुत फेजेस में ये वैक्सीन चेक की जाती है कि इनसे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, फिर बहुत सारे 4-5 स्टेजेस, फेज 1-2 बहुत सारे ऐसे ट्रायल्स होते हैं, वो जब सब फेजेस को वो वैक्सीन क्रॉस कर जाती है कि इससे कोई परेशानी नहीं हो रही है, तभी वो मार्केट में अवेलेबल होती है। और गवर्नमेंट, आप सोचिए, गवर्नमेंट अगर कोई चीज लगा रही है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिना जांच पड़ताल के कोई चीज किसी को भी लगा दी जा रही है।
0: जी, बिल्कुल।
1: वैक्सीन बिल्कुल सेफ है और वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए, इससे बिल्कुल मत डरिए। हाँ, कभी कभी कुछ ग्रुप्स में ये सोच होती है, वो इसलिए क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है, अभी नई चीजें उन लोगों को पता, जानकारी का माध्यम नहीं है, तो अपने करीबी आप गवर्नमेंट सेटअप्स में, प्राइवेट सेटअप्स में जहां भी जाना चाहें, अपने करीबी डॉक्टर्स से मिलिए, उनसे बात करिए, पूछिए, ये बिल्कुल सेफ है और आपके बच्चों को आगे आने वाले बहुत बड़े काल से ये बचाएंगे। शरीर में कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है, किसी कोई सोचे कि हमारे कहीं ऐसा ना हो कि सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी का जहाँ नाम आ जाता है लोग वैसे भी घबरा जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे चल के इनके बच्चे ना हो सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सेफ है और आप ये समझे कि आप लोगों को बचाने के लिए लगाया जा रहा है।
0: मैम हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या सिर्फ एक छोटा सा टीका आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों से हमें बचा सकता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, इसमें स्ट्रेन्स हैं, सिर्फ कैंसर नहीं, बाकी भी जितने सिर्फ सर्वाइकल कैंसर ही नहीं, सर्वाइकल कई लोग असल में इससे भी, सर्वाइकल गले की हड्डी को भी कहते हैं ना, तो कई लोग उससे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन सर्विक्स जो है वो बच्चेदानी के मुंह को भी कहा जाता है।
0: ओके,
1: तो ये बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है।
0: मुझे भी आज पता चला है।
1: अच्छा, तो ये बच्चे, ये वो गर्दन की हड्डी जो सर्वाइकल लोगों को गर्दन में दर्द हो जाता है, ये वो नहीं है, ये बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है। और बाकी ओरोफेरिंजियल कैंसर होते हैं जो मुंह में, तो क्योंकि एक ही कैंसर में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे लोगों को आगे चल के बहुत परेशानी होती है, इसलिए लगवाना चाहिए।
0: मैम गांव में यानी कि HPV टीके को लेकर अलग अलग भ्रांतियां होती है, जो जैसे कि मैंने आप सभी से पहले पूछा आपसे कि माता पिता चाहते कि ये टीके ना लगवाएं, कभी ऐसा ना हो कि आगे चल के कोई प्रॉब्लम हो जाए।
1: इसके लिए जो ANM दीदी लोग हैं, आशा लोग हैं, बहुत सारे लोग वहां जाते भी हैं, उन लोगों से अगर किसी को भी कोई डाउट है तो जाएं, उन लोगों से पूछे, जब वो लोग घर में आते हैं पूरा इन्फॉर्मेशन लें। अधूरा ज्ञान बहुत डेंजरस होता है, आपके बच्चों को कोई बड़ी प्रॉब्लम में भी डाल सकता है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं लगवाएंगे तो होगा ही होगा, लेकिन इसको प्राथमिकता इसलिए दी जा रही है क्योंकि जब ये हो जाता है तब ये जिस स्टेज में पता चलता है, अगर ये हो गया किसी को तो ये जिस स्टेज में पता चलता है उस स्टेज में कैंसर बहुत आगे बढ़ चुका होता है। उस स्टेज में जब हमको पता चला तो कई बार तो सर्जरी संभव होती है, लेकिन उसके बाद भी रेडिएशन है, कीमोथेरेपी है, दवाइयां लगवाई जाती है, लेकिन कई बार ये इतनी आगे स्टेज में पहुंच चुका होता है, इसके सिम्टम्स बहुत देर से आते हैं। तो जब तक इंसान को पता चलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, तब तक ये उसके शरीर में पूरा फैल चुका होता है। एक बार खून में आ गया या एक बार इसने आसपास के अंगों को उसमें ले लिया, जैसे हमारी आंतें हैं और यूरिनरी ब्लैडर है, आप बहुत सारी चीजें को, जैसे जैसे कैंसर बढ़ता है वो अपने आसपास के सारे टिश्यूज को ले लेता है। एक स्टेज में कैंसर ऐसे भी स्टेज में आ सकता है कि जब आप उसको ऑपरेट नहीं कर सकते, आप सर्जरी करके उसको निकाल नहीं सकते, सिर्फ आपको पता है कि ये मरीज जो है अब ये जाने वाला है, सिर्फ आप उसका दर्द कम करने के लिए उसको दवाई दे सकते हैं, लेकिन आप उसके जीवन को रोक नहीं पाएंगे। तो जब तक आपको ये, जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि जब हमें कोई परेशानी नहीं है तो हम क्यों लगवाएं,
0: कभी कभी ये भी लगता है उनको कि अभी तो यार बीमारी छोटा ही तो है, बाद में देखने,
1: लेकिन जब बाद में देख लेंगे वाली चीज है, उस स्टेज पे बहुत ज्यादा ये कैंसर बढ़ चुके होते हैं, तब पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। और उसमें दर्द भी होता है जब ये बहुत बढ़ जाता है, बहुत तरीके के शरीर में चेंजेस आते हैं और परिवार का वो सदस्य फिर जीवित ही नहीं रह पाता है। तो उससे अच्छा ये है कि आप अभी इसकी जानकारी लें और सही समय पे टीकाकरण करवाएं, जिससे आपके बच्चे आगे के लिए सुरक्षित रहे।
0: मैम एक छोटा सा मैसेज जो देना चाहे,
1: छोटा मैसेज, ये स्कूल्स में भी लगवाई गई है, स्कूल्स में भी मुझे पता चलता है कई बार कि माँ बाप जो है वो बच्चों को डर के मारे नहीं भेज रहे हैं। गवर्नमेंट ने बीच में इनिशिएटिव लिया था स्कूल्स में भी लगाने का, तो कई माँ बाप डर के कारण बच्चों को नहीं भेज रहे थे, लेकिन आप लोग जाइए, सब जगह लगवाइए, गवर्नमेंट सेटअप्स में जाइए, 14 साल की बच्चियों को लग रहा है, सिंगल डोज में भी लग रहा है और भी इसके डोजेज हैं, आप लोग लगवाइए, पता करिए इस चीज के बारे में। बिना पता हुए अधूरी नॉलेज से अपने बच्चों का फ्यूचर खतरे में ना डालें, क्योंकि अभी बच्चे इस स्टेज में नहीं है, 9 से 14 साल के बच्चे बहुत ही कम उम्र के बच्चे ही हैं, उनको तो अभी दुनिया का पता नहीं है, कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स लाइफ में आ सकती है नहीं पता है, लेकिन आप लोग को पता है, तो आप लोग की ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को आने वाले इस खतरे से बचाएं, उनको बताएं, आपस में आप लोग डिस्कस करिए, कंफ्यूजन है तो लोगों से बात करिए, डॉक्टर से इन्फॉर्मेशन सही तरीके से लीजिए, ये नहीं कि आपने जिससे पूछा है उसको भी नहीं पता है।
0: जी,
1: अपने करीबी डॉक्टर्स के पास जाइए, आशा है, आंगनवाड़ी है, ANM है, वो लोग आपको सही सेंटर्स पे लेके जाएंगे, वहां से सही इन्फॉर्मेशन लीजिए और फिर ये डिसीजन लीजिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जो इग्नोरेंस है, लापरवाही है, वो आगे चल के आपके बच्चे की जान को बहुत खतरे में डाल सकती है। तो आपके पास ये मौका है कि आप उस चीज से अपने बच्चों को बचाएं। सरकार भी इस चीज में पूरा ध्यान दे रही है, क्योंकि सब लोग यही चाहते हैं कि उस देश के नागरिक सुरक्षित रहें।
0: जी बिल्कुल मैम, जैसे कि आपने बोला सिंगल डोज, ठीक है, तो डबल डोज अगर लगवाते हैं तो गैप कितना होना चाहिए?
1: डबल डोज के भी अलग वैक्सीन का अलग टाइमिंग है, वो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अलग स्ट्रेन की है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे।
0: तो चलिए श्रोताओं,
1: अभी जो सरकार दे रही है वो सिंगल डोज में भी बहुत इफेक्टिव मानी गई है, इसीलिए वो सिंगल डोज में भी लाए गए, क्योंकि कई बार लोग सेकेंड डोज के लिए नहीं आ सकते हैं, तो आप लगवाइए इसको।
0: अच्छा लगा।
1: थैंक यू रीना जी।
0: और मैम की आवाज भैया जितनी अच्छी है ना, वो इतनी बहुत प्यारी
1: आवाज आपकी भी बहुत अच्छी है, और आपका रेडियो हम लोग सब सुनते हैं, और आपकी आवाज जब लोगों के पास, श्रोताओं के पास पहुंचेगी, तो मुझे लगता है अगर उनमें हम लोगों के कुछ बताने से या आप लोगों के कुछ इनिशिएटिव लेने से हमारे देश के लोगों में कुछ पॉजिटिव चीज आए, लोग अपना सेहत इंप्रूव कर पाए, तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस आप लोगों के आगे के एंडेवर्स के लिए।
0: थैंक यू सो मच मैम। और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता जो भाई गलत धारणाएं थी उनको आज क्लियर हो गई होंगी कि भैया HPV टीकाकरण है ना, वो लगवाना बहुत जरूरी है।
1: बाय मैम।
0: बाय बाय।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम आरजे आनंद है, आप सुन रहे हैं मुरादाबाद शहर का अपना रेडियो प्रोग्राम है, आपका अपना फेवरेट हेलो डॉक्टर। एक बार फिर से हम लेकर आ गए हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम जिसमें हम ढेर सारी बातें करते हैं और ऑफकोर्स यहाँ पर जो बातें होती है वो आपके काम से जुड़ी बातें होती है। और आज हमारे बीच में एक बार फिर से सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट से डॉक्टर अजीत कुमार जी मौजूद है स्टूडियो में हमारे साथ। आज हम किस विषय पे बात करने वाले हैं जरूर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं श्रोताओं, राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा जो है मनाया जा रहा है और ये 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, ये हम जानेंगे डॉक्टर अजीत जी से। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ। एक्चुअली नेत्रदान पखवाड़ा जो है 25 अगस्त से 8 सितंबर तक हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और ये पूरे देश भर में एक पखवाड़े के रूप में इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि हमारे यहाँ आई डोनेशन को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं और ये इसी कारण से डोनेशन उस तरीके से नहीं हो पाता है कि हम रिक्वायरमेंट को पूरा फुलफिल कर सके। सो हम लोग बहुत पीछे हैं अभी, इसीलिए हम पब्लिक को और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, जागरूक करने के लिए ये पखवाड़े के रूप में सेलिब्रेट करते हैं।
0: ओके, सो डॉक्टर साहब, मैं एक चीज सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि नेत्रदान बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, आखिर ये होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप विस्तार से बता दें, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है नेत्रदान का मतलब।
1: एक्चुअली नेत्रदान में हम लोग क्या करते हैं कि जो आंख के सामने की जो काली पुतली है जो दिखती है उसको बस हम निकालते हैं, वो भी मरने के बाद, मरने के 6 घंटे के अंदर में हम उसको निकालते हैं और जिनको जरूरत हो, जिनमें वैसी ब्लाइंडनेस हो जो उनकी वजह से हो, पुतली खराब होने की वजह से हो, जिसको रोका जा सकता है।
0: सो श्रोताओं, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और अगर आप भी हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या आपका कोई सवाल है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9837896896 पर, व्हाट्सएप के जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लोग अक्सर समझते हैं डॉक्टर साहब की नेत्रदान का मतलब पूरी आंख निकालकर किसी दूसरे व्यक्ति को लगा देना है, इसमें कितनी सच्चाई है?
1: एक्चुअली ऐसा नहीं है
0: जी,
1: नेत्रदान में बस हम जो कॉर्निया है, जो आंख के सामने जिसको पुतली बोलते हैं, काली पुतली है, बस वो निकालते हैं और इसमें पूरी आई नहीं निकाली जाती और इस कारण से चेहरे का डिसफिगरमेंट होने का भी रिस्क नहीं होता है, देखने में भी कॉस्मेटिकली ठीक लगता है। तो हम बस जो हमारे सामने की पारदर्शी परत जिसको पुतली बोलते हैं उसको बस निकालते हैं, पूरी आंख नहीं निकालते हैं।
0: तो श्रोताओं, आई होप आपने एक मिथ तो डेफिनेटली अपना दूर कर ही लिया होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, कौन कौन से व्यक्ति हैं जो नेत्रदान कर सकते हैं और उनकी कोई एज लिमिट भी होती है क्या इसमें?
1: नेत्रदान करने के लिए कोई उम्र निर्धारित नहीं है, इसको कोई भी व्यक्ति मरणोपरांत या मरने से पहले अपना प्लेज फॉर्म फिल करके या संकल्प पत्र लेकर के प्रत्यारोपण कर सकता है, कहीं भी कर सकता है,
0: कोई ऐसी एज लिमिट?
1: इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं।
0: ओके, ठीक है। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति जीवन में नेत्रदान करने का संकल्प लेता है तो उसके बाद उसे मतलब क्या करना चाहिए? उसकी फैमिली कई बार पैनिक हो जाती है कि ये नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ी होता है ना ऐसा, तो आप क्या कहना चाहेंगे?
1: एक्चुअली पैनिक होने की इसमें कोई बात नहीं है, इसमें ये सोचना चाहिए कि एक नेत्रदान है वो एक महान दान है, एक सामाजिक काम है, जिसके बाद हम ये सोचकर करें कि मरने के बाद भी मृत व्यक्ति की आंख दुनिया को देखेगी और इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। अपनी स्वेच्छा से बस आपको फोन करना है, आपको अस्पताल भी आने की जरूरत नहीं है, हमारी टीम आपके घर पर जाएगी और स्वतः वहां से आपकी कॉर्निया निकाल करके हम लोग लाते हैं, इसका कोई खर्च नहीं लगता है, कोई दिक्कत नहीं आती।
0: जी सर, अच्छा मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, इसमें कोई नंबर है या कोई कॉन्टैक्ट है जिससे कॉल करके परिवार या वो व्यक्ति पूरी जानकारी ले सके?
1: एक यूनिवर्सल टोल फ्री नंबर है 1919 जिस पर हम कॉल करके मृत व्यक्ति के घर वाले या जो भी है जो प्लेस करना चाहते हैं, जो डोनेट करना चाहते हैं, वो कॉल करके बता सकते हैं, बोल सकते हैं, उसमें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी टीम आती है, उनको काउंसिल करती है, समझाती है कि उसे जुड़े हुए क्या मिथ हैं, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत हो नहीं सकती, कोई दिक्कत होती नहीं उसमें
0: जी।
1: तो हम लोग आकर के खुद वो स्वतः हमारी टीम आकर के उसको ले जाती
0: है। अच्छा, तो इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी बनाया गया है
1: 1919,
0: इस पे भी आप श्रोताओं कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। सो डॉक्टर साहब से बातचीत हम जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटा सा यहाँ पर हम रुकते हैं ब्रेक के लिए, एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। आप ऐसे ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते।

0: ओहो, ना जाने ये खांसी कब पीछा छोड़ेगी।
1: अरे सिर्फ खांसी ही क्यों, अपनी सेहत से जुड़े सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए हर रोज दोपहर 12:30 FM मुरादाबाद का स्पेशल प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। यहाँ आपको मिलेंगे शहर के जाने माने अनुभवी डॉक्टर्स, तो सुनना मत भूलिए हर रोज दोपहर को 12:30 प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। एक बार फिर से वंस अगेन वेलकम बैक है, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 पे आरजे आनंद को, प्रोग्राम है हेलो डॉक्टर। और आज हम बात कर रहे हैं आई डोनेशन के बारे में, ढेर सारी बातें हो रही हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर के बीच राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है, और इसी पर बात करने के लिए आई इंस्टीट्यूट सीएल गुप्ता से हमारे बीच में मौजूद है डॉक्टर अजीत जी। सर एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में, और मेरा आपसे एक सवाल रहेगा सर, जो मृतक परिवार है अगर वो जब तक आपकी आई बैंक की टीम वहां पर नहीं पहुंचती है तो उनको कौन कौन सी सावधानियां जो है वो रखनी चाहिए?
2: एक्चुअली नेत्रदान से पूर्व जब तक हमारी टीम वहां नहीं पहुंचे तब तक मृत व्यक्ति के परिवार को कुछ कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं। जैसे उनका सर थोड़ा सा एलिवेट करके रखें, वो ऊंचा करके रखें, आंखें बंद करके गीली रुई आंखों के ऊपर रख दें, पंखा वो कूलर बंद कर दें।
1: डॉक्टर साहब मेरा एक और क्वेश्चन रहेगा, किन परिस्थितियों में जो है नेत्रदान नहीं किया जाता?
2: कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पर नेत्रदान नहीं किया जा सकता है, जैसे यदि किसी की डेथ सेप्सिस से हुई हो, एक्टिव सेप्सिस हो, या फिर रेबीज के मरीज हो, या फिर HIV HCV और हेपेटाइटिस बी से ग्रसित हो, या फिर कुछ और भी बीमारियां हैं जैसे क्रूसफेल्ड जैकब डिजीज या इंसेफेलाइटिस, उन सब यदि एक्टिव होता है उसमें हम आई डोनेशन नहीं।
1: ओके, अच्छा एक मेरा पर्सनल सवाल है, क्या नेत्रदान के लिए उनको हॉस्पिटल जाना होता है या आई बैंक की टीम घर आ जाती
2: है? आई बैंक की टीम खुद घर आ जाती है, जनरली उनको हॉस्पिटल आने की कोई जरूरत नहीं होती, हमारी टीम पूरी तरह से इक्विप्ड है, ट्रेंड है इस चीज के लिए।
1: ठीक है, ओके सर।
2: और इसमें एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये कोई एक बड़ा और लेंदी लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है, इसमें आराम से पब्लिक के बीच में और परिवार वालों के सामने ही आई डोनेशन आप कर सकते हैं।
1: ओके डॉक्टर साहब एक और सवाल है, मान लीजिए किसी परिवार ने संकल्प नहीं लिया है आई डोनेशन का बट वो उसका परिवार कराना चाहता है, तो क्या ये संभव है, पॉसिबल है?
2: हाँ, इस कंडीशन में ऐसा है ना कि फैमिली को जरूरी नहीं है कि पहले से ही संकल्प पत्र फिल हो या प्लेज लिए हो, उसमें बिना प्लेज फॉर्म फिल किए भी वो एट ए टाइम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमको डोनेशन कराना है, और ये डोनेशन कहीं भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि कोई किसी भी राज्य का हो, किसी दूसरे राज्य में नहीं कर सकता, ये कहीं भी करा।
1: सपोज मैंने अगर अपना संकल्प लिया मुरादाबाद में और मैं चला जाता हूँ राजस्थान में और खुदा ना खास्ता वहाँ डेथ होती है, तो क्या वहाँ हो सकता है, पॉसिबल है?
2: हाँ, आप वहाँ की टीम को या फिर 1919 जो टोल फ्री नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट करके आप वहाँ भी ये करा सकते हैं।
1: ठीक है, ओके डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक सवाल है मेरा, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जीते जी संकल्प नहीं लिया आई डोनेशन का, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसका परिवार अगर आई डोनेशन करना चाहे, नेत्रदान करना चाहे, तो क्या हो सकता है, पॉसिबल है?
2: एक्चुअली इस कंडीशन में जरूरी नहीं है कि संकल्प पत्र फिल किया जाए, प्लेज फॉर्म हो ही, उसके बिना भी वो डोनेशन कर सकते।
1: ठीक है, ओके, मतलब ये संभव है, पॉसिबल?
2: हाँ, ये संभव है।
1: ठीक है, सो श्रोताओं आज बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर अजीत जी मौजूद हैं स्टूडियो में और लगातार हम नेत्रदान पे बात कर रहे हैं, बहुत जरूरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। ढेर सारी बातचीत जो है वो लगातार जारी रहेगी, ब्रेक के बाद आएंगे, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, डॉक्टर अजीत जी से उनके बारे में बहुत सारी बातें पूछनी है, मुझे उन्होंने बहुत जानकारियां दी है लेकिन उनके बारे में तो हमने कुछ जाना ही नहीं है, तो जनता भी इंतजार कर रही है, एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं।
0: ओहो, ना जाने ये खांसी कब पीछा छोड़ेगी।
1: अरे सिर्फ खांसी ही क्यों, अपनी सेहत से जुड़े सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए हर रोज दोपहर 12:30 FM मुरादाबाद का स्पेशल प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। यहाँ आपको मिलेंगे शहर के जाने माने अनुभवी डॉक्टर्स, तो सुनना मत भूलिए हर रोज दोपहर को 12:30 प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: वेलकम बैक हियर वंस अगेन। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। प्रोग्राम है हेलो डॉक्टर और सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट से हमारे बीच में मौजूद है डॉक्टर अजीत जी और तमाम जानकारियां उन्होंने हमारे लिसनर्स को दी है, मुरादाबादीज को दी है। मुरादाबाद के बाहर भी लोग हमें सुनते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब मैं जरा आपसे पूछना चाहूंगा, आप अपने बारे में भी हमारी जनता को बताएं। आपने तमाम जानकारियां दी, तमाम सवालों के जवाब दिए, अब मैं थोड़ा सा आपसे पर्सनली जानना चाहता हूं, आप थोड़ा अपने बारे में हमारी जनता को बताएं।
1: तो मेरा नाम डॉक्टर अजीत कुमार है, मैं सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट में आई बैंक डायरेक्टर के रूप में हूं।
0: सो डॉक्टर साहब जाते जाते आप हमारी जनता को जो तमाम इस वक्त आपको देख रही है या रेडियो पे सुन रही है, उनको आप क्या संदेश देंगे, क्या एक अपील करना चाहेंगे हमारी मुरादाबाद की ऑडियंस?
1: तो आई डोनेशन में तो हमारा पूरा भारत देश ही बहुत पीछे है और मुरादाबाद की को देखा जाए तो यहाँ पर डोनेट करने वालों की संख्या काफी कम है और रिसीवर्स की संख्या बहुत ज्यादा है। तो हम यहाँ चाहते हैं मुरादाबाद की जनता से कि कृपया सामने आकर के प्लेस करें, प्लेस फॉर्म भरें और स्वेच्छा से आई डोनेशन।
0: बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। आप आए, आपने तमाम जानकारियां दी इस विषय पर, बहुत अच्छा लगा। और सर से बातचीत करके ये तो पता लगता है कि सर की जो लैंग्वेज वो बता रही है प्रॉपर मुरादाबाद से तो नहीं है। वेल कोई बात नहीं सर, अगर आप ये बताना चाहें तो बिल्कुल बता सकते हैं हमारी ऑडियंस की जो सुन रहे हैं, ये आप थोड़ा सा बता दीजिए आप कहां से हैं, थोड़ा सा मजा आ जाएगा।
1: मैं बेसिकली पटना बिहार का रहने वाला हूं और अपनी सुविधाएं सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट में पिछले 10-11 सालों से दे रहा हूं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस सर। वो एक कोई टैगलाइन है शायद, अगर मैंने बोल दी तो मेरे पे भारी पड़ जाएगा, इसलिए मैं यहां से निकलता हूं। आप कहीं मैं जाइए गाइस, ऐसे ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। जल्दी मिलेंगे एक और नए एक्सपर्ट के साथ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप ऐसे ही ट्यून इन रहिए एफएम मुरादाबाद पे। एंड कुछ भी अगर आप कहना चाहते हैं तो सोशली फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी ऑफिशियल एफएम मुरादाबाद 89.6 के नाम से। अभी के लिए थैंक यू सो मच, छोड़ के जा रहा हूं एक बहुत ही खूबसूरत गीत। आंखों से जुड़ी बातें हो रही थी तो एक आंखों वाला गाना तो बनता है। सो बस मिलते हैं जल्दी, बाय बाय, टेक केयर।

0: ओहो, ना जाने ये खांसी कब पीछा छोड़ेगी।
1: अरे सिर्फ खांसी ही क्यों, अपनी सेहत से जुड़े सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए हर रोज दोपहर 12:30 बजे FM मुरादाबाद का स्पेशल प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। यहाँ आपको मिलेंगे शहर के जाने माने अनुभवी डॉक्टर्स, तो सुनना मत भूलिए हर रोज दोपहर को 12:30 बजे प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552। मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: स्वागत अभिनंदन, नमस्कार, आप सुन रहे हैं मुरादाबाद शहर का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, और मैं हूं आपका दोस्त RJ आनंद। श्रोताओं, लेकर हाजिर हो गया हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है सोच बदलो, एक नई शुरुआत और एक नया सफर। जी हाँ श्रोताओं, एक और नए टॉपिक के साथ जुड़ गया हूँ आपके साथ इसी प्रोग्राम में, जहाँ पर हम ढेर सारी बातचीत करते हैं और आपको तमाम सारी जानकारियाँ भी देते हैं। आज के जमाने की सोच बदलना बहुत जरूरी है श्रोताओं। वेल, आज सोच बदलो में हमारा टॉपिक क्या होगा, आज किस विषय पर हम बात करने वाले हैं? देखिए, अगर इस विषय पर आपने अपनी सोच को नहीं बदला तो ये चीजें आपका फ्यूचर बदल सकती हैं श्रोताओं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे दोस्तों, आज का जमाना ऑनलाइन का है, नौकरियां भी ऑनलाइन मिल रही हैं, लेकिन इसी के साथ बढ़ रहा है एक छोटा सा ऑनलाइन जॉब फ्रॉड। जी हाँ, आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारा जो विषय है वो है ऑनलाइन जॉब फ्रॉड। ऑनलाइन जॉब फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं, कैसे इसके शिकार होते हैं लोग, और अगर जाने जाने में आप इसका शिकार हुए हैं तो कैसे आप इस चंगुल से बाहर निकल सकते हैं, इस ऑनलाइन जॉब फ्रॉड की शिकायत आप कहां दर्ज कर सकते हैं, तमाम सारी जानकारी आज आपको मिलेंगी इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है सोच बदलो। तो अभी तो सिर्फ सफर शुरू हुआ है, पिक्चर तो बाकी है मेरे दोस्त। चलिए श्रोताओं, लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, यानी कि एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। छोटा सा मतलब छोटा सा। इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद जल्द ही आपसे पुनः मिलेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे जिसका नाम है सोच बदलो प्रोग्राम, जो आप सुनते हैं आपके शहर के अपने रेडियो स्टेशन यानी कि अपने सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 FM पर। तो चलिए श्रोताओं, मिलते हैं जरा सी देर में एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपने बहुत ही खूबसूरत गीत सुना और इस गीत के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रोग्राम सोच बदलो में। आप सुन रहे हैं मुरादाबाद शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। जी हाँ श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं सोच बदलो प्रोग्राम में ऑनलाइन जॉब फ्रॉड जो हो जाता है अक्सर लोगों के साथ। इवन एक बार तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। एक छोटा सा वाक्य मैं जरूर साझा करूंगा, लेकिन उससे पहले कल की बात बताता हूँ। कल ही एक मुरादाबाद के एक लड़के का मुझे मैसेज आया। उसने मुझे व्हाट्सएप पर मतलब जो है मैसेज किया। उसने लिखा, वर्क फ्रॉम होम है, आप डेली 2000 रुपए कमा सकते हो। सोचिए, मुरादाबाद में भी ये चीज लोग कर रहे हैं, आप 2000 रुपए कमा सकते हो। उसने मुझे मतलब पूरी तरीके से ट्रस्ट दिलाया और धीरे धीरे उसने मेरे से एक रजिस्ट्रेशन फीस के लिए भी बोला। मतलब होता है ना कि जब आपको लोग कॉल करते हैं तो आपको ना मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। चलिए दिल्ली, एनसीआर या मुंबई जैसे शहरों में तो ये चीज बड़ी कॉमन है, लेकिन अगर मुरादाबाद में ऐसी चीज होती है तो यार थोड़ा सा मतलब दुख होता है कि अपने शहर में भी इस तरह की चीजें हो रही है। जी हाँ, खैर मैंने तो भाई साहब उसकी बातों में आके कोई भी ऑनलाइन फीस नहीं दी और ना ही मैंने कोई रजिस्ट्रेशन कराया, क्योंकि मुझे पता था ये सिर्फ और सिर्फ फ्रॉडबाजी है। क्योंकि देखिए, अगर कहीं पे भी कोई नौकरी होती है या जॉब के लिए आपको कॉल आता है तो एकदम से आपसे कोई फीस या पैसे नहीं मांगता। माना कि कुछ कंपनियों की पॉलिसी होती है, लेकिन आप तो खुद समझदार हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, तमाम तरह की जानकारियां आपके पास सुबह से शाम तक आपके फोन पर आती हैं। अब ऐसे में अगर आप ऑनलाइन जॉब इस फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं तो देखिए ये तो फिर बड़ी बेवकूफी हम कह सकते हैं हो जाएगी, है ना, आपके साथ हमारे साथ। तो हमें क्या करना है ना श्रोताओं, सावधान रहना है, सतर्क रहना है। कई बार ऐसा होता है कि जब ये ऑनलाइन वाले लोग आपको कॉल करते हैं ना, जॉब को ऑफर देते हैं, आप जाने अनजाने में आके पे भी कर देते हो, रजिस्ट्रेशन शुल्क भी दे देते हो कि शायद हमारी लाइफ चेंज हो जाए। क्योंकि देखिए, जॉब की तो हर किसी को जरूरत है, हर दूसरे व्यक्ति को काम की जरूरत है, और एक सही काम अगर उसे मिल जाए, उसके सपनों का काम मिल जाए, तो फिर उससे बेहतर क्या ही हो सकता है उसके लिए श्रोताओं। तो बस मैं वही कहना चाहता हूं कि आप इमोशनली होकर, आप ज्यादा ख्याली फुलाव ना पकाकर पहले उसकी डिटेल्स निकालें, उसके बारे में चेकआउट करें, इंटरनेट पर सारी चीजें आज की डेट में उपलब्ध हैं, अच्छे से पहले जांच पड़ताल करें, उसके बाद ही कोई शुल्क या कोई ऑनलाइन फीस आप जमा कराएं। अदरवाइज कोई भी पैसा अपनी मेहनत की कमाई का इधर उधर आप वेस्ट ना करें। इसी श्रृंखला में एक बड़ी प्यारी सी दोस्त है हमारी, उनको भी हम जोड़ेंगे। उनके साथ भी एक वाक्य रहा है ऑनलाइन फ्रॉड जॉब का, उनसे हम जरूर जानेंगे। लेकिन उससे पहले आइए, एक छोटा सा अंतराल का समय हो रहा है, एक छोटा सा ब्रेक। इस ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूं, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा, बस मैं यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
0: एक बार फिर से इस छोटे से अंतराल के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, सोच आप बदलोगे तो चीजें आपकी ऑटोमेटिकली बदल जाएंगी। वो कहते हैं ना, जब आपकी सोच बदलती है ना तो पूरी दुनिया आपकी बदल जाती है। और आज की जिंदगी को, आज की ये जो जनरेशन है, जो जेंजी है, उसका सोच का बदलना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम ना इतनी इंडिपेंडेंसी हमने बना ली है, हम हर चीज ऑनलाइन ही चाहते हैं, चाहे हमारा खान पान हो, हमारी शॉपिंग हो, हमारा मतलब चाहे जॉब का हो, कुछ भी व्हाटएवर, हर चीज में हमें लगता है कि यार सब कुछ ऑनलाइन हो जाए, सब कुछ ऑनलाइन। इस ऑनलाइन के चक्कर में ना जो स्कैमर होते हैं, जो फ्रॉडबाजी करने वाले, जो धोखाधड़ी करने वाले लोग होते हैं, उन्हें मौके का फायदा मिल जाता है। वो ये मौके का फायदा उठा के आप ही का बेवकूफ बना देते हैं, और कई बारी आप बेवकूफ बन जाते हैं, आप नहीं, इवन हम सब इस धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। आज इसी टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं सोच बदलो प्रोग्राम में। आप सुन रहे हैं मुरादाबाद शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। श्रोताओं, इसी बीच मैंने कहा था मैं आपको एक नई आवाज से रूबरू कराने वाला हूं, तो एक ऐसी लड़की जिसके साथ ये वाक्या हुआ था, आइए जरा सुनते हैं उनके साथ क्या हुआ ऑनलाइन फ्रॉड और वो कैसे फिर इससे बाहर निकल पाई, जरा जानते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। अपने बारे में थोड़ा बताएं हमारे सुनने वालों को, क्या नाम है आपका?
1: नमस्कार, मैं कुमकुम बोल रही हूँ मुरादाबाद से। मैं काशीराम की रहने वाली हूँ।
0: जी कुमकुम, आप मुझे बता रही थी कि आपके साथ भी कुछ ऑनलाइन धोखाधड़ी होते होते बची, शायद आप भी शिकार होने वाली थी इस चीज की, तो कैसे, मतलब बताएं थोड़ा।
1: जी, जब ये स्टडी पूरी हुई तो मैं भी ऑनलाइन जॉब्स देख रही थी कि हाँ, जब घर बैठे मैं भी कुछ कर सकूं, और हर बच्चा चाहता ही है कि कुछ कर सके।
0: बिल्कुल।
1: तो इसलिए हम जॉब देख रहे थे ऑनलाइन, मैं और मेरे घर सभी बच्चे। तो सडनली एक कॉल आता है, एक कॉल आता है, जैसे कि आप कहते हैं
0: के लिए आप बोल रहे हो।
1: जी, ऑनलाइन जॉब के लिए के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उसके बाद आपका स्टार्ट होगा। उसमें इंटरव्यू वगैरह के लिए कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए थे हमें। उन्होंने बोला कि आपकी सैलरी 30,000 से ऊपर रहेगी और आपका टाइमिंग खाली दिन में रहेगा 2 to 3 hours। तो मैं इसको सोच के बहुत एक्साइटेड थी, पूरा दिन बहुत एक्साइटेड रही। पर नेक्स्ट डे उनकी कॉल आती है कि आपको रजिस्ट्रेशन के थ्रू पहले 5,000 rupees देने पड़ेंगे।
0: मतलब आपको एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा।
1: हाँ, रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद आपको 5,000 rupees देने होंगे, जिसके बाद आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं भी ये सोच रही थी कि 30,000 मिलेंगे तो 5,000 में क्या चला जाएगा,
0: क्या चला जाएगा। हर आदमी सोचता है चलो ठीक है, जॉब तो मिल जाएगी।
1: हाँ, जॉब भी मिल जाएगी और कम टाइमिंग।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो उस हिसाब से ही मैं ये सोच रही थी कि अच्छा होगा, ये बहुत रहेगा। निखिल, मेरे भैया ने मुझे बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता। तेरी भाभी के पास भी कॉल आई थी ऐसे।
0: ओके।
1: पहले उन्होंने 5,000 लिए, उसके बाद 10,000 लिए।
0: अरे बाप रे, अच्छा।
1: उसके बाद जाके पता चला कि ये फेक कॉल्स हैं, इस तरह से नहीं होता ऑनलाइन। उनकी पहले पूरी जानकारी निकालनी चाहिए कि इंटरनेट में ये क्या चीज है, क्या नहीं है।
0: तो आपके साथ मतलब ये फ्रॉड होते होते
1: बच गया। मैंने
0: पेमेंट दे देती, अगर आपके भाई आपको नहीं बताते तो आप भी फंस जाती।
1: यस सर।
0: जी, तो श्रोताओं यही हमारा भी उद्देश्य है, आपको बताने का, समझाने का। देखिए कुमकुम तो बच गई है ना, मैं चाहता हूँ कि आप भी ऑनलाइन फ्रॉड जॉब से बचें, इन स्कैमर्स से बचें और अपनी सोच को बदलें। जब आपकी सोच बदलेगी तो आपके जो आसपास की चीजें हैं ना, वो ऑटोमेटिकली बदल जाएंगी। और सबसे जरूरी चीज ये है बॉस, सोच बदलना सिर्फ इसलिए भी नहीं कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो, सोच बदलना इसलिए भी जरूरी है। जब आपकी सोच बदलेगी, आपकी सोच बुलंद होगी, तो आप ना बहुत सारी चीजों से बच पाएंगे और स्मार्टली काम कर पाएंगे। श्रोताओं, आज हम इस में चर्चा कर रहे हैं ऑनलाइन जॉब फ्रॉड से कैसे बचे। कुमकुम ने अपनी स्टोरी शेयर करी, आप भी अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं हमें हमारे इंस्टाग्राम पे। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है FM मुरादाबाद 89.6 के नाम से। वहां पर आप हमें DM करके बता सकते हैं क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, अगर हुआ है तो फिर आप कैसे बाहर निकले हैं। फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक का समय है, छोटा सा अंतराल, उसके बाद पुनः लौटेंगे इसी प्रोग्राम में। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: छोटा सा सेशन, जरा इसको सुनते हैं, ये भी आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला है, तो आइए सुनते हैं।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। और आज मैं बात करने वाला हूँ आप सभी से एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद उस पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सभी को पता है कि हम स्कूलिंग और कॉलेज करने के बाद सबसे पहले तलाश करते हैं नौकरी, और जब हम नौकरी की तलाश में घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो शायद कभी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, वो होती है जॉब से रिलेटेड फ्रॉड। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी विषय पर। आज का विषय है फर्जी नौकरी का ऑफर, यानी नौकरी दिलाने के नाम पर होने वाली ऑनलाइन ठगी, नौकरी की तलाश और ठगों का जाल। चलिए आखिर वो कैसे जाल बिछाते हैं आपको बताते हैं। श्रोताओं, आज के समय में युवा नौकरी की तलाश में हैं, पढ़ाई पूरी कर चुके छात्र मौके ढूंढ रहे हैं, कई लोग बेहतर नौकरी की चाह में ऑनलाइन आवेदन करते हैं। इसी मजबूरी और उम्मीद का फायदा उठाकर साइबर ठग फर्जी नौकरी के ऑफर देते हैं। तो चलिए एक रेडियो ड्रामे के जरिए मैं आपको ये बात बताता हूँ। राहुल, मुझे ईमेल आया है, बिना इंटरव्यू के वर्क फ्रॉम होम जॉब दे रहे हैं और सैलरी 40,000 रूपए।
2: अरे इतनी जल्दी नौकरी, कुछ पूछताछ की?
1: कंपनी बड़ी लग रही है, बस 2,000 रूपए रजिस्ट्रेशन फीस मांग रहे हैं। लो फीस भर दी, ना तो कॉल आ रहा है ना ईमेल का जवाब, वेबसाइट भी नहीं खुल रही। राहुल समझ कि वह फर्जी नौकरी के ऑफर का शिकार हो चुकी है। फर्जी नौकरी का ऑफर क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। फर्जी नौकरी के ऑफर में ठग खुद को एचआर या रिक्रूटर बताते हैं, ईमेल, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया से संपर्क करते हैं, ज्यादा सैलरी और आसान काम का लालच देते हैं, फिर वे मांगते हैं रजिस्ट्रेशन फीस, ट्रेनिंग चार्जेस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सर्टिफिकेट की कॉपी, और बाद में गायब हो जाते हैं। फर्जी नौकरी के लाल संकेत, अगर नौकरी के ऑफर में ये बातें हो तो तुरंत सतर्क हो जाइए। बिना इंटरव्यू नौकरी, बहुत ज्यादा सैलरी, बहुत कम काम, नौकरी से पहले पैसे मांगना, अनजान ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, जल्दी ज्वाइन करने का दबाव। याद रखिए, असली कंपनियां नौकरी के लिए पैसे नहीं मांगती हैं। सुरक्षित नौकरी खोजने के चलिए मैं आप सभी को उपाय बताता हूँ। नौकरी के लिए आवेदन करते समय केवल भरोसेमंद जॉब पोर्टल का इस्तेमाल करें, कंपनी की वेबसाइट और लिंक्डइन प्रोफाइल देखें, रिक्रूटर की जानकारी वेरीफाई करें, किसी अनजान लिंक या दस्तावेज अपलोड ना करें, आधार, पैन, बैंक डिटेल साझा करने से बचें। छात्र और माता पिता के लिए मैं खास संदेश देना चाहूँगा। श्रोताओं, फर्जी नौकरी के ऑफर के शिकार अक्सर छात्र, नए ग्रेजुएट और बेरोजगार युवा होते हैं, इसलिए माता पिता बच्चों से बात करें, हर ऑफर को सच ना माने, शक हो तो किसी अनुभवी व्यक्ति से जरूर सलाह लें। अगर आप ठगी का शिकार हो जाते हैं तो, अगर आप फर्जी नौकरी के ऑफर का शिकार हो जाएं, तो तुरंत कॉल करें 1930 पर, शिकायत दर्ज करें www.cybercrime.government.in पर। जितनी जल्दी शिकायत उतनी ज्यादा मदद मिलने की संभावना। साइबर सुरक्षा की जानकारी के लिए संपर्क करें www.staysafeonline.com पर। सुरक्षित रहने के 5 नियम, नौकरी के लिए पैसे मत दीजिए, बिना इंटरव्यू और पर भरोसा ना करें, दस्तावेज सोच समझ कर साझा करें, जल्दबाजी में फैसला ना लें, जानकारी ही सुरक्षा है। जाते जाते श्रोताओं, मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि नौकरी पाना मेहनत से होता है, लेकिन एक गलत भरोसा सब कुछ बिगाड़ सकता है। सपने देखिए लेकिन आंखें खुली रखिए, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। सो दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो सुबह से लेकर शाम तक करता है आपको एंटरटेन और साथ में देता है काम की बात।

तो श्रोताओं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जो आज जानकारी सुनी हमारे इस प्रोग्राम में, सोच बदलो में जो भी इन्फॉर्मेशन हमने दी है, ये आपको जरूर कहीं ना कहीं काम आएंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और ऐसी जानकारियों के लिए बस आप ट्यून इन रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पर, जहां पर बातें होती हैं दिल से दिल तक। जी हाँ श्रोताओं, यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। आज हम बात कर रहे थे कि ऑनलाइन जॉब फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इन महत्वपूर्ण जानकारियों को, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जरूर ध्यान में रखा होगा। ये छोटे छोटे बिंदु, ये छोटी छोटी जानकारियां हैं जो हमें कहीं ना कहीं धोखाधड़ी का शिकार होने से बचा सकती हैं। अगर अगली बार आपको कोई कॉल आए कि आपको 30,000 रुपए देंगे, लेकिन उससे पहले आपको 2,000 का रजिस्ट्रेशन कराना है, तो संभल जाइएगा और समझ जाइएगा, क्योंकि समझदारी ही सबसे बड़ी सतर्कता है। दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नौकरी जरूर मिलेगी, थोड़ा वक्त लगेगा, पर गलत रास्ते से बच जाओगे, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। सोच बदलिए, हर चीज ऑनलाइन नहीं, कुछ चीजें ऑफलाइन भी करनी है। अभी के लिए मैं लेता हूं आपसे इजाजत, अलविदा। फिर मुलाकात होगी नए एपिसोड में कुछ और नई महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए, कुछ और म्यूजिकल गीत के बाद आपको कुछ और नए प्रोग्राम भी सुनने को मिलेंगे। तो ऐसे ही आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: अब समाचार विस्तार से। भारत और बेल्जियम ने नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर क्राइम और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन और रक्षा सहयोग पर आशय पत्र सहित विभिन्न समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने परस्पर संबंधों के संपूर्ण आयाम तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है, इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत और बेल्जियम के संबंध दीर्घकालिक हैं। उन्होंने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध में बेल्जियम में हजारों भारतीय सैनिकों का साहस और बलिदान दोनों देशों की साझा स्मृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वो 10 साल पहले बेल्जियम गए थे और पिछले एक दशक में दोनों देशों के बीच भागीदारी में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
1: पिछले एक दशक हमारी साझेदारी ने उल्लेखनीय प्रगति की है। आज हमारे सहयोग का दायरा ट्रेडिशनल सेक्टर से आगे बढ़कर डिफेंस और क्लीन एनर्जी जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। हम जोरावर टैंक जैसे आधुनिक रक्षा उपकरणों पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हम दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन एमोनिया प्रोजेक्ट में से एक डेवलप कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला दोनों देशों की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा पर आज हुए समझौता ज्ञापन से सतत सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: रिन्यूएबल एनर्जी पर आज हुआ एमओयू हमारे सस्टेनेबिलिटी सहयोग को नई गति देगा। क्रिटिकल मिनरल्स में हमने प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। सेमीकंडक्टर्स में बेल्जियम की एक्सपर्टाइज और भारत का स्केल एक दूसरे के पूरक है। इस दिशा में हम बेल्जियम के आईमेक इंस्टीट्यूट को भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से जोड़ने के लिए मिलकर काम करेंगे।
0: वार्ता में भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। इससे पहले बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने आज सुबह राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वो 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में वे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के एक व्यापार कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने ये बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रेंकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही।
2: ये दौर गंभीर राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल का रहा है। इन परिस्थितियों में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने उनका मजबूती से सामना किया। ऐसे समय में आपके जैसे मित्र और महत्वपूर्ण साझेदार से मुलाकात विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है।
0: बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रेंकन ने भारत को घनी आबादी तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाला देश बताया। उन्होंने दोनों देशों के बीच मित्रता को और आगे ले जाने की भी बात कही।
3: भारत और बेल्जियम मित्रता साझेदारी के साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। हम भारत से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बेल्जियम एक तकनीकी रूप से विकसित देश है और उन्नत तकनीक हमारे लिए खासकर यूरोप में बहुत महत्वपूर्ण है। भारत जैसे देश के साथ भविष्य की परियोजनाओं में सहयोग हमारे लिए बेहद जरूरी है।
0: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग संवाद, उच्च स्तरीय यात्राओं, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के जरिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: दो दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी जिक्र किया। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अमरीकी बैंक के सहयोग से भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक व्यवधानों और चुनौतियों के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रमुख क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा केंद्रों को बढ़ावा देना, वैश्विक क्षमता केंद्रों का समर्थन करना, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना और बैंकों के निष्पादित परिसंपत्तियों को कम करना शामिल है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने कहा है कि 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही है। ये दर्शाती है कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। श्री क्वात्रा ने भारत सरकार और वित्त मंत्री सीतारामन की ओर से न्यूयॉर्क में अमेरिका के प्रमुख शेयर बाजार नैसडैक के कारोबारी सत्र का शुभारंभ करने पर ये बात कही। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी में 7.8% की वृद्धि हासिल करने में लघु और मध्यम उद्यम उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। उन्होंने नई दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौता एफटीए आउटरीच कार्यक्रम पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में ये बात कही। भारत और फ्रांस ने वस्त्र और फैशन क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए पेरिस में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्त्रों और कौशल को बढ़ावा देना है। भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन और प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम ने वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनिम विश्व का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र और फैशन व्यापार मेला है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि नवाचार, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी कीमतों के बल पर भारत में विश्व की नंबर एक ऑटोमोबाइल उद्योग बनने की क्षमता है। उन्होंने नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के 66वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि देश की आर्थिक वृद्धि में इस उद्योग का योगदान लगातार बढ़ता रहेगा।
5: ऑटोमोबाइल उद्योग का कुल आकार करीब 22,75,000 करोड़ रुपए है। देश के कुल जीएसटी संग्रह में ऑटोमोबाइल उद्योग का योगदान लगभग 15% है। यह उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 4 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। वर्ष 2025-26 ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए महत्वपूर्ण रहा है। इस दौरान उद्योग के निर्यात में 24% की वृद्धि दर्ज की गई।
0: श्री गडकरी ने भारत नई कार मूल्यांकन कार्यक्रम को एक बड़ी सफलता बताया। उन्होंने कहा कि 11 कंपनियों के 30 से अधिक वाहन मॉडल पहले ही प्रमाणित हो चुके हैं। इस कार्यक्रम ने प्रशिक्षण लागत को काफी कम कर दिया है, साथ ही वैश्विक बाजारों में भारतीय वाहनों की विश्वसनीयता को भी मजबूत किया है। उन्होंने घोषणा की कि इस कार्यक्रम का दूसरा चरण अगले वर्ष अक्टूबर से प्रभावी होगा, जिसमें दुर्घटना से बचाव, पैदल यात्री सुरक्षा और दुर्घटना के बाद निकासी सहित उन्नत सुरक्षा मानक शामिल होंगे। श्री गडकरी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए हाल ही में स्वच्छ परिवहन के लिए शुरू की गई परिवर्तन योजना के बारे में जानकारी दी। पंजाब में सरकारी शवगृहों में रखे अज्ञात और लावारिस मृतकों की पहचान के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक पहचान पोर्टल पहचान शुरू किया गया है। एक रिपोर्ट।
6: ये देश में अपनी तरह का पहला पोर्टल है जो भारत और विदेश में रहने वाले लोगों को दुर्घटनाओं या अन्य कारणों से जान गंवाने वाले अपने प्रियजनों की पहचान करने में मदद करेगा। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अकेले पंजाब में लगभग 5 से 6 हजार मृतकों की पहचान नहीं हो पाती है। पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कल इस पोर्टल की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि पहचान पहल के अंतर्गत पंजाब के किसी भी सरकारी शवगृह में पोस्टमार्टम के 48 घंटे के भीतर प्रत्येक अज्ञात और लावारिस शव की चेहरे की तस्वीर, जन्म चिन्ह और शारीरिक विकृतियों जैसे चिन्हों के साथ उसका विस्तृत शारीरिक विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। राज्य के सभी 23 जिले और 346 सरकारी अस्पताल इस पोर्टल से जुड़े हुए हैं। जालंधर से राजेश वाली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आ आकाशवाणी है। बिहार में पटना और कई अन्य जिलों में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इससे नए इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
7: आपदा प्रबंधन विभाग ने गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार पटना के गांधी घाट पर आज रात और मोकामा के हाथीदह में कल दोपहर गंगा का जलस्तर उच्चतम बाढ़ स्तर को पार कर सकता है। भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद के नदी किनारे तथा निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और जोखिम से बचने की अपील की गई है। आपात स्थिति में राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के 1070 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: वहीं झारखंड में भी पिछले कुछ दिनों से तेज बारिश के बाद कई हिस्सों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति बनी हुई है।
8: रांची में गेतलसूर डैम के 4 रेडियल गेट खोले गए हैं, जबकि स्वर्णरेखा नदी के तेज बहाव को देखते हुए हुंडरू फॉल और नदी किनारे के इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जमशेदपुर में कल शाम मांगो पुल के पास स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर 121.26 मीटर दर्ज किया गया, जबकि आदित्यपुर पुल के पास खरकई नदी 129.76 मीटर पर बह रही थी। हालांकि मंगलवार की तुलना में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन खरकई नदी अब भी खतरे के निशान से 7-6 सेंटीमीटर ऊपर है। प्रशासन ने नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और किसी भी स्थिति में प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। नविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से टेलीफोन पर बाढ़ की स्थिति और राहत शिविरों में व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी फर्रुखाबाद जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की और बाद में प्रभावित लोगों को जमीन के पट्टे और राहत सामग्री बांटी। इस बीच मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, सिक्किम, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में गरज के साथ बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, महाराष्ट्र, उड़ीसा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर बाद मिला जुला असर देखा गया। सेंसेक्स 19 अंक बढ़कर 76,590 पर और निफ्टी 6 अंक घटकर 23,908 पर पहुंच गया। और अब बात खेलों की। किदांबी श्रीकांत ने चीन मास्टर सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में श्रीकांत का सामना हांगकांग के ली चेक ल्यू से होगा। उधर महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में तन्वी शर्मा को जापान की तोमोका मियाजाकी से हार का सामना करना पड़ा। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। ये मैच दुबई में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और बेल्जियम अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर के साथ वार्ता की। दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा, साइबर अपराध और राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रांकन ने संवाद, उच्च स्तरीय यात्रा और क्षमता निर्माण के माध्यम से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को विस्तार देने की प्रतिबद्धता जताई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से अन्य क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा और किदांबी श्रीकांत कनाडा के विक्टर लाई को हराकर चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: उत्तर प्रदेश अब निवेश प्रदेश के रूप में बना रहा है अपनी पहचान।
10: चौथे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो से बढ़ेगा प्रदेश का मान।
9: इस महामंच पर 80 से अधिक देशों के 550 अंतर्राष्ट्रीय खरीदार होंगे शामिल।
10: ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर इन मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक होने वाले इस आयोजन में व्यापार के साथ दिखेगी यूपी की सांस्कृतिक विरासत की झलक। तो आइए, जुड़िए और बनिए यूपी की सक्सेस स्टोरी का हिस्सा।
9: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
11: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
12: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
11: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। और देखिए, मैं कहीं नहीं आती हूं महिला मंच शो में, मेरे साथ आरजे खुशी भी आती है। सो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के साथ कनेक्ट हो गए हैं और आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। तो इस महिला मंच शो में हम बात करने वाले हैं, यानी कि हर बार हाँ कहना जरूरी नहीं होता है, कभी कभी ना भी कहना जरूरी होता है। अक्सर हम यही करते हैं ना कि हम दूसरे को खुशियों के लिए हमेशा जब भी वो कुछ काम बोलता है हम हाँ कर देते हैं। लेकिन देखिए, हाँ करना भी जरूरी है, लेकिन कभी कभी ना आपको जब लगे कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती, वहाँ पे मुझे ना बोलना है, तो वहाँ पे ना बोलना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जो कहते हैं ना, जो ज्यादा अच्छे आप बनोगे ना, तो उतने अच्छे तरीके से चक्के में पीसे भी जाते हैं। तो इसीलिए ज्यादा अच्छा भी बनना जरूरी नहीं है, उनके साथ अच्छे रहिए जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, जो आप जब भी बोलते हैं वो आपके साथ खड़े रहते हैं। उनके लिए तो भैया देखिए, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगी, उनके साथ तो आपको देना ही पड़ेगा। और कभी कभी हम दूसरों को खुश रखने की कोशिश में खुद को दुखी कर बैठते हैं। किसी ने मदद मांगी, हमने हाँ कह दी। किसी ने अपना काम हमारे ऊपर डाल दिया, हमने कहा कोई बात नहीं कर लेंगे। मन नहीं था फिर भी किसी की बात मान ली, थक गए थे फिर भी किसी के लिए समय निकाल लिया। और जब अपने लिए कुछ करने की बारी आई तो हम खुद से ही कह देते हैं अभी नहीं बाद में। लेकिन श्रोताओं, आज के इस महिला मंच शो में आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगी, जो हमारी प्यारी बहनें हैं, सो देखिए, काम करना जरूरी है हर किसी के लिए। जब भी कोई काम बोले आप करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ना खुद के लिए टाइम निकालिए और कभी कभी ना बोलना भी सीखिए। क्योंकि अक्सर लड़कियां महिलाएं होती हैं, वो ना नहीं बोलती है, हमेशा काम के लिए तैनात रहती है, जिसने बोला काम करो तो कर देती है। लेकिन कभी कभी आपको अपने लिए डिसीजन लेना भी बहुत जरूरी है।
1: साथियों, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और क्या हर बार हाँ कहना हमें अच्छा इंसान बनाते हैं, या फिर कभी कभी अपने लिए ना कहना भी जरूरी है? क्योंकि दोस्तों, हर हाँ रिश्ता नहीं बचाती और हर ना रिश्ता नहीं तोड़ती। कभी कभी एक छोटा सा ना आपको खुद से दोबारा जोड़ देता है। तो आज बात करेंगे दूसरों को खुश करने की कोशिश में खुद को पीछे छोड़ देने की। बात करेंगे अपनी सीमाओं की, अपने सम्मान की और अपने लिए ना कहना सीखने की। आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला मंच और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे खुशी। तो आज खुद से एक वादा कीजिए, हर किसी को खुश करने से पहले एक बार खुद से भी पूछेंगे, क्या खुशी, क्या तू खुश है? और एक बार आपका जो भी नाम है, आप खुद से पूछिएगा कि क्या आप खुद से खुश हैं? आखिर ना कहना इतना मुश्किल क्यों है? दोस्तों, ना सिर्फ दो अक्षर का एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसे बोलना कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है सामने वाला बुरा ना मान जाए, उसे लगेगा कि हम स्वार्थी हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैंने मना कर दिया तो शायद रिश्ता खराब हो जाएगा। और डर में हम अपनी इच्छा के खिलाफ बार बार हाँ कहते रहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, दूसरों की हर उम्मीद पूरा करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप भी थक सकते हैं, आपका भी मन नहीं हो सकता है, आपके पास भी समय कम हो सकता है, और ये सब बिल्कुल सामान्य है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ एवरीवन, आप आखिरी बार कब सिर्फ इसलिए हाँ बोले थे क्योंकि आपको डर था कि सामने वाला बुरा ना मान जाए? और अगर आप उस समय ना कह देते तो क्या होता? मुझे अपने संदेश जरूर भेजिएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9837896896।
0: तो देखिए श्रोताओं, अब हम बात करेंगे अच्छा इंसान बनने की गलत परिभाषा। हमारे मन में बचपन से ही एक बात बैठा दी जाती है, अच्छा बच्चा वही है जो सबकी बात, अच्छी बेटी वही है जो सबके काम आए, अच्छी पत्नी वही है जो सबको खुश रखे, अच्छा दोस्त वही है जो हर समय उपलब्ध रहे। लेकिन क्या ये सच है? अगर आप हर किसी के लिए मौजूद है लेकिन खुद के लिए कभी कोई मौजूद नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी जिंदगी में संतुलन लाने की जरूरत है। अच्छा इंसान बनने का मतलब ये नहीं कि आप हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहे। अच्छा इंसान होना और खुद को भूल जाना दो अलग बात। और घर वाले तो अक्सर हमें सिखाते हैं कि हमेशा एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे के लिए खड़े रहो, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप उनके साथ खड़े रहो, उनको साथ दो जो आपके साथ जैसे आप किसी के लिए एक बात पर खड़े हो जाते हो, बोलते हो कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, मैं काम करूंगी, तो जो बोलेगा मैं तेरे साथ हूँ, सामने वाला भी आपको वैसा रिप्लाई दे और आपके साथ वैसा ही रहे, तो बिल्कुल आप भी उनके साथ वैसा ही रहे, वैसा ही व्यवहार करे जैसा सामने वाला करता है। और कभी कभी हर विमनिया को ना भी कर देना चाहिए। शाम होते ही सुबह से लेकर शाम तक किचन में लगी रहती है, भाई कुछ बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, लेकिन कभी अपने पसंद के कुछ नहीं बनाती है। तो कभी कभी ना करके ये बोला करिए कि चलो आज बाहर खाना खाने चलते हैं, बाहर एंजॉय करके आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपको भी जिंदगी जीने का मौका मिले, बाहर घूमने का मौका मिले। और बाहर घूमने का ये सबसे आसान तरीका है कि शाम के खाने के लिए ना कर दो, आज खाना नहीं, आज बाहर खा के आते हैं, एंजॉय करके आते हैं। तो देखिए आपको भी टाइम मिलेगा और अभी अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगी और बाहर के नजारे हैं, जो बाहर की देश दुनिया है, आप उसको भी एंजॉय कर पाएंगी। क्योंकि चार दीवारी में रहना और भाई थोड़ी सी घुटन भी हो जाती है, सफोकेशन हो जाती है, तो उससे थोड़ा बाहर निकलिए, ताजगी हवा लीजिए और अपने जीवन को एंजॉय करिए। फिलहाल हम लेंगे यहाँ पे श्रोता एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद मैं कनेक्ट होती हूँ आप सभी के साथ। एक बहुत ही शानदार गाना आप सभी के लिए है, तो इस गाने को एंजॉय करिए।

0: क्या बात है श्रोताओं, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है और मैं आपके साथ आपकी आरजे रीना और आप सुन रहे हैं महिला मंच शो। मेरे साथ आरजे खुशी भी है। सो अब मैं बात करने वाली हूँ, ना स्वार्थ नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि अपने लिए ना कहना स्वार्थ, लेकिन नहीं। अगर कोई आपसे कहता है आज मेरे साथ बाहर चलो और आपका मन नहीं है, तो आप प्यार से कह सकते हैं आज मेरा मन थोड़ा आराम करने का है। हर किसी और दिल मिलते हैं, इसमें स्वार्थ कहाँ है। अगर कोई आपसे ऐसा काम करने को कहता है जिसके लिए आपके पास समय नहीं है, तो आप कह सकते हैं अभी मेरे पास समय नहीं है कि बाद में करूँगी या फिर कर दूंगा। क्योंकि देखिए, जब आपका मन ना हो ना कोई काम करने के लिए और आप उसको जबरदस्ती करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो काम आप बेटर कर ही नहीं पाएंगे। आप बोल सकते हैं कि अभी मेरा मन नहीं है, मैं थोड़ी देर में आपका जो काम है वो कर दूंगी। शायद आप और बेटर उस टाइम कर पाए। और जब मन नहीं होता किसी काम को करने के लिए, तो आपका वो सारा काम गलत ही होता जाता है। आप उसको खुद भी अच्छा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपका पूरा ध्यान तो कहीं और रहता है। बॉडी थकान हो चुकी होती है, तो वो आपसे आराम मांगती है। खुद भी अच्छा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपका पूरा ध्यान तो कहीं और रहता है। बॉडी थकान हो चुकी होती है, तो वो आपसे आराम मांगती है। तो उसको आराम दीजिए, फिर थोड़ी देर बाद आप उस काम को कर सकते हैं। फिलहाल अब मैं खुशी से जानना चाहूंगी, कहाँ हो भैया तुम? बातें सुन रही है भैया, लड़के चुप चुप के। अरे बोलो भाई, तुम भी कुछ?
1: हाँ, मैं आपकी बातें सुन रही थी। बहुत ही अच्छे से आप सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करती हूँ, पहले आपको सुन लेती हूँ। और दोस्तों, मैं भी आपसे कुछ एक छोटा सा संवाद शेयर करना चाहती हूँ। क्या आपको ना कहने के बाद अपराध बोध होता है? मतलब आपने किसी को मना तो कर दिया, लेकिन बाद में मन में बार बार चलता रहता है शायद मुझे हाँ कर देनी चाहिए थी। ये मेरे साथ होती ना,
0: मेरे साथ भी होता है।
1: मुझे लगता है कि यार मैंने क्यों ना बोल दिया, मुझे हाँ बोलना
0: और
1: चाहिए।
0: वो मुझे लगता है कि वो पूरा दिन हमारे दिमाग में घूमता
1: रहता है।
0: सामने भी जब जाते हैं ना उसके पास, तो मैंने कहा यार क्या सोच रहा होगा, क्या सोच रही होगी।
1: सेम सिचुएशन होती है। अगर ऐसा आपके साथ होता है, आज का हमारा मंच बहुत खास है आपके लिए, तो आप हमें जरूर बताइएगा। और दोस्तों अब मैं आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहानी है मीरा की। मीरा एक बहुत ही होनहार लड़की थी। घर में सबकी मदद करना, दोस्तों के काम आना, ऑफिस में दोस्तों का काम कर देना, मीरा के लिए सब सामान्य था। उसकी एक आदत थी, वह किसी को ना ही नहीं कह पाती थी। ऑफिस में कोई कहता मीरा मेरा ये काम कर दो, वह कहती हाँ। दोस्त फोन पर कहते मीरा मेरे साथ बाजार चलोगी, मीरा बोलती हाँ चलूंगी। घर में कोई कहता आज ये काम तुम कर देना, मीरा कहती हाँ मैं कर दूंगी। धीरे धीरे मीरा थकने लगी, लेकिन किसी से कुछ कहती नहीं थी। एक दिन वह बहुत थकी हुई घर लौट कर आई। उस दिन उसकी माँ ने पूछा बेटा क्या हुआ? मीरा ने कहा कुछ नहीं माँ। माँ ने मुस्कुरा कर कहा कुछ नहीं।

नहीं बहुत कुछ है। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माँ मैं सबके लिए इतना कुछ करती हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि मैं किसी के लिए पर्याप्त नहीं हूँ, मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं हूँ। माँ कुछ देर चुप रही, उन्होंने बहुत प्यार से कहा, बेटा दूसरों के लिए अच्छा बनने की कोशिश में तुम खुद के लिए बुरी बन गई हो। मीरा चौंक गई। माँ ने कहा, तुमने कभी किसी को मना नहीं किया, लेकिन कभी खुद से पूछा कि तुम क्या चाहती हो? मीरा के पास कोई जवाब नहीं था। अगले दिन ऑफिस में एक साथी ने फिर अपना काम मीरा को देते हुए कहा, मीरा ये भी काम कर देना मीरा प्लीज। मीरा कुछ सेकंड चुप। पहली बार उसने मुस्कुरा कर कहा, माफ कीजिएगा, आज मेरे पास पहले से ही बहुत काम है, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। बस इतना ही कहा, सामने वाला थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दुनिया खत्म नहीं हुई, बड़ा रिश्ता नहीं टूटा, ऑफिस बंद नहीं हुआ। मीरा को बस पहली बार महसूस हुआ, अरे मैं मना कर सकती हूँ। उस दिन के बाद मीरा ने हर बात पर ना कहना शुरू नहीं किया। जहाँ सच में जरूरत है वहाँ मदद करो, लेकिन जहाँ आपकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा हो वहाँ अपनी सीमा तय करो। और दोस्तों, मीरा की जिंदगी में सबसे खूबसूरत बदलाव तब आया जब उसने दूसरों को खुश करने से पहले खुद को भी इम्पोर्टेंस दी, खुद को भी महत्व देना शुरू किया। तो दोस्तों, अभी मिलते हैं आपको एक म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए। लौट कर आते हैं हम आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है महिला मंच, जहां पर हम बात कर रहे हैं महिलाओं के बारे में। अक्सर क्या होता है ना, हमारी जो मेल्स होती है ना, जैसे रीना ने भी आपको बताया दोस्तों कि वो कभी लड़कियां भी ना बोलती ही नहीं है, हमेशा हर काम के लिए हाँ ठीक है मैं कर दूंगी। और मीरा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो आगे क्या हुआ है सब आपको बताऊंगी अभी एक प्यारे से गाने के इस बार।

0: क्या बात है श्रोताओं, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। अपने तो अपने होते हैं, सच में अपने तो अपने ही होते हैं। फिलहाल इस महिला मंच में हम आगे बढ़ते हैं, आगे की जो बात है वो शुरू यानी कि जारी रखते हैं। रिश्तों में ना क्यों जरूरी है, अब एक बहुत जरूरी बात। कई लोग सोचते हैं कि ना कहेंगे तो रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन जो रिश्ता आपके एक सम्मानजनक ना होकर स्वीकार ना कर सकता, उस रिश्ते में कभी ना कभी संतुलन की जरूरत है। सच्चे रिश्ते में आप अपनी बात कह सकते हैं, आप कह सकते हैं आज मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे ये बात पसंद नहीं आई, मैं इस तरह बात नहीं करना चाहती हूँ, मुझे थोड़ा समय चाहिए और सामने वाला आपकी बात समझने की कोशिश करे। यही स्वस्थ रिश्ता होता है, क्योंकि जो आपकी बात समझे, जो आपका अहमियत करे, मुझे लगता है कि वो रिश्ता सबसे बेस्ट होता है। और रिश्ता वो नहीं कि जो आपने हाँ कहा वो टूट गया और उसने अगले ने सोचा कि यार इसका तो यही काम है, ये ना कर देती, इसे बोलना ही बेकार है, आज के बाद मैं इसे कुछ काम बोलूंगा ही नहीं, तो वो रिश्ता किसी काम का नहीं है। मुझे ये लगता है वहाँ पर आपको ना करना बहुत जरूरी है। जो इंसान आपको समझता है, जिस रिश्ते में आपको समझा जाता है, सम्मान दिया जाता है, प्यार दिया जाता है, वो आपको समझेगा, वहाँ पर आपकी बातें अच्छे से सुनी भी जाएगी, तो वो रिश्ता हमारे लिए बेस्ट होता है। ना कि ना कहा और टूट गया, वो रिश्ता नहीं होता है। सो महिलाओं के लिए यानी कि खास बात क्या है, जो आज कल की हमारी प्यारी विमेन है उनके लिए खास बात क्या है, और आज की ये बात खास तौर पर उन महिलाओं के लिए है जो घर में सबकी जरूरत समझती हैं, सबके खाने का ध्यान रखती हैं, बच्चों का ध्यान रखती हैं, पति का ध्यान रखती हैं, सास ससुर का ध्यान रखती हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो कहती हैं मेरे लिए क्या। याद रखिए, आप घर की जिम्मेदारी है, लेकिन सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, आपकी अपनी पसंद है, आपका अपना समय है, आपके अपने सपने हैं, घर वालों की देखभाल कीजिए, लेकिन खुद की देखभाल भी उतनी जरूरी है। अक्सर महिलाएं इस चीज को अवॉइड करती है, उनको अगर थोड़ी तबीयत भी खराब होती है ना तो बस एक ही बात कहती है, यार ठीक है दवाई लेके ठीक हो जाएगा, क्या ही जरूरत है, वो दवाई लेके दो एक दिन के लिए ठीक भी हो जाता, फिर से उनके साथ यही होता है। तो मुझे लगता है कि खुद के लिए कदम बढ़ाइए, आप अगर आप स्वस्थ रहेंगी ना तभी आप परिवार वालों को भी खुश रख पाएंगी, अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगी तो परिवार वालों को आप खुश नहीं रख पाएंगी। और जब आपकी लग रहा है कि आपको आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो बोल दो कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, थोड़ी देर बात कर लेंगे, क्योंकि हर समय हर टाइम हर किसी के लिए अवेलेबल रहना जरूरी नहीं है। आप जितना अच्छा बन के दिखाएंगे आपसे उतना ही काम कराया जाएगा और आप उतने ही बेवकूफ बनते जाएंगे, इसीलिए थोड़ा दिमाग से काम करिए। देखिए हर किसी के साथ काम करिए, लेकिन थोड़ा खुद के लिए भी समय निकालना बहुत जरूरी। तो देखिए यहाँ पर अब मैं बच्चों के बारे में भी बात करने वाली हूँ। बच्चों को भी ना कहना सिखाइए, क्योंकि अक्सर माँ बाप यही सिखाते हैं हमें कि हर किसी के साथ रहो, हर किसी की बात मानो, जो भी तुम्हें कोई कहे मतलब जो तुमसे बड़ा है उनकी बातों का सम्मान करे, लेकिन मुझे लगता है कि उनको कभी कभी ना कहना भी सिखाना पड़ेगा। अगर आप उनको ना कहना नहीं सिखाते हैं तो यहाँ पर आप बहुत बड़ी भूल करते हैं। हम बच्चों को अक्सर कहते हैं बड़ों की बात मानो, लेकिन हमें उन्हें ये भी सिखाना चाहिए कि अगर कोई उन्हें ऐसी बात के लिए मजबूर करे जिसे वो असहज महसूस करे तो वो साफ शब्दों में ना कह सके और किसी भरोसेमंद बड़े को बता सके। ना कहना सिर्फ व्यक्तित्व की बात नहीं, कई बार ये अपने सुरक्षा सम्मान की बात भी होती है। इसीलिए बच्चों को सिर्फ अच्छा बच्चा बनो मत सिखाइए, ये भी सिखाइए अपनी बात कहना भी जरूरी है, क्योंकि अक्सर जब हम बच्चों को सिखाते हैं ना कि हाँ बोलो हाँ बोलो, तो कभी कभी एक ऐसा अनजान व्यक्ति भी सामने आ जाता है जिसको नहीं जानता है बच्चा, और फिर भी वो बोलता है कि मैं तुम्हें चिप्स देता हूँ, कुरकुरे देता हूँ, वो ले लेता है और हमें नहीं पता उसमें क्या मिलावट है क्या नहीं मिलावट है, और बच्चे के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चे स्कूल भी जाते हैं और कभी ऐसा होता है कि रास्ते में अकेले भी आते हैं। तो ऐसी जगह पर यानी कि बच्चों को ना कहना भी सिखाना चाहिए कि जो अनजान व्यक्ति है जिसको नहीं जानते हैं उनको आप ना बोलो, अगर उनके साथ भी अगर आप बोलते हो तो आजकल आप सभी को पता है कि कितना स्कैम चला हुआ है, बच्चे के साथ भी धोखाधड़ी होती है, तो बच्चों को ना कहना सिखाइए और उन्हें ये भी सिखाइए कि जो अब आपके साथ अनजान व्यक्ति आते हैं तो उसे कम बात करें। और साथ ही साथ कोई अजनबी व्यक्ति आपके बच्चों को खाने के लिए कुछ दे रहा है और उसे कह रहा है कि बेटा चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, वैन में छोड़ देता हूँ, तुम पैदल चल रहे हो धूप में ना, तो वहाँ पर बच्चों को सिखाइए कि वहाँ पर आपको ना बोले। और सबसे बड़ी बात, बच्चे बाहर जाते हैं और बच्चे लालच में भी आ जाते हैं, बच्चे होते दिल के सच्चे, वो उनको लालच मिल जाता है कि चलो मैं तुम्हें चिप्स देता हूँ, कुरकुरे देता हूँ, तो ले लो और खा लो और मेरे साथ चलो, तो बच्चे चल भी देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को सावधान करिए, जो घर वाले दे रहे वो खाओ, लेकिन जब आपको बाहर दिया जा रहा है तो मत खाओ। और कोई भी कहता है कि दो कदम पर मेरे साथ चलो तो वो भी आपको ना कहना है, वहाँ पर बच्चों को सिखाइए, ये बच्चों को सिखाने के लिए बहुत जरूरी।
1: क्या बात है रीना, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है कि अगर कोई भी बच्चा बाहर जा रहा है, कोई अजनबी पर्सन उनको मिल रहा है, तो उनसे कोई चीज ना लें और उनके साथ कहीं भी ना जाएं, क्योंकि बच्चों को
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
3: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
3: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: गुड आफ्टरनून दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आपका फेवरेट शो शुरू हो चुका है हेलो फरमाइश, और मैं आपके साथ आपकी खुशी। 3 सितंबर की तारीख है आज और दिन बहुत ही खूबसूरत सा है। थर्सडे का, गुरुवार का दिन है और हमारे बहुत सारे श्रोता, कल कान्हा का बर्थडे है तो तैयारियों में लगे हुए हैं। और हमारे साथ इस ब्यूटीफुल शो में आप कनेक्ट हो सकते हैं एवरीवन। उसके लिए आपको कॉल करना होगा, हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। दोपहर का खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा ही टाइम जब हम फ्री होकर फुर्सत में आराम से बैठकर शो को एंजॉय करते हैं, है ना। और जब अपना पसंद का गाना अगर प्ले हो जाए ना रेडियो पर, तो फिर बात ही अलग हो जाती है। बात करते हैं अपनी फर्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। 2 महीने बाद आपके प्रोग्राम में नंबर लगा है।
0: जी जी जी, बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, आप सुनाए, आप कैसी हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ सर, बताइएगा। आज आपने कॉल किया है काफी समय के बाद, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: एक हनुमान जो पिक्चर आई हुई है।
0: हाँ, हनुमान अंश जी।
1: हाँ, उसका एक गीत सुना दीजिए।
0: कौन सा गीत आपको सुनना है?
1: कोई सा भी अच्छा सा गीत सुनवा दो आप।
0: चलिए ठीक है, हम सुनवा देते हैं आपको। धन्यवाद आपने हमें कॉल किया सर
1: जी।
0: तो चलिए श्रोताओं, सर की पसंद का सुनवाते हैं एक ब्यूटीफुल ट्रैक। एंड उससे पहले एक मेरी पसंद का भी गाना है, बहुत ही प्यारा सा, वो मैं आपको सुनवा देती हूँ फ्रॉम द मूवी हम साथ साथ से। तो उसके बाद लौट कर आते हैं एंड करेंगे आपसे बहुत सारी बातें। आप भी मुझे कॉल कीजिएगा जल्दी से, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और खुशी आपसे कहती है मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराते हुए आप सब बहुत प्यारे लगते हैं। सीरियसली यार,

0: हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और अभी आपने सुनाई बहुत ही अमेजिंग सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी हम साथ साथ। और कल फाइनली, जिसका भी सबरी से सभी को इंतजार है, कृष्ण जन्माष्टमी का वो दिन आने वाला है। जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं हर घरों में। और अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, हेलो।
1: हाय दीप।
0: हाँ जी, कहाँ चले गए थे आप फोन रखकर?
1: मैम कहीं नहीं गई थी, मैं बैठी थी।
0: और हम हेलो हेलो किए जा रहे हैं।
1: आप कैसी हैं मैम?
0: मैं ठीक हूँ, बताइएगा अपना नाम।
1: मैं राबिया बात कर रही
0: हूँ। जी बताइए राबिया, कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ मैम, आप कैसी हैं?
0: हाँ जी, आई एम गुड। सब लोग बहुत ही अच्छे हैं राबिया, आप बताइएगा आपकी फैमिली में सब ठीक है?
1: जी मैम अच्छे हैं, मगर इस टाइम फीवर चल रहा है मैम।
0: हाँ ये तो है यार, एक्चुअली मानसून का जो ये वेदर है ना, तो इसमें हो जाता है। थोड़ा सा भी अगर हम भीग जाते हैं और थोड़ी सी लापरवाही कर लेते हैं ना, तुरंत फीवर हो जाता है, कोल्ड हो जाता है।
1: कल सिस्टर भीग गई थी तो वो खा रहा
0: है। हाँ इसीलिए कह रहे हैं कि कच्चा पक्का मौसम चल रहा है, बहुत ख्याल रखने की आवश्यकता है इस मौसम में। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। बताइए आज क्या फरमाइश है आपकी?
1: चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे।
0: ओहो, चोरी चोरी करने की बात नहीं है, आप रियल में ले जाइए। अच्छा जी
1: जी
0: ओके। और ये ट्रैक किनको डेडिकेट करना चाहते हैं आप, कौन है वो?
1: जी मैम, मैं है दर्शा फातिमा, कैया फातिमा, फरोज फातिमा, लाइवा काजमी और सभी सुनने वाले।
0: अच्छा ठीक है, सभी के साथ सुनवाते हैं गाना। थैंक यू कॉल करने के लिए डियर।
1: बाय
0: बाय, टेक केयर। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं प्यार सा ट्रैक और लौट कर आते हैं हम। तब तक आप भी मुझे कॉल लगाएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और जल्दी से फोन लगाते भी रहिए। जब आप कोशिश करेंगे ना, तभी आपका कॉल जल्दी से लग पाएगा, पता है, क्योंकि बहुत सारे श्रोता ट्राई करते हैं।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
5: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.

0: फरमाइश शो में मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी, और अभी आपने सुना ही प्यारा सा ट्रैक। फ्रॉम द मूवी फूल बने अंगारी जो 1993 में आई थी, और इस खूबसूरत गीत को गाया था कुमार सानू साथ में सुजाता गोस्वामी ने। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़ी हैं। हेलो फरमाइश। हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: जी मेरा नाम कशिप है।
0: कहाँ से बात कर रहे हो आप डियर?
1: जी मैं मुरादाबाद।
0: मुरादाबाद से। अभी कौन सी क्लास में स्टडी करते हो आप? ओके, फिफ्थ क्लास में पढ़ाई करते हो। बताओ आज कौन सा गाना सुनने का मन है आपका?
1: जी थोड़ा सा पगला थोड़ा दीवाना।
0: और ये गाना आप किनको सुनवाना चाहते हो? कौन है थोड़ा सा पगला थोड़ा सा दीवाना? हाँ
1: मेरी कजिन है।
0: ओके, क्या नाम है आपकी कजिन का?
1: आलिया।
0: आलिया, ओके, आलिया के लिए सुनना चाहती हो ये गाना? हाँ
1: yes.
0: चलो सुनवाते हैं। थैंक यू डियर कॉल करने के लिए, एंजॉय कीजिएगा।
1: थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए ये प्यारा सा ट्रैक सुनते हैं और उसके बाद लौट कर आते हैं दोस्तों। तब तक आप भी ट्राई कीजिए, आपको भी कॉल लग जाएगा, कोशिश तो कीजिए आप।

हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी और प्यार हो गया, आशा भोसले जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में खूबसूरत ट्रैक। और अभी जानते हैं अपने अगले कॉलर की फरमाइश। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश।

0: तो देखिए दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जब भी अगर आप कॉल करें तो प्लीज फोन के करीब ही रहें, फोन को अपने पास रखें ताकि कोई इशू ना हो बात करने में। आप इतनी मेहनत से कॉल लगाते हैं। हेलो फरमाइश।
1: अस्सलामुअलैकुम।
0: जी वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका?
1: उज्मा बात कर रही
0: हूँ। उज्मा कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: हम
0: मुरादाबाद से बात कर रही हैं। बताइए उज्मा, क्या करते हैं आप?
1: उसने घर पर ही रहती हूँ।
0: अच्छा, घर पर ही रहती हैं। बताइएगा, आज कॉल किया है आपने, क्या फरमाइश है आपकी?
1: मूवी का सॉन्ग सुना दे।
0: कौन सा ट्रैक सुने हैं? सॉरी, अच्छा हुआ है आज पहली बार। ओके, क्या हो, आज पहली बार कॉल लगाया आपको या पहले भी लगाया उज्मा जी?
1: पहली बार ही कॉल लगाई
0: मैंने। ओके, कैसे लग रहा है बताओ?
1: बहुत अच्छा लग रहा है।
0: अच्छा, तो कब से ट्राई कर रहे थे आप, कॉल लगा रहे थे?
1: दूसरी बार ही ट्राई किया।
0: अच्छा, दूसरी बार। ओके, आप बहुत लकी हैं कि आपने सेकंड टाइम ट्राई किया और आपका कॉल भी लग गया। तो चलिए एंजॉय कीजिएगा ट्रैक उज्मा, थैंक यू कॉल करने के लिए। मोस्ट वेलकम डियर। तो चलिए उज्मा जी की पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी सनम रे, एंड खूबसूरत गाना है। आप भी इंजॉय कीजिएगा और कॉल भी लगाइए मुझे फटाफट से, मैं इंतजार कर रही हूँ आपका। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896, 9839698। मैं आपके साथ आपकी खुशी।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने एंजॉय किया प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी सनम रेसी, अरमान मलिक और साथ में पलक मुछल की बहुत ही खूबसूरत आवाज में खूबसूरत गाना आपने सुना। एंड म्यूजिक था अमाल मलिक का और लिरिक्स लिखे थे मनोज यादव जी ने, बहुत ही ब्यूटीफुल लिरिक्स थे ना एवरीवन। चलिए अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानते हैं उनकी फरमाइश। हेलो फरमाइश, हेलो हेलो फरमाइश। हाँ जी, आपको भी नमस्कार। सत श्री अकाल जी, कैसे हाल चाल है आपकी?
1: शर्मा बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से।
0: हाँ जी शर्मा जी, बताइएगा, काफी लॉन्ग टाइम की बात आज जुड़े हैं आप कार्यक्रम में।
1: हाँ जी मैम, काफी टाइम बाद जुड़ा हुआ है
0: तो जी।
1: आपका सुनते रहते थे मगर।
0: ओके बताइएगा कैसे हैं आप और चंडीगढ़ का मौसम कैसा है?
1: चंडीगढ़ का मौसम मैम धूप भी है, बादल भी है, सारा मिला जुला
0: है। ओके अच्छा,
1: रात में बारिश हुई थी
0: और अभी गर्मी है।
1: गर्मी तो ठीक है मैम, मौसम
0: अच्छा नॉर्मल है। ठीक है तो बताइएगा आज सतीश जी आप क्या सुनना चाहते हैं?
1: पहले तो आपको कल जन्माष्टमी है तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और परसों शिक्षक दिवस है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: जी सर, थैंक यू सो मच एंड सेम टू यू, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कृष्ण जन्माष्टमी की। एंड 5 तारीख को है टीचर्स डे तो उसकी भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं।
1: हाँ जी मैम, और गीत रहेगा मैम दागदी फायर फिल्म से।
0: हाँ जी,
1: प्यार हमें प्यार तुम कितना करते हो।
0: ओके
1: इसमें मेरे कुछ दोस्त भी रहेंगे शामिल।
0: जी बताइएगा।
1: सबसे पहले मैम आप ही रहेंगे और रीना मैम, परवेज अहमद जी,
0: जी
1: सोनू गौतम जी,
0: ओके
1: नेत्रपाल जी, और सभी जो इस टाइम लाइव सुन रहे हैं सभी रहेंगे शामिल।
0: ठीक है सर, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। सुनवाते हैं ब्यूटीफुल ट्रैक आपकी पसंद का, एंजॉय कीजिएगा आप।
1: धन्यवाद,
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए भी फर्स्ट सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, लौट कर आती हूँ मैं, तब तक आप भी कॉल लगाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और मैं आपके साथ आपके दोस्त आरजे खुशी। अभी अमेजिंग ट्रैक अभी आपने सुनाई और एक बड़े क्यूट से बच्चे की हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी कि मैम मुझे ये गाना सुनाए अखियां गुलाब। मैंने कहा चलो ठीक है, सुना देते हैं। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़ी है। हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: हाय गुड आफ्टरनून।
1: हेलो नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
1: जी मेरा नाम आरती है।
0: आरती जो कभी नहीं हारती। कहाँ से बात कर रहे हो आरती?
1: जी मैं मुरादाबाद
0: करूले से बात कर रही हूँ। ओके, बताइएगा क्या करते हो आप आरती? अभी कौन सी क्लास में स्टडी कर रहे हो आप? बोलो बोलो। सॉरी, हेलो
1: हेलो।
0: हाँ बोलो, कौन सी क्लास में हो अभी डियर?
1: फिफ्थ क्लास में हूँ।
0: ओके, और रेडियो कब से सुन रहे हो आप?
1: एफएम मुरादाबाद।
0: एफएम मुरादाबाद कब से सुन रहे हो ये तो बताइए।
1: मुझे बहुत टाइम हो गया।
0: काफी टाइम हो गया, कैसे लगते हैं आपको बताओ हमें।
1: मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा लगता है, तो आज बताओ इस प्यारे से अच्छे से रेडियो पर कौन सा गाना आप सुनना चाहती हो अपने पसंद का?
1: शरारत।
0: ओके, चलिए सुनवाते हैं गाना, आप डांस कीजिएगा। ओके
1: थैंक यू मैम।
0: मोस्ट वेलकम, बाय, टेक केयर। तो चलिए एवरीवन सुनवाते हैं प्यार सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी धुरंधर से एंड हम वापस आते हैं। तब तक आप भी ट्राई कीजिए, आपका भी कॉल जल्दी से लग जाएगा। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896।

0: हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और अभी आपने ये प्यारा सा ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी धुरंधर सी, मधुबंती बागची और साथ में जैस्मीन की बहुत शानदार आवाज में शानदार ट्रैक। अब बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जान लेते हैं उनकी फरमाइश यहाँ पर। हेलो फरमाइश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सो हेलो, तो ये जनाब तो हमें सुन नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, एक गाना अपनी पसंद का यहाँ पर प्ले कर देते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हाँ हेलो फरमाइश, सबसे पहले खुशी जी को मेरा मोहब्बत भरा नमस्कार।
0: नमस्कार सर, फोन रखकर कहाँ चले गए थे आप, ही पहले ये बताइएगा।
1: मैंने गाने में खो गया, गाना बहुत प्यारा बज रहा
0: है। इतना भी मत खोइए कि सामने वाला इंसान आपको हेलो हेलो कर रहा है और आप सुने ही ना।
1: और मैम कैसी हो आप?
0: हम ठीक है।
1: और क्या,
0: हम ठीक है, आप बताइएगा आप कैसे हैं?
1: मैम बहुत अच्छे, हमारे रामपुर में बारिश पीछे नहीं छोड़ रही, 4-5 दिन हो गए
0: अभी भी बारिश हो रही है। आज भी बारिश हो रही है
1: जी मैम, अब भी हो रही है, कल भी परसों भी, लगभग 4 दिन हो गए मैम लगातार।
0: ओके, कंटिन्यू बारिश हो रही है, कोई बात नहीं, रुक जाएगी।
1: आप जा रहे हैं देखते हुए जा रहे हैं, इतनी बारिश है रामपुर में।
0: ओके, तो बताइएगा सर आज क्या पसंद है, आपकी क्या फरमाइश है, कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: मैंने आज लगभग 15-20 दिन में कॉल लगाई मैम, अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। उससे पहले ये बताइए मुरादाबाद का मौसम कैसा है?
0: हमारी मुरादाबाद का जो वेदर है अच्छा है, यू नो अभी बादल भी है, हल्की धूप भी है।
1: मैम मौसम ऐसी होगा, चाय और समोसे खाने का है ना?
0: चाय समोसे, हाँ जी।
1: बारिश में चला गया, बारिश तो है।
0: ओके, बताएगा। हाँ जी हाँ जी, ईश्वर जी बताएगा कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: मैम मैं आज गाना सुनूंगा, मूवी का नाम है चढ़ीपा। यार मैम उसमें बहुत ही प्यारा सॉन्ग है कि आपकी दुश्मनी कबूल, मुझे आपकी दोस्ती से रखता हूँ। आज की यार फरमाइश में यार प्ले कर देना, वो सुनने वाले हैं।
0: हाँ बताइएगा।
1: मैं सबसे पहले ये है ग्राम बीबीपुर से मकसूद भाई, स्वाद से है बीजे राठौर, ग्राम खेड़े टांड से मोहम्मद कामिल, सातनापुरम।
0: ठीक है, सुनवाते हैं प्यारा सा गाना आपको
1: जी मैम। थैंक यू, नमस्कार।
0: नमस्कार, मोस्ट वेलकम। तो चलिए फिफर्स सुनते हैं ये शानदार सा ट्रैक और तब तक आप भी कॉल लगाएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और ये शानदार से गाना एंजॉय कीजिएगा ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अगर आप सफर में हैं तो बस खुशी आपसे कहना चाहेगी कि केयरफुली ड्राइविंग कीजिएगा और इस सफर को खूबसूरत बनाइए खूबसूरत गानों के साथ।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: गुड इवनिंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी। अभी आपने सुना एक खूबसूरत सा ट्रैक कुमार सानू जी की आवाज में, और बात करते हैं अभी अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़ी है। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, गुड इवनिंग दी।
0: वेरी गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका?
1: जी मैं जिला मुरादाबाद ग्राम गोदी से निखत फातिमा आपसे बात कर रही हूँ।
0: जी बताइएगा निखत फातिमा जी, कैसी हैं आप?
1: जी मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
0: हाँ जी मैं भी ठीक हूँ, बताइएगा कैसे हैं परिवार में आपके यहाँ पर सब?
1: जी परिवार में भी सभी लोग कहने
0: से है। ओके, और आप क्या कर रही हैं इस समय मोहतरमा?
1: कुछ नहीं जी, सिस्टर गई है शॉपिंग पे, छोटी भान जी को संभाल रखा है।
0: अरे मासी का यही काम होता है।
1: हाँ।
0: बच्चों को संभालना, बताएगा आज
1: दुकान पे उसी के काम में लग रही।
0: हाँ छोटी बेबी के बहुत सारे डिमांड्स होती हैं, बहुत सारी चीजें उनकी उनके लिए करना होता है, उनकी बहुत केयर करनी होती है। शांत नहीं होते हैं। हाँ बड़ी मुश्किलों से उनको शांत करवाना होता है।
1: पहली बार
0: छोड़ के जाएंगे
1: सिस्टर यहाँ पे।
0: अच्छा ओके, तो क्यूट बेबी रो रही है?
1: रो नहीं रही है।
0: अच्छा चलिए अब खेल रही है, उसको भी पता है ना कि मासी का कॉल लगाया। हेलो फरमाइश में रोंगी तो वो बात कैसे कर पाएंगी?
1: हाँ, रोई थी अभी वो, फिर मैंने कराया।
0: अच्छा
1: बात करनी है।
0: हाँ वही कह रहे हैं ना, बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: जिंदगी बन गए हो तुम अपनी
0: भांजी
1: के लिए।
0: अरे वाह बहुत प्यारा गाना है।
1: हाँ।
0: और कुछ
1: भांजी मेरी जिंदगी में आई है ना, तो और ही होगी जिंदगी।
0: हाँ हो जाता है। तो ये गाना क्या नाम है आपकी छोटी भांजी का?
1: मेरी भांजी का नाम आयशा फातिमा।
0: आयशा फातिमा, अरे वाह बहुत प्यारा नाम है, और सुनवाते हैं प्यारा गाना आपको।
1: थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम, टेक केयर, आप भी अपना ख्याल रखिए और छोटी सी बेबी का भी ख्याल रखिएगा अच्छे से। जी तो चलिए फ्रीफंड सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, लौट कर आती हूँ मैं, तब तक आप भी कॉल लगाइएगा, आपका भी कॉल लग जाएगा निश्चिंत ही जब आप प्रयास करेंगे तो।

0: हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना ये प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी कसूर से अलका याग्निक जी, साथ में उदित नारायण जी की बहुत ही प्यारी आवाज। म्यूजिक डायरेक्टर थे नदीम शर्मन जी एंड लिरिक्स थे समीर जी के। और दोस्तों, आजकल ना सबकी जिंदगी बना हुआ है मोबाइल। एक टाइम को खाना नहीं खाएंगे ना तो चलेगा, लेकिन मोबाइल के बिना नहीं रह पाते हैं। और अभी बात करते हैं अपने अगली कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: मैम नमस्कार
0: जी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका?
1: मैं जगदीश बोल रहा हूँ, कानपुर से।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सर?
1: बढ़िया है, आप कैसे हैं सब लोग?
0: जी मैं भी ठीक हूँ, हमारे सभी प्रेजेंटर्स भी बहुत ही अच्छे हैं। आप बताइएगा क्या सुनना चाहते हैं आज आप?
1: बहुत बढ़िया बात है
0: जी सर, आज बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी?
1: मैं गाना सुनूंगा यशोमती मैया से, बोले नंद लाला
0: राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। अरे वाह, बहुत खूबसूरत गीत है। ठीक है सर, सुनवा देते हैं आपको। धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: थैंक यू मैडम,
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक एंड मैं लौट कर आती हूँ। तब तक आप भी कॉल लगाइएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6। और ये खूबसूरत गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर जी की आवाज में। लता जी की आवाज में शानदार ट्रैक अभी आपने सुना। और बहुत खूबसूरत सी वार्तालाप कान्हा जी कर रहे थे माँ यशोदा से। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे नेक्स्ट लिस्टनर। हेलो फरमाइश।
1: जी हेलो फरमाइश, नमस्ते।
0: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
1: जी मैं अकोला महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, दीपक बोल।
0: जी बताइएगा दीपक जी, कैसे हैं आप सब?
1: जी बिल्कुल बढ़िया। अभी खेतों में आए तो खेतों में जो मिर्च का पौधा है उसे बोने की तैयारी चल रही है।
0: अच्छा ओके, तो मिर्च लगाने की तैयारियां चल रही हैं। मिर्च की पौधे बड़ी बड़ी हो जा, जब थोड़ी सी बड़ी होती है तभी लगाते हैं ना सर उनको?
1: जी अच्छा, पहले हम घर में तैयार कर लेते हैं और स्प्रे और कोकोपीट से।
0: ओके,
1: तो बाद में लगाती हूं 15 दिन बाद।
0: अच्छा तो सर और क्या क्या लगाते हैं आप अपने खेतों में, और कौन कौन सी सब्जियां उगाते हैं?
1: हमारे खेत में प्याज है, पालक है।
0: ओके,
1: और भिंडी।
0: अच्छा अरे वाह, अच्छी अच्छी सब्जियां उगाई हुई है आपने तो।
1: जी जी जी, हम वेजिटेबल्स का बिजनेस भी अलग का करते हैं मेरा।
0: जी बहुत अच्छी बात है सर, बताइएगा आज कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
1: डुलर की तीखी मिर्च भिंडी बाजार की।
0: ओ लगता है भिंडी सर ने खेतों में लगाई है इसलिए गाना भी जहन में आया है। ठीक है, सुनवाते हैं गाना आपको। धन्यवाद कॉल करने के लिए। मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं दीपक जी की पसंद पर ये प्यारा सा गाना फ्रॉम द मूवी चंडाल से।

0: हेलो वर्ल्ड,
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: मुरादाबाद के लिए बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
5: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
3: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी स्टूडियो में वक्त हुआ है 4:26 और हमारे साथ हमारे अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो, सलाम अलैकुम।
0: जी वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका?
1: नाम है सलू भंडारी।
0: जी बताइएगा, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? से
1: मुरादाबाद।
0: जी बताइएगा, क्या फरमाइश है आपकी?
1: गाना दे दो तो फिर तेरे नाम लगन लगन।
0: जी क्या कहा आपने?
1: लगन लगन गाना तेरे नाम सुनूंगा।
0: अच्छा अच्छा, ओके सर। और ये गाना किनके साथ सुनना चाहते हैं आप?
1: जी?
0: ये ट्रैक आप किनके साथ सुनना चाहते हैं? कोई आपके दोस्त है? अच्छा ठीक है सर, सुनवाते हैं ये गाना आपको। थैंक यू कॉल करने के लिए। तो चलिए विवान सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक और लौट कर आते हैं। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराते रहिए और जल्दी से हमें कॉल लगाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हौले हौले से मुस्कुराते भी रहिए।

0: हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी, और वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में राइट नाउ 4:34। और हमारे साथ जुड़ी है हमारी एक बहुत ही ज्यादा बोल सकते हैं प्रिय लिसनर है, तो चलिए उनसे बातचीत कर लेते हैं। फाइनली लॉन्ग टाइम के बाद आज हमारी बातचीत हो रही है। हेलो फरमाइश, आप बोल भी जाइए, इतना मत सताइए। हेलो। तो फाइनली हाँ, कहाँ चले गए थे आप?
1: पार्सल
0: को भी अभी आना था। हाँ
1: हाँ यार, अभी आना था पार्सल को भी।
0: जी बताइएगा अपना नाम, काफी समय के बाद आप जुड़े हो आज।
1: जी कैसी हैं? पहले तो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून है आपको, गुड इवनिंग है, गुड आफ्टरनून तो खत्म हो गया। वेरी वेरी
0: एक्चुअली ना ऐसा होता है, जब हमारे अंदर बहुत एक्साइटमेंट होता है ना, तो चीजें होती हैं ऐसा।
1: वो क्या है ना, मैं भी शो करती हूँ ना, मुझे गुड आफ्टरनून का ज्यादा याद रह जाता है, गुड इवनिंग का कम।
0: ओके कोई बात नहीं,
1: एक्चुअली में आपका जो शो आता है दो 3 बजे से 5 बजे तक आफ्टर में है ना।
0: यस यस,
1: तो एक घंटा आफ्टर का होता है और एक घंटा मॉर्निंग का हो जाता है, इवनिंग का, मॉर्निंग का नाम बताते रहे, तो ऐसे हो जाता है, मिला जुला गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून हो जाता है।
0: स्टो की बताएगा योर गुड नेम।
1: जी मैं पूनम बोल रही हूँ कानपुर से।
0: हाँ तो बताएगा पूनम जी, कैसी हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है, और आपका शो इतना अच्छा लग रहा है कि बस मन नहीं माना, मैंने कहा चलिए मैं भी जो है जुड़ जाती हूँ आपके शो में।
0: बहुत अच्छा किया पूनम, एंड काफी लिसनर्स हमें कॉल करते हैं और आपका नाम भी लेते हैं कि पूनम जी भी हैं कानपुर से, तो फाइनली आज बात भी हो गई पूनम जी से। बताइए पूनम, कैसा लग रहा है फिर मुरादाबाद सुनकर आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है, और खास करके आपकी जो मीठी मीठी आवाज है ना, वो बहुत अच्छी लगती है।
0: हाय रबा, सच्ची?
1: हाँ बिल्कुल, और आज ना आज और अच्छा लग रहा है क्योंकि हम दोनों ही आ गए हैं मीठी मीठी आवाज वाले।
0: हाँ ये है तो ना? है राइट। तो पूनम आज आपने कॉल किया है काफी लॉन्ग टाइम के बाद, कोई शायरी हो जाए प्लीज, एक शायरी सुना दीजिएगा।
1: जी हाँ बिल्कुल, शायरी तो बिल्कुल हम सुनाएंगे, और क्योंकि हमारे जो जितने भी लिस्टनर है ना, वो बिल्कुल सुनने के लिए बैठे ही होंगे कि पूनम जी सुनाए या फिर खुशी जी सुनाए, कोई तो शायरी सुनाए,
0: कोई तो सुनाए, राइट। वैसे आप बहुत अच्छी शायरी करते हैं नो डाउट।
1: चलिए अच्छा, एक शायरी मुझे याद आ रही है, और नेक्स्ट टाइम मैं जब कॉल करूंगी ना,
0: हाँ,
1: तो बहुत सारी शायरी याद करके कॉल करूंगी आपको,
0: ठीक है ना? जी जी बिल्कुल।
1: क्या है ना कि मैंने ऐसी बैठी थी, तो मैंने सोचा देखते हैं ट्राई करते हैं, अगर कॉल लग जाता है तो बात करेंगे, तो मैंने कॉल लग गया तो और जल्दी जल्दी में कहते हैं एक्साइटमेंट जब इतना होता है तो कुछ याद नहीं रह जाता, क्या बोलूं क्या ना बोलूं, लेकिन फिलहाल एक शायरी आ रही है।
0: जी, मैं बोल देती हूं, बिल्कुल सुनाइए।
1: फूल खिलकर मुरझा जाते हैं, उम्मीदों के फूल कभी मुरझाते नहीं। फूल खिलकर मुरझा जाते हैं, उम्मीदों के फूल कभी मुरझाते नहीं, बस जाते हैं वो मेरे दिल में आकर, जिन्हें हम भूल कर भी भूल पाते नहीं।
0: अरे वाह क्या बात है पूनम, कमाल ही कर दिया आपने तो। हाँ
1: जी हाँ, और ये कमाल आप भी तो कर रही हैं, इतना अच्छा और इतना प्यारा प्यारा बोल रही हैं, सभी श्रोताओं से बातें कर रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: ये तो आपका प्यार है पूनम जी।
1: ओहो तो प्यार तो इतना बरसाते बरसा के हम लोग को इतना प्यार मिल गया है खुशी जी की क्या ही बताएं, लगता है कहाँ रखा जाएगा इतना प्यार
0: दिल में, इतना प्यारा सा दिल जो है इसके अंदर संभाल के रखना है ना।
1: बहुत बड़ा है दिल तो, बहुत बड़ा है, जितना भी प्यार इसमें आए ना वो कम ही पड़ता है।
0: एग्जैक्टली राइट, आई एग्री विद यू। बताइए पूनम, आज आपने कॉल किया है एंड आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: जी, खुशी जी आपको भी जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम भी दे रहे हैं, और कान्हा जी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें, ऐसी
0: सेम पिंच। बताइए आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: आज मैंने गाना कौन देखिए खुशी थी, इतनी मैं खुश होना गाना ही बोल गई।
0: आपने गाने की रिक्वेस्ट की थी, मेरी जिंदगी है तू।
1: हाँ मेरी जिंदगी है तू, ये गाना आज। और खुशी थी मैं चाहूंगी थोड़ा सा इस गीत को आप गुनगुनाएं।
0: अरे मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है पूनम, आप गुनगुनाइए, आप बहुत अच्छा गुनगुनाते हैं।
1: आप भी तो गुनगुनाती है, मैंने आपको सुना हुआ है बहुत अच्छा गुनगुनाती
0: है। नहीं नहीं नहीं आप भी तो इतना अच्छा परफेक्ट आवाज नहीं है, आप सुना दीजिए ना प्लीज।
1: वैसे इस गाने में जो है ना आपका नाम आ रहा है ना।
0: हाँ
1: मैं एक लाइन आपके लिए गुनगुनाती हूँ।
0: ओके
1: गम है या खुशी है तो
0: वेरी नाइस
1: जी,
0: थैंक यू सो मच।
1: और हमें बहुत अच्छा लग रहा है यार आपसे बात करके, और खुशी जी हम दोनों सेम सेम है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ। जी हाँ, और आप एक बार मैं ये कहना चाहती हूँ सभी श्रोताओं से कि FM मुरादाबाद में सच में बहुत अच्छा लगता है, और जो प्यार है ना यहाँ पर मिलता है, और ऐसे ही प्यार सभी देते रहे FM मुरादाबाद को सुनते रहे।
0: और आपसे हम एक छोटा सा प्रॉमिस चाहते हैं कि आप भी हमें कॉल करती रहें।
1: ओहो बिल्कुल बिल्कुल, हम जब भी हमें मौका मिलेगा तो हम जरूर से आएंगे और कार्यक्रम में जुड़ेंगे, बातें करेंगे, सभी श्रोताओं को भी मौका मिलेगा उनसे भी जुड़ने का।
0: हाँ बिल्कुल पूनम, थैंक यू सो मच एंड नाइस टॉकिंग टू यू, आपने मेरा दिन बना दिया, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, आई एम सो हैप्पी।
1: जी जी जी थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: ओके बाय बाय, टेक केयर,
1: बाय बाय।
0: तो चलिए एवरीवन पूनम जी की पसंद पर सुनते हैं शानदार ट्रैक, मैं लौट कर आती हूँ, तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद, कॉल करें 7055070552।
3: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। आरजे खुशी है आपके साथ। और अभी आपने सुना ये शानदार सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी सती में विजय थे जो से, एंड इस खूबसूरत गीत को गाया था रोचक कोहली और साथ में जुबिन नौटियाल, नीति मोहन की बहुत शानदार आवाज। अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश। नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: जी मैं सोनू वतम रामपुर उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: जी बहुत अच्छे हैं मैम। आज आपको कॉल लगाने का दिल हुआ तो आपके पास कॉल लगा ली। कम से कम 4-5 महीने बाद कॉल लगाया मैम।
0: जी 4-5 मंथ की बात कॉल लगाया आपका, कैसा लग रहा है आज बताइए हमें।
1: जी लगा नहीं है, मैंने आज लगाया ही है 4-5 महीने बाद।
0: हाँ वही हम बोल रहे हैं ना,
1: कॉल तो मेरी लग जाती है। आप
0: ओके, कॉल लग जाती है, बट आपने इतना लॉन्ग डिस्टेंस क्यों रखा, मतलब इतने दिनों के बाद क्यों कॉल किया है?
1: ओ बिजी थे ना इसलिए।
0: ओहो, ज्यादा ही बिजी थे।

0: शर्मा जी चंडीगढ़ से,
1: हाँ जी
0: प्रिंस पासवान जी,
1: ओके,
0: हाँ परवेज अहमद जी, सुनील कुमार जी वहां से बिहार से, गौरव ठाकुर जी और अविनाश जी,
1: हाँ
0: और
1: जी
0: राजेंद्र गंगवार जी,
1: ओके,
0: और आरजे पूनम जी,
1: हाँ जी
0: हाँ, और जितने भी लाइव सुन रहे हैं उन सभी को डेडिकेट करना चाहूंगा।
1: ठीक है, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये शानदार सा ट्रैक। दोस्तों आप भी कोई ट्रैक सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का कोई भी गाना जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, आपके दिल के करीब है, तो आप कॉल लगाइए ना, फिर सुन सकते हैं आराम से। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है हेलो फरमाइश और मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 4:56। कैसे दो घंटे का ये सफर कंप्लीट हो जाता है बिल्कुल भी नहीं पता चलता है आपके साथ, और शायद आप लोगों को भी नहीं पता चलता होगा ना कैसे 3 से 5 बज जाते हैं। आप भी सोचते होंगे ओहो 5 बज गए इतने जल्दी, अभी तो मेरा कॉल भी नहीं लगा है। बट अभी हमारे साथ ही कॉलर जुड़ी है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो मैम।
0: हेलो मैम, नमस्ते, क्या नाम है आपका?
1: मैम मेरा नाम ज्योति है।
0: जी बताइएगा, कैसी हैं आप मैम?
1: मैम मैं ठीक हूँ।
0: और बताइएगा परिवार में सब कैसे हैं आपके यहाँ पर?
1: सब ठीक है मैम, इस समय तो परिवार में।
0: जी आप बताइएगा मैम क्या करते हैं?
1: मैम मैं घर पे रहती हूँ।
0: अच्छा, हाउस वाइफ है मैम, घर पे रहती हैं, सबकी सबकी मतलब कह सकते हैं कि केयर करती हैं सबके लिए। सुबह ब्रेकफास्ट बनाती हैं, दोपहर को खाना बनाती हैं, शाम को उनके लिए डिनर बनाती हैं और अपना ख्याल रखती हैं, लेकिन बाद में। हाँ ऐसा नहीं करना है आपको, अपना ख्याल भी अच्छे से रखना है, ठीक है? बताइएगा आज कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: धड़कन मूवी का मैम।
0: धड़कन मूवी का, ओके सुनवाते हैं ये आपको मैम, धन्यवाद कॉल करने के लिए, मोस्ट वेलकम। तो चलिए व्यूअर्स सुनते हैं मैम की पसंद के टाइटल ट्रैक धड़कन फिल्म का ये गाना सुनना चाहती हैं, धड़कन धड़कन। और अभी मुझे भी दीजिएगा जाने की अनुमति, मैं आपसे मुलाकात करूंगी टुमारो मॉर्निंग, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। एंड आप सभी को वंस अगेन जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, एंड अपने परिवार के साथ रहिए, खुशियां मनाइए और ये कान्हा जी का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं मिलजुल कर सब अपने परिवार के साथ। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए और एफएम मुरादाबाद 89.6 सुनते रहिए। आज आपका कॉल नहीं लगा है तो कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, आपको ये अवसर दिया जाता है मंडे टू सैटरडे, तो कल फ्राइडे है, सैटरडे भी आपके पास है, ठीक है? आप ट्राई कीजिएगा, आपका कॉल लग जाएगा और बाकी प्यारा से गाना एंजॉय कीजिएगा, मुझे दीजिएगा अनुमति। नमस्कार।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
5: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
6: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।

0: तू तो तेरा परिवार शायद छोड़ के चल गया।
1: तो कुछ साल बाद
2: और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।
3: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर मथुरा में कन्हैया जी का दिव्य महाअभिषेक, बांके बिहारी मंदिर की विश्व प्रसिद्ध मंगला आरती और द्वारकाधीश इस्कॉन तथा प्रेम मंदिर की अलौकिक झांकियां देखने देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु खींचे चले आते हैं।
4: ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने पौराणिक कुंडों के जीर्णोद्धार, परिक्रमा पथ के चौड़ीकरण और यमुना घाटों के सौंदर्यकरण से लीलाधर भगवान श्री कृष्ण की पावन धरा को नई पहचान दी है।
3: तो आप भी इस जन्माष्टमी 4 सितंबर को ब्रज तीर्थ आइए और कृष्ण भक्ति में रम जाइए।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
5: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: बेबे सिंधा ना रोज स्कूटर ते आउंदा, मैं भी अज कल नूं स्कूटर ले जा।
4: तेनू पता ही है तेरे बापू दे सुभा दा, जाके आप गल कर ले।
3: बापू जी स्कूटर नहीं, बापू जी मैं कल नूं स्कूटर।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
4: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर मथुरा में कन्हैया जी का दिव्य महाअभिषेक, बांके बिहारी मंदिर की विश्व प्रसिद्ध मंगला आरती और द्वारकाधीश इस्कॉन तथा प्रेम मंदिर की अलौकिक झांकियां देखने देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु खींचे चले आते हैं।
5: ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने पौराणिक कुंडों के जीर्णोद्धार, परिक्रमा पथ के चौड़ीकरण और यमुना घाटों के सौंदर्यकरण से लीलाधर भगवान श्री कृष्ण की पावन धरा को नई पहचान दी है।
4: तो आप भी इस जन्माष्टमी 4 सितंबर को ब्रज तीर्थ आइए और कृष्ण भक्ति में रम जाइए।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: अरे मुखरे पर आए हाय, क्या बात है जी। बहुत ही शानदार वाला गाना एंजॉय किया श्रोताओं, और फिलहाल आर्जनी ने आप सभी के बीच कनेक्ट हो गई है। आई नो कि मैं लेट हूँ, क्योंकि देखिए बाहर का काम थोड़ा करने लग जाओ तो अक्सर लेट होता ही है। और अभी इवनिंग मस्ती शो में आप सभी के साथ कनेक्ट हो गए हैं। समय की बात करूँ तो 5:52 हो चुके हैं, लेकिन आप सभी तक अपडेट बिल्कुल हम पहुँचाएंगे। आप बिंदास रहिए, बेधड़क रहिए और आर्जनी के साथ यूं ही कनेक्ट रहिए, क्योंकि अभी ढेर सारी, अभी तो शुरुआत हुई है, ढेर सारी बातें।
1: आज की रात बेबी पार्टी ऑन, डायल लाइट्स ऑन, स्पीड ऑन, फिर मारे दम ऑन।
0: तो सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते।
2: ਓਏ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ।

0: भारत और बेल्जियम ने आज व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द विवर के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार में विभिन्न क्षेत्रों की बढ़ती भागीदारी का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया और इसे समय पर लागू करने का आह्वान किया। बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की और पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह के गठन की संभावनाएं तलाशने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग मजबूत करने के लिए आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। इसके अंतर्गत नियमित आदान प्रदान, प्रशिक्षण, अनुसंधान और रक्षा उद्योग में साझेदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और साइबर अपराध से निपटने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और बेल्जियम की संघीय पुलिस के बीच समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द विवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश और एक महत्वपूर्ण सहयोगी बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध हैं, जो आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने ये बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रांकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी उल्लेख किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत इनोवेट्स पहल के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस पहल का उद्देश्य देश के अनुसंधान और विकास आधारित डीप टेक नवाचार तंत्र को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना और सहयोग के अधिक अवसर तैयार करना है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिक्षा क्षेत्र में भारत को नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। प्रधानमंत्री ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ की स्थिति और राहत शिविरों में व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने इस संबंध में वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से टेलीफोन पर बात की। मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में गरज के साथ बारिश का अनुमान लगाया है। महिला 2020 क्रिकेट एशिया कप में आज ग्रुप ए में भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। किदांबी श्रीकांत और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के में तन्वी शर्मा और मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो को हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
3: आवश्यक सूचना 400 KV बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 KV उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
4: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
5: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
4: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
5: अरे नहीं,
6: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
5: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
4: अच्छा?
6: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
4: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आर्जेरीना के साथ कनेक्टेड श्रोताओं, और समय की बात करूं तो दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है, यानी कि 6:07 हो चुके हैं और कल है जन्माष्टमी। यानी कि सच बताओ तो मार्केट में अगर आप जाओगे इस टाइम तो बेहद बहुत बहुत बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है। तो ऐसे में अगर आप ऑफिस से निकल गए हैं तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि फेस्टिवल की वजह से आपको ट्रैफिक जाम ज़्यादा ही दिखे मिल सकती हैं। PSC के तरफ से जाए, रेलवे स्टेशन के तरफ से जाए, या फिर प्रकाश नगर चौराहे की तरफ से आप आ रहे हैं तो आपको, साथ ही साथ दिल्ली रोड की तरफ से आप क्रॉस कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको ट्रैफिक जाम मिल सकता है, क्योंकि भाई कल जन्माष्टमी है और अभी से ही, यानी कि आज से मार्केट में इतना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है कि हर कोई सामान खरीदने पर लगा हुआ है, भगवान कृष्ण जी के श्रृंगार खरीदने में लगे हुए हैं कि एक भी चीज छूट ना जाए। ऐसे में आपने पेशेंस रखना है और हॉर्न बार बार नहीं बजाना है, क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति है वो परेशान हो जाता है, आप समझ नहीं पाते। और ऐसे में क्या है ना कि ऑटो रिक्शा वाले जो भैया हो तो बीच थोड़ा सा साइड से आप निकालिए तो आप भी आसानी से निकल पाएंगे, अदरवाइज भैया उनको भी, हर किसी को बड़ी दिक्कत होती है जब ट्रैफिक जाम होता है तो। और साथ ही साथ अगर आप और भी कहीं ट्रैफिक में हैं तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, नंबर है 9823789689 ताकि जो भी उस रूट से आने वाले हैं थोड़ा संभल कर, थोड़ा बच कर निकले। अदरवाइज देखिए, मैंने आप सभी को पहले ही बता रखा है कि अगर आप कहीं निकलते हैं तो लोकेशन डालते हैं तो ग्रीन पट्टी आपको दिखाई देती है, अगर आपको इसी ग्रीन पट्टियों के अंदर ही रेड लाइन अगर आपको दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि जिस रूट पर आप जा रहे हैं उस पर आपको ट्रैफिक जाम मिलने वाला है, तो आप ऐसे भी संभाल सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। साथ ही साथ हेलमेट और सीट बेल्ट जरूर लगाना चाहिए और अपने सफर को अच्छा बनाइए और अपने घर टाइम से पहुंचिए, या फिर आप जहीं भी कहीं भी घूमने जा रहे हैं तो अच्छे से एंजॉय करिए। और कल भैया स्कूल और सरकारी दफ्तरों की तो भाई बल्ले बल्ले छुट्टियां हैं जो क्योंकि कल जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी के मौके पर भैया सरकारी दफ्तर और स्कूल कॉलेज के बच्चों की छुट्टियां है। साथ ही साथ एक और गाना सुनेंगे बहुत ही शानदार वाला, उसके बाद में

0: horribile, car... Oh, oh.
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad, 89.6 FM.
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: जी गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं, FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो 6:16 हो चुके हैं और आज की तारीख भी बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज मनाया जाता है नेशनल स्काई स्क्रैपर डे। यानी कि यह दिन दुनिया की ऊंची ऊंची इमारतों और उन्हें बनाने वाले इंजीनियरों और तकनीकी की उपलब्धियों को सम्मान देने के लिए ये डे मनाया जाता है। यानी ऐसे बहुत ऊंची इमारत जिसने कई मंजिलें होती हैं और जो अपनी आसपास की इमारतों से काफ़ी ऊंची दिखाई देती हैं, मतलब उसके पीछे का जो मेहनत है, लगन, लागत है, मतलब हम यही बोल देते हैं कि भैया बड़ी बड़ी इमारतें हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं जो बनाता है उनके पीछे की मेहनत, भाई कैसे इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें और इतनी ऊंची ऊंची इमारतें बनाते हैं। मतलब जब वो बनाते हैं ना इतनी ऊंची ऊंची इमारतें, तो उनकी मतलब शब्द कम पड़ जाते हैं उनके लिए कुछ कहने के लिए। तो किसी ऊंची इमारत को देखे तो सिर्फ उसकी ऊंचाई नहीं, उसके पीछे छुपी इंजीनियरिंग और मेहनत को जरूर याद कीजिए, क्योंकि उनकी मेहनत के बिना कोई भी काम, कोई भी इमारत, कोई भी मकान, कोई भी मंजिल नहीं बना सकते हैं। उनके पीछे की जो मेहनत है, जब वो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर ऊपर चढ़कर जब वो प्लास्टर करते हैं और उसकी जुड़ाई करते हैं, तो मतलब बहुत देख के भी डर लगता है। बट उनके लिए सैल्यूट है कि वो धूप, कड़ी धूप में भी लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं, हमें एक छत देते हैं बनाकर जिसमें हम आराम से रह सके, धूप और बारिश से बच सके। तो हमें उनकी सराहना करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, इसीलिए डेज मनाए जाते हैं। और कुछ मैसेज है, विकी सागर जी का मैसेज आता है, भैया आज तो लेट हो गई हो। जी बिल्कुल लेट हो गए हैं, आज तो हम गुड इवनिंग पहुंचाते साथ ही साथ वेरी गुड इवनिंग जी। अगले मैसेज की बात करूँ तो मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी कनेक्ट होते हैं। सैयद छारिकली जी, रीना जी गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हैं जी, आप बताइए, आपका शो इवनिंग मस्ती सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और इस शो में जानकारी के साथ साथ गाने भी बहुत अच्छे प्ले करती हो आप, थैंक यू सो मच जी। अगले मैसेज की बात करूँ तो बबली अंजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप जी, हम सभी आपके प्रोग्राम में शामिल हो गए हैं, आप सभी को प्यारी प्यारी हेलो, गुड वाली इवनिंग है आप सबको हमारी तरफ से, थैंक यू सो मच जी, आपको भी वेरी गुड इवनिंग। और आई होप कि आप सभी की कल की जो तैयारियां है वो जोरों शोरों से है और बहुतों की शॉपिंग अभी रहती है, बहुतों ने अभी शॉपिंग कर ली है, तो आप मुझे बिल्कुल मैसेज करके बता सकते हैं क्योंकि कल है। और आप सभी को एडवांस में हैप्पी जन्माष्टमी, तो आप बता सकते हैं कि आपकी जन्माष्टमी की तैयारियां है भैया वो कैसी चल रही हैं, जरा मैसेज करके बताइए। नंबर है 9837896896 पर आपने मैसेज करके बताना है, क्योंकि मार्केट में अगर देखा जाए तो भैया जमकर भीड़ लगी हुई है हर जगह, गली मोहल्ले में भाई एक ही शोर शराबा। और कल का जो रौनक होगा ना वो अलग ही नेक्स्ट लेवल वाला होगा, क्योंकि कहीं कहीं जागरण होएंगे, जागरण कराए जाएंगे भगवान जी के कृष्ण जन्माष्टमी के लिए, और रात का इंतजार किया जाता है कि जब कब कृष्ण जी का जन्म होगा और कब चांद दिखेंगे। भैया पेट में चूहे भी कूदते रहते हैं ना इसलिए तो हम बिल्कुल बता सकते हैं। लेकिन कल का जो दिन होता है ना बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास, एक अलग ही रौनक, एक अलग ही हर गली मोहल्ले में एक अलग ही शोर शराबा होता है, मतलब माइंड ब्लोइंग। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं, उसके बाद कनेक्ट होते हैं और करेंगे और भी ढेर सारी बातें। फिलहाल आपने कहीं नहीं जाना है, आर्जेंटीना के साथ कनेक्ट रहना है, ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी, क्योंकि गुनगुनाना बहुत जरूरी है।
1: आई गए जनाब, फिर तुसी
2: तू इत्थे
1: क्यों? मैं नहीं आ सकती, मेरी भैन दा घर है।
3: और जस्सी अपनी भाभी ले की लेके आए तो सोना भी होगा सब।
2: तू भाभी नाल गल कर ले।
1: क्यों, मैं क्यों करा, तुसी करो।
4: सारी गल्लां खड़े खड़े कर लिए
1: नाल, मेरी गल सुन लो जे।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 6:00 यानी कि 28 मिनट हो चुके हैं। अगर आप सोना खरीदना चाह रहे हैं तो बिल्कुल खरीद सकते हैं, क्योंकि सोने में थोड़ी गिरावट आ गई है भैया। क्योंकि देखिए, जो भी चीज़ सस्ती हो भैया खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में आप सोच रहे होंगे कि नहीं यार थोड़ा और सस्ता हो जाएगा तब खरीद लेंगे, इस चक्कर में मत पड़िए, पता चले कि और भी महंगी हो जाए तो आप खरीद नहीं पाएंगे। अभी थोड़ा रेट गिरा हुआ है, उसका आराम से कम हुआ है, तो आप जाइए मार्केट में खरीद कर ले आइए। अदरवाइज बाद में आप सोचेंगे तो भाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शादियों का सीजन बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है ना। देव उठने के बाद फिर से घरों में शादियां शुरू हो जाएंगी, गली मोहल्ले में अलग ही रौनक। और साथ ही साथ यहाँ जी गीता जी कहती हैं कि रीना मैम, आपने पूछा कि कृष्ण जन्माष्टमी की आपकी खरीदारी कैसी रही है। रीना मैम आप तो बताइए कि आपकी खरीदारी कैसी रही है। जी मेरी खरीदारी मत पूछिए, बहुत अच्छी रही है। मार्केट से ही बहुत ज़्यादा भीड़ है। फिलहाल घर पे सब तैयारियां चल रही हैं और हमारी भी इधर भी तैयारियां हो गई है। चलिए फिलहाल और भी ढेर सारी एक कड़क सवाल लेकर आने वाले आप सभी के बीच, और जानेंगे भैया कौन सा वाला है ये कड़क सवाल। पर आंसर देने के लिए रेडी है ना। आई नो, मुझे पता है कि भैया आप बहुत इंटेलिजेंट है, आप इंतजार करते रहते हैं कि कब आएगा भाई, हमें राइट आंसर भी तो पहुंचाना है ना आप सभी के पास, तो इसीलिए मुझे पता है आप इंतजार करें। तो फिलहाल ये गाना सुनते हैं, उसके बाद करेंगे।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: उत्तर प्रदेश आज वैश्विक निवेश का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य बन चुका है।
4: इसी का सुखद परिणाम है उत्तर प्रदेश और जापान की साझेदारी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जापान यात्रा से ये संबंध और सुदृढ़ हुए।
3: यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 से मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रा और पर्यटन के क्षेत्र में खुलेंगे निवेश के नए द्वार, साथ ही हजारों रोजगार का मिलेगा सशक्त आधार। ईड़ा में 500 एकड़ की जापानी सिटी से यूपी जापान औद्योगिक साझेदारी को मिलेगी नई ऊंचाई।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
5: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं, और समय की बात करूं तो 6:36 हो चुके हैं और आप सभी के बीच में लेकर आ गई कड़क म्यूजिक, जिसको आपने सुनना है और बताना है गाने का क्या नाम है। तो चलिए हम प्ले करते हैं। बस ये कहना चाहूंगी कि रेडियो के जो वॉल्यूम है ना वो बढ़ा लीजिए, तभी आप इसका आंसर सही से दे पाएंगे, अदरवाइज तो आप कंफ्यूज ही कंफ्यूज रहेंगे। जी बिल्कुल सही काम नहीं, कंफ्यूज रहेंगे, इसलिए थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाना है और ध्यान से सुनना है आखिरकार म्यूजिक किस गान म्यूजिक है जो मैं प्ले करूंगी, गाने का क्या नाम है।

चलिए जी, जल्दी जल्दी सोचिए और मैं आपको मूवी का नाम भी बता देती हूँ, लेकिन गाना आपने गैस करना है। मूवी का नाम है शादी करके फंस गया यार, मूवी का नाम है। और साथ ही साथ सोनू निगम और अलका याग्निक जी की आवाज में ये मूवी 2006 में रिलीज हुई थी। बस अब आपने बताना है कि जो मैंने म्यूजिक प्ले किया है गाने का क्या नाम है। मूवी का नाम है शादी करके फंस गया यार, लेकिन गाना तो सिर्फ आपको ही बताना पड़ेगा। चलिए एक बार और हम प्ले करते हैं।

चलिए जी, जल्दी सोचिए और मैसेज करिए। नंबर है 9837896896 पर आपने मैसेज करके बताना है कि जो मैंने म्यूजिक प्ले किया है भैया, गाने का क्या नाम है। चलिए एक और गाना आप सभी के बीच प्ले करते हैं।

0: ਮਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਡ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਫਿਰ ਵੱਧ ਸੇ
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad, 89.6 FM.
2: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर मथुरा में कन्हैया जी का दिव्य महाअभिषेक, बांके बिहारी मंदिर की विश्व प्रसिद्ध मंगला आरती और द्वारकाधीश इस्कॉन तथा प्रेम मंदिर की अलौकिक झांकियां देखने देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु खींचे चले आते हैं।
3: ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने पौराणिक कुंडों के जीर्णोद्धार, परिक्रमा पथ के चौड़ीकरण और यमुना घाटों के सौंदर्यीकरण से लीलाधर भगवान श्री कृष्ण की पावन धरा को नई पहचान दी है।
2: तो आप भी इस जन्माष्टमी 4 सितंबर को ब्रज तीर्थ आइए और कृष्ण भक्ति में रम जाइए।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
4: हां जी, मैं क्या किथे ध्यान है जी, कंफ्यूजन है ना, हाँ, कि आखिरकार आज मैंने कौन सा म्यूजिक प्ले कर दिया है जिसका आंसर मतलब आप गाना समझ नहीं पा रहे कि आखिरकार गाना कौन है। लेकिन मैंने आपको मूवी का नाम भी बता दिया कि मुझ शादी करके फंस गया यार, अलका याग्निक और कुमार यानी कि सानू निगम जी की आवाज में ये गाना है। लेकिन आपने गैस करना है कि आखिरकार जो म्यूजिक प्ले कर रही हूँ गाने का क्या नाम है।

0: चलिए जी, सोचिए और मैसेज करिए। और साथ ही साथ देखिए, चीनी प्याज सब्जी जितनी भी महंगी होने के बाद अब नजर है गेहूं के ऊपर। हां जी, गेहूं आखिरकार कितने रुपए महंगे हो गए हैं, नहीं हुए हैं वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक और गाना, फिर हम बताएंगे आपको कि भैया गेहूं के भाव भी बढ़ गए हैं, साथ ही साथ सोने के भाव थोड़ा डाउन हुए हैं, तो आप ले सकते हैं जिनको भी सोना लेना है।
1: आए डायलॉग
2: यार, मेनू कदे कदे ऐ लगता कि तू
3: तू कह दे।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: हाँ जी, और देखिए आरजे रीना भी आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई है। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो 6:47 हो चुके हैं, और देखिए चीनी सब्जियां महंगी होने के बाद, चावल महंगे होने के बाद, गेहूं 150 रुपए महंगे हो चुके हैं जी। देखिए हर चीज की महंगाई बढ़ती जा रही है, कभी किसी चीज का महंगाई बढ़ रहा है, कभी कुछ ऐसी महंगाई देखिए हर चीज पर बढ़ती रहेंगी। लेकिन साथ ही साथ अपने पेशेंस बनाना है, और घर के खर्चे और घर का काम तो करना ही है, पेट तो देखिए भरना ही है। ये पेट के वजह से इंसान इतना कुछ करता है, कमाता है दिन रात इस पेट के लिए, लेकिन ये पेट कभी भरता नहीं है। पता नहीं कहाँ चला जाता है खाना, कुछ समझ ही नहीं आता है। मतलब ऐसा होना चाहिए कि एक दिन खाओ और साल भर के लिए छुट्टी, फिर नए साल को खाओ, फिर छुट्टी, फिर नए साल को खाओ, ऐसा होना चाहिए था। तो सामाने भी महंगे नहीं होते, आराम से आप इंजॉय कर पाते। फिलहाल 150 रुपये किलो, यानी कि 50 रुपये बढ़ा दिया गया, 150 रुपये गेहूं के जो भाव है वो बढ़ गए हैं। साथ ही साथ आप सभी के लिए आज मैंने म्यूजिक प्ले किया है, जिसका आंसर भैया हाँ ठीक है आ गए हैं, लेकिन अभी बहुत से कन्फ्यूजन है। तो एक बार और हम प्ले करते हैं, क्योंकि अगली बारी आपकी मैसेज की ही है।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आर्जरीना के साथ. आप कनेक्टेड श्रोताओ, समय की बात करूँ तो 6:54 हो चुके हैं और अब आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ेंगे भैया कि किनका मैसेज हमारे पास राइट आंसर आया है, क्योंकि आज का म्यूजिक बड़ा ही प्यारा है और मूवी का नाम मैंने बता ही दिया.

बबली अनजान जी का मैसेज आता है और ये राइट आंसर के साथ कनेक्ट होती है। दीवाने दिल को जाता जा कहीं आराम नहीं। क्या बात है जी, आपने राइट आंसर पहुंचा। चलिए अब और देखते हैं भैया और किन का हमारे पास राइट आंसर। जय श्री राम। रीना जी क्या हाल चाल है आपके? बहुत बढ़िया है जी। ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं बबलू सैनी जी, ग्राम कल्याणपुर पीतल नगरी मुरादाबाद। हेलो रीना मैम, गुड वाली इवनिंग है, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, वेलकम टू रीना मैम। अहो ललिता कश्यप जी कनेक्ट होती हैं, बिंदास गाने चला रही हैं, चाय पी लीजिए। बिल्कुल जी चाय पी लीजिए मैम, पानी पूरी और मोमोज खा लीजिए। नो नो नो नो बाबा, जंक फूड से कोसों दूर हो गए अब हम। अब हमने अपने आत्मा पे ना कंट्रोल कर लिया है मैंने कि अब नहीं खाना है। आराम नहीं। और जन्माष्टमी की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। और ये मार्केट में गई हुई है भैया सामान लेने के लिए और इनका कहना है कि भैया बहुत बहुत बहुत ज्यादा भीड़ है। बिल्कुल जी सही कहा आपने, बहुत ज्यादा भीड़ है मार्केट में। और साथ ही साथ आज शक्ति कपूर जी का बर्थडे है, तो हैप्पी वाला बर्थडे जी, हमारी रेडियो की टीम की तरफ से भी हैप्पी वाला बर्थडे। और जो आपने आज कृष्ण कहा है, मतलब जो आपने आज म्यूजिक हमने प्ले किया था उसका गलत गैस आपने किया है। इनका लेकिन इन्होंने बोला है कि कृष्णा का है, लेकिन कृष्णा जी का तो ये गाना ही नहीं है। विकी सागर ने जो भैया मैसेज डिलीट कर दिया है कि हमने गलत आंसर दिया, इसलिए मैसेज डिलीट कर देते हैं। दौलतबाग मुरादाबाद से अंसार हुसैन जी कनेक्ट होते हैं। रीना मैम हमारा सवाल है आपसे, अगर सारी दुनिया सच बोलने लगेंगे तो क्या ही रहेगा, क्या हो सकता है? अरे बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता, अच्छी बात है, लड़ाइयाँ नहीं होगी, सब सच के राह पर चलेंगे, सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे। क्योंकि देखिए कितना भी झूठ बोल लीजिए, जीत तो सच्चाई की ही होगी।

चांदनी जी कनेक्ट होती है मुरादाबाद से और इनका कहना है कि राइट आंसर है शादी करोगे मुझसे। अरे रे रे रे नहीं नहीं भैया नहीं करेंगे, गलत आंसर है आपका, सच बताओ तो बिल्कुल गलत आंसर है। चलिए फिलहाल हम यही लेते हैं जाने की इजाजत, कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह। फिलहाल आप सभी को एडवांस में हैप्पी जन्मदिन।

0: और सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह के गठन की संभावनाएं तलाशने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग मजबूत करने के लिए आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड फ्यूल या सप्लाई चेन हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश और एक महत्वपूर्ण सहयोगी बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध हैं जो आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने ये बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रांकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी उल्लेख किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत इनोवेट्स पहल के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस पहल का उद्देश्य देश के अनुसंधान और विकास आधारित डीप टेक नवाचार तंत्र को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना और सहयोग के अधिक अवसर तैयार करना है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिक्षा क्षेत्र में भारत को नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। किदांबी श्रीकांत और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स में कनाडा के विक्टर लाई को हराया, जबकि सात्विक और चिराग की पुरुष डबल्स जोड़ी ने फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव और टोमा जूनियर पोपोव को हराया। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा और मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला तनिषा क्रेस्ट्रो को हार का सामना करना पड़ा। महिला टी20 क्रिकेट एशिया कप में आज ग्रुप ए में भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। भारत ने पहले मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
3: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा।
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

नमस्कार, आदाब। मैं आपकी रेडियो दोस्त छाया। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। कहते हैं स्वस्थ जीवन जीना जिंदगी की जमा पूंजी और योग करना रोग मुक्त जीवन की कुंजी। जी हाँ, आज हम योग पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे मन और शरीर को स्वस्थ रखने के

0: फिर से आप सभी का स्वागत है। आपने ट्यून इन किया है FM मुरादाबाद 89.6। आप सुन रहे हैं आपके शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन। आनंद के साथ हैं आप और इस वक्त हमारे स्टूडियो में एक खास स्पेशल गेस्ट को हमने इनवाइट किया है। श्रोताओं, देखिए आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में ना बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती है हमारे साथ जिनको हम अक्सर अवॉइड कर देते हैं, स्पेशली छोटे छोटे दर्द जिन्हें हम कहते हैं कुछ नहीं है, हाथ में हल्का सा दर्द तो है, मगर कुछ नहीं है, मैं एक मेडिकल से गोली लाऊंगा खाऊंगा मेरे आराम मिल जाएगा। बट वही चीज कभी कभी ना जब हम खा रहे होते हैं तो हमें लगता है आसान है, बहुत ईजी है, बट जब आगे चल के वो चीज बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है फिर हमें समझ में आता है काश यार उस टाइम पे हम उस एक्सपर्ट को दिखा देते, उस डॉक्टर से मिल लेते तो शायद हमारे लिए ये इतनी बड़ी समस्या नहीं बनती। और आज बहुत सारी ऐसी समस्या है जैसे मैंने आते जिक्र किया शुरुआत की दर्द के साथ। तो आज हमने एक बहुत ही कमाल की स्पेशलिस्ट को अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है। श्री साई हॉस्पिटल के बारे में ऑफकोर्स आप जानते हैं, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट हमारे रेडियो पे आप सुनते हैं। डॉक्टर निदा नसीम मैम को ही इन्वाइट किया जाए, बहुत सारी जो दर्दों के हमने चिट्ठा बना रखे ना जिससे भी बात करते हैं। तो मैम का वार्म वेलकम करते हैं। मैम हाउ आर यू, कैसे हैं आप? जोरदार तालियों से वेलकम टू एफएम मुरादाबाद।
1: थैंक यू सो मच। मैं हूं डॉक्टर निदा नसीम, इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट फ्रॉम श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद।
0: थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। पहले ही बताइए आपको रेडियो पे आके कैसा लग रहा है?
1: बहुत अमेजिंग।

0: मतलब आपने अपने वो हॉस्पिटैलिटी से निकल के दूसरी हॉस्पिटैलिटी में आप आज आ गए हो,
1: डिफरेंट एरा.
0: या तो मतलब थोड़ा सा कूल लग रहा है, कुछ नया सा है.
1: या एग्जैक्टली, इट्स वेरी एक्साइटिंग. A new thing, something new thing is.
0: Thank you so much, ma'am. तो देखिए, हम जो डॉक्टर्स होते हैं ना, उनसे भी हैपनिंग बातें करवाई लेते हैं. ये यही तो खासियत होती है एक रेडियो जॉकी की. So, मेरे स्टूडियो में मैं मैम के साथ अकेला नहीं हूँ, दो लोग और भी हैं, उनके लिए भी मैं तालियां बजा देता हूँ. उनकी आवाज आप भले ही नहीं सुनोगे, अलग है. So, see, आगे बढ़ते हैं मैम. सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल जो मेरे को लगता है कि मुझे पर्सनली आपसे पूछना है, ये दर्द विशेषज्ञ डॉक्टर कौन होते हैं, पहले तो मुझे बताओ मैम.
1: क्योंकि बहुत लोगों का सवाल है, ये कौन हो गए, कहाँ से आ गए ये अभी. एक्चुअली देखिए, दर्द दो तीन तरह का दर्द होता है, ठीक है. एक होता है अक्यूट पेन, एक होता है सब अक्यूट पेन, और फिर आता है हमारा क्रॉनिक पेन. अक्यूट पेन तो वो हो गया जो कि चार हफ्ते या चार हफ्तों से कम का दर्द हुआ, जो कि कोई जैसे चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, ऑपरेशन के होने वाले बाद वाला जो दर्द होता है.
0: हाँ जी मैम.
1: वो अक्यूट में आता है.
0: ओके.
1: फिर हम आते हैं सब अक्यूट पेन में, जो कि चार हफ्ते से लेकर हमारा छह हफ्ते या आठ हफ्ते तक रहता है.
0: okay,
1: ठीक है.
0: okay,
1: फिर हमारा आता है क्रॉनिक पेन. अब दर्द और ज्यादा बढ़ता बढ़ता हमारा क्रॉनिक में आ गया है, जो कि 12 हफ्ते, तीन महीने से ज्यादा होने वाले दर्द को क्रॉनिक पेन बोलते हैं.
0: ओके.
1: अब इसमें ऑपरेशन वाले पेशेंट भी आते हैं कि भाई ऑपरेशन तो हो गया है लेकिन दर्द हमारा जा नहीं रहा है ना. जैसे गठिया हो गया कि घुटना हमने बदलवा लिया है, बट उसका दर्द अभी भी चल ही रहा है, दर्द हमारा नहीं जा रहा है, तो वो दर्द हो गया. या फिर कोई पहले से कोई पेन हो गया, माइग्रेन हो गया, कैंसर से जुड़ा दर्द हो गया, कमर का दर्द, एड़ियों में होने वाला दर्द, कूल्हे का दर्द. तो जैसा कि मैंने बताया, क्रॉनिक पेन जो तीन महीने से होने वाले बाद होने वाला जो दर्द होता है, वो क्रॉनिक में आता है.
0: ओके.
1: और उसी के हम विशेषज्ञ हैं, उसके लिए हम दवाइयां देते हैं और कुछ और भी फर्दर मैनेजमेंट होते हैं, जो कि इंटरवेंशनल मैनेजमेंट में आते हैं, वो हम करते हैं.
0: ओके. बहुत ही बढ़िया. तो गाइस, ये जो दर्दों का खेल है ना, आज आपको पता लगेगा होता क्या है. छोटे छोटे दर्द होते हैं, वैसे इतने सारे भी दर्द होते हैं, मुझे पता नहीं था मैम. आज मेरे को पता लग गया कि इतने सारे दर्द भी होते हैं. दो तीन ही सुने थे मैंने, बट ये थोड़े बड़े लिस्ट आ गई है. एग्जैक्टली. सो दोस्तों, अब आपको ना सारे दर्दों के बारे में तो पता चल गया है. अब जो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो होता है मैम कमर दर्द. कमर दर्द एक ऐसा दर्द होता है जो किसी को भी हो सकता है. तो कमर दर्द के जो मुख्य कारण होते हैं, उसके जो सिम्टम्स होते हैं, वो क्या होते हैं, अगर थोड़ा विस्तार से आप बताएं.
1: देखिए, कमर दर्द के कारण बहुत सारे हो सकते हैं. सबसे पहले हम आते हैं हमारा पोस्चर. हम कैसे बैठे हैं, कितनी देर बैठे हैं, हमारा प्रोफेशन क्या है. ज्यादा जैसे फॉर एग्जाम्पल आईटी प्रोफेशनल हो गए, जिनको डेस्कटॉप पे बैठे रहने पड़ता है, तो उनमें क्या होता है, गर्दन में होने वाला दर्द और कमर दर्द, क्योंकि दबाव पूरे शरीर का जो वेट है हमारा उस पार्ट में जाता है, तो उन लोगों में ज्यादा होते हैं. ठीक. फिर आता है हमारा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी. हमारा डाइट प्रॉपर नहीं है, मोस्टली फीमेल्स में होता है बिकॉज ऑफ साइक्लिकल लॉसेज एंड ऑल. तो क्या होता है कि एनीमिया होना क्रॉनिक, और विटामिन डी डेफिशिएंसी होना, जो कि बोन्स को चाहिए.
0: करेक्ट.
1: ठीक है. B12 डेफिशिएंसी होना. तो इन सारी अब आते हैं. इसके बाद होता है हमारा मांसपेशियों में होने वाला दर्द.
0: ओके.
1: ठीक है. हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं. फिर आता है हमारी बोन में होने वाले जो दर्द होते हैं, जैसे कि फैसेट ज्वाइंट आर्थ्रोपैथी, जो बोन में भी बहुत सारे हमारे ज्वाइंट्स होते हैं, तो उन ज्वाइंट का क्या बोलते हैं, अर्थराइटिस बोलते हैं. फैसेट आर्थ्रोपैथी हो गया, डिस्क का पीछे की तरफ जाना, जिसकी वजह से नसों में दबाव पड़ना. तो वो जो दर्द है वो कमर के साथ साथ पांव में भी जाएगा. जो आपने सुना होगा शैटिका होती है, पांव में झंझनाहट होना, कमर से पांव में जाना, तो वो सारे हमारे कमर के दर्द के कारण होते हैं. चीज मैं ऐड करना चाहूंगी इसमें, आई जस्ट फॉरगॉट. कुछ पेशेंट क्या होते हैं ना, ओबेज होते हैं, मॉर्बिड ओबेसिटी, वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ना, तो वो भी एक कारण इसमें आता है कि हमारा जो स्पाइन है वो मैक्सिमम लोडिंग के साथ में गुजर रहा है. तो जब ओवरलोडिंग हो जाती है वजन ज्यादा बढ़ने की वजह से, तो उसकी वजह से ये दर्द और ज्यादा बढ़ने लगते हैं, क्योंकि दबाव जो है डिस्क पे, हमारे स्पाइन पे, मांसपेशियों पे, वो और बढ़ जाता है. दूसरा आता है कि पेशेंट कोई और बीमारियों से जूझ रहा है, जैसे कि हमारा डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया. ये सारी बीमारियां क्या करती हैं कि हमारी मांसपेशियों की जो नर्व की जो क्षमता होती है दर्द बर्दाश्त करने की, वो कम हो जाती है. थोड़ा सा भी दर्द उसको बहुत ज्यादा लगता है.
0: ओके मैम, ये तो हमने बात कर ली सिम्टम्स की, अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की.
1: ट्रीटमेंट देखिए, ट्रीटमेंट डिपेंड करता है पहले पेशेंट कितने टाइम से पेशेंट को दर्द है.
0: ओके.
1: और दर्द किस तरह का दर्द है.
0: किस तरह का दर्द है.
1: नसों का दर्द में क्या होता है, पेशेंट बोलेगा कि मुझे भाई झंझनाहट हो रही है, आग सी निकल रही है, मेरा घुटना या पांव पूरा सुन हो गया है। तो ट्रीटमेंट पहले तो हमारा हम मेडिसिन देते हैं, न्यूरोपैथिक नोसिसेप्टिव दोनों की अलग अलग दवाइयां होती हैं, वो देने के बाद में हम आते हैं जांचें कराते हैं, एमआरआई में प्रॉपर पता चलेगा कि भाई कौन सा डिस्क है, कौन से लेवल पे कितना कंप्रेशन है, कितना डायमीटर है कैनाल डायमीटर, उसके बाद में हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं इंटरवेंशन की। अब इंटरवेंशन क्या होता है, लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि भाई कमर में सुई लगाएंगे डॉक्टर साहब तो उससे तो और भी ज्यादा दर्द बढ़ जाएगा। ये बहुत ही बोलते हैं ना कि मिथ है, ये इट्स अ मिथ कि स्पाइनल देने की वजह से दर्द हमारा और ज्यादा बढ़ गया, आपने भी सुना होगा है ना, ये बहुत ही बड़ा मिथ है। मैं आज ये क्लियर करना चाहती हूँ सब लोगों के साथ में। तो क्या होता है कि जो हम इंजेक्शन देते हैं, अच्छा वो जो दर्द होता था वो बहुत पहले सुइयां दूसरी आती थी, जो हम कमर में टीका लगाते थे वो सुइयां दूसरी थी। आज के जमाने में मॉडर्न एनेस्थीसिया में हम बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ नीडल यूज करते हैं जिसकी वजह से दर्द नहीं होता। वो जो दर्द है वो मांसपेशियों का क्या बोलते हैं ना वीकनेस की वजह से वो दर्द होता है।
0: तो मतलब इसमें डॉक्टर की और इंजेक्शन की कोई गलती नहीं है,
1: बिल्कुल भी नहीं है।
0: ये आपने बहुत अच्छा मिथ दूर किया है।
1: और इसकी वजह से क्या होता है ना कि लोग डर गए हैं कि भाई हम तो सुई लगवाएंगे ही नहीं। आज भी कुछ कुछ पेशेंट्स आते हैं वो बोलते हैं कि नहीं मैं तो ये लगवाऊंगा ही नहीं, बिकॉज मुझे तो दिमाग में वो इमेज है कि इस सुई से दर्द मेरा बढ़ जाएगा, तो वो मिसकंसेप्शन है। अच्छा बात आपके क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्या है वो नीडल इंटरवेंशन डिपेंड करता है कि कौन से लेवल में कितना कंप्रेशन है।
0: okay.
1: हम सियाम और सियाम जो एक्सरे मशीन होती है, एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में हम उस पर्टिकुलर नर्व को टारगेट करते हैं, जिस भी लेवल का कंप्रेशन होगा हम उस नर्व को टारगेट करते हैं, तो ये इसका इलाज है।
0: मैम आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया इसको, थैंक यू वेरी मच। अच्छा मैम आजकल कुछ दर्द के रीजन ये स्ट्रेस और ये तनाव भी है क्या?
1: बिल्कुल,
0: मतलब मेरे को पर्सनली ऐसा आ रहा है कई बार मेरे को भी जब कभी कभी प्रेशर आ जाता है ना काम का तो मेरे को दर्द सर में होने लगता है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्या मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि दिस इज नॉर्मली होगा, तो क्या एक्चुअली इसका रीजन ये भी हो सकता है क्या?
1: बिल्कुल हो सकता है। देखिए जो भी दर्द 3 महीने से ज्यादा प्रोलॉन्ग प्रोग्रेस करता है तो उसमें क्या होता है कि दर्द तो है
0: जी,
1: अब क्या है कि मैंने कोई गर्म प्लेट छुई वो सर मेरे दिमाग पे आओ, मुझे पता चला कि भाई दर्द हो रहा है, मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया। ठीक है, मैं एग्जांपल बहुत छोटा सा मैं ऐसे दे रही हूँ आपको, क्या अब क्रॉनिक पेन में होता है बार बार वो सिग्नल ब्रेन पे जा रहे हैं। ब्रेन में क्या हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है बार बार ना, इम्पल्स जनरेट हो रही है। अब 3 महीने से कोई भी दर्द ज्यादा प्रोग्रेस करता है तो वो जो ट्रिगर जो फैक्टर्स हैं वो बाकी जो ब्रेन में लिम्बिक सिस्टम होता है जो हमारा इमोशंस को कंट्रोल करता है,
0: जी जी
1: ठीक है, इमोशंस को कंट्रोल करता है, उस पे जाके वो ट्रिगर करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, दर्द हमें और भी ज्यादा पता चलता है, पेशेंट को लगेगा कि थकान हो रही है बहुत ज्यादा, बेड से उठने की इच्छा नहीं हो रही है, मन नहीं कर रहा है, मेमोरी लॉस होना, हमने कुछ बोला सामने वाला भूल जाएगा, बार बार चीजों का भूलना, क्या बोलते हैं ना, जिस काम में मन लगता था, सपोज आपका काम है ये रेडियो जॉकी पे काम करना आपको अच्छा लगता है, तो आपका लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा वट एवर द वर्क यू लाइक।
0: ओके
1: ऐसे
0: ओके मैम, सो मतलब मुझे ना ऐसा भी लगता है कई बार कि आजकल का लाइफस्टाइल भी इसका कारण बनता जा रहा है क्या?
1: डेफिनेटली,
0: जैसे आजकल तो खैर सोशल मीडिया की तो बात ही नहीं करेंगे, ये तो है ही सबसे बड़ा सरदर्द, बट फिर भी इसके अलावा आजकल लोगों का रूटीन भी बहुत चेंज हो गया है, तो क्या इसकी वजह से भी कुछ चीजें कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो दर्द को कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं मैम?
1: बिल्कुल, क्या होता है कि हम हमारा जो लाइफस्टाइल आजकल बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो गया है, सोशल मीडिया AI आ गया है, लोगों का जो ध्यान है, इवन नॉट अडल्ट आई एम टॉकिंग अबाउट जो बच्चे हैं, जो जेंजी हैं, जेन अल्फा है,
0: बीटा है,
1: अब बहुत सारी जनरेशन आ गई है, तो क्या होता है कि इनका ध्यान सोशल मीडिया पे ज्यादा हो गया है। मैं अपने घरों में भी देखती हूँ बच्चों क्या है कि फोन देखते हैं, तो पोस्चर उनका खराब हो रहा है। पुराने जमाने में क्या होता था कि बच्चे फिजिकल एक्टिविटी करते थे, आजकल वो फिजिकल एक्टिविटी हो नहीं रही है। लोग जो हैं, जो यंग जनरेशन के हैं, वो गैजेट्स में इन्वॉल्व हैं। कुछ लोग अपने वर्क रिलेटेड उनको गैजेट में इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, दे हैव टू गिव प्रोलॉन्ग सिटिंग, तो ये वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा ना इम्बैलेंस चल रहा है बेसिकली, तो जिसकी वजह से कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर नहीं पा रहा है। तो हम अपने आप को अपने शरीर को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं।
0: Exactly.
1: तो क्रॉनिक पेन का सबसे पहला इलाज मैं ये बोलूंगी कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आप किस टाइम पे क्या खा रहे हो वो आपने ध्यान में रखना है, किस समय पर खा रहे हो ये इम्पोर्टेंट है।
0: बिल्कुल मैम।
1: और टाइम ऑफ स्लीप, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होना, तो हर एक चीज फैक्टर ये बहुत बड़ा रीजन है क्रॉनिक पेन का, और इलाज भी इसका यही है। जो भी पेशेंट मेरी ओपीडी में आते, सबसे पहले मैं उनको ये बोलती हूँ, डाइट मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज करो, यही सब मैं बोलती हूँ।
0: मतलब लाइक मुझे भी ऐसा लगता है जैसे आजकल की जनरेशन, अब ऑलरेडी हम पूरा दिन काम कर रहे होते हैं, उसके बाद हम रात को भी अपना मोबाइल देखना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए, हमारी आंखें जो
1: बीच में भी हम देखते हैं,
0: फिर भी हम देख रहे होते हैं, करेक्ट। तो कहीं ना कहीं आंखों पे उसका जब इम्पैक्ट पड़ता है तो वो सरदर्द भी बनता है।
1: बिल्कुल, माइग्रेन, हेडेक होना,
0: करेक्ट। तो मैं वहीं पर आ रहा था कि माइग्रेन और सामान्य सरदर्द में क्या फर्क होता है मैम?
1: देखिए, माइग्रेन और सामान्य सरदर्द, माइग्रेन क्या होगा, एपिसोड पे डिपेंड करता है, ठीक है, कितने एपिसोड दिन में आ रहे हैं और हफ्तों में कितने एपिसोड्स आ रहे हैं, दवाइयाँ आप कौन सी खा रहे हो, ठीक है, और प्लस आपका लाइफस्टाइल हो गया, कितनी बार आपको हो रहा है अगर, और फिर आते हैं आपके साइंस जो हम पूछते हैं पेशेंट को कि भाई अगर माइग्रेन है आपको, तो माइग्रेन में पेशेंट को फड़फड़ाता हुआ, कुछ हेडेक होता है, पल्सेटाइल जिसे हम बोलते हैं, फोटोफोबिया होगा, ग्लेयर होगा, किसी को नॉइस से होता है कि भाई तेज साउंड से भी माइग्रेन। सामान्य सरदर्द में ये सारे सिम्टम्स लक्षण नहीं होंगे, माइग्रेन में ये फड़कता हुआ दर्द होना, लाइट से, साउंड से, किसी भी तेज चीख से, इनफैक्ट एसी की हवा से भी कभी कभी होता है ट्रिगरिंग फैक्टर। और ये तो हम माइग्रेन की बात कर रहे हैं, माइग्रेन के अलावा भी एटिपिकल फेशियल पेन्स होते हैं, जैसे कि ऑसिपिटल न्यूरेलजिया, पेशेंट बोलेगा कि भाई सीधी मेरे पीछे के हिस्से में दर्द है, जिसे बोलते हैं ऑसिपिट, पीछे से वो आंखों की तरफ दबाव पड़ता है, तो हमारी पीछे की नस होती है ऑसिपिटल, ऑसिपिटल नर्व, तो उसका नस का घूम जाना मांसपेशियों में या उसकी सराउंडिंग जो मांसपेशियां हैं का घूम जाना, तो उसकी वजह से ये दर्द होता है। तो दर्द के बहुत सारे कारण हैं।
0: बिल्कुल, डॉक्टर निदा नसीम हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से, और आज हम उनसे बहुत सारे दर्द के ऊपर बात कर रहे हैं। निदा मैम, कई बार ऐसा होता है, डॉक्टर साहब आपने भी देखा होगा, यू नो यूजुअली आज भी ग्रामीण इलाकों में भी ऐसा होता है, हम भी कई बार करते हैं कि छोटा सा दर्द हुआ हम अवॉइड कर देते हैं, और ये दर्द लगातार भी हो रहा होता है, कहीं बहुत टाइम से चल रहा होता है, बट हम बहुत टाइम से इसे अवॉइड करते हैं कि हमने पेन किलर लिया, मेडिकल पे गए, हमने एक पेन किलर लिया, रिलीफ मिला, देन हमने अवॉइड कर दिया, फिर दो तीन दिन बाद रिपीट हो रहा है। तो अगर ये केस में लोग ये चीज रिपीटेड कर रहे हैं तो क्या ये करना चाहिए या फिर
1: बिल्कुल नहीं करना चाहिए? ये आपका बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और ये बहुत कॉमन सवाल है हमारे आसपास के एरिया में, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि भाई दर्द की दवाई खा ली और भाई अपना दर्द चला गया,
0: काम पे
1: फिर अपना काम पे चले गए, बिकॉज दे आर टू मच ऑक्यूपाइड इन देयर वर्क। फीमेल्स को मैं बोलूंगी वो अपने घरों में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गई, उनके पास अपने लिए टाइम निकालने का वक्त ही नहीं है।
0: करेक्ट।
1: तो क्या होता है कि दर्द की दवाइयाँ कब खानी है वो इम्पोर्टेंट है। कभी कभार अगर आपके एपिसोड्स हो रहे हैं, आप दवाइयाँ खा रहे हो, ठीक हो जा रहा है, दैट इज प्योरली ओके। कभी कभी क्या होता है, हम ज्यादा ओवर वर्क कर लेते हैं, कुछ भारी सामान उठा लिया, कुछ एक्स्ट्रा वर्कआउट
0: कर लिया,
1: तो जिसकी वजह से हमारा दर्द होता है वो ठीक हो जाता है,
0: ठीक है।
1: अब क्या होता है कि एपिसोड्स हमारे बढ़ रहे हैं, हम अगर पूरे हफ्ते अगर हम पेन किलर खा रहे हैं और जिसकी वजह से दर्द हमारा जा ही नहीं रहा है, या फिर 10-20% हमें रिलीफ मिल रहा है, लेकिन हम पेन किलर के सहारे कैसे जैसे हम अपना टाइम काट रहे हैं, वो चीज बिल्कुल सही नहीं है।
0: तो मतलब ऐसे
1: बिकॉज क्या होता है कि क्रॉनिक ये जो दवाइयां होती हैं, इन दवाइयों से हमारा जो इम्पैक्ट है, मैक्सिमम इम्पैक्ट, जैसे हम जीरो डॉल सुना होगा आप लोगों ने भी ना, कि खा लेते हैं, अब इनका असर क्या होता है कि किडनी पे पड़ता है, लंबे समय तक अगर हम ये दवाई खाएंगे तो किडनी पे, और बल्कि हमारा जो गट है उस पे हमारा असर पड़ता है, तो वो चीज बहुत गलत है।
0: डॉक्टर निदा नसीम जी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, ढेर सारी बातचीत चल रही है उनसे आज, दर्द को लेके हम काफी सारे डिस्कशंस कर रहे हैं। देखिए, जो दर्द होता है ना, जितना आसान आपको लगता है कि एक गोली खा के हम उसको एकदम से जो है छू मंतर करा देंगे, उतना आसान होता नहीं है। वही दर्द का बड़ी जो है गंभीर रूप ले सकता है और बड़ी समस्या बन सकता है, ये आप और मैं सोच भी नहीं सकते, और उन्हीं पर आज डिस्कस करने के लिए डॉक्टर निदा नसीम जी हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से। मैम, एक बार फिर से आपका स्वागत है, और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, कि जैसे कई बार दर्द होता है तो हम लोग ना होम रेमेडी में भी बिलीव करते हैं, घरेलू उपाय जैसे सिकाई कर लो सर के दर्द की, मम्मी ने कहा हल्दी वाला दूध पी ले कुछ नहीं होगा, ये पिएगा तो ठीक हो जाएगा, या फिर मतलब हल्की सी स्ट्रेचिंग कर ले, बाहर घूम के आ जा थोड़ा सा, इन सब से भी सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो क्या ये चीजें वर्क करती है जेनुइनली?
1: देखिए डिपेंड करता है अगेन ड्यूरेशन कितना है।
0: ऑलराइट,
1: ठीक है।
0: अच्छा,
1: जो अगर मैंने बोला कि हड्डियों का होने वाला दर्द है जो कि डैमेज बहुत ज्यादा हो गया है, तो उसमें इसका कोई भी इलाज नहीं है।
0: ओके,
1: मतलब जो इनिशियल स्टेज होती है जो कि मायोफेशियल पेन, जो कि मसल्स वाला जो मांसपेशियों का जो दर्द होता है, वो हम इससे ट्रीट कर सकते हैं कि लोकल सिकाई कर लिया, थोड़ा सा बाम लगा लिया, या ऑयल जो औरतों का तेल आता है तेल लगा लिया, वो सब हम कर सकते हैं, उसमें ट्रांजिएंट पीरियड के लिए रिलीफ मिलेगा।
0: ओके,
1: लेकिन पेन अगर क्रॉनिक हो गया है, वही मैं बोल रही हूँ बार बार, क्रॉनिक पेन 3 महीने से ज्यादा होने वाला दर्द में बहुत ही ट्रांजिएंट रिलीफ मिलेगा, उसमें बस सिकाई कर सकते हैं।
0: ओके,
1: हॉट फर्मेंटेशन,
0: फिर उसका कोई अल्टरनेट तरीका है ही नहीं ना?
1: बिल्कुल नहीं है।
0: करेक्ट, वही तो दोस्तों, अगली बार अगर आपको कुछ ऐसा महसूस हो तो ये सब चीजें फॉलो करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर मिलें, बहुत जरूरी है। क्योंकि मैम मुझे लगता है कि सही डॉक्टर से जब तक हम सही तरीके से कंसल्टेशन नहीं लेंगे, सही इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे, तब तक हम उस चीज को जड़ से खत्म नहीं कर पाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि उस चीज से आपको जड़ से उसकी जो है भाई साहब वो टाटा बाय बाय हो जाए,
1: पेन में पेन को ठीक नहीं करते हम, बीमारी को ढूंढते हैं,
0: बीमारी को ढूंढते हैं। एग्जैक्टली,
1: तो पेन का मैनेजमेंट का जो तरीका है वो होलिस्टिक अप्रोच है, माइंड बॉडी एंड सोल, और ट्रीटमेंट भी माइंड बॉडी एंड सोल पे ही काम करता है।
0: ओके मैम, कई बार बहुत सारे लोगों को ना ऐसा होता है कि सर में ना पूरे सर में दर्द नहीं होता, उनके आधे सर में दर्द होता है।
1: बिल्कुल,
0: बहुत बड़ी ऐसे आपके पास केसेस आते होंगे, तो उसका क्या रीजन है? मतलब पूरे सर में दर्द ना होके आधे सर में दर्द होता है, सर के आधे हिस्से में दर्द कई बार होने लगता है।
1: देखिए सर के आधे हिस्से में होने वाला दर्द राइट साइडेड या लेफ्ट साइडेड, तो डिपेंड करता है कि कौन से एरिया में कब दर्द हो रहा है। कुछ होता है कि हम स्ट्रेस रिलेटेड जो होता है कि हम जब काम करते हैं उस टाइम पे दर्द हो रहा है, बाकी सब ठीक है।
0: ठीक है,
1: ठीक है,
0: ठीक है।
1: और जो मांसपेशियों का जो दर्द होता है वो भी हो सकता है कि हम जैसे होता है कि राइट साइड ऑफ द बॉडी हम कन्वर्ट लेके जैसे सोते हैं, तो हो सकता है कि हम राइट साइड में सो रहे हैं, हमारा पॉस्चर ठीक नहीं है। तो ये सारी चीजें रूल आउट करने के बाद अगर पेन की सीवियरिटी बहुत ज्यादा है, जैसे हमारा मैंने बोला कि ऑसिपिटल न्यूरेल्जिया जो कि पीछे से होता है और आगे की तरफ आता है,
0: ओके,
1: और ऐसा लगता है मरीज बोलेगा कि मेरे को आंख ऐसे लग रहा है कि निकल जाएगी, इतना ज्यादा पीछे से आगे की तरफ दर्द हो रहा है, ऑसिपिटल न्यूरेल्जिया वाला जो दर्द होता है। एक पेशेंट अभी आई थी मेरे पास यहाँ पे, तो ये सारे कारण होते हैं। तो उसका इलाज डिपेंड करता है कि ड्यूरेशन कितना है, कौन से टाइप का वो है पेन, किस प्रकार का पेन है। जैसे कि पेन तो क्या है कि पेशेंट बोलेगा कि बर्निंग सेंसेशन या फिर चुभने वाला दर्द है, चुभने के साथ में उसको लगता है करंट भी दौड़ रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स वगैरह हम पूरे अच्छे से असेस करते हैं, उसके बाद ही ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट।
0: दर्द का मानसिक तनाव से भी कुछ लेना देना है?
1: बिल्कुल है,
0: थोड़ा सा इस विषय में भी हम सोचे आपसे बात कर लें।
1: बिल्कुल है, मानसिक तनाव, देखिए स्ट्रेस मैंने बताया ना कि स्ट्रेस जब 3 महीने से ज्यादा दर्द अगर बढ़ेगा तो वो ट्रिगरिंग फैक्टर्स जो है वो हमारे लिम्बिक जो हमारा इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है उस पे इम्पैक्ट करता है।
0: ठीक है,
1: तो जब पेन जो है क्रॉनिक हो जाएगा वो उस पे इम्पैक्ट करेगा, तो उसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स और ये सारे लक्षण जो है मरीज में ज्यादा आएंगे उस टाइम पे।
0: ठीक है मैम, हमने बहुत सारे दर्द के ऊपर डिस्कशन की आपसे और आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया सारे दर्द के बारे में, सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई। लेकिन अब जो मेन पॉइंट है वो ये कि अभी जो लोग इस चीज से जूझ रहे कहीं ना कहीं, अब उनको डॉक्टर से कब मिलना है एक्चुअली? क्या उनको तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना है या कौन सी सिचुएशन में डॉक्टर से मिलना चाहिए?
1: देखिए आपका कोई भी दर्द जो कि दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है या फिर आपको ये लग रहा है कि मेरा जो है पूरा दिन आप पूरा महीना आपका दवाइयों से ही खाके आपका गुजर रहा है, आई एम ऑन रेगुलर मेडिकेशन,
0: ठीक है
1: मैं छोड़ ही नहीं पा रही हूँ, तो आपने डॉक्टर को संपर्क करना है। या फिर आपका कोई भी दर्द जो कि 3 महीने से ज्यादा आपका प्रोग्रेस कर रहा है,
0: ठीक है,
1: उसमें आपने अपने पेन फिजिशियन को कंसल्ट करना है।
0: ठीक है, ओके मैम बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, थैंक यू वेरी मच। तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, उनको आप क्या अपनी तरफ से सलाह देना चाहेंगी, क्या आप एडवाइस देना चाहेंगी जो लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं रेडियो पर?
1: देखिए मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप दर्द को बर्दाश्त ना करें, नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें
0: जी।
1: अगर 3 महीने से ज्यादा दर्द, क्योंकि दर्द एक ऐसा चीज है कि हर किसी के साथ होता है, हर घर में एक दर्द का मरीज जरूर होगा।
0: बिल्कुल,
1: ऐसा मैं शायद एक्सपेक्ट कर रही हूँ।
0: बिल्कुल
1: ऐसा ही है
0: मैम, एक्चुअली ऐसा इसलिए भी क्योंकि आजकल मोबाइल की वजह से भी
1: क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल, हमारा जो बोलते ना कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या फिर वर्क लाइफ बैलेंस इतना ज्यादा इम्बैलेंस हो गया है कि हम अपने आप को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं।
0: बिल्कुल मैम ने सही बोला। इनफैक्ट मैम मुझे ऐसा लगता है कि आजकल दर्द का रीजन मोबाइल तो सबसे ज्यादा हो गया, क्योंकि ऐसे अगर हम ऑफिस में बैठे हैं तो हमारा जो गर्दन है वो पूरा मोबाइल में घुसा होता है, तो कहने की उसकी वजह से भी हमारे
1: सर्वाइकल पेन, नेक पेन, मायोफेशियल पेन, ये वाला जो है ये हमारा जो आईटी, मैंने बोला आईटी प्रोफेशनल जो बैठे रहने का काम ज्यादा है, डेस्कटॉप पे काम ज्यादा कर रहे हैं, फिर फोन में लो बच्चे, बच्चों को भी आजकल ये प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है।
0: बिल्कुल,
1: क्या होता है कि हमारा जो गर्दन है वो एकदम आगे की तरफ झुक जाता है जब हमारा
0: फोन,
1: हाँ, अनइंटेंशनल हो जाता है, हमें नहीं पता होता। या महिलाओं में जो किचन में काम कर रही है, वो चॉपिंग किचन में काम करते हैं, फिर गर्दन नीचे झुक जाती है, तो जो सर का भार है वो तो आगे की तरफ हैंग हो रहा है, लेकिन जो उसका वेट स्ट्रेस है वो हमारे

0: लोअर नेक पे जा रहा है
1: ओके
0: जिसकी वजह से मांसपेशियों में दर्द होना सर्वाइकल की प्रॉब्लम बढ़ जाना ये सब इसके कारण है।
1: ओके सो दोस्तों आपको तमाम उम्मीद करता हूँ तमाम जानकारियाँ आपको मिली होंगी इस इंटरव्यू के माध्यम से। थैंक यू सो मच डॉक्टर निदा मैम, आपने तमाम सारी इन्फॉर्मेशन दी हमारे स्टेशन पे, आप आए, आपने इतना सारा टाइम निकाला, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैम कुछ और जाते जाते जो आपको लगता है कि आप हमारे रेडियो लिसनर्स को बता सकती हैं जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त, कोई एक मैसेज जो आप चाहती हैं कि सबको देना चाहिए, बिल्कुल स्पेशली वो मेडिकल से जाके हम एकदम पेन किलर ले लेते हैं,
0: बिल्कुल दर्द की दवाइयाँ आप लोग, मैं यही बोलना चाहूंगी कि मेडिकल स्टोर से लेना बंद करें।
1: इवन आजकल लोग ये भी कर रहे हैं कि गूगल पे जाके चैट जीपीटी पे जाके भी कर रहे हैं लोग,
0: AI
1: इसका इस्तेमाल भी करते हैं सर दर्द को भगाने के लिए, तो उसके लिए भी आप प्लीज कुछ इंक्लूड करिएगा।
0: नहीं सर दर्द देखिए गूगल आपको आधी नॉलेज देता है, ठीक है, जो डॉक्टर इतनी पढ़ाई करके फेलोशिप की ट्रेनिंग करके एक्सपर्टाइज होके अब वो आया है, अगर आपको वो बोल रहा है कि भाई दर्द की जो दवाइयां हैं वो लंबे समय तक नहीं खानी चाहिए, कभी कभार आप खा लो, लंबे समय तक खाएंगे तो उसका किडनी पे आपकी आंतों पे आपका असर पड़ेगा,
1: बिल्कुल
0: जो आपको अभी नहीं मे बी लेटर ऑन आप जब 40-50 साल की जब उम्र हो जाएगी तब पता चलेगा, वो अभी हमें पता नहीं चल रहा है, तो वो खाना बिल्कुल बंद करें, अपने लाइफस्टाइल पे काम करें, किस टाइम पे आप क्या खा रहे हो दैट इज इम्पोर्टेंट, अपनी 8 घंटे की प्रॉपर नींद लें, और अगर आप 3 महीने से या फिर ज्यादा दर्द से जूझ रहे हैं तो अपने नियरेस्ट पेन फिजिशियन को जल्द से जल्द संपर्क करें, मैं यही बोलूँ।
1: थैंक यू सो मच मैम, इतना अच्छा आपने जो है सारी इन्फॉर्मेशन दी और इतने अच्छे से आपने बताया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच, और हम आशा करते हैं कि थैंक यू मैम, हम आशा करते हैं आप अगली बार भी जरूर जल्द आएंगे, फिर कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम, बहुत अच्छा लगा, और गाइज आप कहीं मत जाइए, ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातों के लिए प्लीज ट्यून रखिए आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। अभी के लिए मैं लेता हूँ डॉक्टर निदा मैम से इजाजत, मैम थैंक यू सो मच, और गाइज आपसे भी इजाजत, फिर जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: कम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RKLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। केंद्र ने दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण के प्रबंधन और नियंत्रण के प्रयासों की समीक्षा की। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने की दिशा में 50 और नई इलेक्ट्रिक बसें। दिल्ली में मल्टी यूटिलिटी डक्ट विकसित किए जाएंगे, इससे सड़क खुदाई और यातायात बाधाएं कम होंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में 11 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित और दिल्ली यातायात पुलिस ने जन्माष्टमी के मद्देनजर यातायात परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने केंद्रित हितधारक सहभागिता के माध्यम से दिल्ली NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के प्रबंधन और नियंत्रण पर चर्चा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वायु प्रदूषण से निपटने के प्रयासों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए समन्वित और केंद्रीय हितधारक सहभागिता की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत विशिष्ट हितधारक सहभागिता योजना पर भी चर्चा की और राज्यों को सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने तथा उन्हें अन्य क्षेत्रों में भी लागू करने का आग्रह किया। श्री यादव ने राज्यों को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार उनके साथ है और वायु प्रदूषण के नियंत्रण और रोकथाम के लिए उनके सकारात्मक प्रयासों को आवश्यक सभी प्रकार का सहयोग प्रदान करेगी। बैठक में सितंबर 2026 से मार्च 2027 की अवधि के दौरान दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों तथा अन्य उपायों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शीतकालीन वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक और बहुआयामी रणनीति के अंतर्गत कार्य कर रही है। श्री सिरसा ने वायु प्रदूषण के प्रभावी प्रबंधन और नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में 24 घंटे जमीनी निगरानी, हॉटस्पॉट केंद्रित हस्तक्षेप और वार्ड स्तर पर सघन निगरानी पर केंद्रीय व्यापक बहुस्तरीय कार्यान्वयन रणनीति की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने आज राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक, सुरक्षित और पारदर्शी तथा पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल शुरू की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली परिवहन निगम DTC के तेखन डिपो में स्वचालित वाहन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने हसनपुर और गाजीपुर डिपो में सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन EV चार्जिंग स्टेशन का भी शुभारंभ किया।

0: की गई। 50 नई ईवी बसें सरकार की सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरण अनुकूल बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मीडिया से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि डीटीसी हसनपुर और गाजीपुर डिपो में सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के स्थापित होने से क्षेत्र में ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे की पहुंच बढ़ेगी और विद्युत गतिशीलता को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए ईवी पॉलिसी, इलेक्ट्रिक बसों के विस्तार और अंतिम चरण तक कनेक्टिविटी जैसे कई स्तरों पर काम कर रही है।
1: मैं ये समझती हूँ कि क्लीन मोबिलिटी की ओर ये एक बहुत ही सशक्त कदम है और लगातार दिल्ली सरकार उस दिशा में बढ़ रही है जहाँ केवल समस्याएं नहीं उन समस्याओं को समाधान देने की बात हो रही है।
0: इस अवसर पर उपस्थित दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य दिल्ली वासी को स्वच्छ, सुरक्षित, आरामदायक और भरोसेमंद परिवहन देना है। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज बताया कि अब राजधानी में मल्टी यूटिलिटी डक्ट विकसित किए जाएंगे। इसके अंतर्गत विभिन्न आवश्यक सेवाओं के लिए साझा भूमिगत कॉरिडोर बनेंगे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस मल्टी यूटिलिटी डक्ट के निर्माण से बार बार सड़क खोदने और उसकी मरम्मत करने की जरूरत कम होने के साथ साथ यातायात में होने वाली बाधाएं कम होंगी। उन्होंने बताया कि डक्ट का उपयोग तकनीकी रूप से उपयुक्त स्थानों पर बिजली केबल, पानी और गैस लाइनों, फायर हाइड्रेंट नेटवर्क तथा अन्य आवश्यक उपयोगी सेवाओं के लिए किया जा सकेगा। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस डक्ट के तकनीकी डिजाइन में हवादार, अग्नि सुरक्षा, रखरखाव के लिए सुगम पहुंच और आपातकालीन प्रतिक्रिया जैसी आवश्यक व्यवस्था को भी शामिल किया जाएगा। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इस पूरी व्यवस्था के लिए जल्द ही विशेषज्ञों की एक तकनीकी समिति गठित की जाएगी। समिति में डिस्कॉम, दिल्ली जल बोर्ड और लोक निर्माण विभाग आदि विभागों के विशेषज्ञ अधिकारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वपूर्ण पहल को पहले पायलट आधार पर लागू किया जाएगा, जिसके लिए चांदनी चौक में एक्सप्लेनेड रोड पर 310 मीटर और मोरसराय रोड पर 560 मीटर लंबे हिस्से का चयन प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि मल्टी यूटिलिटी डक्ट पहल अलग अलग एजेंसियों द्वारा अपनी अपनी जरूरत के अनुसार किए जाने वाले बिखरे हुए भूमिगत कार्यों के बजाय समन्वित शहरी उपयोगी योजना की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव है। शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
2: दिल्ली सरकार ने आज 75 सीएम श्री स्कूलों में ईट वेल लिव वेल पहल की शुरुआत की। इस पहल के माध्यम से करीब 30,000 बच्चों को अपने स्वास्थ्य और कल्याण की बुनियादी जानकारी दी जाएगी। इसका उद्देश्य बच्चों में ऐसे व्यवहार, आदतों और कौशल का विकास करना है जो उन्हें स्वस्थ, जिम्मेदार और संतुलित जीवन जीने में सक्षम बनाए।
5: शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इस पहल के बारे में कहा कि जिस प्रकार से मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता बच्चों के सीखने की नींव तैयार करता है, उसी प्रकार बुनियादी कल्याण साक्षरता बच्चों को बेहतर और स्वस्थ जीवन जीने की आधारभूत समझ तथा कौशल प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम संपूर्ण स्कूल दृष्टिकोण पर आधारित है। इस कार्यक्रम में 21 व्यक्तिगत आदतों, 7 सामाजिक कौशल और 7 पर्यावरणीय कौशल को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों को अपनी और दूसरों की देखभाल करने तथा पृथ्वी और पर्यावरण की देखभाल करने के लिए तैयार करना है। शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
2: दिल्ली विश्वविद्यालय और एक विदेशी बहुराष्ट्रीय सेमीकंडक्टर कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर नवाचार में भारत के वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनने की दिशा में आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस ज्ञापन के अंतर्गत विदेशी कंपनी अपना एआई एंगेज डेवलपर प्रोग्राम दिल्ली विश्वविद्यालय में लगाएंगे और इसके जरिए विद्यार्थियों और शिक्षकों को एआई के क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य अगले साल तक 10,000 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देना है ताकि वे औद्योगिक उपकरण का इस्तेमाल करके एआई एप्लीकेशन बनाने के साथ साथ उन्हें टेस्ट कर सकें। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने आज विश्वविद्यालय में बने भारत के पहले कार्बन गार्डन का उद्घाटन किया। विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग द्वारा स्थापित इस कार्बन

0: गार्डन में विभिन्न प्रजातियों के ऐसे पौधे लगाए गए हैं जिनका पर्यावरण में अहम योगदान होता है। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि पर्यावरण की जो समस्याएं लोगों के द्वारा किए जा रहे असंतुलित कार्यों से पैदा हुई हैं, उसका समाधान अकेले तकनीक से नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास विधि छात्रों के आचरण को नियंत्रित करने की कोई वैधानिक शक्ति नहीं है। न्यायालय ने कहा कि विद्यार्थियों पर किसी भी तरह की कार्रवाई शिक्षा संस्थान की अपने विनियामक नियमों के अनुसार ले सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति मोहना की पीठ ने यह आदेश हैदराबाद की नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च नालसर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के खिलाफ बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की कार्रवाई पर उत्पन्न विवाद से जुड़े मामले पर दिया है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज आम आदमी पार्टी के पार्षदों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आप पार्षदों ने दिल्ली नगर निगम की लोकतांत्रिक और संवैधानिक चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने की सुनियोजित प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में असहमति और विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन हंगामा, अभद्रता, पीठासीन अधिकारी का अपमान और संवैधानिक प्रक्रिया को बलपूर्वक रोकने का प्रयास लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।
1: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्स पर @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों को देखते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने शहर में 11 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार इस दौरान दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी दफ्तर, स्वशासी निकाय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों PSU के कार्यालय बंद रहेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 सितंबर तक भारत मंडपम में किया जाएगा। दिल्ली पुलिस की महिलाओं और बच्चों के विशेष पुलिस इकाई की आत्मरक्षा शाखा ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव में 450 राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट्स के लिए एक दिवसीय आत्मरक्षा कार्यशाला आयोजित की। यह कार्यशाला संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के अंतर्गत आयोजित की गई। कार्यशाला में कैडेट्स को आत्मरक्षा की विभिन्न व्यवहारिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिस्टी हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि यह नई सुविधा अस्पताल चेन की लोगों की सेवा के 25 साल के सफर में एक और अहम पड़ाव है। यातायात पुलिस ने जन्माष्टमी के पर्व के मद्देनजर एक यातायात परामर्श जारी किया। यातायात पुलिस के अनुसार रोहिणी के इस्कॉन मंदिर, रामलीला ग्राउंड और जापानी पार्क में जन्माष्टमी पर्व को देखते हुए कल सुबह 7 बजे से लेकर रात 1 बजे तक यातायात और मार्ग परिवर्तन रहेगा। पुलिस ने लोगों को मधुबन चौक से हेलीपोर्ट तक भगवान महावीर मार्ग और उससे जुड़े मार्गो से बचने को कहा है। कल कृष्ण जन्माष्टमी है। इस अवसर पर राजधानी में विशेष पूजा, भजन कीर्तन और दही हांडी के कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस्कॉन द्वारका के भव्य समारोहों से लेकर कनॉट प्लेस के पास स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर यानी कि बिरला मंदिर में जन्माष्टमी में आरती और मध्यरात्रि जन्मोत्सव की तैयारियां की गई हैं। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारियों सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। राजधानी में आज हल्के बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल हल्की वर्षा, आंधी तूफान और बिजली चमकने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के प्रबंधन और नियंत्रण के प्रयासों की समीक्षा की। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने की दिशा में 50 और नई इलेक्ट्रिक बसें, दिल्ली में मल्टी यूटिलिटी डक्ट विकसित किए जाएंगे, इससे सड़क खुदाई और यातायात बाधाएं कम होंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में 11 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित और दिल्ली यातायात पुलिस ने जन्माष्टमी के मद्देनजर यातायात परामर्श जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841।
5: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
6: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
7: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
8: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
9: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
10: हेलो जी, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम RJ आनंद है और इस वक्त आपने ट्यूनिंग किया है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है 89.6 FM, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। और आज की जो ये ब्यूटीफुल महफिल है ना, ये किन की बातों से सजने वाली, कौन है जो इस महफिल को और भी खूबसूरत बनाने वाले हैं, डेफिनेटली आपको पता लगेगा। फिलहाल तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास भी कोई अच्छा टैलेंट है, कोई अच्छा आपके अंदर स्किल है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टेशन में आके पूरी जनता तक उसको पहुंचा सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर आके हमें DM कर सकते हैं। आपके अंदर जो भी टैलेंट है, व्हाटएवर, आप शेर व शायरी करते हैं, आप पोएट्री लिखते हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपके अंदर जो भी टैलेंट है उसके लिए आपके शहर का अपना लोकल रेडियो स्टेशन है ना, जो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है। और आज का ये प्लेटफॉर्म हम किसको देने वाले हैं, आई नो दैट आपने इनकी आवाज़ सुनी होगी, बट वो ये ना कि कभी कभी जब आप आवाज़ सुनते हो और एक लंबे अंतराल की बात सुनते हो तो शायद थोड़ा बहुत मिसिंग तो हो जाता है। कोई बात नहीं, आज हम आप उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे आपसे उनको, एंड जब वो आपसे मिलेंगे तो शायद आपको थोड़ा बहुत कुछ याद आ जाए। वेल, आज की शाम कौन है हमारे साथ इस महफिल में, बताता हूँ आपको। सो आज की इस महफिल में हमारे साथ जो साथ देने वाले हैं वो है उत्कर्ष अग्रवाल जी। एंड इनके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, जब मेरी इनसे भी बातचीत हो रही थी तो इन्होंने काफी कुछ बताया अपने बारे में। मतलब ही इज अ मल्टीटास्कर इंसान, बहुत ही अच्छा काम भी करते हैं एंड फिलहाल मुरादाबाद से तो बाहर ही रहते हैं, जैसे कि हम मुरादाबाद में आके कहीं और से यहाँ पर आपके लिए काम कर रहे हैं, बट अब तो मेरे लिए मुरादाबाद ही अपना शहर हो गया। आई लव मुरादाबाद सिटी। तो बिना किसी देरी के भैया को मिलवाते हैं आपसे। हेलो, हाउ आर यू भैया, कैसे हैं आप? वेलकम टू FM मुरादाबाद।
11: नमस्कार, मैं उत्कर्ष अग्रवाल, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं?
10: मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ सर। मेरी जो है हाल चाल आप देख ही सकते हैं, स्टूडियो में बैठने के बाद सब एकदम ऑल गुड हो जाते हैं सर।
11: बिल्कुल बिल्कुल
10: जी। आप बताइए सर, आप मतलब पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी आए हैं आप?
11: नहीं, FM मुरादाबाद में मैं पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन दिस इज वेरी फर्स्ट इंटरेक्शन विद यू और
10: आई एम सुपर हैप्पी। मेरे को भी अच्छा लग रहा है, यू नो।
11: बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि शो बहुत अच्छा होने वाला है।
10: एब्सोल्युटली, डेफिनेटली। वो कहते हैं ना भैया, जब किसी भी काम की शुरुआत आप एक अच्छी वाइफ के साथ करते हो, यू नो, एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ करते हो, तो उसका रिजल्ट भी डेफिनेटली अच्छा ही आता है।
11: डेफिनेटली डेफिनेटली,
10: वो ही चीज यू नो आज इस सेशन में होने वाली है। सो थोड़ा सा अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं उत्कर्ष भाई, मतलब यू नो आप किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, क्या है आपका काम?
11: बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल आऊंगा अपनी बात बताने, लेकिन मैं उससे पहले अपनी एक लाइन में जरूर बता देना चाहता हूं, जो मैं इंट्रोडक्टरी शेर अपने लिए कभी पढ़ना चाहता हूं। हाँ। और वो लिखा था मैंने ऐसे कि भोला भाला सादा सा जान निसारने वाला लड़का हूं।
10: क्या बात है,
11: भोला भाला सादा सा जान निसारने वाला लड़का हूं, मैं जिस्मों की दुनिया में दिल हारने वाला लड़का हूँ। तो मैं जो बेसिकली हूँ, मेरा जो काम है वो, एक तो मैं पोइट हूँ, सिंपल सी बात है, आपने मुझे समझ लिया। तो लिखता हूँ, गाता हूँ और सिंगिंग करने का शो रखता हूँ साथ में। सिंगिंग मैंने सीखी तो नहीं है, लेकिन पोइट्रीज में मेरा बहुत रुचि है, तो मैं प्रेम पे कविताएं लिखता हूँ। प्रोफेशन मेरा है टीचिंग, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ लॉ डिपार्टमेंट में, मंगलायतन यूनिवर्सिटी में फिलहाल मैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हूँ। उसके साथ साथ मैं अपने लिए जो टाइम निकालता हूँ उसमें मैं ये करता हूँ कि मैं पोइट्रीज लिखता हूँ, शायरी लिखता हूँ, गज़ल लिखता हूँ, या यूँ कहिए कि लोगों के जज्बातों को, फीलिंग्स को बस कागज़ों में उतारने का काम है थोड़ा सा।
10: क्या बात है, साउंड्स इज अमेजिंग यार। मैं मतलब बहुत लोगों को हम इंटरव्यूज करते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, एंड मैं उत्कर्ष भाई को सामने से देख पा रहा हूँ, तो मतलब उनको देख के इतने इनोसेंट, इतने यू नो सेंसिटिव लग रहे हैं वो, बट उनकी आवाज और उनका यू नो टॉकिंग वे एब्सोल्युटली अल्टीमेट है यार। मतलब यू नो वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो होता है ना उत्कर्ष भाई, एंड इतने मल्टीटास्कर हैं, मतलब आपने सारा कुछ बता डाला यार। तो एक एक करके यू नो आपका जो टैलेंट है उसको मैं चाहूंगा यहाँ पे हम पब्लिश करें, अपनी ऑडियंस के बीच में रखें। एंड गाइज ये जो सेशन है डेफिनेटली बहुत ही अल्टीमेट लेवल पे जाने वाला है, सो मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और इस सेशन को ऐसे एंजॉय करेंगे। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, पिक्चर तो बाकी है मेरे दोस्त, तो आप कहीं मत जाइए, डोंट गो एनीवेयर, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। आज की इस महफिल को और भी खूबसूरत बना रहे हैं हमारे साथ उत्कर्ष अग्रवाल जी, स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे बहुत कुछ सुनेंगे। सो एक काम करते हैं, छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद वी कम बैक, आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।

0: वेलकम बैक ही वंस अगेन, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद। एक बहुत ही बेहतरीन गाना आपने सुना और इस गाने को सुनकर मुझे तो बहुत मजा आया। आई एम श्योर हमारे जो प्यारे से गेस्ट हैं उत्कर्ष जी, उनको भी अच्छा लगा होगा।
1: बिल्कुल डेफिनेटली।
0: एंड सर, आप तो आपने बताया कि आप ऑलरेडी पहले आ चुके हैं, बट अब आप काफी लंबे टाइम के बाद आए। अगर मैं ये बोलूँ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी?
1: नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत समय के बाद आ रहा हूँ। आई थिंक ऑलमोस्ट नियर अबाउट 1 ईयर हो गया होगा मुझे आए, और उससे भी ज्यादा शायद।
0: ओके, सो कुछ चेंज लग रहा है, यू नो, कुछ भी डिफरेंट, यू नो?
1: बहुत बहुत ज्यादा। मैं मतलब पहले से महसूस कर पा रहा हूँ कि हम लोग कितना डेवलप्ड हो गए।
0: हाँ।
1: और कितनी ज्यादा एफएम मुरादाबाद 89.6 इसका नाम है, वो किस तरीके से इंक्रीज कर रहा है, वो एक बहुत अच्छी चीज है।
0: इनफैक्ट मुरादाबाद में हर चीज अपने आप में मतलब बहुत ही बढ़िया है, यू नो?
1: मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि आप आज के टाइम में भी

0: FM जैसी चीज में तरक्की कर पा रहे हैं, और वो बहुत बड़ी चीज है कि लोग सुन रहे हैं, और ये सुन इसलिए रहे हैं क्योंकि आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट उनको दे रहे हो, बहुत अच्छा एक चीज बना के उनको दे रहे हो, वो उनको मजा आ रहा है, जो पब्लिक को बना रहा है, आपका लिसनर आपसे कनेक्ट कर रहा है. तो मैं कहता हूँ कि जैसे मैं सोशल मीडिया से तो कनेक्ट हुई, तो मैं देखता हूँ कि बहुत रीच आप लोग कर रहे हो, ये बहुत अच्छा काम है यार.
1: बट दिस इज वेरी यू नो कह सकते हैं कि मतलब कॉम्प्लिकेटेड भी है बहुत ज्यादा, इतना इजी नहीं है. दिस इज वेरी क्रिएटिव.
0: नहीं नहीं बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि एक जैसे मैं भी हूँ, मैं मुझे गाने का इतना नॉलेज नहीं है. मैंने आपको शायद बताया होगा, मेरा अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले स्पॉटीफाई और यूट्यूब म्यूजिक और सावन पे भी मेरा एक गाना आया.
1: ओ वाह,
0: जानिया के नाम से वो लिखा मैंने है और मैंने गाया भी है, बट सम वॉइस सैंपल्स यूज करे हैं मैंने उसमें, ऑटो ट्यून किया है, क्योंकि आई एम नॉट अ हार्डकोर सिंगर टू बी ऑनेस्ट, मैं आपके एफएम रेडियो पे बता दूं, क्योंकि मैंने सिंगिंग सीखी नहीं है, बट मुझे लिखना था और वो गाना मैं चाहता था कि बने और बिना खर्चे के बने, सबसे बड़ी बात. तो मैं चाहता था कि वो बने, तो मैंने खुद सिस्टम पे बैठ के उस पर 2-3 महीने जो मैंने काम किया है, मुझे पता है कि गाने को गाना बनाने में शायद कितना समय और कितनी मेहनत लगती है. इसी तरीके से एक जो पीस आप तैयार करते हैं, एक शो आप तैयार करते हैं, उस शो को शो बनाने में, जो फिनिश प्रोडक्ट लोगों को कहने में सुन के अच्छा लगता है, उसको बनाने में पीछे कितनी मेहनत होती है, कितनी रिसर्च होती है, वो डेफिनेटली मैं रिलेट कर सकता हूँ. और उसके लिए आपकी तारीफ भी करता हूँ भाई साहब, बहुत अच्छा शो बनाते हैं.
1: अरे धन्यवाद सर. एंड एक्चुअली मुझे लगता है कि एज अ बीइंग अ आरजे, अगर आप रेडियो कर रहे हैं तो आपको ओरिजिनल होना चाहिए रेडियो पे, जेन्युइन होना चाहिए. जैसे एक्टर को कैमरे पे बिल्कुल ओरिजिनल एक्टिंग के साथ आना पड़ता है, क्योंकि वरना कैमरा होता है ना, छोटी छोटी चीजें पकड़ लेता है एक एक्टर की, है ना. वैसे ही हमारा माइक होता है, हम इसके साथ में ना कोई भी यू नो फेक चीज नहीं कर सकते हैं. आप जितना ओरिजिनल साउंड करोगे लोग उतना ज्यादा आपसे कनेक्ट होंगे. वो कनेक्टिविटी तभी बनती है जब आप ऑर्गेनिक चीजें डिलीवर करते हो बेसिकली. सो वो चीजें. सो गाइज प्लीज बोर मत होना, बैक टू पॉइंट चलते हैं हम उत्कर्ष भाई की दुनिया में एंड कुछ उनसे इंटरेस्टिंग सुनने वाले हैं. लेकिन उससे पहले हम जब अभी म्यूजिकल ब्रेक पे गए थे तो मेरा उनसे एक छोटा सा डिस्कशन हो रहा था. वो यू नो कुछ वॉइस को लेके कुछ तो यू नो कर रहे थे हम लोग आपस में टॉक. आरजे उन्होंने देखे हैं और उनको अच्छा लगा मेरा, और वो भी कुछ बता रहे थे अपना एक्सपीरियंस यू नो वॉइस के बारे में. कुछ तो चल रहा था उत्कर्ष भाई अभी हम लोग.
0: मैं आपसे ये बात कर रहा था कि वॉइस की जो बात हुई, वो मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि वॉइस कितना मैटर करती है जब आप कोई पोइट्री डिलीवर करने वाले, आप कोई शो डिलीवर करने वाले, स्पेशली इन आरजे या एंकरिंग का जो शो होता है वो बहुत इम्पैक्ट डालता है. और यदि हमारी वॉइस अच्छी नहीं होगी या इम्पैक्टफुल नहीं होगी तो शायद वो कनेक्ट नहीं कर पाएगी. मैं बहुत बार देखता हूँ, मैं बहुत सारे पोएट्री शोज में जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जो लोग नए नए लिख रहे हैं या नया नया पढ़ रहे हैं वो लोग पढ़ते हैं, मतलब एज अ जैसे रीडिंग कर दी उन्होंने, और उनकी वॉइस में वो इम्पैक्ट नहीं होता. शायद उन्होंने उनकी जो इमेजिनेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है, उन्होंने लिखा बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पा रहे और वो वॉइस उनकी कनेक्ट नहीं कर पा रही है लोगों से. और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने कुछ ज्यादा अच्छा ना भी लिखा हो, उसका पढ़ने का कहने का अंदाज ऐसा होता है कि सामने वाले के दिल में उतर जाते. तो ऐसा कुछ होता है, जैसे आंखें और आवाज जो होती हैं वो दिल में उतरने का रास्ता होती हैं. तो अगर किसी के दिल में आपको उतरना है तो आपको अपनी आवाज में भी गहराई लानी चाहिए, जो कि आपकी तो आवाज में मुझे बहुत अच्छी लगी.
1: अरे सर आई डोंट नो, मतलब आई एम नॉट शायर, आई एम नॉट पोएट्री, बट
0: वो ना मतलब अगर आपसे कोई फोन पे बात करे तो आई थिंक वो फैन हो जाएगा, चाहे वो एक लड़का हो या लड़की हो.
1: वो अगर मैं आपको उत्कर्ष भाई एक चीज यहाँ पे डेफिनेटली क्लियर करूँ, अगर हम रेडियो इंडस्ट्री में है, रेडियो फील्ड में है, तो डेफिनेटली वॉइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
0: वॉइस इज वेरी
1: एब्सोल्युटली, क्योंकि लोग हमें सुन रहे हैं रेडियो में और रेडियो पे लोग हमें देख नहीं रहे.
0: आप देखिए गाने भी लोगों ने कितने अच्छे अच्छे बना दिए, लेकिन जिनकी वॉइस अच्छी नहीं है, जो बना नहीं पा रहे, वो कानों में रह नहीं पाए, याद नहीं रह जाते आपको.
1: Correct.
0: याद रह जाती है वो सूथिंग वॉइस. वो शोज में अगर आपको याद करता है तो किसी ने रेडियो में आपका चेहरा नहीं देखा, आरजे का स्पेशली. अगर लोगों को याद रह जाता है कि ये वॉइस है आरजे आनंद की, तो वो क्या है, वो आवाज है. आई थिंक वॉइस इज वेरी वेरी इम्पैक्टफुल, वो बहुत नेसेसरी है कि वो बहुत इम्पैक्टफुल होनी चाहिए.
1: जैसे अभी आपकी आवाज बहुत इम्पैक्टफुल है, और जो हम सभी लिसनर्स को, बिकॉज मैं भी अभी आपका लिसनर ही बन के बात कर रहा हूँ आपसे, मुझे बहुत मजा आ रहा है, और हम सब बहुत वेट कर रहे हैं. उत्कर्ष जी आप कुछ इंटरेस्टिंग सा कुछ तो सुना दें जो आपके दिल के बहुत करीब है. कौन सी चीज है जिसके साथ आप, एक कहते हैं ना किसी भी काम की शुरुआत आप कुछ जब हैपनिंग तरीके से करते हो तो मजा आ जाता है.
0: बिल्कुल,
1: तो कुछ बढ़िया सा, कुछ खुशनुमा सा माहौल बनाते हैं, कुछ तो अपने लिसनर्स के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, कुछ अच्छा सा जो आपको लगता है यार ये चीज तो मैं डिलीवर कर ही सकता हूँ आनंद.
0: बड़ी प्यारी सी, मेरा एक शेर है छोटा सा,
1: हाँ,
0: बहुत ही
1: डेफिनेटली,
0: प्यारा है वो, सुनिए। कि ये जो आहिस्ता आहिस्ता तुम हंस रही हो,
1: वाओ,
0: बहुत
1: प्लीज,
0: लोग इससे रिलेट करेंगे। ये जो आहिस्ता आहिस्ता तुम
1: तुम
0: हंस
1: हंस
0: रही
1: रही
0: हो,
1: हो,
0: मैं जानता हूं मुझ पे ताने कस रही हो।
1: वाओ,
0: ये जो आहिस्ता आहिस्ता तुम हंस रही हो, मैं जानता हूं मुझ पे
1: ताने
0: ताने कस
1: कस
0: रही
1: रही
0: हो,
1: हो,
0: तुम्हारे इन झुमकों में बसती है जान मेरी, इन्हें उतार कर तुम कहां रख रही हो।
1: क्या बात है यार। मैं अभी रिसेंटली कुछ टाइम से हमने ये पोइट वाला मतलब शुरू किया है, स्पेशली
0: जी
1: मैं अभी कुछ टाइम से ही कर रहा हूँ ये, उत्कर्ष भाई।
0: अच्छा
1: सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मुझे पहले ना समझ में नहीं आता था क्या चल रहा है, ये होता क्या है, मतलब व्हाट इज दिस पोएट्री और ये सब। मतलब वैसे तो मैंने बहुत सारे ओपन माइक्स वगैरह में मैं गया हूँ, तो देखा है मैंने लोग करते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, सब चीजें सामने आ जाती हैं,
0: बिल्कुल
1: आप स्क्रॉल करोगे आपको नहीं पता आपके सामने क्या चीज अच्छी आ जाए जो आपको टच कर जाए,
0: डेफिनेटली
1: तो वो चीजें। बट ये जो चीजें आप लोग बोलते हैं ना, जो भी आप आपके शब्द होते हैं जो पोएट्री में आप रो रहे हैं या जो भी आप शायरी कर रहे हैं, मतलब एक्चुअली ये बड़ी सच्चाई वाली चीजें हैं, जो बस आप उनको ना अलग तरीके से हम हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे हो, बट ये ऐसा लगता है कि सच्चाई से हमारा एक सामना करा रहे हो आप लोग।
0: बिल्कुल
1: ये पोइट्री हो गई, शायरी हो गई, ऐसा लगता है हमें आईना दिखाया जाता है।
0: बिल्कुल आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मैं मतलब कभी कभी मुझसे ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, हालांकि हर राइटर इससे रिलेट करेगा। उनसे ये पूछा जाता है कि आप इतनी जो शायरियां लिख रहे हैं, क्या दिल टूटा है या दिल लगाया है, किसी के लिए लिख रहे
1: यार
0: हैं।
1: ये तो मैं भी पूछने वाला था
0: बट
1: अभी।
0: हाँ मैं बता देता हूँ आपको
1: हाँ
0: कि हाँ समटाइम्स ये जरूरी हो जाता है,
1: ऑल
0: मतलब
1: राइट,
0: समटाइम ये है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये जरूरी नहीं है कि आपका दिल टूटा हो अगर आप एक
1: राइट,
0: अच्छे राइटर हैं या फिर आप अच्छे इमेजिनर हैं। आप जितना अच्छा सोच पा रहे हैं उतना अच्छा आप लिख पा रहे हैं, और उसके लिए बहुत
1: राइट,
0: जरूरी है कि आप अच्छा पढ़ें।
1: गॉट इट,
0: पढ़ेंगे आपकी सोच अच्छी होगी। और मतलब जैसे मेरा एक और, मैं आपको एक शेर सुनाता
1: अरे
0: हूँ।
1: वाह, बिल्कुल इरशाद,
0: मैं दिल्ली में रहता था जब, तो मैं लीगल इंटर्नशिप कर रहा था हाई कोर्ट में,
1: ऑल राइट,
0: तो वहां पर हम एक रूम में रहते थे और पीजी में, उसके बराबर में एक गर्ल्स पीजी था।
1: ओह,
0: तो अक्सर 8 बजे एक लड़की छज्जे पे आती थी, और मेरा एक
1: मतलब छज्जा जो छत
0: छज्जा यानी कि
1: के
0: बालकनी,
1: बालक, ऑल राइट,
0: वो छज्जा इसलिए क्योंकि मैंने वो वर्ड बालकनी
1: यू
0: यूज
1: नो
0: नहीं कर
1: ये
0: सकता था,
1: मतलब
0: छज्जा मैंने यूज
1: मुझे
0: करा।
1: थोड़ा सा इसलिए भी लगा क्योंकि एकदम फ्लैशबैक में चला गया। छज्जा मतलब हमारे घर के बाहर एक छोटा सा बना दिया जाता था, उस पे
0: बिल्कुल
1: पेड़ वेड़ रख
0: वो
1: देते
0: जो
1: थे हम लोग
0: बालकनी
1: डेकोरेट,
0: तो मॉडर्नाइज घर में होती है, पहले तो
1: एब्सोल्युटली
0: छज्जे ही हुआ करते थे।
1: करेक्ट,
0: तो एक लड़की ठीक 8 बजे बालकनी में आती थी, और मेरा एक जो रूममेट था वो उसको डेली देखता था, और उसके बहाने हम लोग चाय पीने जाते थे। और ये होता था कि अगर दिख गई तो चाय वो पिलाएगा, नहीं दिखी तो फिर कॉन्ट्रीब्यूशन होगा।
1: क्या बात है यार, ये मतलब एक बड़ा अच्छे से सेटिंग्स आप लोगों ने करके रखी हुई थी। मतलब
0: जी
1: तो कितनी बार है जो जब आपने उनको चाय पिलाई है
0: नहीं, मेरा केस नहीं था, ये केस मेरे दोस्त का था, और उसने मुझे बहुत बार चाय पिलाई, मैं बार
1: अच्छा
0: भी
1: नहीं,
0: तो
1: मतलब तो आप लोगों की तो यहाँ पे एक बेसिकली एक टर्म्स एंड कंडीशन थी ना कि अगर वो आई
0: हाँ
1: तो वो पिलाएगा, नहीं आई तो
0: हाँ
1: आप पिलाएंगे।
0: तो मैंने तो बहुत कम पिलाई फिर,
1: ऑल राइट, मतलब वो
0: मतलब
1: आई है इसलिए उसने आपको पिलाई
0: जी
1: है,
0: जी
1: गजब
0: तो
1: यार।
0: हुआ ये कि कुछ
1: हाँ
0: दिन तक वो आई नहीं।
1: ठीक है,
0: तब एक शेर मेरा बना कि मैं एक शेर सुनाता हूँ कि तब
1: अरे
0: मेरा एक
1: प्लीज
0: शेर
1: यार,
0: बना।
1: प्लीज यार, श्योर,
0: ओके तो शेर ये था कि तभी से होठों ने मुस्कुराना छोड़ दिया,
1: वाह क्या
0: तुमने जब से दिल लगाना छोड़ दिया,
1: बात है,
0: भी से होठों ने
1: मुस्कुराना
0: मुस्कुराना
1: छोड़
0: छोड़ दिया,
1: दिया,
0: तुमने जब से दिल लगाना छोड़
1: छोड़
0: दिया,
1: दिया,
0: तुम्हें क्या मालूम इन गलियों पर क्या गुजरी,
1: वाह जी वाह,
0: तुम्हें क्या मालूम इन गलियों
1: गलियों
0: पर
1: से
0: क्या
1: तुम,
0: गुजरी, तुमने तो बस छज्जे पे आना छोड़ दिया।
1: अरे वाह क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया, मतलब
0: तो कभी कभी शेर आपके जो ऐसे पोइट्रीज होती हैं वो ऐसी सिचुएशन से निकलती हैं।
1: अच्छा ये चीज ना बड़ा मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट इजी, आप किसी भी चीज को जब देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, फिर उसको आप
0: हाँ
1: अपने
0: जी
1: शब्दों में पिरो रहे हैं,
0: बिल्कुल
1: ये
0: बिल्कुल
1: बहुत मुझे लगता है बड़ा चैलेंजिंग भी होता होगा यार
0: नहीं
1: उत्कर्ष भाई।
0: बिल्कुल होता है, लेकिन जब आप अच्छा पढ़ रहे होते हैं तो कभी ना कभी ये चीजें बनती हैं। जैसे एक और है, जैसे मैं टीचर ही हूँ, तो मैं पढ़ा रहा था लॉ कॉलेज में, तो मैं बड़ा फ्रेंडली टीचर हूँ, तो मेरे
1: वो
0: जो बच्चे
1: तो
0: होते हैं
1: खैर
0: वो
1: मेरे को
0: बात कर
1: आपको
0: लेते हैं,
1: देख के लग रहा है आपका एनवायरनमेंट ऐसा है ही।
0: तो अक्सर बच्चे अपने, एक लड़का है तो वो अपनी रिलेशनशिप के बारे में ऐसे ही डिस्कस कर रहा था,
1: ऑल राइट,
0: कि मैंने उससे कहा कि भाई बेटा तुम्हारी अटेंडेंस लो हो रही है, क्यों नहीं आ रहे हो, तो क्लास के बच्चों ने चिल्लाया सर वो भी नहीं आ रही है इसलिए नहीं आ रहा है। तो वो सिचुएशन क्रिएट होती है, और तब एक शेर बनता है कि आंखों से ही दिल में उतर जाना होता है,
1: वाह जी वाह,
0: इश्क में ये भी कर गुजर जाना होता है,
1: गजब,
0: आंखों से दिल में उतर जाना होता है, इश्क में ये भी कर गुजर जाना होता है, कॉलेज बस तेरे दीदार को आते हैं।
1: अरे वाह,
0: अटेंडेंस तो महज बहाना होता है।
1: क्या बात है यार, आउटस्टैंडिंग। मतलब कितना कमाल का आपका जो है सेंस ऑफ ह्यूमर
0: ये
1: है भाई
0: जो
1: साहब।
0: अटेंडेंस है ये तो सिर्फ एक बहाना होता है,
1: बहाना
0: हम तो
1: होता है,
0: कॉलेज तेरे दीदार को आते
1: क्या
0: हैं।
1: बात है।
0: तो सिचुएशनल
1: अच्छा, ये
0: चाइनीज भी कभी
1: बेसिकली
0: कभी।
1: ये अगर देखा जाए तो ये सच भी है, कहीं प्रतिशत सच भी है ये बात। बहुत
0: हाँ जी
1: लोग
0: हाँ
1: हैं
0: जी
1: जो
0: बिल्कुल सच है।
1: ये
0: तो
1: चीज
0: मैं
1: करते
0: वही कह रहा
1: हैं
0: हूँ कि
1: तो।
0: जितना अच्छा आपका ऑब्जर्वेशन होगा
1: करेक्ट,
0: आप उतना अच्छा लिख पाएंगे। आप जॉन एलिया साहब को लिखिए, आप बशीर बद्र साहब, जितने बड़े बड़े पोइट्स हैं आप उन्हें अगर सुनिए तो बशीर बद्र साहब अपनी शायरी में कहते हैं कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा,
1: वाह
0: इतना मत चाहो उसे वो खुदा हो जाएगा। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जितना अच्छा ऑब्जर्वेशन आप रख सकते हैं उतना अच्छा आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते
1: दैट्स
0: हैं, गा
1: अमेजिंग
0: सकते
1: यार।
0: हैं।
1: बातें उत्कर्ष भाई से ढेर सारी हो रही हैं और बहुत सारी चीजें अभी आगे भी सुनेंगे। आई नो दैट थोड़ी सी लंबी कॉन्वर्सेशन होगी, बट कोई बात नहीं। अभी एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक का टाइम है। इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद वी कम बैक, मैं और उत्कर्ष भाई आ जाए। आज मैं बिल्कुल भी अकेला नहीं हूँ स्टूडियो के अंदर, और आज हमारे साथ उत्कर्ष भाई मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में। ढेर सारी बातें कर रहे हैं, अपनी प्यारी प्यारी बातों से, अपनी प्यारी प्यारी शेरो शायरी से आपको जो है आज बड़ा सुकून दे रहे हैं भाई। मेरा तो मन प्रफुल्लित हो गया है भाई की बातें सुन के। अब आपको जो एक बढ़िया से गाना सुनाते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं। आप कहीं मत जाइए, सुंदरी आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: वेलकम बैक ही वंस अगेन। बहुत ही मजा आ रहा है मुझे तो आज की शाम, एंड आई एम रियली श्योर आप भी बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। आई होप आपको भी ये सेशन डेफिनेटली अच्छा लग रहा होगा। यार मुझे तो एक ही शायरी आती है, इतने सारे शायर आए हैं, मैंने एक भी शायरी नहीं करी है, बट मेरे को ना एक्चुअली वो थोड़ी गंदी वाली शायरी आती है, उसको सुन के आप लोग हंस जाते हो। वो है ना मेरी एक बड़ी वो पुरानी सी शायरी जो मैं अक्सर चिपकाता रहता हूँ कि भर लो बाहों में कर दो मदहोश, भर लो बाहों में कर दो मदहोश, कौसे कबूतर खासे खरगोश। तो भाई मेरे को इससे आगे वाली नहीं आती है। वेल लेट मी टेल यू, ये जो शायरी थी तो बहुत गंदी थी, बहुत बकवास और भाईयात शायरी थी मेरी, बट जो उत्कर्ष भाई सुना रहे हैं बहुत ही प्यारी है यार, बिकॉज उनका जोनरी यू नो अलग ही है। भाई वेलकम बैक है आपका एक बार फिर से।
1: थैंक यू।
0: एंड आई होप आप भी एंजॉय कर रहे होंगे यार हमारे साथ इस सेशन को।
1: मैं डेफिनेटली बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है, और मैं सोच रहा हूँ कि ये सेशन कहीं खत्म ना हो जाए।
0: ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा भैया, मैं क्या ही करूँ, बट बहुत मजा आ रहा है आपके साथ बात करके। यू नो मतलब दोस्तों कभी कभी होता है ना कि जब आप किसी से अच्छे से दिल से बात करते हो तो ऐसा लगता है नहीं कि आप फर्स्ट टाइम किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, ऐसा होता है उत्कर्ष भाई? जैसे मैं एक्चुअली भाई को बाहर रिसीव करने के लिए खड़ा हुआ था, तो भाई भी मेरे को देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ ये पर्सन है जो आने वाला है, आई डोंट नो। फिर ये इन्होंने मेरे को पूछा, मैं हाँ जी हाँ जी, फिर जो ना थोड़ी सी बातचीत करी, लेकिन ऐसा लगा नहीं यार हम पहली बार मिल रहे हैं भैया। हाँ, यहाँ पे स्टूडियो में आके से हम लोग ट्रैक कर रहे हैं लाइव ऑन एयर, तो ऐसा लग नहीं रहा ना कि हम पहली बार मिले हैं, और ये होना भी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: बहुत अच्छा लगा आप आए, और ये बड़ी खुशनसीबी हमारी कि हम आपको सुन रहे हैं यहाँ बैठ के।
1: मेरी भी खुशनसीबी है कि आपने मुझे बुलाया।
0: अरे सर थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आप बड़े बिजी और बड़े बिजी पर्सनालिटी हैं आप, मैंने सुना है, तो आप जो है शाम को रवाना हो जाएंगे।
1: पर्सनालिटी का तो सर ये है कि मतलब जब आप काम में लग जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब आपके ऊपर आ जाती हैं, तब फिर आप बिजी हो जाते हैं, वरना आपको पैशन और प्रोफेशन आपका जब अलग हो जाता है ना, तो प्रोफेशन आपको पैशन की तरफ आने नहीं देता।
0: यार मेरा ऐसा मानना है उत्कर्ष भाई कि अगर आप अपने पैशन को प्रोफेशन बना ले तो कितना अच्छा है।
1: बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा, और इसी कोशिश में भी हूँ।
0: नहीं, मैंने तो अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बना लिया है। मेरा पैशन था मुझे रेडियो में आना है, मुझे बातें करनी है, बिकॉज आई लव यू नो टॉक करना, ये आई लव दिस जॉब, मैं हमेशा इसको बोलता भी हूँ, मुझे बहुत पसंद है।
1: ज्यादा खुश इंसान ही नहीं होगा,
0: इसीलिए अब मुझे बहुत सारे लोग
1: ये काम कर लिया है। तो
0: मतलब यार मुझे ऐसा लगता है उत्कर्ष भाई, मतलब जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर मुझे रात को 2 बजे भी कभी ऐसा लगता आता है कि यार आपको आना है करने कुछ, तो मेरे को लगता नहीं रात के 2 बजे यार यही तो करना था मुझे, अब 2 बजे क्या देखना भाई, चल ये यही तो मेरा पैशन था।
1: जब दिल से काम होते हैं तो बड़े अच्छे होते हैं।
0: करेक्ट, और फिर हमें उसमें ना ऐसा नहीं लगता यार हमें टाइम पूरा करना है।
1: बिल्कुल डेफिनेटली,
0: हमें उसमें लगता है यार थोड़ा टाइम और मिल जाए।
1: जॉब होता है ना, तो जॉब होता है 9 to 5, और आप जब 9 जॉब की तरह करते हैं तो वो 5 बजने का इंतजार होता है, सुबह 9 बजने से पहले आप उठते नहीं। तो लेकिन आपका जब पैशन होता है ना, काम करने का मन होता है, अच्छा होता, तो सुबह के 9 नहीं दिखते, शाम के 5 नहीं दिखते आपको।
0: करेक्ट। और जब आप दिल से काम करते हो,
1: जब दिल से आप काम करते,
0: बहुत ही बढ़िया आपने बोला है भाई, और हम भी आपके लिए डेफिनेटली प्रे करेंगे कि आप अगर अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाना चाह रहे हैं तो आई रियली होप ऐसा हो नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे कनेक्ट हूं, तो आप ही बोलें कि आनंद आज मैं अपने पैशन के साथ आया हूं और ये मेरा पैशन ही मेरा प्रोफेशन हो गया है।
1: बिल्कुल,
0: दैट्स अमेजिंग। उत्कर्ष भाई अब जो है ना, अभी थोड़ी देर पहले आप और मैं जिक्र कर रहे थे किसी फ्रेंडशिप का कोई किस्सा, आई थिंक आप सुनाने वाले थे ना।
1: हाँ, मैं एक दोस्ती का बहुत ही सच्चा और मतलब अच्छा किस्सा सुनाने वाला था।
0: डेफिनेटली,
1: लेकिन उसको बस थोड़ा सा मैंने पोएट्री में डाल दिया है, उसके अंदर की रियलिटी बिल्कुल रियल है। तो हुआ ये कि ये फ्रेंडशिप डे

0: मैंने लिखा था।
1: अरे वाह, क्या बात है।
0: तो कल कुछ पुराने पन्नों को टटोला तो कुछ बिखरे अधूरे अल्फाज मिले।
1: क्या बात है।
0: उसी डायरी में तुम्हारा जिक्र किया था मैंने, जिसकी हर शायरी में एक सूखा सा मुरझाया हुआ गुलाब भी था, और ये वही गुलाब था जो मैं तुम्हें देने के लिए एक गरीब बच्चे से खरीद कर लाया था। और उसने मुझे साथ में एक दुआ भी दी थी, कहा था भैया आज ना आपको आपका प्यार मिल जाएगा। तो उस दिन ठान लिया कि कह दूंगा तुमसे दिल की हर एक बात, बता दूंगा तुम्हें अपने सारे जज्बा, मिटा डालूंगा दरमियां हर दूरी, और तब जाकर होगी तेरी मेरी कहानी पूरी।
1: क्या बात है यार।
0: मगर मगर मगर मगर मगर मेरी एक किस्म, मैं तुम्हें कभी वो गुलाब दे ही नहीं पाया। और देता भी तो कैसे, तुमने उस दिन मुझसे पूछ जो लिया था कि हम अच्छे दोस्त रहेंगे ना, तू मुझे भूल तो नहीं जाएगा। और तेरे इन दो सवालों ने मुझे तुझसे कुछ भी कहने से रोक दिया। तुम दिल से यह आवाज आई कि शायद शायद तुझे मेरे हाथों में हाथ डालकर चलने से ज्यादा मेरे संग वक्त बिताना पसंद है, मेरे संग लड़ना पसंद है। तुझे बाजार के तोहफे नहीं, मेरे साथ वक्त बिताना पसंद है। और फिर इस दिल ने तय कर लिया कि अब चाहे अब कोई भी इजहारे नहीं होगा, कोई मोहब्बत नहीं होगी, होगी तो सिर्फ और सिर्फ दोस्ती। और वो इसलिए भी क्योंकि मैं अपनी सबसे अच्छी और प्यारी दोस्त को खोना नहीं चाहता था। अब तुम्हारा और मेरा रिश्ता चाहे जैसा भी हो मुझे कबूल था। हैप्पी फ्रेंडशिप डे।
1: बहुत ही बढ़िया यार।
0: तो ये जब किसी दोस्त को लिखा गया कि हैप्पी फ्रेंडशिप डे, तब ये लिखा गया था। बड़ा कनेक्टिंग है। आई होप सो कि मेरे जो लोग ये सुन रहे हैं, जो भी हमारे लिसनर्स हैं, वो जब ये सुनेंगे तो वो बहुत रिलेट कर पाएंगे इस चीज से।
1: मेरे को ना एक चीज बहुत अच्छी लग रही है, यू नो, कि आप जो भी चीज परफॉर्म कर रहे हो ना, आप उसमें यू नो घुस जा रहे हो। वो कहते हैं ना, अगर आप कोई चीज करते हो तो आप उस कैरेक्टर में घुस जाओ। आपने अभी ये फ्रेंडशिप वाला जो भी किस्सा शेयर किया, इसके अंदर ऐसा लग रहा था कि आप अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हो। आई डोंट नो, बिकॉज ये एकदम रिलेटेबल इसलिए लगा क्योंकि वो स्टोरी आपने खुद के ऊपर यू नो एकदम से ब्रॉडकास्ट कर दी कि ये मेरी कहानी है।
0: yes.
1: और आपने उसको ऐसे शेरो शायरी या पोएट्री वे में नहीं, आपने उसको स्टोरी टेलिंग के साथ में यू नो इतने फ्लुएंटली बोला, इतने अच्छे से और इतनी मधुर आवाज में मनमुक्त हो गया मैं तो।
0: इसीलिए मैं कहता भी हूँ हर बार कि आप जो लिखने वाले हो उसको पहले ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व करने के बाद उस चीज को फील करिए। और जब आप फील कर लेंगे उस चीज को, दैट आप इमेजिन कर लेंगे कि आई एम इन दैट सिचुएशन, उस सिचुएशन में मैं हूँ, तब आप बहुत अच्छा लिख पाएंगे।
1: और
0: राइटर आप बहुत अच्छा लिख पाएंगे।
1: और मुझे लगता है कि अगर आप कुछ डिलीवर भी कर रहे हैं,
0: तो आप उससे अच्छा नहीं डिलीवर,
1: क्योंकि वो जब तक आपके अंदर इमोशंस नहीं होंगे, जब तक वो फीलिंग नहीं होंगी। इनफैक्ट ये सिंगर का भी सेम रहता है उत्कर्ष भैया, जब वो कोई गाना गा रहे होते हैं, अगर उनका जोनर है कि भैया आपको सैड गाना है, तो वो मैंने उदित नारायण जी का इंटरव्यू सुना था, उसमें उन्होंने कहा था कि आप जब अगर कोई हैप्पी गाना गा रहे हैं तो आप इतने हैप्पीनेस के साथ गाइए कि आपसे दुनिया में ज्यादा कोई खुश है ही नहीं। मतलब आपको ऐसे गाना है कि सबसे ज्यादा खुश आप हैं, तभी वो एक्चुअल में फील होगा सामने वाले को। और अगर आप कोई सैड चीज कर रहे हो तो आपको ऐसे करना है कि आपसे ज्यादा दुखी दुनिया में कोई और है ही नहीं, आप ही सबसे ज्यादा दुखी दुनिया के इंसान है, तभी आप एक्चुअल में अपना जो भी आप देना चाह रहे हो वो आप दे पाएंगे 100%। ये बिल्कुल फैक्ट है और ये आप में कूट कूट के भरा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप बड़ी शांत और बड़ी सरल स्वभाव के साथ बात कर रहे हैं, मतलब इतनी रियल लाइफ में भी शांत है या फिर इधर माइक पे बैठ के आप इतने शांत है?
0: नहीं, मैं जनरली, मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही अपना इंट्रोडक्टरी शेयर बताया था, मैंने कहा कि मैं भोला वसादा था, जान निसारने वाला, तो मैं हूँ एक्चुअली। मेरा नेचर ही सबसे पहले
1: चुप से रहने वाले टाइप के लग रहे हैं आप।
0: रहने वाला नहीं, चुपचाप तो नहीं रहता हूँ, बोलने वाला, हंसी मजाक करने वाला, और ये लेकिन मेरे अंदर एक और पर्सनैलिटी है जो कि रिजर्व्ड है बहुत ज्यादा।
1: ऑलराइट,
0: तो मैं काफी जगहों पर खुद को शांत और अच्छा महसूस कराने के लिए अकेले बैठना पसंद करता हूँ, बात करना। और मेरा जो वे ऑफ टॉकिंग है वो जनरली काम ही रहता है। हूँ टीचर, लेकिन कभी चिल्लाता नहीं हूँ क्लास में, इवन जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे बच्चों से भी अगर आप कभी मिलेंगे तो पहली बार टीचर्स की फैन फॉलोइंग मैंने देखी है जो मेरी है, शायद आई गेस मेरी है।
1: लग रहा है मुझे वो आपकी यू नो वो इंसान की नेचर में आ जाती है।
0: मैं कर रहा हूँ बट मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि मेरा नेचर है ऐसा कि मैं थोड़ा सा काम रहता हूँ, थोड़ा सुलझा हुआ, थोड़ा
1: एक्चुअली मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा, इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं भाई जाना है उसके बाद वो वहां जा रहे हैं क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में आप सेम चीज कर रहे होते हैं तो कभी कभी आ जाता है।
0: असल में क्या था कि मेरे फादर से पापा बहुत पापा टाइप वाले पापा थे मेरे, मतलब एकदम स्ट्रिक्ट नेचर के हैं, तो उनसे कभी ना कहने की हिम्मत नहीं हुई कि पापा मुझे एक्टिंग में जाना है, सिंगिंग में जाना है, पोएट्री या शायरी कुछ करना है समझे। अभी तो क्या है कि अभी जगह जगह जाते हैं, शोज करते हैं तो पता चल जाता है, पापा बड़े खुश होते हैं। अभी उड़ीसा मुरादाबाद में जो हुआ था लिटरेरी इवेंट, उसमें भी मुझे पढ़ने का मौका मिला और काफी अच्छा मोमेंट वगैरह उन्होंने दिया, तो पापा को बड़ा अच्छा लगा, बड़ा प्राउड महसूस करते हैं। लेकिन पहले ये चीजें नहीं थी हमारे टाइम पे, जब हम छोटे थे तब हमें इतना मौका नहीं मिला, तो हम पढ़ाई। फिर मेरा मानना यह है कि अगर आप अपने मन का ना कर सको तो आप जो कर रहे हैं उसमें अपना मन लगा लीजिए।
1: वेरी नाइस, ये बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही रियल बात बोली।
0: हाँ, क्योंकि अगर मैं पढ़ाई करने बैठा हूँ, मैं पापा के डर से किताब खोल के बैठ सकता हूँ बट मैं पढ़ नहीं सकता,
1: मतलब उनको शो ऑफ करेंगे कि हाँ आपका प्रेशर है हम पढ़ रहे हैं,
0: और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आज के टाइम पे यही
1: कर रहे हैं, वो दिल से नहीं आ रहा होता बेसिकली।
0: लेकिन अगर आपको पता है कि आपको पढ़ना ही है, आप इससे परे नहीं जा सकते, आप इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, आप अपना कोई स्टेप नहीं ले सकते, तो फिर जो कर रहे हैं उसको मन से करिए, क्योंकि इनपुट जब आप दे रहे हैं, आप अपना टाइम दे रहे हैं विच इज मनी करंटली, मतलब टाइम इज मनी ना, और अगर आप अपना किसी चीज को टाइम दे रहे हैं तो वो बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, उसको इम्पैक्टफुल होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये कि आप जो भी काम करें मन से करें, भले वो आपके मन का हो रहा हो या किसी और के मन का हो रहा हो।
1: तो है गाइस, और अगली बात जो होगी वो आपके मन की होगी, आपके हित की होगी, क्योंकि अगला म्यूजिकल ब्रेक आपके लिए आ रहा है यार। हमारी बातचीत तो चलती रहेंगी, सो आपके ही मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको लग रहा है आनंद, थोड़ा सा गाने शाने की तरफ ले जाओ हमें, ठीक है। एक बढ़िया सा म्यूजिकल ब्रेक आ रहा है, एक बढ़िया सा गाना सुन के वापस जल्दी मिलेंगे आपसे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। उत्कर्ष अग्रवाल जी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं और हम लौट कर आएंगे तो उनकी एक बहुत ही अच्छी सी एक वो उन्होंने बताया था ना राधा कृष्ण के ऊपर कुछ तो लिखते हैं बढ़िया सा, तो वो हम सुनेंगे। आप कहीं मत जाइए, अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली बता सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से मिलता हूँ, रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से मिलता हूँ, डोंट फॉरगेट, वहां भी अच्छी चीजें लेकर आते हैं। एंड ऑफिशियल आईडी डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं आप, एफएम मुरादाबाद 89.6 इस नाम से हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, फॉलो कीजिए। वहां पर भी हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते रहते हैं, और अभी एक बढ़िया सा गाना सुनते हैं उसके बाद वापस लेकर आते हैं कर्ष जी को। आप ही मजाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। क्या हाल चाल है जी, सब बढ़िया चल रहा है? वेरी नाइस यार।

0: वेलकम बैक ही वंस अगेन, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो। आप सुन रहे हैं आनंद विद यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप सब बहुत ही बढ़िया से एंजॉय कर रहे होंगे इस कॉन्वर्सेशन को, इस प्रोग्राम को, और ये प्लान को और भी खूबसूरत बना रहे हैं। मेरे साथ आज के हमारे स्पेशल गेस्ट उत्कर्ष अग्रवाल जी मेरे साथ हैं, एंड आई एम सुपर हैप्पी बिकॉज उनके साथ बात करके बहुत ही मजा आ रहा है, और ऐसे मजेदार लोग मुरादाबाद में भी रहते हैं यार, पता नहीं था। वेल थैंक यू वेरी मच उत्कर्ष भाई, आप आए, आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम हमारे लिसनर्स के साथ साझा किया, और आपने जितना भी जो भी सुनाया वो बहुत ही मजेदार था, और बहुत ही मतलब काबिले तारीफ था यार भाई, मजा आ गया आपकी इस कॉन्वर्सेशन को सुन के। एंड आई होप यार आप तो खुद ही डिलीवर कर रहे हैं इतनी अच्छी अच्छी बातें, आपको कितना मजा आ रहा है आप बताओ यार भाई।
1: नहीं, मुझे तो डेफिनेटली बहुत मजा आ रहा है बातचीत करके, क्योंकि मैं तो चाह ही रहा था कि ये सेशन खत्म ना हो, क्योंकि मजा आ रहा है बातचीत में।
0: अरे वाह क्या बात है। अच्छा मतलब यू नो आपको ऐसा कुछ पता था कल तक कि आज आप इधर आने वाले हैं?
1: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मुझे बिल्कुल नहीं पता था, कुछ भी आइडिया नहीं था। बस
0: कल रात को तो ऐसे सोचे नहीं थे कल एक आनंद नाम के लड़के से मुलाकात होने वाली है।
1: बिल्कुल आरजे आनंद जी से मिलके वाकई आनंद आ गया।
0: अरे वाह थैंक यू सो मच,
1: आप अपने नाम को सार्थक तो कर रहे हैं।
0: अरे सर थैंक यू सो मच। वही वापस बैक टू पॉइंट कि जब आपका पैशन प्रोफेशन बनता है ना तो आप उसमें जी जान लगा देते हो भाई, है ना, फिर उसमें जो निकल के आता है कि ओरिजिनल वाला प्यार, वो फिर लोग पसंद करते हैं यार, तो वही वाली चीज है,
1: ऑटोमेटिकली पसंद आने लग जाता है लोगों, क्योंकि आपने जो किया होता है ना वो कुछ एकदम नेक्स्ट लेवल होता है।
0: एब्सोल्युटली, क्योंकि वो आप उसमें वो चीज कर रहे होते हो जो आपको, जिससे आपको प्यार था वो चीज आप और अच्छे से करते हो, वो होते ना जिस चीज में हमें मोहब्बत होती है कुछ नहीं, आप ही अच्छी हो जाते है ना, वो चीज है जैसे आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि आपको उस चीज से प्यार है, वो चीज ऑटोमेटिकली आपके अंदर से बाहर निकल रही है, मैं देख पा रहा हूँ। सो भैया आप सोशल मीडिया तो डेफिनेटली यूज करते
1: हैं? हाँ मैं यूज करता हूँ मेरा सोशल मीडिया, मेरा अपना जो पर्सनल अकाउंट है वो, हालांकि मैं
0: कितना मतलब एक्टिव है सोशली, आप अभी इतना अच्छा आप कर दे तो मुझे लगता है आपको सोशली पे जाना
1: नहीं,
0: चाहिए।
1: मैं सोशली पोइट्रीज और इन सब चीजों को लेकर एक्टिव नहीं हूँ, सोशली में उतना ही एक्टिव हूँ जितना सोशल मीडिया को देखने में टाइम लगता है।
0: ओ भाई
1: मैं इसी चीज में थोड़ा सा पीछे हूँ।
0: ऑलराइट,
1: मैंने जैसे कि कहा कि मैं और कामों में इतना उलझा हूँ, जिम्मेदारियों में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, कि खुद को नहीं टाइम दे पा रहा हूँ, और दैट इज माई फॉल्ट, मैं इसे मानता हूँ कि ये मेरा प्रॉपर फॉल्ट है,
0: बिकॉज
1: अपने आप को जरूर टाइम देना
0: मुझे लगता है कि इतना अच्छा आप कर रहे हैं, और ये जहां तक 4-5 हजार लोगों तक जा रहा है, अगर आप ये मतलब जो आप करते हैं अपना जहां भी आप जाते हैं जितने भी आप सर्कल में करते हैं, बट सोशल मीडिया दैट इज बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है ना, अगर आप वहां कोई चीज कर रहे हैं तो वो फिर आप बताओ उसकी क्वांटिटी कितने लाखों करोड़
1: पेज था। एक हर्फ के नाम से मैंने एक पेज बनाया था,
0: ऑलराइट,
1: क्योंकि एक हर्फ वो पहली पोएट्री थी जो मेरी बहुत वायरल हुई थी।
0: अरे वाह,
1: एक हर्फ का टाइटल था उसका, तो मैंने उसी के नाम से पेज बनाया।
0: नाम बड़ा डिफरेंट अच्छा लग रहा है यार इसका, एक हर्फ।
1: हर्फ का मतलब होता है एक अक्षर, एक लेटर,
0: ऑलराइट,
1: एक अल्फाबेट आप कह सकते हैं। तो एक हर्फ मैंने लिखा था, मैं एक हर्फ की कुछ ऐसा लिखूं, तेरे नाम जिंदगी लिखूं, समथिंग ऐसा, वो बहुत पॉपुलर पोएट्री थी मेरी, बहुत वायरल हुई थी। बट फिर हुआ ये कि धीरे धीरे उस पर व्यूज उतना नहीं मिलता था मुझे, क्योंकि आजकल लोग जो होते हैं ज्यादातर अच्छी चीजों को कम और
0: थोड़ा
1: सा वो कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट को, एक कलाकार को वो प्रॉब्लम होती है कि यार मैं इतना अच्छा कंटेंट डाल रहा हूँ लोग सुन नहीं रहे हैं।
0: पर मुझे ऐसा लगता है उत्कर्ष भाई,
1: कंसिस्टेंसी उसमें, रेगुलरिटी,
0: दिस इज ट्रू, मुझे भी वही बोलना था कि आपको ना यार, आपको ना दुनिया के लिए

0: प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में। प्रधानमंत्री ने वाराणसी की स्थिति की जानकारी ली। और महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए में भारत और हांगकांग के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने परस्पर संबंधों के संपूर्ण आयाम तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया है। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड फ्यूल या सप्लाई चेन हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद के हर रूप को खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
1: भारत और बेल्जियम दोनों ही रूल ऑफ लॉ, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते हैं और आतंकवाद के हर रूप को जड़ से समाप्त करना हमारी साझी प्रतिबद्धता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया।
1: इस वर्ष की शुरुआत में हमने ऐतिहासिक भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच यह अभूतपूर्व सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को भी नई मजबूती देगा। भारत की निरंतर आर्थिक प्रगति और इस एग्रीमेंट ने हमारे आर्थिक संबंधों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले।
0: बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया।
2: 20 साल में बेल्जियम के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ आना बहुत लंबा समय है। इन 20 सालों में भारत बहुत बदला है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के दौरान तो और भी ज्यादा बदलाव हुआ है। आज भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश भी है। भारत आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक बड़ी ताकत है और एक महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी बन गया है। भारत की आवाज इस क्षेत्र से कहीं आगे तक सुनी जा सकती है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों ने फार्मास्यूटिकल्स, जीव विज्ञान, सेमीकंडक्टर, रक्षा विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, अंतरिक्ष और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ

0: इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और साइबर अपराध से निपटने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और बेल्जियम की संघीय पुलिस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध हैं, जो आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने यह बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रांकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही। भारत ने ब्रसेल्स में डिफेंस अटैशे नियुक्त करने का फैसला किया है। बेल्जियम ने इस साल की शुरुआत में नई दिल्ली में डिफेंस अटैशे नियुक्त किया था। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में मीडिया को ये जानकारी दी। भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण पर श्री जॉर्ज ने कहा कि उसे पिछले साल अप्रैल में बेल्जियम के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था और तब से वो बेल्जियम की जेल में है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे।
2: मेकिंग इंडिया $30 trillion इकोनॉमी।
3: भारत 2047 तक $30 trillion की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देश अपनी आर्थिक यात्रा के अहम दौर में है। पहली तिमाही में 7.8% का सकल घरेलू उत्पाद बहुत उत्साहजनक है और भविष्य के लिए बड़ी उम्मीदें जगा रहा है। दुनिया भर में अनिश्चितता और भारी उथल पुथल के इस दौर में ये बड़ी उपलब्धि है।
2: अराउंड द वर्ल्ड इज नो मीन अचीवमेंट।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत हमेशा से ये कहता आया है कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है और इससे कोई समाधान नहीं निकलेगा। श्री जयशंकर ने यूक्रेन के कीव में वहां के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा से मुलाकात के बाद ये बात कही। श्री जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दिन पहले किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए गए बयान को दोहराया। श्री मोदी ने कहा था कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करना होगा। उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए भारत की ओर से हर संभव समर्थन का आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। बाद में विदेश मंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की और मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के उपायों पर चर्चा की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों और व्यापार विभाग के रणनीतिक योजना और समन्वय समूह की सचिव एलेनोर जेन लॉसन से मुलाकात की। दोनों ने द्विपक्षीय हितों से जुड़े मुद्दों के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1252 हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 4216 लोग अब भी लापता हैं। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की। तेज बारिश के कारण जौनपुर, सोनभद्र, वाराणसी, पीलीभीत, चित्रकूट और चंदौली में आज स्कूल बंद रहे। इस बीच मौसम विभाग ने कल मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कल तेज बारिश का अनुमान है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है। सरकार ने आज विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद

0: की 31 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित इस संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय कल से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों को एक साथ लाने का अवसर मिलेगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत इनोवेट्स पहल के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस पहल का उद्देश्य देश के अनुसंधान और विकास आधारित डीप टेक नवाचार तंत्र को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना और सहयोग के अधिक अवसर तैयार करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। दुबई में महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत और हांगकांग के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13वें ओवर में 2 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। हांगकांग ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अनाहत सिंह लंदन स्क्वाश क्लासिक टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। जूनियर विश्व चैंपियन अनाहत ने महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम की नील गिलस को 2-1 से हराया। किदाम्बी श्रीकांत और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स में कनाडा के विक्टर लाई को हराया, जबकि सात्विक और चिराग की पुरुष डबल्स जोड़ी ने फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव और टोमा जूनियर पोपोव की जोड़ी को हराया। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा और मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रेस्टो को हार का सामना करना पड़ा। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन कल जन्माष्टमी के भव्य उत्सव के लिए सज धज कर तैयार है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि में तैयारियां जोरों पर हैं। मथुरा में पहली बार कल जन्माष्टमी के मौके पर 500 द्रोण आकाश में भगवान कृष्ण के जन्म और उनकी विभिन्न लीलाओं को जीवंत रूप से प्रदर्शित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जन्माष्टमी समारोह में भाग लेने के लिए मथुरा पहुंच चुके हैं। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने आज श्री स्वामी हरिदास सभागार का उद्घाटन किया और 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजना का शुभारंभ भी किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि श्रीमद् भगवद् गीता में दी गई श्री कृष्ण की शिक्षाएं आज भी कठिन समय में सही निर्णय लेने और नैतिक मूल्यों पर दृढ़ रहने की प्रेरणा देती हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमरीश सक्सेना।
4: सेंसेक्स 417 अंक गिरकर 76,153 पर बंद हुआ। निफ्टी 41 अंक की गिरावट के साथ 23,873 पर रहा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 49 पैसे मजबूत होकर 94.49 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन किया। भारत और बेल्जियम ने रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने और सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज तथा उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर हासिल करने में एमएसएमई के योगदान की सराहना की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। और उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी की स्थिति की जानकारी ली। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening.

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.

0: नमस्कार नमस्कार नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। मैं हूं आपका अपना अखिल और आप सुन रहे हैं वो कार्यक्रम जहां बातें होती हैं सिर्फ कानों तक नहीं, सीधे दिल से। भाई जी हां, दिल से दिल तक अखिल संग। और आज का जो शो है ना, थोड़ा ज़्यादा खास है क्योंकि माहौल है कान्हा जी की नटखट मुस्कान का, मुरली की मीठी मीठी तान का और जन्माष्टमी की धूमधाम का। तो भाई साहब, कान्हा का नाम आते ही ना मस्ती तो अपने आप ही शुरू हो जाती है। और छोटे छोटे जो कान्हा होते हैं ना, जब उनकी आप शैतानी देखते हैं तो हंसी तो है मन में कभी रुकती नहीं है। कहीं जो है राधे राधे की आवाज़, कहीं झूला सज रहा है और कहीं मटकी सज रही है, तो कहीं घर में कोई बच्चा पहले से ही माखन की तलाश में निकल चुका है। लेकिन सवाल यह है कि आपके घर का कृष्णा कौन है जो सबसे ज्यादा शरारत करता है, या फिर जो चोरी से फ्रिज खोलकर मिठाई गायब कर देता है। तो चलिए अपने पहले लिसनर से बात करते हैं कि आज हमारे साथ कौन टकराया है। हाँ, बहुत टाइम बाद आपको उसकी आवाज सुनने को मिलेगी। और बताइएगा, हेलो दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हो भाई।
1: आप
0: मैं बढ़िया हूँ, और क्या कर रहे हो।
1: बस कुछ नहीं,
0: आज क्या मस्ती की आपने स्कूल में।
1: आज नहीं, आंटी का तो था कंपटीशन, लेकिन बारिश ने सारा गेम खराब कर दिया हमारा।
0: बारिश ने क्या गेम खराब कर दिया भाई।
1: अब जैसी जैसी वर्षी जैसी भी कहते गोविंदा खेलने लगे,
0: हाँ तो फिर सोचा होगा कि भैया इस वाले गोविंदा को बारिश में मत भीगने दो, वरना पता चला घर से कंप्लेन आ गई कि ये तो आज मेरा लड़का है छींक ही मार रहा है पूरे। हाँ, ये एग्जाम वाला मंथ है भैया, सारे बच्चे पढ़ाई में लगे हुए हैं, कोई एग्जाम में किसी के मार्क्स कम ना आ जाए। कब एग्जाम खत्म होंगे आपके।
1: 24th
0: को खत्म होंगे। तो चलो अभी हमारे सभी श्रोताओं को अपना नाम बता दो, डिस्क्लोज कर दो। सब लोगों को वैसे पता चल गया होगा जो जो सुनते हैं हमारा शो, मगर तब भी अपना नाम बता दो और बता दो आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो। हाँ तो साहब बहुत ही धैर्य से बोल रहे हैं, इतने दिनों बाद आपने इतना धैर्य रखा था, कहाँ थे अभी तक आप ये बताओ पहले।
1: मैं घर पे हूँ।
0: घर पे ही हो आप।
1: हाँ।
0: कहीं घूमने घामने तो नहीं चले गए थे।
1: नहीं तो।
0: चलो तो धैर्य ये बताओ, कौन सी ऐसी शरारत करते हो तुम भी जो कभी कभी मम्मी कह देती हैं कि नहीं भैया अब तो थोड़ा सा तू अपनी नटखट कम कर ले, अब तो थोड़ा रुक जा, थोड़ी देर शांति से बैठ जा।
1: ये तो हर चीज है मेरी, मतलब क्या है बोलने में, लेकिन मैं सबसे ज्यादा कंप्लीट आती है राइटिंग सुधारो अपनी।
0: राइटिंग नहीं सुधर के दे रही है।
1: बिल्कुल भी नहीं।
0: चलो कोई नहीं, धीरे धीरे जो आती है ना वो अपनी राइटिंग वाली बुक्स आती हैं जिसमें आप अपनी कर्सिव राइटिंग की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो वैसी वाली बुक्स पे अपनी प्रैक्टिस करनी चालू कर दो ना। हाँ, मगर एग्जाम में भी सही से लिख देना, पता चला कि मैम कह दें ये तो बच्चा अभी से ही डॉक्टर बन गया है। क्या
1: कल मेरा एक दोस्त छोटी सी शायरी बोल रहा था।
0: अच्छा, दोस्त आपका शायरी बोल रहा था।
1: हाँ, मतलब कह रहा था कि जब कहते हैं आदमी बोल देते हैं सॉरी तो लड़ाई खत्म हो जाती है।
0: हाँ।
1: आदमी बोलते हैं सॉरी तो लड़ाई खत्म हो जाती है, जब डॉक्टर बोलते हैं सॉरी तो आदमी खत्म हो जाता है।
0: ये शायरी नहीं थी, ये तो भाई साहब शेर ही दे दिया उसने। और आजकल तो शेर बहुत घूम रहे हैं हमारे आसपास, खूब सारे तेंदुए घूम रहे हैं, संभल के रहना है सभी को। कोई बात नहीं, अब डॉक्टर ने तो बोल दिया सॉरी, मगर हम आपसे सॉरी नहीं बोलेंगे। आप ये बताओ आपको सॉन्ग कौन सा सुनना है। वो किसना है। ठीक है, तो जरूरी आपका सॉन्ग प्ले करते हैं, किसे डेडिकेट।

0: करना चाहते हैं, आप नाम बोलना चाहेंगे अपने दोस्तों का, अपने फैमिली मेंबर्स का?
1: एक दोस्त को बोलना चाहता है, श्री कृष्ण जी।
0: क्या नाम है आपका दोस्त का, क्या नाम है?
1: श्री कृष्ण जी,
0: श्री कृष्ण जी को क्या बात है, ये तो गाना भी उन्हीं को डेडिकेट कर दिया, वो तो सभी के दोस्त हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, तो खूब पढ़ाई करो, खूब मस्ती करो, और कल जन्माष्टमी भी एंजॉय करना। ठीक है, ओके, बाय बाय। तो श्रोताओं हमारे साथ जुड़े थे धैर्य, जो बहुत ही धैर्य रख के इन्होंने कह दिया ना इतने टाइम बाद कॉल करिए, आज अपना बताया भी है वो किसना है सॉन्ग की फरमाइश रखी। आपकी भी कोई फरमाइश हो ऐसी तो 9837896896 पे कॉल करें या मैसेज करें और बताएं कौन सी ऐसी कहानी है जो आपके साथ ऐसी नटखट सी बातें याद जो जुड़ी हुई है जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे दिल से दिल तक में। तो चलिए लेते हैं इस गाने का एंजॉयमेंट और हाँ फिर आते हैं वापस। और ये गाना भी ऐसा है साहब कि जैसे ही ये कानों में आता है तो खुद ही बोलने लगते हैं, हमारे खुद ही होठ जो हैं हिलने लगते हैं।

अगर आपको कान्हा के लिए कोई एक चीज सजानी हो, मुकुट, मुरली, झूला या मटकी, तो आप क्या सजाएंगे? बताइए 9837896896 पर।

कृष्णा जी को किस चीज से खास लगाव था? अगर तीन ऑप्शन दिया जाए, समोसा, माखन या जलेबी। अरे भाई, अगर कोई समोसा सोच रहा है तो वो मेरे साथ आ जाओ साहब, मजा आएगा समोसा खाने में। मगर सही जवाब अभी आप ही को देना है।

एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

अभी तो मिठाई से मन भी नहीं भर रहा था पूरा, कि माखन और खूब सारी स्वादिष्ट स्वादिष्ट लड्डू फिर से सामने आ जाएंगे साहब। तो ये तो सिलसिला ऐसे ही रहता है कि एक गया नहीं दूसरा आया नहीं, और मिठाई जो है ना बस जाने का नाम ही नहीं ले रही। कभी कभी मिठाई भी जो मेहमान की तरह हो जाती है, आ जाती है फिर आसानी से जाती नहीं है वापस। तो अभी जो आप गाना सुन रहे थे ना, वो लता मंगेशकर जी और मोहम्मद अजीज़ जी की आवाज़ में सुन रहे थे, और जो लिरिक्स थे उनके आनंद बख्शी साहब ने इतने प्यारे शब्दों में इस गाने को लिखा था। तो दोस्तों अब है थोड़ी सी और मस्ती का टाइम, जो अभी मैं आपसे क्वेश्चंस कर रहा था उसके आने लगे हैं जवाब। तो चलिए देखते हैं हमारे लिसनर्स ने क्या क्या जवाब दिए हैं। पहला हमारे पास मैसेज आया है, कृष्णा जी का फेवरेट फ्रूट है स्वीट लेमन, मौसमी। तो बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है आपने यादव जी ने, इनका नाम है निरांशी यादव। तो निरांशी जी बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है। हाँ, ये ऑप्शन में तो नहीं है मगर फेवरेट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। दूसरा जवाब आया है हमारे पास, हेलो सर, आई एम दिव्या फ्रॉम उत्तराखंड नैनीताल, आपके क्वेश्चन का आंसर है माखन। बिल्कुल सही जवाब, 100 में से 100 माखन चोर है साहब, मगर क्या कहते हैं ना, एक बार में बिल्कुल सही जवाब दे दिया। और हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया सा मैसेज भेजा है हमारे लिसनर हैं, कहते हैं अखिल जी मेरे घर में छोटा भाई कृष्ण बनता है लेकिन माखन खाने में सबसे आगे रहता है। अरे भाई खाने का तो जो कहते हैं ना कृष्ण कन्हैया का तो रोल ही यही है, उनका सबसे बचपन से ये रोल मिला है कि भाई साहब माखन ही खाना है, और वो ही करेक्टर है। जब भी आप कोई बचपन में देख लोगे, कोई भी छोटे से खाना देख लोगे तो उनके हाथ में माखन है, तो उसका मतलब भाई साहब कृष्णा जी अपने आसपास ही हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं एक गाने का और एंजॉय, और आपके मैसेजेस भी खूब पढ़ेंगे 9837896896 पे। कोई भी हो बात या कोई भी दिल की बात हो आज, कोई सी भी नटखट सी बात, तो ज़रूर कॉल करें फटाफट 9837896896।

तब तक एंजॉय करिए सोजा जरा फ्रॉम दी मूवी बाहुबली 2। तो इस गाने को ना जैसे सुनेंगे तो आप खुद ही खो जाएंगे उसमें, मगर ऐसा नहीं है कि साहब आप सो भी जाएं उसमें, एंजॉय करिए। और फिर मिलते हैं इस गाने के ब्रेक के बाद।

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग, प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर, नियर चड्डा सिनेमा।
0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
5: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
5: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस टू, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
6: Hey, you're tuning to FM मुरादाबाद 89.6 FM।

0: मुरादाबाद तैयार हो जाइए हंसी के धमाके के लिए।
1: जैसे ही पापा गए मैंने प्रतिज्ञा ले ली, छोटे बच्चे बहुत फुद्दू होते हैं। मैंने प्रतिज्ञा ले ली, मैंने ऐलान किया पूरे घर में, मैं कहा सुनो ध्यान से सारी, ये जो आदमी अभी गया घर से बाहर, इसकी कमाई का एक दाना तक नहीं खाऊंगा मैं।
0: फैशन फार्मर्स लेकर आ रहे हैं इंदिर साहनी कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 12 सितंबर रात 8 बजे ड्राइव इन 24 में रेडियो पार्टनर एफएम मुरादाबाद 89.6। तो बनिए इस अनफॉरगेटेबल नाइट का हिस्सा। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।
2: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। और हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना है, इंदिर साहनी जी आ रहे हैं मुरादाबाद में, स्टैंड अप कॉमेडियन है। 12 सितंबर को ड्राइव इन 24 में फैशन फार्मर्स लेके आ रहे हैं उन्हें शाम को 8 बजे। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी चाहिए या कोई भी उनका टिकट चाहिए शो का, तो ज़रूर 9837896 पर मैसेज करें, व्हाट्सएप करें इंदिर साहनी और आपके पास डिटेल्स पहुँच जाएंगी। तो चलिए साहब, अभी तो चल रही है अपनी मस्ती, खूब सारी बातें, और कहते हैं ना अब तो कल है जन्माष्टमी, तो सभी लोग कर रहे हैं तैयारी खूब, बिल्कुल एकदम। कोई माखन सोच रहा है तो कोई सोच रहा है क्या होगा खाने में, कल किसी का व्रत भी हो सकता है और किसी के यहाँ पार्टी भी, तो सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा साहब। अगर सोचिए आज हमारे साथ कहना अगर हमारे सामने बैठ कर बात कर रहे होते तो शायद वो यही कहते हमसे, क्यों चिंता करते हो, तो हम उनसे यही बोलते, कहना जी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें चल रही हैं। तो कृष्ण जी हमसे कहते, मुश्किल है लेकिन ख़त्म नहीं हुई है, मगर लोग समझते ही नहीं हैं। हर किसी से समझने की उम्मीद मत रखो। और हम कहते फिर क्या करें, तो कृष्ण जी हमें यही कहते, जो सही है वो करते रहो और अपने कर्म पर भरोसा रखो। तो शायद दोस्तों कृष्ण जी की यह सीख आज भी उतनी ही ज़रूरी है कि जो भी है ना आप करते रहें, अपने पे भरोसा पूरा रखें साहब, सब चीज़ें सही होने वाली हैं। तो खूब मस्ती करेंगे, छोटा सा गाना सुन के हम वापस आते हैं 9837896896 पे। आप कॉल करें या फिर हमें मैसेज करें, करेंगे खूब सारी बातें दिल की।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। अभी जो आप गाना सुन रहे थे दही हांडी स्पेशल सॉन्ग मच गया शोर सारी नगरी में, ये गाना जो है ना फिल्माया गया था अमिताभ बच्चन और परवीन बॉबी पर। और इस गाने में जब डायरेक्टर साहब रवि टंडन जी गाने को फिल्मा रहे थे, इस सॉन्ग को फिल्मा रहे थे, तो उन्हें उम्मीद थी कि अमिताभ बच्चन जी की तो हाइट यार लंबी है और एक ही बार में चढ़ के जैसी वो पिरामिड बना के ऊपर पहुंच के मटकी तोड़ेंगे तो एक बार में ही हो जाएगा ये टेक। मगर साहब इस टेक को लेने में, उस मटकी को तोड़ने में उन्हें लग गए 21 टेक। 21 टेक के बाद ये उनका शॉट फाइनल हुआ। तो कहते हैं साहब हाइट नहीं, उस समय बहुत ही चतुराई और बहुत ही फुर्तीलापन चाहिए और उस सीन को निभाने में सच में, मतलब कहते हैं ना कि आप और हम देखने में तो आसान लगता है मगर जो पीछे की उसकी कहानी होती है ना वो बिल्कुल ही अलग होती है। तो कोई नहीं, चलिए लेते हैं अपने लिसनर को लाइन पर, मतलब कॉल पर, और करते हैं खूब सारी बात। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है सर, बोल रहा हूँ सर। अभी तो आप बोल लाइन पर
0: नहीं सर, हम भूले बिल्कुल नहीं, हमें बिल्कुल ध्यान था, हमने देखा अपनी तरफ और हमें याद आया यार हमारे साथ तो कोई कॉल पर है और चलिए उनसे बात करते हैं। तो क्या करते हैं संजय जी आप?
1: मैं सर इलेक्ट्रोवोल्टिक काम करता हूँ फर्म में।
0: अच्छा, आप एक फर्म में काम करते हैं और इस समय आज कैसे टाइम थोड़ा लेट हो गए फर्म से या टाइम से आ गए?
1: बिल्कुल अभी अभी आया हूँ, मेरे का टाइम है, तुरंत कॉल लगा, पहले ही कॉल लग गया मेरा।
0: चलिए साहब, आपकी एकदम, आपकी तो लाइन एकदम खुली हुई मिली, मतलब आपको।
1: और अखिल भाई,
0: हाँ जी,
1: मेरा ये पांचवा कॉल है और मेरे पहली बार में ही मैंने मेरा लगा है हमेशा।
0: मतलब ये पांचवी कॉल है और आपकी हर बार पहली बार कॉल में लग जाती है?
1: पहली कॉल में, दोबारा ट्राई नहीं करता।
0: कुछ तो कनेक्शन होगा सर इसका, मतलब कहीं ना
1: दिल से दिल तक है ना।
0: हाँ साहब, बिल्कुल सही कहा आपने, दिल से दिल तक कनेक्शन है। तो कैसे आज का दिन कैसा रहा आपका? और आज
1: बहुत अच्छा रहा, बस भीगे थे दो दिन 11 बजे के बारिश में।
0: हाँ थोड़ा सा तो भीग गए होंगे सर।
1: कल भी भीगे थे, आज ही भीगे।
0: कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि पहले सोचा चलो रेनकोट ले जाऊं, बारिश हल्की सी हो रही है, फिर छोड़ते यार बहुत हल्की सी बारिश हो रही है, क्या करेंगे रेनकोट ले जाके, और तभी बारिश तेज हो गई?
1: ऐसा होता है सुबह उठे हम।
0: हाँ जी,
1: रेनकोट की बात तो बहुत दूर रही, हम सोचते हैं मौसम बढ़िया, फोन तो ऐसे ही बचा रहेगा, थैली वैली मत डालो जेब में।
0: फिर बाद में जगह ढूंढते हैं कहीं कि कहीं पुल के नीचे खड़ा कर लें, कहीं पेड़ के नीचे बाइक रोक लें। अभी मेरे साथ भी ऐसी एक इंसिडेंट हुआ, मैं थोड़ा दलपतपुर की तरफ जा रहा था बाइक से, तो बीच में बारिश हो गई, तो वहाँ पे एक बीच में फ्लाईओवर आता है, मैंने वहाँ साइड में रोक ली बाइक फ्लाईओवर के नीचे जब बारिश तेज हो रही थी, तो वहाँ पे एक सज्जन थे जो रेनकोट सेल कर रहे थे, तो मैंने तभी बारिश थोड़ी सी हल्की हुई तो मैंने कहा यार अब क्या करूँगा रेनकोट लेके, अब तो बस पहुँचने ही वाला हूँ जहाँ पहुँचना। तो वो उसने अपनी पूरी डील फाइनल कर दी, सर मैं आपके लिए इतना कम कर दूंगा, इतना डिस्काउंट दे दूंगा। मैंने कहा यार इतना तो डिस्काउंट दे रहा ले लो, मगर बारिश वो होती ना अंदर से कहता यार अब तो क्या करेंगे लेके, और सच में मैंने उसे मना किया और मैं थोड़ा आगे चला, ओ भाई साहब बिल्कुल एकदम तेज बारिश हो गई, मैंने कहा आज तो गए तुम।
1: तो भाई साहब मेरे साथ भी कई बार हुआ, आज छापा लेके जाऊंगा, अरे छोड़ो कौन रास्ता फिरेगा, शाम को लौटते वक्त बहुत बुरा लगता है ना वो। जब अच्छा लगता है जिसमें बारिश पड़ रही होती है, जब बारिश पड़ रही होती है वापस आओ, अरे कहाँ लाते फिरेंगे, लेकिन बाद में पछतावा होता है, ऐसा चलना भी अच्छा रहता।
0: तो कोई बात नहीं साहब, बहुत जल्दी जो है ना छातों में भी कैमरे लगे हुए आ जाएंगे सीसीटीवी, और उसे आप उसे लगा के इंस्टाग्राम या फेसबुक लाइव हो जाएंगे तो लोग उसका भी इस्तेमाल करना चालू कर देंगे।
1: वो तो है।
0: तो आज कौन सी फरमाइश है आपकी, कौन सा गाना दिल से सुनना चाह रहे हैं आप?
1: मैंने बताया नहीं, जो है 1969 में रिलीज हुई थी मूवी अब आन मिलो सजना,
0: रफी साहब की आवाज में।
1: नहीं, हाँ, रवि और लता मंगेशकर की आवाज में, आशा पारेख जी और आयुष खन्ना है इसमें।
0: बिल्कुल सही कहा साहब, एवर ग्रीन हीरो, पहले सुपरस्टार पूरे।
1: ये ओम प्रकाश सर ने ये फिल्म बनाई थी।
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या बात है।
1: इस मूवी का सॉन्ग सुनना
0: चाहिए जरूर। चलिए ये आपकी फरमाइश पूरी करते हैं और आपको भी जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: आपको भी बहुत बहुत
0: शुभकामनाएं। तो श्रोताओं हमारे साथ जुड़े थे संजय जी, जो कह रहे हैं ये सारे इंसिडेंट तो हमारे साथ भी होते रहते हैं, ये नटखट चीजें तो चलती रहती हैं, तो जरूर इनके गाने की इनकी फरमाइश को एंजॉय करते हैं और आते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। 9837896896 ये नंबर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप भी कॉल कर सकते हैं और मैसेजेस भी कर सकते हैं और अपने दिल की बात जरूर कह सकते हैं जैसे संजय जी ने कही है।

0: ना सुन रहे थे ना, इस फिल्म का नाम ही था आन मिलो सजना, टाइटल ट्रैक था रफी साहब प्यारे। और इनकी तो जोड़ी का तो साफ जवाब ही नहीं, मतलब अब भी बचपन से लेके बचपन तक सभी जानते होंगे इनके समय से। कास्ट से राजेश खन्ना जी, आशा पारेख जी और विनोद खन्ना जी, तो दोनों खन्ना ब्रदर्स थे भाई साहब इस मूवी में। और कहते हैं ना सुपरस्टार, ऐसी पर्सनैलिटी अपने बॉलीवुड इंडस्ट्री में शायद ही कहीं और देखने को मिली हो। तो चलिए बात करते हैं अपने नए लिसनर से, कहते हैं ना, क्योंकि अब हमारा शो का टाइम हो रहा है जाने की तरफ और 9:52 बजे। तो आप सभी लोगों को भी थोड़ी जल्दी होगी अपने अपने घर की तरफ जाने की, क्योंकि कल तो साहब जन्माष्टमी है। तो आज थोड़ा जो जो सामान आपसे कहा है कि घर पे लेके पहुंचना, वो टाइम से पहुंच जाना, वरना पता चला कहीं बांसुरी ना बज जाए आपकी। तो ज़रूर बात करते हैं अपने नए लिसनर से और पूछते हैं क्या कर रहे हैं वो। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया सर, आप बताइए।
0: सर क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं? कुलवीर सिंह जी, आपके पीछे जो FM चल रहा है ना, उसकी आवाज़ भी आ रही है मेरे पास, थोड़ी सी आवाज़ कम कर लीजिए। तो क्या करते हैं कुलवीर सिंह जी आप?
1: मेडिकल पर रहते हैं।
0: मेडिकल स्टोर पर रहते हैं? तो सही है साहब, सबके जिन जिनको दवा चाहिए होती होगी एकदम जख्मों पे मरहम लगा देते होंगे एकदम। तो आपके जख्म पे सर मरहम हम लगा देते हैं। आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे और ऐसा क्या है जो आप कहना भी चाहेंगे दिल की बात अपनी? जरूर आपको, देखो माँ के तो बराबर कोई है नहीं और माँ से की तो बराबरी कोई कर भी नहीं सकता, मतलब उनकी याद तो हमेशा आएगी ही आपको। तो माता जी के लिए ज़रूर एक गाना हम डेडिकेट करते हैं, और जहाँ भी हैं जैसी भी हैं वो आपको खूब सारा प्यार भेज रही हैं। तो आप भी एकदम खुशी खुशी ना मरहम लगाते रहिए साहब। तो चलिए ये गाना ज़रूर आपके लिए हम प्ले करते हैं, मदर के लिए आपकी। ओके, तो इस श्रोताओं हमारे साथ जुड़े थे कुलवीर सिंह जी और कह रहे थे कि उन्हें अपनी माँ की याद आ रही, तो ज़रूर एक गाना हम अभी डेडिकेट करते हैं। दोस्तों जब कहते हैं कि जैसे जन्माष्टमी के मौके पर, एक छोटी सी बात जो है ना, मैं भी कुछ कहना चाहूँगा कि हम जिंदगी में बहुत कुछ पाने के पीछे भागते हैं, मतलब कुछ ना कुछ हमें पाना ही है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आपके पड़ोस में बैठे हुए ड्राइविंग सीट के भाई साहब हो, पैसा, कामयाबी, नाम। लेकिन कभी कभी हमें रुक कर ये भी देखना चाहिए कि हमारे पास पहले से क्या क्या है। एक परिवार है, कुछ अपने लोग हैं, एक दोस्त हैं, हाँ वही दोस्त जो साथ में बैठा है आपके, एक मुस्कान और उम्मीद। कृष्ण की ज़िंदगी में हमें यही सिखाती है कि ज़िंदगी में मुश्किलें आएंगी लेकिन मुस्कुराना बंद नहीं करना है। तो ज़रूर हम लेंगे इसके बाद एक लास्ट कॉल, तब तक हम ये गाना सुनते हैं जो कुलवीर सिंह ने अपनी मदर के लिए डेडिकेट किया है। और हम भी सभी माताओं के लिए ये गाना डेडिकेट करना चाहेंगे। तो चलिए सुनते हैं, 9837896896 पर अपनी कॉल मिलाएं और हमारे लास्ट कॉलर बने।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे और खूब सारी हो रही है मस्ती, बातें और शायरी। तो चलिए लेते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर को और बात करते हैं उनसे खूब ढेर सारी दिल की। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं सर आप?
1: मैं बढ़िया हूँ अखिल, हाउ डू यू डू?
0: सर मैं बहुत बढ़िया हूँ। क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं ये जरूर बताएं हमारे श्रोताओं को।
1: मेरा नाम है अनुज सिंह और मैं अभी लाजपत नगर से बात कर रहा हूँ।
0: तो अभी आप इस समय लाजपत नगर में हैं?
1: यस।
0: तो सर
1: आई एम इन माय कार एंड एंजॉयिंग द म्यूजिक।
0: तो आप अपनी गाड़ी में इस समय?
1: आई गॉट योर कॉल, थैंक यू वेरी मच अखिल, थैंक यू वेरी मच।
0: तो सर इस समय कोई ऐसी बात, कोई आपकी कोई शायरी या कोई गाना जो हम चाहें हमारे सब श्रोता सुनना चाहें तो जरूर जरा बताएं।
1: क्या मैं गा सकता हूँ इस समय?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं है, एक लाइन तो आप गा ही सकते हैं।
1: एक नहीं, मैं तो चार या पांच ही गाता हूँ।
0: चलिए सर चार लाइन ही सुना दीजिए।
1: एक दिन वो मिले, रोज मिलने लगे, क्या कयामत हुई,

0: यही गाना अखिल मैं सुनना चाहूंगा, एक हसीना थी एक दीवाना था, कर्ज मूवी।
1: क्या बात है साहब, क्या बात है। मैं तो सोच रहा था कि अब ये गाना जो है पूरा ही सुल्लू, इतना अच्छा गाया आपने, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया।
0: एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं और करना चाहता हूँ एफएम के द्वारा।
1: हाँ जी।
0: आप शायद अखिल, आपको भी शायद पता नहीं होगा।
1: हाँ जी।
0: ये हमारे मुरादाबाद शहर में एक बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है और हिस्ट्री में पहली बार होने वाला है।
1: क्या बात है, क्या है वो इवेंट, बताइए जरूर।
0: मैं बता रहा हूँ आपको सर, जस्ट ओपनिंग इट, या इट इज ओपन। हमारे शहर में टेबल टेनिस के बहुत बहुत मशहूर खिलाड़ी रहे हैं, मैं खुद एक टेबल टेनिस का नेशनल प्लेयर रहा हूँ।
1: हाँ सर, बहुत बढ़िया।
0: मैं दोबारा खेलना शुरू कर रहा हूँ, व्यक्तिगत रूप से भी आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: तो मैं दोबारा खेलना शुरू कर रहा हूँ, तो इस समय जो इवेंट होने वाला है वो मैं बताना चाहूंगा, जो भी हमारे श्रोतागण है आपको, क्योंकि आपको भी नहीं पता होगा कि मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन पहली बार चौथी यूपी स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रही है, जो पावर्ड है स्टैक ग्लोबल से।
1: okay.
0: और जो स्टैक ग्लोबल है वो करीबन 200 से ज्यादा देशों में खेल का सामान एक्सपोर्ट करती है विवेक कोहली जी के द्वारा।
1: तो ये कब है और कौन सी तारीख को कहां पर है ये इवेंट मुरादाबाद में?
0: ये अखिल जी, मैं सभी टेबल टेनिस प्रेमियों से या खेल प्रेमियों से अनुरोध करूंगा कि भारी संख्या में जाएं और बच्चों का उत्साहवर्धन करें, क्योंकि ये ऑल ओवर यूपी का एक रैंकिंग टूर्नामेंट है। रैंकिंग का मतलब ये है कि 1, 2, 3, 4 ये फोर्थ रैंकिंग है, तो इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर हमारी यूपी की टीम चुनी जाती है टेबल टेनिस की।
1: ओके।
0: इसका वेन्यू बहुत ही सुंदर है, हमारे मनचंदा जी का जो समर वैली स्कूल है अगवानपुर बाईपास पर, घाट रोड पर।
1: हाँ जी।
0: वहाँ ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 25 से 27 सितंबर तक।
1: क्या बात है।
0: और मैं चाहूंगा कि छोटे से छोटे बच्चे और खेल प्रेमी, तो देखिए खेल प्रेमी होते हैं। हाँ जी। भले टेबल टेनिस का खिलाड़ी हूँ, मुझे क्रिकेट भी पसंद है।
1: हाँ जी।
0: तो मैं चाहूंगा कि 25 से 27 सितंबर जब भी जिस आदमी को थोड़ा बहुत भी समय मिले
1: तो जरूर होके
0: वो वहाँ जाए और इस खेल का आनंद ले, ये बहुत अच्छा खेल है।
1: पक्का सर, पक्का। ये आपने बहुत ही अच्छी एक इन्फॉर्मेशन दी है आपने कि
0: थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि व्यक्तिगत रूप से भी बीच बीच में थोड़ा सा अगर जनता को बताते रहेंगे अपने
1: जरूर हमें आपने बता दिया है तो हम जरूर इस चीज को अपडेट करेंगे। बहुत ही
0: ये मेरे मित्र है अनिल सेन, वो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है इस टूर्नामेंट के, और मैं उनको पिछले 25 सालों से जानता हूँ, जब से मैंने खेलना शुरू करा है, और वो मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं।
1: बहुत बहुत बधाई हो, इतना अच्छा आप ये इस टूर्नामेंट को आप लेके आ रहे हैं और मुरादाबाद में हो रहा है, तो एक बहुत ही गर्व की बात।
0: मेरे दोस्त अनिल सेन को जाता है जो इस समय उत्तर रेलवे मुरादाबाद में कार्यरत है पिछले 20 साल से ज्यादा से।
1: क्या बात
0: है। मुझे खुशी है कि वो अब मुरादाबाद में ही बस गए हैं, उन्होंने कभी अपना ट्रांसफर नहीं लिया।
1: चलिए साहब, ये तो और भी अच्छी बात है कि ये गाड़ी में इस समय दो दोस्त हैं, और ये गाना भी बहुत बढ़िया जो आपने अभी गाया था ना, इतना बढ़िया गाना गाया था। इस गाने के साथ हम इसे शो को जो है अब कहते हैं ना अंतिम पड़ाव की ओर लेके चलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी आपका, आपने इतना समय दिया और इतना बढ़िया गाना गाया
0: जी। थैंक यू सर।
1: तो चलिए कॉलर्स कि इस समय हमारे पास खूब सारी कॉल आ रही है, हमारे पास एक कॉलर और है, उनकी भी हम एक बार कॉल ले लेते हैं और बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप?
2: मैं दुआएं साहब, आपका आशीर्वाद है सर।
1: और क्या कर रहे हैं उस्मान जी आप?
2: आपका प्रोग्राम सुन रहे थे और ये खिलाड़ी का भी मतलब समझ रहे थे हम लोग क्या कह रहे हैं।
1: आप भी जरूर समझ गए होंगे। आप एक बार जरूर, टेबल टेनिस एक गेम है और ये बहुत ही शानदार गेम है, इसका जरूर एंजॉय करें। ये जो होने वाला है समर वैली स्कूल में होने वाला है 25 सितंबर से, तो 23 सितंबर से 27 सितंबर तक इसे जरूर वहाँ जाएं, अगर मौका लगे तो अपने साथ और लोगों को भी लेके जाएं। तो बताइए क्या कर रहे थे, कोई शायरी सुनाएंगे आज आप उस्मान जी?
2: हाँ बिल्कुल सुनाएंगे, पिक्चर का नाम है एक दूजे के लिए और गाना है हम बने तुम बने एक दूजे के लिए,
1: तो जरूर जरूर ये गाना भी होगा आपका एक दूजे के लिए, मगर एक शायरी सुनाइए फटाफट।
2: जी सर, कौन सी सुनेंगे आप?
1: अच्छा आज आप पिटोरा लेके बैठे हैं सामने, लगता है मेरे ख्याल से 3-4 किताबें होंगी आपके पास शायरी की आज। ऐसी पढ़िएगा कि एक बार में ही हो जाए, ये नहीं कि पता चला आप आज का कोर्स खत्म नहीं हुआ है।
2: क्या साहब,
1: कहाँ गए उस्मान जी, शुरू कीजिए, चश्मा लगा लीजिएगा।
2: तुमने जब देखा ये अंदाज, देखा मुझको इतनी भी खुद पसंद ना बन रहे, ये निगाहे नाज जैसे तुझे किसी से कोई वास्ता ना हो।
1: क्या बात है साहब, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। आपने तो लगता है साथ में बगल में बेगम है, तभी आपने इतने आराम आराम से पढ़ी उन्हें देख देख के।
2: जिंदगी को जिंदगी का हौसला मिल जाएगा, पर तेरी चश्मे करम का आसरा मिल जाएगा।
1: कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा साहब, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। बहुत ही बढ़िया आपने पढ़ी है शायरी, और बहुत अच्छा लगा उस्मान जी आप आज फिर से कनेक्ट हुए हमारे साथ।
2: शुक्रिया
1: साहब, शुक्रिया।
2: आपका प्रोग्राम अच्छा लगता है सर।
1: सर हमें भी आप लोगों की आवाज़ अच्छी लगती है, जब आप बोलते हैं अपनी शायरी सुनाते हैं और अपनी फरमाइश देते हैं हमें, वो भी बहुत अच्छा लगता है।
2: शुक्रिया,
1: धन्यवाद उस्मान जी। तो श्रोताओं आज हो गई खूब सारी मस्ती, खूब सारा कहते हैं ना भाई साहब, जो सोचा नहीं था वो भी हो रहा है आज हमारे साथ।
3: चांद के बहाने

0: पटना। यही है साहिबान कहानी प्यार की।
1: तो आज दोस्तों, आज का ये खूबसूरत सफर अब यही खत्म करने का वक्त आ गया है। आज हमने किए खूब सारी नटखट बातें, सुनी दुनिया भर और मुरादाबाद की भी खबरें जो आपने बिल्कुल अभी अभी अनुज जी के द्वारा सुनी थी, खूब सारी शायरी जो उस्मान जी ने बिल्कुल एंडिंग में बताई और खूब मस्ती करी है, किसी को याद भी किया है और महसूस किया है जन्माष्टमी का प्यार। तो याद रखिए, जहाँ प्रेम है वहाँ कृष्ण है, जहाँ विश्वास है वहाँ कृष्ण है, और जहाँ मुस्कान है वहाँ जिंदगी सबसे खूबसूरत है। तो आप सभी को मेरी तरफ से पूरे दिल से दिल तक अखिल संघ के परिवार की तरफ से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ आपका दोस्त अखिल, और याद रखिए, बातें मिलती रहेंगी, दिल जुड़ते रहेंगे और हम मिलते रहेंगे दिल से दिल तक अखिल के संग। तो मिलते हैं कल दोबारा इसी समय 9 बजे आपको इसी शो में, जहाँ खूब सारी बातें होंगी दिल की। तब तक के लिए बाय बाय।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर मथुरा में कन्हैया जी का दिव्य महाभिषेक, बांके बिहारी मंदिर की विश्व प्रसिद्ध मंगला आरती और द्वारकाधीश इस्कॉन तथा प्रेम मंदिर की अलौकिक झांकियां देखने देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु खींचे चले आते हैं।
3: ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने पौराणिक कुंडों के जीर्णोद्धार, परिक्रमा पथ के चौड़ीकरण और यमुना घाटों के सौंदर्यकरण से लीलाधर भगवान श्री कृष्ण की पावन धरा को नई पहचान दी है।
2: तो आप भी इस जन्माष्टमी 4 सितंबर को ब्रज तीर्थ आइए और कृष्ण भक्ति में रम जाइए।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
3: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।

0: हाँ
1: या चुप रहूं
0: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है
0: क्या है

आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।